ओम शांति। हम सभी को बाबा ने सेवा के फील्ड में रखा है। सेवा क्या है? युग परिवर्तन करना, सभी को बाबा का मैसेज देना, न केवल मैसेज देना लेकिन सत्य ज्ञान भी देना।

सभी को अपने परम पिता से मिलवाना, सभी के दुख दर्द टेंशन समस्याएं समाप्त करवाना, उन्हें गाइड भी करना और उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस भी देना। वाइब्रेशंस देना हमारी सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। हम तीनों सेवाएं एक साथ करें। वाचा के द्वारा हम ज्ञान देते हैं, वो सेवा हमारी चलती है। साथ साथ मनसा के द्वारा सभी को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस मिलते रहें, शुभ भावनाओं का दान मिलता रहे, सबको हमारे पास आते ही ऐसा लगता रहे हम अपने परिवार में आ गए, हम वहीं आ गए जहां हमें आना चाहिए था। मनसा वाइब्रेशंस हम प्रकृति को भी देते रहें, वायुमंडल को पावन बनाने के लिए भी देते रहें। ये दूसरी सेवा हमारी चलती रहे। और तीसरी सेवा है कर्मणा। कर्मणा यज्ञ सेवा भी है। कर्मणा यज्ञ में हम किसी भी तरह का कार्य करते हैं या अपने घर को ही यज्ञ मानकर काम करते हैं तो यज्ञ सेवा हो जाती है। लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र पर रहते हैं तो हमारी धारणाएं, हमारा गुण स्वरूप जीवन, हमारी प्योरिटी, हमारी श्रेष्ठ दृष्टि दूसरों को बहुत कुछ सिखाए, उनकी सेवा करे। काम तो सभी संसार में करते हैं, लेकिन जब वो हमें कार्य करते देखें तो ये महसूस करें ये कितने हल्के हैं, ये तो ऐसे काम करते हैं जैसे कि मानो कुछ करते ही ना हो। संसार में समस्याएं तो सबके ही सामने आती हैं, पर जब वो हमें देखें तो उन्हें महसूस हो कि ये कितने तनाव से मुक्त हैं, ये कितने पावरफुल हैं, समस्याओं को पार करने में ये कितने समर्थ हैं, हमें भी वैसा ही होना चाहिए। जब वो आपको परिवार में रहते देखें तो ये देखें कि परिवार में तो सभी रहते हैं पर इनके परिवार में कितना प्यार है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना खुशी का माहौल है, कितना एक दूसरे के सभी लोग सहयोगी हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बड़ा हल्का वातावरण है परिवार में। मैंपन, मेरा, तू तू, मैं, क्रोध अहंकार, इससे ये मुक्त हैं। हमारा ऐसा पारिवारिक जीवन देखकर बहुत बड़ी सेवा होती है। तो हम हर तरह की सेवा लगातार करते चलें। जितना हम गुण स्वरूप बनते जाएंगे दूसरों पर हमारी अमिट छाप पड़ेगी और दूसरे लोग इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य लेंगे। साथ साथ अपनी दिनचर्या में 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को इस संसार को या प्रकृति को, दुखी आत्माओं को या वायुमंडल को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस अवश्य दें। इस संसार में अनेक लोग रोगों से पीड़ित हैं, उनको वाइब्रेशंस देकर हम उनकी मदद करें। भले रोगों के जिम्मेदार वो स्वयं रहे हों, उन्होंने कोई विकर्म किए हो या वर्तमान में गलती की हो, लेकिन हमारा कर्तव्य है अब उन्हें मदद करना। तो ये सभी सेवाएं हमारी चलती रहें। ये तीनों तरह की सेवा सारा दिन चले, इसको ही कहते हैं एक साथ तीनों तरह की सेवा करना। और मान लो हम किसी को समझा रहे हैं, प्रदर्शनी समझा रहे हैं, तो समझाते हुए आत्मिक दृष्टि रखना। ये हमारे परिवार के देवकुल की आत्माएं आई हैं, इस गुड फीलिंग में रहना और चलते फिरते भी उसी समय हमारे गुणों की छाप दूसरों पर पड़ती रहे, ऐसा रहना। ये है तीनों तरह की सेवा एक साथ करना। तो आज सारा दिन हम सभी विशेष रूप से ग्लोब को वाइब्रेशंस देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान पूर्वज आत्मा हूं, मेरे सामने है ग्लोब, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझ मेरे मस्तक से निकलकर जा रही हैं पूरे ग्लोब को। जैसे अब ग्लोब काला हो गया है और उसका रंग गोल्डन होता जा रहा है, ऐसे ग्लोब को वाइब्रेशंस बार बार देंगे, ये सारे संसार को वाइब्रेशंस पहुंचा

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। मैंने कहीं पढ़ा है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी जब वापस आते हैं तो उनमें से कुछ लोग पीओडी या पोस्ट ओलंपिक डिप्रेशन से पीड़ित हो जाते हैं। लंबे समय तक पूरी दुनिया की नज़रों में रहने के बाद और सालों के प्रशिक्षण जिससे वे सर्वश्रेष्ठ बन सकें, उसके लिए वे खिलाड़ी कठोर मेहनत करते हैं। परंतु जब वे वापस घर पहुंचते हैं तो अवसाद की अवस्था में आ जाते हैं। तब उन्हें अपनी पुरानी दिनचर्या भी निभानी होती है। ऐसा लगता है कि सफलता का सर्वोच्च स्थान पाने के बाद उनमें उससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है और उनका जीवन बेमानी हो जाता है। समान तरह का अनुभव अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ हुआ था जो चांद पर चले थे। उस मंजिल की ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद उनमें एक उदासीनता छा गई, यह सोचकर कि अब जीवन का शायद ही कोई और अनुभव उनकी अंतरिक्ष यात्रा से ज्यादा उत्साहपूर्ण हो पाए। अपने जीवन में आशा और भावना के बीच एक संतुलन लाना आवश्यक है और इसके लिए आपको अपने हर लक्ष्य की ऊंचाई को पिछली बार से बढ़ाना पड़ेगा। एक मंजिल पाने के बाद हो या व्यक्तिगत, यह आवश्यक है कि आप तुरंत ही दूसरा बिंदु बना लें। इस प्रक्रिया में जहां बड़ी प्रगति ज्यादा व्यस्त रखने वाले लक्ष्य होंगे, उसके लिए आपको अपने से ज्यादा काबिल विरोधी की आवश्यकता है। उसी प्रकार अनिवार्य लक्ष्य आपके विशेष गुणों के लिए एक रास्ता खोल देते हैं। याद रखिए, हीरे को तराशने के लिए भी दबाव की आवश्यकता होती है। अतः यह निर्धारित कीजिए कि आपके लक्ष्य आपके लायक हों। यह भी निश्चित करिए कि आपके लक्ष्य में चुनौतियां सम्मिलित हैं जो आपको अपने हृदय तक पहुंचाएंगे और आपको इस प्रक्रिया में प्रगति की ओर ले जाएंगे। मानवीय विशिष्ट गुणों के वास्तविक प्रदर्शन के लिए और जीवन में धरोहर छोड़ सकने के लिए आवश्यक है कि हम अपने कर्मों के मापदंड को ऊंचा रखें और उसे स्वयं ही आगे की ऊंचाइयों तक बढ़ाते रहें। इस निरंतर सुधार की अभिव्यक्ति के साथ जीवन भी हमें बेहतर अवसर और पारितोषिक देता है।

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

थॉमस एडिसन की जीवनी पढ़ने काबिल है। अतीत के स्वप्नदर्शी, थोड़ा भाग्य, थोड़ी प्रतिभा के साथ वह एक उज्जवल आविष्कारक थे, जिन्होंने इस ग्रह पर अपने समय का सबसे बढ़िया तरीके से सदुपयोग किया। जबकि उन्होंने सिर्फ 6 महीने की औपचारिक शिक्षा ली, परंतु फिर भी द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर जैसा साहित्य 8 साल की उम्र में पढ़ा था, और उन्होंने आवाज को रिकॉर्ड में बांधकर फोनोग्राम का आविष्कार किया जब वे सिर्फ 30 वर्ष के थे। वे आशावाद के गुरु थे, और अपने आखिरी दिनों में जब वे करीब करीब अपने सुनने की शक्ति खो चुके थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि उन्होंने कान की मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया, तो उनका जवाब था, आपने अपने 24 घंटों में ऐसा क्या सुना जिसके बिना आप काम नहीं चला सकते हैं। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, एक इंसान जिसे चिल्लाना पड़े वह कभी झूठ नहीं बोलता। पर एक चीज जो इस विशेष व्यक्ति की हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, वह है उनका सिर्फ 4 घंटे की नींद पर निर्भर रहने का अपूर्ण गुण। नींद एक नशे के समान है। उनका कहना था, अगर एक समय में ज्यादा ली जाए तो वह आपको मूर्ख रहने बना देती है। आप समय, ताकत और अवसर खो देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग आवश्यकता से अधिक सोते हैं। हम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हमें अच्छी तरह काम करने के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। हम इससे कम नींद के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और इसके ख्याल को भी झटक देते हैं। फिर भी जो असली में महत्वपूर्ण है वह है नींद की प्रचुरता और अपूर्वता, ना कि नींद की अवधि। सिर्फ वह वक्त याद करिए जब आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। आप अपने दफ्तर में पनप रहे थे, अपने परिपूर्ण रिश्तों से प्रसन्न थे, और अपने आंतरिक जीवन में विकसित हो रहे थे। आपको उत्तेजना देने के लिए आपके जीवन में शक्ति और भावना की प्रचुरता हर पल थी। अगर आप अधिकतर लोगों की तरह हैं, तो आपको याद आएगा कि उन दिनों आप कम नींद में भी गुजारा कर लेते थे। असलियत में उन दिनों आपके जीवन में इतना कुछ आपको उत्तेजना देने के लिए था कि आप सोकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते थे। अब जीवन की उन बातों पर विचार कीजिए जब परिस्थितियां ठीक नहीं थी। आपकी नौकरी थकान वाली थी, आपके जीवन में लोग आपको पागल किए दे रहे थे, और आपके पास अपने लिए कोई समय नहीं था। उन दिनों शायद आपके सोने की अवधि बढ़ गई थी। शायद आप शनिवार और इतवार को 2 बजे दोपहर तक सोते थे। हम अक्सर नींद को अपनी कठिनाइयों से बचने का सहारा बनाते हैं, परंतु आपको आखिर में उठकर कैसा लगा? अस्थिर, निरुत्साहित और थकान से भरा हुआ। अतः केंद्र बिंदु यह है कि नींद के घंटे नहीं, परंतु हमारे शरीर को नींद की सिर्फ उतनी मात्रा की आवश्यकता है जो हमारे शरीर को नया जीवन दे सके। बिस्तर पर कम समय रहिए, पर कोशिश कीजिए कि एक और गहरी नींद आ सके। यह समझिए कि थकान एक मानसिक संरचना है जो उस बात से पैदा होती है जो करना हमें पसंद नहीं है। और हेनरी वर्ड्सवर्थ के वे विवेकपूर्ण शब्द याद रखिए, वह ऊंचाइयां जो महान व्यक्तियों ने पाई, वे उनके पास उड़कर नहीं आई। जब उनके संगी आराम से सोते थे, तब वे लगन से काम कर रहे होते थे। इस छोटी सी पंक्ति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।

मीठे बच्चे, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है, और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस? इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।

अनुसंधान यह दर्शाते हैं कि जिस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं वह हमारे विचारों को प्रभावित करता है। अगर आप जमीन पर देखेंगे, झुककर रहेंगे और अगर अपने को एक अवसादपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो धीरे धीरे आप वैसा ही महसूस करने लगेंगे और उदासीन प्रवृत्ति के बन जाएंगे। अगर दूसरी तरफ आप मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, तन के सीधे अपना सर ऊपर करके खड़े होंगे तो आपको जल्द ही लगेगा कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, चाहे आप पूरे दिन अच्छे मनस्थिति में न रहे हों तो भी। इस तरीके का प्रयोग करके आप जब तक सही में वैसे न बन जाएं, तब तक आप इसका अभिनय कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप उस व्यक्ति जैसा बनने का दिखावा कर सकते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। लगातार एक उत्साहपूर्ण व्यक्ति जो पूरी तरह आत्मविश्वासी है, उसके जैसा होने का अभिनय करने से आप आखिर में वैसे ही व्यक्तिगत गुणों को अपने में विलय कर लेंगे। जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं उसके जैसा अभिनय करिए। इस शक्तिशाली विधि का प्रदर्शन एक अध्ययन के आधार पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों ने एक समूह लेकर, जिसमें भावनात्मक रूप से सशक्त कॉलेज के विद्यार्थियों को दो छोटे समूहों में बांटा गया और उनको जेल की परिस्थिति रूपी उत्तेजना में रखा गया। पहले समूह को निर्देश दिए गए कि वे जेल के संतरियों की तरह अभिनय करें और दूसरे समूह को जेल के कैदियों की तरह व्यवहार करने के लिए बोला गया। इन समूहों के सदस्यों का व्यवहार इस कदर नाटकीय ढंग से प्रभावित हुआ कि मनोवैज्ञानिकों को 6 दिन बाद ही अपना प्रयोग बंद करना पड़ा। कैदी गंभीर रूप से उदासीन होकर पागलों की तरह रोने लगे और संतरी अपने व्यवहार में क्रूर और कठोर बर्ताव करने लगे। जैसा कि यह अध्ययन बताता है कि अभिनय जैसे कि पद्धति अत्यंत प्रभावकारी तरीका है, जिससे व्यवहार को बदलकर अपने आप को वैसे इंसान में बदला जा सकता है जैसा हम बनना चाहते हैं।

मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है। रेडियो मधुबन

ब्रिटिश राजनीतिज्ञ बेंजामिन डिज़राइली ने एक बार कहा था, अपने दिमाग को महान विचारों से पोषित करिए, क्योंकि आप अपने विचारों के ऊपर नहीं जा सकते। उनके शब्द गंभीर हैं और उनके ज्ञान का संकेत बिल्कुल स्पष्ट है। आप जो जीवन में नहीं है, वह आपको पीछे नहीं रोकता है, बल्कि रोकता आपको वह है जो आप सोचते हैं कि आप नहीं हैं। वह आपके अंतर्मन में चल रहा है और वह आपको अपनी इच्छा की चीज पाने से रोक रहा है। जिस पल आप इस अंतर्दृष्टि के बारे में समझ जाते हैं और अपने मन का उन सीमित करने वाले विचारों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही अपनी निजी परिस्थितियों में एक तात्कालिक सुधार पाएंगे। हम पूरी जिंदगी आंखों पर पट्टी बांध कर जीते हैं, बड़े स्वप्न देखने से डरते हैं और कुछ भी करने से डरते हैं। हम आखिर में अपनी दृष्टि खो देते हैं और बची हुई जिंदगी एक संकुचित दायरे में बिताते हैं। बहुत सारे लोग छोटा जीवन जीते हैं। हम में से बहुत से लोग 20 साल की उम्र में ही मर जाते हैं, पर उनका दाह संस्कार 80 साल में होता है। याद रखिए कि कोई भी ताकत ऐसे इंसान को नहीं रोक सकती जो रुकने से मना कर देता है। ज्यादातर लोग असफल नहीं होते हैं, सिर्फ कोशिश करना बंद कर देते हैं। और ज्यादातर सीमाएं जो हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकती हैं, वे हमारे खुद की बनाई हुई होती हैं। अतः छोटा सोचने की बेड़ियां तोड़कर हिम्मत के साथ बड़ा सोचिए और स्वीकार कीजिए कि असफलता आपका विकल्प नहीं है। जैसा कि सेनेका ने लिखा है, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां कठिन हैं जिसकी वजह से हम हिम्मत नहीं करते हैं, बल्कि चूंकि हम साहस नहीं करते हैं, इसीलिए वे कठिन हैं। तो आइए हम भी हिम्मत करके पूरे उमंग उत्साह के साथ बड़ा कार्य करने के लिए बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ें, बड़ी उड़ान भरें। और इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर। उसको जब पूरा ख़त्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, स्वास्थ्य को सहज करने की इस मुहिम में रेडियो मधुबन एक ऐसी श्रृंखला लेकर आया है जहां पर हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य को हम अपने हाथों में रख सकते हैं। स्वास्थ्य कोई मुश्किल साधना नहीं है, अगर हम कुछ बेसिक सी चीजों का ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहना आसान है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम देश की मदद भी करेंगे। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो स्वास्थ्य कर्मियों पर, स्वास्थ्य जगत पर भी एक बोझा बढ़ता जाता है। दवाइयां अगर हम ज्यादा खाते हैं तो भी एक तरीके से हम राष्ट्र की आर्थिक उन्नति को रोकते हैं। ऐसे में स्वस्थ रहने के अनेक फायदे हैं। सिर्फ ये ना सोचें कि आप अपने लिए स्वस्थ हैं, मगर आप समाज को, राष्ट्र को और पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक सहयोग दे रहे हैं, ऐसा सोचें। आइए, स्वस्थ रहने के लिए हमें और क्या करने की जरूरत है और क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना है, इस पर बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, वहीं से जुड़ रहे हैं। आज उनके साथ करते हैं चर्चा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, प्रायः हम स्वस्थ रहने के फायदे नहीं सोचते। स्वस्थ रहने से तो खुद को तो ज्यादा फायदा होता ही है, मगर स्वास्थ्य जगत में जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी ओवरवर्क्ड हैं, उनके ऊपर जो बोझ है उसको भी कम किया जा सकता है और इसकी वजह से राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में भी हम मदद कर सकते हैं, ये बात सोचने लायक है। आप क्या राय रखते हैं इस पर?
1: आपने एकदम ठीक बात कही। हम ये कोरोना के समय देख चुके हैं कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कर्मियों पे कितना प्रेशर होता है। हम कोई भी दवा इस्तेमाल करते हैं, भले वो भारत में बनी हो, मगर बहुत सारी दवाओं का जो रॉ मटेरियल है, सॉल्ट है, वो विदेश से आता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम जो इस्तेमाल करते हैं, इवन जो हम बेसिक, आप ये मानिए कि आज के जमाने में जब हम ब्लड, अपनी कोई भी खून की जांच कराते हैं, जो टेस्ट ट्यूब है वो कुछ भारत में बनती है, कुछ विदेश से आती है। बहुत सारे सीटी की मशीनें, एक्सरे की मशीनें, एमआरआई की मशीनें, उनके अंदर लगने वाली प्लेट, वो सारी की सारी विदेश से आती है। तो यदि हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम अपने देश का बहुत बड़ा सहयोग करेंगे, क्योंकि हम अपने देश के पैसे को अपने देश में रखेंगे और जो कंज्यूमेबल सामान है या जो बाहर से दवाइयाँ आ रही हैं, इंजेक्शंस आ रहे हैं, वो सारे के सारे, उनमें जो विदेश का धन खर्च हो रहा है वो कम खर्च होगा। ये बात बहुत अच्छी है कि भारत विश्व में बहुत ऊंचा स्थान मेडिकल जगत में लेता है। भारत एकमात्र ऐसा देश होगा पूरे विश्व में जहां पर मॉडर्न मेडिसिन जो एलोपैथी है, उसके साथ साथ हमारा जो एंशंट थेरेपी है आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योगा, यूनानी, होम्योपैथी, इन सारी की सारी चीजों में हमारा बहुत अच्छी पकड़ है और हमारे बहुत सारे जानकार हैं इस देश में जो कि इसमें काम कर रहे हैं। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो इन सारे जो करनी है उनके ऊपर भी वर्क प्रेशर कम पड़ेगा और हम सब मिलकर एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ देश बना पाएगा।
0: ये बहुत ही सुंदर बात आपने कही और जब हम एक डॉक्टर से ये बात सुनते हैं तो ये बात समझ में आती है कि डॉक्टर्स जो इस पूरे समाज को, देश को, विश्व को अच्छा स्वास्थ्य देने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं और हमारे स्वास्थ्य के प्रति उनकी कितनी ऊंची कामना है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो उनका आधा काम कम हो जाएगा, और वो चाहते ही हैं कि लोग स्वस्थ रहें। ये बात समझ में आ रहा
1: भैया, हर डॉक्टर हर देश के नागरिक से सिर्फ इतना चाहता है कि वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत फ्रेश फ्रूट, थोड़ा बहुत फ्रेश वेजिटेबल खा ले, उसका जीवन सुधर जाएगा और उसके साथ साथ पूरे देश का जीवन सुधर जाएगा।
0: देखिए दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत ही सुंदर सी बात कही है कि अगर हम सोचते हैं कि हम देश सेवा करें, राष्ट्र निर्माण में कुछ करें, अगर हम समाज सेवा कुछ करें तो शुरुआत अपने आप से करें। और अगर आप सिर्फ यही चीजें जो डॉक्टर साहब ने अभी कही, अगर हम थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा ताजा फल और थोड़ी ताजा सब्जियां खाने लगे, थोड़ा अपने जीवन में ये परिवर्तन लाएं, तो हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता दिखाएंगे वो एक बहुत बड़ा तोहफा देश और समाज के लिए हो सकता है। डॉक्टर साहब, आज की बातचीत में हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो हम प्रोटीन्स, विटामिन्स की बात कर रहे थे। विटामिन्स की जब चर्चा कर रहे थे तो आपने फैट सोल्यूबल विटामिन्स की बात कही, जो वसा में घुलने वाले विटामिन्स हैं उसकी आपने बात। एक दूसरी भी श्रेणी के विटामिन्स के बारे में आपने कहा था कि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं, और इन विटामिन्स के बारे में भी हम समझे, उसके बारे में कुछ बताएं।
1: मुख्यतः वाटर सोल्यूबल दो विटामिन्स हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। जो वसा में घुलने वाले या फैट सोल्यूबल विटामिन है उनको हम शरीर में स्टोर कर सकते हैं, मगर जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है इनको शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता, तो इनके बारे में भी जानना हमें बहुत जरूरी है। विश्व में दो ही विटामिन है जिसकी कमी सबसे ज्यादा मनुष्य में अब मिल रही है, वो फैट सोल्यूबल है, वो विटामिन डी है जो सूर्य से हमें मिल सकता है, और वाटर सोल्यूबल है जो विटामिन बी है। विटामिन बी की एक और खासियत है, इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि ये एक अकेला विटामिन नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ विटामिन्स है जिसको मिलाकर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसमें बी के आगे एक नंबर दे दिया जाता है, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, या इसको नंबर से बोला जाता है या इसे केमिकल नेम से, जैसे थायमिन, राइबोफ्लोबिन, नियासिन, पैंथेनोइक एसिड, पैराडॉक्सिन, बायोटिन, फोलेट और कोबालामीन के नाम से बोला जाता है। ये हमारे शरीर का सबसे जरूरी विटामिन में से एक है, और जितने भी हम विटामिन्स खाते हैं ये सबसे ऊपर है इसकी जरूरत, क्योंकि इसके तीन सबसे मुख्य काम है, बाकी बहुत सारे काम इसके जरूरी हैं, मगर सबसे जरूरी इसका काम है कि हमारे शरीर में जो ताकत प्रोड्यूस होती है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जिसको तोड़कर हम ताकत, एनर्जी चाहते हैं, वो विटामिन बी के बिना हो नहीं सकता। सो एनर्जी प्रोडक्शन नंबर वन काम विटामिन बी का है। ये हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं RBC, उनको बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है, और तीसरा ये हमारे नर्वस सिस्टम को जो है उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। हमारे शरीर में जो नसें हैं वही सारे सिग्नल शरीर के एक अंग से ब्रेन तक ले जाती हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती हैं, और किस तरह से उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमें बताता है। ये काम जो है वो नसों का है, और हमारे नसों के स्वास्थ्य में सबसे बड़ा रोल विटामिन B12 का है।
0: ये बात समझ में आती है कि विटामिन बी की जब हम बात करते हैं तो आपने जब कहा कि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, प्रायः हम दवाइयों की दुकान में भी लोग कहते हैं कि वे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाई ले लो, कि उसके टैबलेट्स आते हैं उसको ले लो, ये चीजें सुनने को मिलती हैं, मगर इसमें अलग अलग विटामिन हैं, ये सभी मिलकर ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बात समझ में आ रही है। जैसे आप ये बात कह रहे थे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, विटामिन बी और उससे जुड़े हुए जो अलग अलग नंबर्स आपने गिनाए, उनकी ही कमी सबसे ज्यादा दुनिया में देखी जाती है विटामिन डी के साथ। ऐसे आप कह रहे थे विटामिन डी तो फैट सोल्यूबल है और ये वाटर सोल्यूबल जो है, इसकी कमी क्यों देखी जाती है, ये प्रश्न उठता है। आखिर आजकल ये देखने को मिल रहा है तो क्या कारण है इसके पीछे, ये भी समझना आवश्यक है।
1: भैया, कोई भी विटामिन को हमारे शरीर में, पहली बात तो हमें उसे मुंह से लेना होगा, तो यदि हम भोजन जिसमें विटामिन बी की कमी है वो हम अगर प्रयोग में ला रहे हैं तो कमी हो जाएगी, और दूसरा हमारा अगर पाचन तंत्र खराब है तो हमारे शरीर में विटामिन या किसी भी चीज की कमी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों में, अब तो हमारा देश बहुत सुधर चुका है, सरकार की बहुत सारी नीतियां आ गई हैं, उन्होंने हमारे यहाँ जो भी भोज्य पदार्थ हमें मिल रहे हैं, आटा मिल रहा है, दालें मिल रही हैं, या ये सीरियल्स मिल रहा है उसमें इनको जोड़ के दिया जा रहा है। आप हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में अगर जाइएगा तो जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं, इवन अब तो पुरुषों में ओल्ड एज में व्यक्ति हैं, उनको भी ये दवाई के स्वरूप में दिया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि हमारे देश में जो भी स्वास्थ्य के मिशन चले हैं उनमें ढूंढ कर व्यक्तियों को चिन्हित करके ये उनकी ये कमी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बहुत से लोग जो दूध एकदम नहीं सेवन करते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं या उनसे उनको एलर्जी है, तो उसमें ये कमी मिल जाती है। ये भी देखा गया है कि जहां पर गेहूं का प्रयोग नहीं हो रहा है या होल व्हीट का प्रयोग नहीं हो रहा है, उन जगहों पर जैसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां सिर्फ भुट्टा खाया जाता है या वो एक पर्टिकुलर अनाज खाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स से दूर रहते हैं, उनमें भी ये समस्या देखी जा रही है। तो सरकार इसमें भी कोशिश कर रही है और अब जनता भी बहुत जागरूक हो गई है अपने स्वास्थ्य के लिए।
0: ये बात अक्सर सुनने को मिलती है। अब बाजारों में भी हम कई चीजों को देखते हैं तो लोग कहते हैं कि फोर्टिफाइड ग्रेन्स, ये चीज सुनने को मिलता है, फोर्टिफाइड आटा, ये चीज देखने को मिलता है। क्या ये वही चीज है कि इसमें उन विटामिन्स को डालकर दिया जा रहा है?
1: जी भैया, बहुत सारे सीरियल्स में आटा में इसको सरकार डाल रही है। सबसे कॉमन चीज जो सरकार ने भोजन में सबके डाला वो था आयोडीन। नमक में आयोडीन डाला गया जिससे हमारे देश में थायराइड की समस्या को बहुत कंट्रोल किया गया। मैंने बचपन में बहुत सारे लोगों को गला सूजा हुआ देखा, मालूम चला रही तो थायराइड की वजह से। तो ये भारत सरकार ने उस समय एक सोच ली कि हम अगर नमक में थोड़ा सा आयोडीन डाल दें तो उससे हमारे जो भी जो इसके सेवन कर रहे हैं उनको थायराइड की समस्या नहीं होगी, उनको घेंगा नहीं होगा। सो इसी तरीके से बहुत सारे चीजों में अब इसको इस जोड़ा जा रहा है, इसका सेवन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसमें एक अपने मॉडर्न मेडिसिन का भी एक एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे मैं ऑस्टियोपैथ हूँ, बैक पेन के बहुत सारे पेशेंट देश विदेश से मैं देख रहा हूँ। जब मैंने MBBS की पढ़ाई की थी तो उस समय कमर दर्द के इलाज के लिए सबसे पहले विटामिन B12 का इंजेक्शन लगाया जाता था। अरे कमर में दर्द हो रहा है, नसों में तनाव आ रहा है, पैर में खिंचाव आ रहा है, विटामिन B12 का इंजेक्शन लगा दो। और आप सोचिए कि विटामिन B12 का इंजेक्शन ऐसा चमत्कार करता था कि वो कमर का दर्द, वो पैर में दर्द, वो थकान, वो सब कुछ ठीक करता। और ये बहुत पुराने, मतलब ये मेरे माता पिता भी जब MBBS पढ़ रहे थे तब से ये प्रचलन था। और आज भी अगर आप अच्छे या किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, आप नसों की समस्या या कमर में दर्द की समस्या या थकान के बारे में बात करेंगे तो वो सबसे पहले आपको बोलेगा कि भाई विटामिन B12 देख लीजिए, आपका कम तो नहीं है, आप विटामिन B12 रिच भोजन का प्रयोग करिए। और अगर आप बहुत समस्या में तो तुरंत इसका सप्लीमेंटेशन लीजिए जिससे आपको तुरंत आराम मिले।
0: अब मैं इस प्रश्न पे आऊंगा कि अगर विटामिन B12 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो आप कह रहे थे, इन विटामिन्स की कमी होती है, विटामिन बी के इन सभी जो अलग अलग नाम आपने गिनाए, अगर उनकी कमी होती है तो क्या चीज शरीर में होती है, क्या नुकसान होता है, वो चीज समझा जाए।
1: जैसा भाई मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहले एनर्जी प्रोडक्शन में इसका रोल है, तो मैं सबको अलग अलग ना करके सबको एक साथ लेके बात करते हैं। तो आप ये सोचिए अगर किसी में ताकत नहीं है तो उसको क्या क्या समस्या होगी, और अगर उसकी नसें गड़बड़ है तो उसे क्या समस्या होगी। तो सबसे कॉमन जो आदमी कंप्लेन करना शुरू करता है वो थकान, कमजोरी, काम करने में मन नहीं लग रहा है। यहाँ की एक बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं मीठा मीठा दर्द हो रहा है, जिसको मतलब हम लोग एक लो ग्रेड पेन की तरह आप मानिए। आदमी मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है कि झुंझला जाते हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, दुखी रह रहे हैं, डिप्रेशन की समस्या ये बता रहे हैं, पैर में दर्द की समस्या बता रहे हैं, क्योंकि ये कम होते ही ये सारी समस्याएं आपको शुरू हो जाएंगी। अब अगर आपका आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल जो आपका ऑक्सीजन लेके आपके शरीर में चलता है वो अगर कम होने लगेगा, उसका प्रोडक्शन कम होने लगेगा, तो आपको थकान होगी, आप थोड़ा चलेंगे तो आपको सांस फूलने लगेगी, ये सारी समस्या हो, शरीर में सूजन आने लगेगा। कुछ विटामिन में जो है वो आपको त्वचा के रोग, जैसे आपको त्वचा सूख जाएगी, पपड़ी की तरह निकलने लगेगी, नींद आपकी खराब हो जाएगी। एक स्पेशल इसमें विटामिन जो B7 इसको बायोटिन बोलते हैं, ये हमारे बाल और नाखून के लिए बहुत जरूरी है। हमारी सारी माताएं बहनें इसके बारे में जरूर जानती हैं, जैसे वो विटामिन ई के बारे में जानती हैं। जहां थोड़ा सा हेयर लॉस होता है वो तुरंत विटामिन B7 का सप्लीमेंट लेना शुरू कर देती हैं, तो बायोटिन का सप्लीमेंट, क्योंकि इससे बाल आपके गिरते हैं, त्वचा आपकी रूखी बेजान हो जाती है और नाखून टूटने लगते हैं, क्रैक्स आने लगते हैं नाखून पे, तो इसीलिए मैंने इसको स्पेशली मेंशन किया। विटामिन B9 जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज को हमेशा दिया जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जरूर दिया जाता है, क्योंकि ये फोलिक एसिड के रूप में दिया जाता है, इससे जो नर्वस सिस्टम है बच्चे का वो ठीक से डेवलप हो पाए, कि उनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट न बच्चे को हो जाए और बच्चों का जो नर्वस सिस्टम है वो एकदम परफेक्ट डेवलप हो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जच्चा बच्चा योजना है उसके तहत भी दिया जाता है, इवन सारे हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी में सारी लेडीज को ये जरूर से फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर आप प्रेगनेंट होना चाहते हैं, महिलाएं जिन्हें इनफर्टिलिटी की समस्या है, जो डॉक्टर के पास आती हैं ये बात करने के लिए कि हम अपने फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहला सप्लीमेंटेशन जो शुरू किया जाता है वो B9 का है, फोलिक एसिड का। सारे जो विटामिन हमने बात की उसमें सबसे ज्यादा बात विटामिन B12 की होती है, मगर एज ए डॉक्टर मैं कहूंगा कि हमेशा बी कॉम्प्लेक्स के पीछे पड़िए, न कि विटामिन B12 के। आप जितनी दवाइयां बाजार में या जितने सप्लीमेंट बाजार में देखेंगे उसमें बी कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है, या उसमें विटामिन B12 प्लस अदर विटामिन्स करके सारे विटामिन्स लिखे जाते हैं। विटामिन B12 जो है वो रक्त की कोशिकाओं को बनाने में, हमारी सारे नर्वस सिस्टम को मजबूत रखने में, ये भी कहा जाता है कि विटामिन डी इज फूड फॉर बोन्स एंड विटामिन बी इज फूड फॉर नर्व्स, कि ये नसों का भोजन है, अगर आप नसों को ठीक करना चाहते हैं तो इसको जरूर इस्तेमाल करिए। विद एज अगर आपको नर्वस वीकनेस हो रही है, मेमोरी लॉस हो रहा है, आपको सेंसरी लॉस हो रहा है, कि मतलब कहीं सुनापन हो रहा है, कहीं आपको कोई महसूस नहीं हो रहा है, इवन मेंटल बीमारियों में भी विटामिन B12 का रोल है। ये कहा जाता है कि पहले थोड़े दिन विटामिन B12 का उनको सप्लीमेंट दे के देखा जाए, अगर वो ठीक हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ठीक होता तब फिर और दवाइयां शुरू की जाए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है विटामिन B12।
0: ये बात समझ में आ रही है कि विटामिन बी, जिसको सिर्फ एक विटामिन नहीं, इसमें अलग अलग विटामिन्स के कॉम्प्लेक्स हैं, इन सबको समझने से शरीर के अंदर इनकी क्या उपयोगिता है, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज समझ में आ रही है। और जैसे आपने शुरुआत में ही ये बात बताई कि विटामिन डी और विटामिन बी, ये दो ऐसे विटामिन्स हैं जिसकी वजह से दुनिया में ज्यादातर लोग जिसकी कमी आज महसूस कर रहे हैं, और इसकी कमी से क्या नुकसान हो सकते हैं वो बात समझ में आ रहा है। तो जरूर इसे वापस अपने जीवन में ले आना और इसके बैलेंस को ठीक करना भी आवश्यक है। और भी इससे जुड़े हुए प्रश्न मेरे मन में है, मगर घड़ी ये इशारा करती है कि आप रुकना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम लेंगे विराम और मैं समझता हूं कि आज इन विटामिन्स के बारे में जो डिटेल में हमें समझ हासिल हुई है उसको हम सीरियसली समझेंगे और कम से कम साल में एक बार तो ये चेकअप जरूर करवा लें कि आपको कोई ऐसी कमी तो नहीं हो रही है। और अगर आपको शरीर में कोई ऐसी समस्याएं हो रही हैं, आपके स्नायु तंत्र में, आपकी नसों में कोई कमजोरी महसूस हो रही है या फिर आपके शरीर में कोई कमजोरी महसूस हो रही है, आपको मीठा दर्द महसूस हो रहा है, तो फिर आप जरूर इन पर काम करें और जरूर जल्दी जाकर डॉक्टरी सलाह लें और अगर इन विटामिन्स की कमी है तो उसको पूरा करने के प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। आज डॉक्टर साहब ने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और हमें विटामिन्स के बारे में यह आवश्यक जानकारी दी। इसके लिए आपसे श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
1: धन्यवाद
0: दोस्तों। सहज स्वास्थ्य में आज के लिए इतना ही। फिर अगली बातचीत में और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8।

0: लीजिए।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और उसमें जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी हो सकती है, कौन सी हमारी जिम्मेवारियाँ हैं, तो जब अपनी तरफ देखा कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले है, तो उसमें बहुत सी बातें सामने आई कि किस तरफ मैं डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मैं लेकर जाना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी को, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी जिम्मेवारी है। जहाँ मैंने अपनी चॉइस की तो जिम्मेवारी भी मेरी ही होगी। आगे और बढ़ाते हैं इस बात को और देखते हैं कि किस तरह से ये अनफोल्ड होता जाएगा, खुद को मैनेज करने का प्रोसेस। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जिस तरह से पिछली कड़ी में हमने देखा था कि हर बार हम बहुत से सिचुएशंस में ऐसे कह देते हैं कि आई डोंट हैव एनी चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, तो कहीं ना कहीं जब हमने बातें की थी तो ये बात सामने आई थी कि जो भी डिसीजन मैं लेती हूँ उसमें चॉइस मेरी ही होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बातें निकल कर आ रही थी, कोई भी सिचुएशन है, जो भी मैं कर्म कर रही हूँ, मैं इसलिए कई बार ये कह देती हूँ कि इट्स नॉट माई चॉइस, आई डोंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि फिर उसकी जिम्मेवारी मुझ पर आ जाती है।
1: वी ऑल्सो लाइक वी रियलाइज अबाउट द कर्मा फिलोसफी, सो मैनी पीपल, मोस्ट ऑफ अस, इनफैक्ट आई कैन से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, हम लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ जो भी हो रहा है ना जीवन में, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अब हमें क्या होता है जब परमात्मा से ये ज्ञान मिलता, या हमने पहले भी कार्मिक फिलोसफी समथिंग जो हमने बचपन से सुना था, तो एक तरफ से कार्मिक फिलोसफी हमें कहता कि हम जो करते उसी का रिटर्न मिलता, लेकिन हमारी अपनी बिलीफ ये कहती कि हमने कुछ गलत नहीं किया तो ये मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो समवे वी नीड टू थिंक कि जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी होती हुई चीज़ें हमें गलत लगती हैं, लेकिन करती हुई चीज़ें हमें गलत नहीं लगती हैं। सी, होती हुई जो चीज़ें हैं, विच इज़ कमिंग, द एनर्जी कमिंग फ्रॉम देयर, आई डोंट लाइक इट, लेकिन जो एनर्जी हम यहाँ से भेज रहे हैं थॉट, वर्ड, एक्शन के रूप में, हम कह रहे हैं वो गलत है ही नहीं। हमने जो कल के एपिसोड में डिस्कस किया, इट जस्ट स्ट्रक समथिंग हियर फॉर मी, एंड इट वॉज क्यों हमें ये लगता है कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। डेफिनेटली हमने गलत किया है, लेकिन जब हम वो कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये मेरी गलती नहीं है। तो क्या होता है, हम गलत करते हुए भी, जैसे हमने कल देखा कि ब्राइब देते हुए भी हम कह रहे होते हैं मैं सही हूँ, सिस्टम गलत है,
0: अपने आप को जस्टिफिकेशन,
1: मैं सही हूँ। हर कर्म के लिए है ना, हर कर्म के लिए हमने अपने आप को कहा है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ,
0: सिस्टम गलत था, सिस्टम गलत था,
1: समवन एल्स इज रॉन्ग। तो इसलिए जब वो मेरे पास वापस आता है, आई से मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, क्योंकि गलत करते टाइम भी मैंने क्या सोचकर गलत किया था,
0: ये मैं तो सही हूँ,
1: सही हूँ।
0: इनफैक्ट ये अपने आप को धोखा देने वाली बात, जो अभी तक हम कहते थे कि आप किसको धोखा दे रहे हो, तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ धोखा दिया, सब कुछ क्लैरिटी से तो कर रहे हैं, लेकिन अगर डीप डाउन तो इनफैक्ट ओ वाओ,
1: मेरा बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन है, एवरीवन यूनिवर्सल आई विल फील दिस हैज हैपेंड, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे व्हाटएवर फिजिकल इलनेस में है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन परमात्मा कह रहा है जो आपने किया उसका ही मिल रहा है, तो वेयर इज द फॉर्मूला, सी द फॉर्मूला इज नॉट वर्किंग फॉर मी, दैट्स इंपॉर्टेंट।
0: क्योंकि पता है कई लोग ये भी बोलते हैं मैंने जानते हुए कुछ गलत नहीं किया, अनजाने में गलत हुआ उसके बारे में मुझे नहीं पता।
1: हाँ, तो वो तब ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमने लिए ना, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स में हम एक्चुअली तो गलत ही कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को सही बता कर रहे होते हैं, तो फिर जब हम अपना ही अकाउंट चेक करते हैं, यू नो,
0: अब अगर हम चेक करना शुरू करें तो कितनी,
1: अब जब हम अपना अकाउंट चेक कर रहे हैं तो मैंने कहा मैंने सब कुछ सही किया, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, परमात्मा ने आकर कहा ये फॉर्मूला वर्क नहीं होता है, जो आपने किया वही मिल रहा है, तो नाउ चेक योर कर्म वाला अकाउंट अगेन, एंड नेक्स्ट टाइम जब कर्म कर रहे होंगे तो थोड़ा सा और अटेंशन के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं गलत करते हुए भी अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि जब उसका रिजल्ट मेरे सामने आएगा मैं फिर वही स्टेटमेंट दूंगा
0: कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था,
1: एंड देन इट मेक्स मी फील वेरी पेनफुल इनसाइड, यू नो दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ पेन।
0: ओके, सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि आज अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब और जिसको मैं अभी तक मैं ये कहता था कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है इसीलिए मुझे ये करना है, लेकिन आज मैं ये समझते हुए कि मेरे पास चॉइस है और मैंने ये गलत किया क्योंकि मुझे लगा कि इस टाइम की ज़रूरत ये थी, मुझे इस टाइम पे ये ज़रूरत लग रही थी और मैंने ये गलत किया जानते हुए, तो मुझे तैयार रहना चाहिए। समवेयर आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग विच आई हैव डन एंड इट विल हैव इट्स ओन रिपरकशन।
1: स्टॉप टेलिंग माई सेल्फ दिस एवरी टाइम, इट्स जस्ट दैट करते हुए मुझे नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूँ, कर तो मैं ही रहा हूँ, इसीलिए इट्स कमिंग बैक टू मी। सिस्टम गलत है तो ब्राइब देना गलत हुआ क्या? नहीं। अब कल को अगर मेरा कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो गया फाइनेंशियल, क्योंकि मैंने जो अभी गलत कर्म किया वो फाइनेंशियल था, कार्मिक लॉ विल वर्क इन द सेम वे, तो जहाँ मैंने एक फाइनेंशियल कर्म जो किया वो रॉन्ग था, कहीं मैंने पैसा गलत तरह से लगाया तो कहीं मेरा पैसा गलत तरह से फिर जाएगा भी, लेकिन जब वो जाता है
0: बहुत तकलीफ होती है,
1: तो मैंने कहा मैंने तो कुछ गलत
0: क्या
1: नहीं
0: हुआ, किया किया था मैंने। हाँ,
1: टू बी रेडी फॉर बोथ द साइड्स, दिस इज नॉट टू स्केयर आवरसेल्व्स, दिस इज जस्ट टू बी अवेयर व्हाइल डूइंग द एक्शन, सो कीप ऑन डूइंग इट हाउएवर यू आर कंफर्टेबल, बट रिमेंबर लेट्स स्टॉप दिस सेंटेंस एटलीस्ट, क्योंकि ये सेंटेंस भी हमें बहुत हेल्पलेस फील कराता है, जब हम कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ये भी हमारे जीवन को क्या कर देता है, बहुत कमज़ोर बनाता है। आज मेजोरिटी हम कहते हैं मैं सबके साथ अच्छी हूँ, मैं सबके साथ अच्छी हूँ, सब ने मेरे साथ ही धोखा दिया, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, हाउ इज़ जस्ट दैट मीन्स इन द लॉ ऑफ एनर्जी इज़ नॉट वर्किंग, मैं सबके साथ अच्छी हूँ, सब ने मेरे साथ धोखा दिया, ये कहाँ वर्क कर रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मैं सबके साथ बोलने में बहुत मीठी हूँ
0: अंदर,
1: लेकिन अंदर मैं उनके प्रति क्या थॉट क्रिएट कर रही हूँ, फिर जब वो एनर्जी मेरे पास रिटर्न में आती तो किस तरह से आती, तो लॉ ऑफ कर्मा एट एवरी स्टेप आई नीड टू रिमेम्बर। धन तो बहुत छोटा लेवल है लेकिन हर स्टेप पर उस पर देखते जाएं, तो जब हम इस तरह से ध्यान रख कर अपने जीवन को चलाएंगे, जीवन की यात्रा में चलेंगे, तो हमें सबसे पहली पावर ये मिलेगी कि मैं अपना जीवन खुद क्रिएट करता हूँ। हर स्टेप में सीन है, सीन आती, मेरे पास चॉइस है क्या रिस्पॉन्स देना, जो मैंने रिस्पॉन्स चूज किया उस समय मेरे लिए वो सीन बना। आप वही सीन में दो अलग एक्टर्स को अलग अलग रिस्पॉन्स देता हुआ देखेंगे, दोनों ने अपनी जीवन अलग अलग उसी टाइम डिसाइड कर ले। समटाइम्स वी टेक वेरी बिग डिसीशंस, उसी सिचुएशन में दो लोग दो अलग डिसीशंस लेते हैं और दोनों की जीवन की यात्रा बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, लेकिन क्या वो ये कहेंगे कि ओ इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स? नो, इट्स बिकॉज ऑफ दैट डिसीशन व्हिच दे टुक दैट टाइम,
0: चॉइस आई मेड।
1: तो हो तो यही रहा, सिर्फ लिव विद दैट अवेयरनेस, ताकि उससे क्या होगा, जब हम वो जागृत अवस्था में चलेंगे कि हर स्टेप पे मैं अपना जीवन खुद बना रहा हूँ, तो दैट विल गिव मी अ वेरी नाइस फीलिंग एंड इट इज लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस, आई एम विलिंग टू डू दिस इंस्टेड ऑफ आई हैव टू डू दिस,
0: एंड द बेस्ट पार्ट इज आई कैन चेंज इट एनी टाइम आई वॉन्ट। सी राइट नाउ इफ आई एम नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ विद माई लाइफ, आधे से ज्यादा तो हम लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ अपने आप से। सुबह उठ के रोज मैं एक ऐसे दिन की शुरुआत करता हूँ जो जिससे मैं कोई खुश नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता उस ऑफिस में जाना, मैं नहीं जीना चाहता उस पूरे एटमॉस्फेयर में, मैं खुश ही नहीं हूँ।
1: अब जहाँ तक जैसे आपने कहा मैं नहीं जाना चाहता उस ऑफिस में, तो अभी भी कुछ लोग कहेंगे ये प्रोग्राम सुनते हुए भी, कहाँ मेरे पास चॉइस है, अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं जॉब ही छोड़ देता ना, फिर मुझे नहीं जाना है। ओके, सिचुएशन कि आप वो जॉब नहीं छोड़ सकते, ये भी आपका डिसीशन है, ये तो चॉइस है ना कि वो जॉब करते हुए आप फील कैसा करेंगे, क्योंकि वहाँ रहना आपने चूज किया है। सी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम कहें मैं मजबूर हूँ वहाँ काम करने से, फिर आप दर्द में काम करते हैं, आप दर्द में काम करते हैं, नफरत से काम करते हैं, व्हाटएवर। लेकिन जहाँ आप कहते हैं मेरी परिस्थितियाँ या कुछ भी, मेरा परिवार, जो भी एक रीज़न है, उनकी वजह से मैं चूज करता हूँ इस ऑफिस में काम करना, तो मेरी चॉइस है, तो अपनी चॉइस को कैसे निभाना चाहिए?
0: बिकॉज इट एक्चुअली गिव्स यू पावर।
1: या यू नो लाइक फॉर एन एग्जांपल टेक अ करियर, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा चाहता है कि वो इंजीनियरिंग करे, अगर बच्चा पेरेंट्स के कहने पर मेडिकल करता है ना, तो वो पढ़ता भी जाता है, प्रोफेशन भी करता है, लेकिन पूरा टाइम उनको ब्लेम करता है, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी, तो देन ही डजंट रियली पुट इन द बेस्ट और इन्जॉय। लेकिन जो प्रोफेशन उसने खुद चूज किया होता है, उस प्रोफेशन में कितने भी हर्डल्स आते हैं, ये नहीं है कि उस प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, लेकिन चॉइस किसकी थी? वो प्रोफेशन मेरी थी. उस समय वो कंप्लेंट नहीं कर सकता. जहाँ आपकी चॉइस है, आप कंप्लेन नहीं करते. अगर वो बच्चा घर आकर कहे कि मुझे ना बहुत डिफिकल्ट है ये इंजीनियरिंग करना, तुरंत पेरेंट्स क्या कहते? आपने चूज किया था ना.
0: सो तो उसके लिए वी मेक इट वर्क.
1: यस, वी मेक इट वर्क. यू पुट इन योर बेस्ट इनटू इट. तो इसी तरह वो ऑफिस जो आप कह रहे हो कि मेरा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता वहां जाना, लेकिन मैंने चूज किया है वहां जाना, नाउ मेक इट वर्क बिकॉज इट्स योर चॉइस. लेकिन अगर आप मजबूरी समझ के, चाहे ऑफिस या किसी रिश्ते में है, आज लोग बहुत सारे रिश्तों में हैं, चूज भी कर रहे हैं लेकिन मजबूरी से रहते हैं, तो दर्द में रहते हैं. यू आर चूजिंग, माय मदर इन लॉ शी इज लाइक दिस, बट आई हैव नो चॉइस, आई हैव टू स्टे विद हर. ओह, यू आर चूजिंग टू स्टे विद हर, नाउ मेक द मोस्ट ऑफ इट. ये आपकी चॉइस है. अब यहाँ क्या क्रिएट करना है वहां रहते हुए उनके साथ, चूज इट. लेकिन जब हम कहें मेरी चॉइस नहीं है, तो हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, और फिर हम कर भी रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर
0: बहुत
1: घुट भी रहे हैं.
0: और वो दिस इज नॉट सेल्फ जेन्युइन होती है. जेन्युइन
1: घुटन जेन्युइन कैसे हो सकती है?
0: मतलब वो घुटन जो है वो महसूस तो हो ही रही होती है ना,
1: बहुत ज्यादा
0: तकलीफ तो बहुत हो रही होती है.
1: एंड मोस्ट ऑफ अस कैन स्पेंड आवर होल लाइफ इन दिस. वी मीट लॉट ऑफ गर्ल्स, वुमेन नाउ, दो कहेंगे मैं आई वाज अ वर्किंग गर्ल, लेकिन शादी करने के बाद मुझे कहा गया कि आपको जॉब नहीं करना, चॉइस. कहेंगे नो, नॉट माई चॉइस, माई फैमिली मेड मी डू इट. एंड फिर पूरी जीवन कैसे काटेंगे? रहेंगे उसी परिवार के लिए, त्याग भी उनके लिए किया लेकिन अंदर से नहीं किया. ऊपर से त्याग किया, अंदर से दर्द दर्द दर्द. फिर

0: ठीक
1: तो वो जीवन को आप इंजॉय करने लगेंगे। अब जैसे हम कहते टाइम इज मनी, यू नो आज दुनिया में भी कहते टाइम इज मनी, तो हमने शुरू ही ये किया था कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम मिला है इस क्रिएट करने के लिए। हमें ये नहीं पता कि वो टाइम कितना है, मैं इस कॉस्ट्यूम में कितने टाइम के लिए हूँ, आई डोंट नो। वॉट टू क्रिएट आई विल चूज, लेकिन डू आई हैव अ क्लियर सेंस ऑफ अ गोल एंड एम कि मुझे इतने समय में क्या करना है। जैसे टाइम इज मनी कहते, तो जितना पैसा मेरे पास है, मेरे पास कितना क्लियर ये होता है मुझे इस पैसे से क्या क्या करना है। जितना समय मेरे पास है, क्या मेरे पास वो क्लियर गोल है मुझे इस समय में क्या क्या करना है। एम आई वेरी क्लियर विद माई गोल्स एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? क्योंकि अगर क्लियर नहीं होता तो आप देखो जीवन में चलते चलते बीच बीच में क्वेश्चन उठता, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, वाई एम आई हेयर, वट एम आई डूइंग, दिस इज मीनिंग लीडिंग अ लाइफ, लेकिन ये नहीं पता कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। तो जब भी ये मन में क्वेश्चन उठता, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, इसका क्या, मेनी पीपल उनका सबसे बड़ा, उनको पूछो यू हैव एनी क्वेश्चन, दिल से व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, अ पर्पस ऑफ माय लाइफ, हाउ कैन यू आस्क समवन एल्स,
0: ओह वी आर डूइंग दैट, यू नो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन,
1: हाउ कैन यू आस्क समवन एल्स व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ, दैट मींस आई एम लीडिंग अ पर्पसलेस लाइफ। मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है। तो हम अपने जीवन का कोई गोल, कोई एम, ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं सेट कर पाते, क्योंकि दो चीज़ों की कमी है। एक, हमने अपने जीवन का कोई पर्पस नहीं बनाया। गोल इज सेपरेट, पर्पस इज सेपरेट, उसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि गोल क्या है, पर्पस क्या है। और दूसरा, हमने अपने जीवन की कोर वैल्यूज़ नहीं डिफाइन की है। एक बार हमारी कोर वैल्यूज़ और जीवन का पर्पस डिफाइन हो जाए, फिर गोल सेट करना बहुत ईजी हो जाता है। एंड फिर ध्यान रखना कि जो गोल मैं सेट कर रहा हूँ वो मेरे पर्पस और वैल्यूज के साथ
0: क्लैश ना करे,
1: मैच करे। इस पर मनन भी करना पड़ेगा कि मेरे जीवन का पर्पस और वैल्यूज क्या है, एंड दिस नीड्स टू बी रिटन समवेयर। हर एक के पास ये लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि जब आपकी लाइफ में कोई द्वंद आता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि आजकल कई बार आता कि मैं ये करूँ या ये करूँ, गो पिक अप दैट चिट फर्स्ट जो वहाँ रखा था, क्योंकि ये गोल्स हैं, लेकिन पर्पस और वैल्यूज क्या है।
0: हम अपनी डे टू डे लाइफ में उसको मैनेज करने में यू नो अपने जो ज़रूरतें हैं दुनिया भर की या जीवन की जो ज़रूरत है उन्हीं को पूरा करने में हम इतने इन्वॉल्व हैं कि ना हमने पर्पस के बारे में सोचा, ना हमने वैल्यूज़ के बारे में सोचा है, और गोल तो समझ में नहीं आता कि
1: पर्पस के बारे में सोचते भी तो भी क्या पर्पस दिखाई देता, जीना और अपने बच्चों को
0: पालना
1: भर, तो यू नो इट्स अ वेरी एक्सटर्नल पर्पस, तो वो पर्पस नहीं है। फिर हर थोड़े दिन के बाद ये आता,
0: क्या कर रहे हैं हम,
1: यू नो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है,
0: क्या कर रहे हैं हम, वेयर एम आई गोइंग, यू नो मैं किस तरह की जिंदगी जी रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और उसके बाद फिर उसी डर्रे में चले जाना। आज
1: क्योंकि जैसे ही ये क्वेश्चन अराइज होता है ना, उसको दबा देते हैं। क्वेश्चन आता है, सबके मन में आता है, ये कभी ना कभी हर एक के मन में क्वेश्चन उठता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन फिर छोड़ते, छोड़ो ना, काम करो, बच्चों को संभालो, परिवार को,
0: बहुत सारा काम,
1: ये क्वेश्चन को, ये सब फिर सोचते जब रिटायर हो जाएंगे ना, स्पिरिचुअलिटी विल गिव अस द आंसर्स फॉर ऑल दिस क्वेश्चन, बट पर्पस ऑफ माई लाइफ इज
0: Now.
1: Throughout my entire life, I need to chalk it out while I'm on the journey in this life. अब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए who's very focused, बहुत clear है कि वो अपने जीवन में क्या choices बना रहे हैं। Decision लेना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। They will not go around asking people, आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। उनके पास सिर्फ अपना वो purpose of life और value वाला चिट सामने होगा। Here, what it is. Such a person never needs help to take their decisions. अगर मैंने अपना decision अपने values को ध्यान में रखते हुए लिया, तो मुझे कभी भी अंदर से घुटन की feeling नहीं आएगी, चाहे वो decision कोई भी decision।
0: You know, now a lot of people are going to ask us, what should be the purpose of our life?
1: Yeah, good. I didn't mind that. That is an okay, good question. But we will not find the purpose. We can just take them on a journey to find their own purpose. क्योंकि everyone will have to find the purpose for themselves. अगर हमने ready-made answer दे भी दिया कि this is purpose of your life, these are your values, वो आज paper पर लिखेंगे, कल छोड़ देंगे उसको।

0: सी सिचुएशन सामने आई, वो छोड़ो इसको, आई हैव टू डू दिस.
1: तो एक जिस तरह से जीते जा रहे हैं उसी तरह से जिएंगे.
0: इट हैज टू कम फ्रॉम मी. हर एक को अपने आप के लिए ये ढूंढना पड़ेगा. तो जो लोग ये बहुत फोकस्ड और यू नो जिसको कहें वेरी क्लियर कि उनका डिसीशन क्या होना चाहिए, उनके एटीट्यूड्स क्या होने चाहिए, उनके पास तीन बातों का आंसर होता है. वो कौन है, पहली बात. वो यहाँ क्यों है. एंड तीसरा, उनका रोल क्या है. ये तीन क्वेश्चंस के अगर आंसर मिल जाते, हु एम आई, वेयर एम आई एंड व्हाई एम आई हियर. आई नीड दीज थ्री आंसर्स. हु एम आई, वेयर एम आई हियर एंड व्हाई एम आई हियर. ये तीन आंसर्स मिल गए, फिर पर्पस और वैल्यूज ढूंढना बहुत ईजी हो जाता. लेकिन जैसे ही हु एम आई को आंसर करना शुरू करते तो वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ही खड़ा हो जाता है. और आज दिन तक तो जब तक परमात्मा से ये ज्ञान नहीं मिला था तो यही सुना था कि हु एम आई इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर.
1: यू स्पेंड ऑल योर लाइफ सर्चिंग फॉर इट.
0: तो जब तक हु एम आई नहीं आंसर हुआ तो माय पर्पस एंड माय वैल्यूज वो नहीं पता चलेगा. क्योंकि पर्पस और वैल्यूज किसका है. माय पर्पस माय वैल्यूज. लेकिन वो मैं कौन. वो मैं का जैसे ही आंसर निकलेगा तब तो उसकी वैल्यूज निकल कर आएंगे ना. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसलिए सब कहते हैं कि जब तक हु एम आई का आंसर नहीं आता तो बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रह जाते. आज अगर हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, हर एक चीज़ के ऊपर एक लेबल लगा है. कोई भी ड्रेस देखो ना, उसके ऊपर लेबल है. कौन सा मेक, क्या कॉस्ट, क्या डिज़ाइन, कैसी इसकी वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस है, सब कुछ लेबल्स लेबल्स, हर जगह लेबल्स. अपने आप को देखो, हमारे ऊपर भी एक लेबल लगा हुआ है. जिसको भी हम मिलते उनके ऊपर भी तुरंत हम एक लेबल लगा देते हैं. बिना लेबल के किसी को देखना या किसी से मिलना इज बिकम डिफिकल्ट. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, लेबल, फैट, थिन, प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर, लेबल्स. जैसे ही हम औरों के ऊपर इतने लेबल्स लगाते, अपने ऊपर भी हमने लेबल्स लगाए हुए हैं. हु एम आई, तो ये पूरी लिस्ट ऑफ लेबल्स आ जाती. और जैसे ही ये लेबल्स बन जाते, मेरी पूरी जीवन पता है किस में बीतती है. इन लेबल्स को डिफेंड करने में, इन लेबल्स को संभाल कर चलने में, क्यों. और इन लेबल्स के ऊपर ही मेरी सेल्फ एस्टीम डिपेंडेंट है. मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस लेबल पर ही डिपेंडेंट है.
1: मैंने अपने आप को ये लेबल दिया, अब जो भी दूसरा है वो ये लेबल एक्सेप्ट करे, उसे समझ में आए कि मैं ये हूँ.
0: एब्सोल्युटली. जैसे ही किसी ने मेरे उस लेबल को थ्रेटन किया, लेट्स से माय लेबल इज आई एम अ हिंदू, सिंपल लेबल. जैसे ही कोई कहे तो हिंदुइज्म के अगेंस्ट कुछ, आई एम एन इंडियन, ये मेरा लेबल है. कहे कोई अब इंडिया के बारे में कुछ भी, एंड आई विल गो लाइक दिस, मुझे कह दिया. एंड देन वी से पेट्रियोटिज्म, यस, बट पेट्रियोटिज्म डजंट मीन दैट आई नीड टू रिएक्ट. लेकिन मेरा लेबल है. और जैसे ही किसी ने उस लेबल को स्क्रैच किया, उसको हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया. लेट्स से आई एम अ डॉक्टर, किसी ने भी अगर कहा कि ऐसे नहीं ऐसे, मुझे कह दिया, एंड आई विल गेट हर्ट. आई एम अ मदर, किसी ने मेरे बच्चों के बारे में कुछ कह दिया, आई गेट हर्ट, मेरे लेबल को स्क्रैच कर दिया. नाउ दिस इज माई आइडेंटिटी. अगर ये जो लेबल्स की पूरी लिस्ट है ये मेरी आइडेंटिटी होगी, तो व्हाट विल बी माय वैल्यूज
1: डिपेंडिंग अपॉन देम, यू नो,
0: डिपेंडिंग ऑन दीस,
1: सेव करने के लिए लेबल्स. एब्सोल्युटली.
0: मेरी वैल्यूज हु एम आई पर डिपेंड करती है. तो जैसे हु एम आई, वाइफ, मदर, वुमन, इंडियन, हिंदू, ये आंसर आएंगे तो वैल्यूज भी क्या आएंगे, सब उससे रिलेटेड आएंगे.
1: और उन्हीं को बचाने के लिए, उन्हीं को यू नो बहुत अच्छी तरह से शो करने के लिए कि दिस इज व्हाट आई एम.
0: एब्सोल्युटली. क्योंकि वैल्यू का मतलब ही क्या होता है. व्हेन वी से वैल्यूज, तो वैल्यूज मींस समथिंग दैट आई केयर अबाउट. आई से आई वैल्यू यू, आई वैल्यू दिस रिलेशनशिप, आई वैल्यू माई जॉब. इट्स वैल्यू, समथिंग दैट आई केयर अबाउट. अब अगर मैं अपने आप को एक प्रोफेशन के साथ एसोसिएट करती हूँ, तो व्हाट विल बी माय वैल्यू,
1: यू नो,
0: पावर देयर,
1: यस,
0: पोजीशन देयर, माय रोल देयर,
1: एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट प्रोफेशन,
0: एवरीथिंग. नाउ माय वैल्यूज मींस आई विल ओनली बी रिलेटेड टू दैट पावर, पोजीशन, दैट रोल दैट आई प्ले देयर. तो सारा दिन मेरा पूरा ध्यान किस पर होगा, उस पर होगा. इफ माय लेबल इज, फॉरगेट एनीथिंग एल्स, इफ माय लेबल इज आई एम अ ब्रह्मा कुमारी,
1: होल थिंग इज लाइक
0: रिलीजन, फिलोसफी. अगर किसी ने मेरी नहीं मतलब, लेकिन जो भी फिलोसफी आई एम प्रैक्टिसिंग इट, लेट समवन से एनीथिंग अगेंस्ट दैट फिलोसफी एंड आई विल गेट hurt. Spirituality vanished because spirituality was actually not to get hurt. Lekin maine wo spirituality ko nahi samjha. Maine apna label kaun sa attach kar liya? I am this. How critical that is. Aaj humne apne labels par religion ko lagaya hai. And that's why in the name of religion we are fighting with each other. Protect karne ke liye. Apne religion ko, apne principles ko, apne philosophy ko. Kyunki this is what I value. No one can do or say anything to this. Then to protect
1: it. This is important to me, yes. You know, like, oh yes, very
0: so
1: true.
0: Ye sare jo labels hain. Ab Paramatma aakar, hamare ye sare labels.
1: Hata deta.
0: Aur hame dikhata ki hum actually kaun hain. और जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि हम एक्चुअली कौन है, हु एम आई, जब आंसर हो जाएगा तो वैल्यूज एंड पर्पस वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है.
1: वेरी ट्रू.
0: तो जब तक वो आंसर नहीं होता, लेट्स सिट इन साइलेंस फॉर वन मिनट और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि हु एम आई. और जो जो आंसर बाहर के अक्वायर्ड लेबल्स के हों उनको एक साइड रखते जाएं. दिस इज माइन, माय रिलीजन, माई रोल, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जिन जिन लेबल्स के साथ माई आता उसको हटाते जाएं. दिस इज अ लेबल विच इज फाइन, दिस इज देयर, बट दिस इज माइन. मुझे उस आंसर पर आना है कि हु एम आई. तो अपने आप के साथ बैठें और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि जैसे ही हम आई कहते हैं तो क्या क्या आता है सामने. और धीरे धीरे जो जो चीज़ें इस जीवन की यात्रा में अक्वायर की हैं, हमने प्राप्त की हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, वो हमारी डिग्रीज हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी और पोजेशंस हैं, वो सब कुछ मेरे हैं. उनको एक साइड रखते जाएं. यस आई अंडरस्टैंड, ये मेरे हैं, लेकिन फिर भी मैं कौन? थॉट्स, फीलिंग्स, ये भी मेरे हैं, मैं कौन? लेट मी ट्राई एंड फाइंड आउट हु एम आई, टू होम ऑल दिस बिलोंग्स. जैसे जैसे हम एक एक लेबल को गिराते जाते, धीरे धीरे हम खो नहीं रहे हैं कोई भी चीज़ को, हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि मैं कौन, मेरा क्या क्या. एक एक लेबल को हटाते हटाते वी कम टू आवर सेल्व्स. आई, दैट बीइंग, द एनर्जी, जस्ट मी, जो इन रिलेशनशिप्स और इन रोल्स को प्ले करती है. आई, कॉन्शियसनेस, I am that being of energy. And now, as I set out throughout the day with this identity, ke ye sab kuch mera hai, lekin main ye hu, to aaj ke din main apni values ko dekhna shuru karte, apne purpose ko dhoondna shuru karte. Let me explore it with myself today. ओम शांति.
1: ओम शांति. सुशिवानी, जिस तरह से आज पूरी बातचीत रही और जहाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और डायरेक्शन की बात कर रहे थे, वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट सवाल यही कि मेरे जीवन का पर्पस क्या. और उसमें आपने कहा कि जब तक वैल्यूज़ नहीं आएंगी सामने, तब तक, जब तक मैं खुद को नहीं पहचान पाऊँगा, तब तक ना वैल्यूज़ को ले पाऊँगा, ना पर्पस पता चल पाएगा. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि खुद को हमें पहचानना है. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस थ्रू this journey.
0: We'll then take it up tomorrow.
1: Yes.
0: That how do I find my purpose and values?
1: Yes. Then. We'll talk about it tomorrow because aaj hamare paas nahi raha waqt, lekin aaj jo humne samjha hai wo bhi bahut important hai. Ek pura time chahiye usko seep in karne ke liye. Om Shanti.
0: Om Shanti.
1: Aaj ki is puri baat cheet mein kahin koi aisi baat lagti hai jo abhi aapke samne nahi clear ho rahi hai, ya kuch aur aap kehna chahte hain, koi suggestions hain, aap hame phone par ya phir email par sampark kar sakte hain. Hamare phone numbers hai 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 7445। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आज जो अपनी पहचान हुई है कि आप वो चैतन्य शक्ति हैं, मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ, इन सारे लेबल्स के, माँ के, पिता के, प्रोफेशनल के, या कोई भी जितने भी लेबल्स हमने ओढ़े हैं, उन्हें ज़रूर चेक करें, देखें कि वो कौन कौन से लेबल्स हैं, उनको रखने के लिए कितनी वैल्यू करता हूँ मैं, और उसके बाद डीप जब ये लेबल्स उतरते गए तो मैं कौन हूँ ये सामने आता है, उसके साथ आप रहें, उसे सीप इन करने दें, फिर वैल्यूज़, इस नई पहचान के साथ जब हम वैल्यूज़ और पर्पस की तरफ जाएंगे, एक नया मैं सामने आऊँगा। आज की कड़ी में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग आप सभी को जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। 7 जुलाई आज का तारीख है और आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसे कि मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी शुभ आशा के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 7 जुलाई 2026 राष्ट्रीय शके 1948 शके 16 गते 23 आषाढ़ मंगलवार आज है। विक्रम संवत 2083 आषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी मंगलवार उत्तर भाद्रपद आज है। इस्लामी इजरी 1448 21 मुरहम मंगल मुकद्दम ये विशेष रूप से आज का दिन है और आज विशेष लोगों का जन्मदिन भी है जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अभी आपको मंगल दिवस की मंगल कामनाएं करते हुए एक बहुत ही प्यारा सा हनुमान चालीसा आपको सुनाएंगे। और हनुमान चालीसा जब हम लोग सुनते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है और एक मंत्रों का प्रभाव हमारे घर पर होता है और आनंद बरसने लगता है। तो चलिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ और हनुमान चालीसा आपके लिए अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारे प्यारे हनुमान जी के खूबसूरत भजन आप सुन रहे थे और आज के दिन को यादगार बनाने के लिए हनुमान जी के खूबसूरत भजन आपको सुना रहे हैं। और आज विशेष दिन है 7 जुलाई। 7 जुलाई की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7/7 आज का तारीख है, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, तो आशा करूँगा आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। हेलो जी,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार नमस्कार गुड़ीलाल जी, बोलिए कैसे हैं आप।
1: गाना मेरे भी निकाला है। वो गाना थोड़ा देखिए, हमारे भी दिल के अंदर खुशियाँ आ जाएगी।
0: हाँ जी,
1: राम राम राम से बड़ा राम का नाम,
0: राम से बड़ा राम का
1: नाम, राम का नाम। चलो भाई, राम के भरोसे सबसे भीड़े काम सजारे, चलो भाई राम के भरोसे। ये भजन है क्या, ये गाना है, ये हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। सभी साथियों को मेरा प्यार बुरा नमस्कार। धीरेन्द्र भाई है, बुरा लाल जी, बुरा राम जी है और मदन भाई है, इन सबसे मेरा प्यार बुरा नमस्कार। और आपको भी मेरे दोनों हाथ जोड़ कर के प्रणाम है।
0: जी जी जी जी जी जी जी, शुक्रिया, धन्यवाद। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ये थे गुड़ीलाल जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे। गुरु हरकिशन सिंह जी का जन्मदिन है आज, उनके बारे में बातें करते हैं। और सिखों के ये 8वें गुरु थे और वे 1661 को गुरु बने थे और इस पद पर 1664 तक यानी 4 साल तक आसीन रहे। गुरु हर किशन साहेब जी का जन्म सावन सुदी 10वां सावन विक्रम संवत 7 जुलाई 1656 को किरतपुर साहेब में हुआ था। आप गुरु हर राय और माता किशन कौर के दूसरे बेटे थे। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही आपको गुरु गद्दी प्राप्त हुई। सिर्फ 3 वर्ष तक शासन किया, लेकिन वह बहुत बड़े ज्ञानी थे और हिंदू धर्म ग्रंथ भागवत गीता के ज्ञान से अपने पास आने वाले ब्राह्मणों को अलंकृत कर देते थे। इनके बारे में कई चमत्कारों का वर्णन मिलता है। बालक के ज्ञान की परीक्षा लेने के उद्देश्य से राजा जयसिंह ने अपनी एक रानी को दासी के वेश में गुरु के चरणों के पास अन्य दासियों के साथ बिठा दिया। बताया जाता है गुरु हर किशन ने तुरंत रानी को पहचान लिया। हर किशन के बड़े भाई राम राय, जो पहले से ही मुगल बादशाह औरंगजेब के समर्थक थे, उन्हें गुरु नियुक्त किए जाने का विरोध किया। इस मामले को फैसला करने के लिए औरंगजेब ने 8 वर्षीय हर किशन को दिल्ली बुलाया था और उसके बाद गुरु गद्दी का तिलक यानी किरतपुर में गुरु हर राय जी के उस समय के दीवान लगते थे। हजारों श्रद्धालु वहां उनके दर्शन के लिए आते थे और अपनी मनोकामनाएँ पूरी करते थे। एक दिन गुरु हरि राय जी ने अपना अंतिम समय नज़दीक पाया और देश प्रदेश के सारे मसानदों को हुक्मनामे भेज दिए कि अपने संगत के मुखियों को साथ लेकर शीघ्र ही किरतपुर पहुँच जाओ। इस तरह जब वो सिख सेवा और सूढ़ी बेदी बल्ले त्रिहान गुरु अंश और 7 महंत सभी वहाँ पहुँचे, आपने दीवान लगाया और सबको बताया कि हमारा अंतिम समय नज़दीक आ रहा है और हमने गुरु गद्दी का तिलक अपने छोटे सुपुत्र श्री हरि कृष्ण जी को देने का निर्णय किया है। इसके उपरांत गुरुजी ने श्री हरि कृष्ण जी को सामने बिठाकर उनकी 3 परिक्रमा की और 5 पैसे और नारियल आगे रख कर उनको नमस्कार किया और साथ ही साथ वो वचन भी किया कि आज से हमने इनको गुरु गद्दी दे दी, अब इनको हमारा ही रूप समझना और इनकी आज्ञा में रहना। गुरु जी का ये हुक्म सुनकर सारी संगत के लिए वचन सहर्ष शुभ स्वीकार किया और भेंट अर्पण की। इस प्रकार संगत ने श्री हरि कृष्ण जी की गुरु स्वीकार कर लिया था। तो इस तरह से ये चीज़ें हुई और फिर आगे कुछ चीज़ें और भी आई बीच में, तो उसके बारे में जानेंगे, लेकिन अभी आपको सीधे ले चलता हूँ। राम से बड़ा राम का नाम, आपके नाम

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, राम से बैठकर राम का नाम। और आइए, आज जैसे कि गुरु हरिकृष्ण जी का जन्मदिन है, जिनके बारे में हमने बातें की, और आठवीं पादशाही गुरु के रूप में श्री हर राय जी को याद किया जाता है। 1661 में गुरु हरिकृष्ण जी को आठवीं पादशाही गुरु के रूप में सौंपी गई थी। तो आइए, इस बीच हमारे साथ सुधा जी भी आ गई हैं अहमदाबाद से। कल आप आए यहाँ पर और आपको अच्छा लग रहा है, और अभी 10 बजे आपको जाना है, इसलिए हमने कहा चलिए अब वापस आप सभी को जो है सुधा जी से भी मुलाकात कराते हैं। तो सुधा जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी धन्यवाद, मैं बहुत ठीक, बढ़िया हूँ।
0: जी जी जी, और हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे आप?
1: बस
0: क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे सभी श्रोता बंधुओं को।
1: जी बिल्कुल, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, अहमदाबाद से आई हूँ। मेरा बर्थ प्लेस चेन्नई है।
0: अरे वाह,
1: तो मेरा कॉम्बिनेशन डोसा और ढोकला का हो गया है। और रमेश जी के साथ 1 साल से जुड़ी हूँ। सब जितने भी गेस्ट आते हैं उनको मैं एंटरटेन करती हूँ मेरी अपनी आवाज़ से।
0: जी, तो, जी।
1: और इनके साथ जुड़ कर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे कंटिन्यूस इनका साथ मिला, लाइक ऑलमोस्ट 1 साल से भी ऊपर हो गया।
0: जी,
1: और मुझे झेलते रहे, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू रमेश जी।
0: जी जी,
1: बस अभी मेरी 10 बजे की ट्रेन है, मुझे वापस भी जाना है। मेरी 94 ईयर्स ओल्ड मदर को मैं छोड़ के आई हूँ, तो मैं एक रात थोड़ा एडजस्ट करके आई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सुधा जी, मैं चाहूँगा कि एक आध सुंदर गीत आप अपना जो है सुनाइए हमारे श्रोता बंधुओं को, भी अच्छा लगेगा उन्हें।
1: जी बिल्कुल,

0: चलिए सुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया हमारे श्रोता बंधुओं को, अच्छा लगा होगा उन्हें भी, शुक्रिया। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सुधा जी काफ़ी समय से गीत सुनाती हैं और रेडियो मधुबन के साथ एसोसिएटेड है पिछले एक सालों से, तो अब बात करते हैं, आइए आठवें जो गुरु रहे हैं गुरु हरकिशन राय जी। तो शुरू शुरू में इनको जो है थोड़ी सी दिक्कतें हुई, जैसे हर किसी को होता है, और श्री राम राय जी इस चीज़ को समझ नहीं सके और उन क्रोध में आकर बाहर मसनदों को पत्र लिखने की, गुरु की कारबेट इनकी इकट्ठी करके सब मुझे भेजो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। उसने इसका साथ साथ दिल्ली जाकर औरंगजेब को कहा कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है और गुरु गद्दी पर बैठने का हक मेरा था, परंतु मुझे छोड़कर मेरे छोटे भाई को गुरु गद्दी पर बिठा दिया गया। तो इस तरह की सब बातें जो है हुई और फिर दिल्ली जाना पड़ा इन्हें हरि राय को। हेलो जी, नमस्कार।
1: अजी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: ओम शांति, बढ़िया बढ़िया, बताइए आप कैसे हैं सुरेश जी, स्वागत है आपका।
1: बिल्कुल बहुत अच्छे है, बैठा है, काम कर रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, अच्छा गाना सुना दिया हमारे जी। आपको दुनिया में रखा गया बहुत अच्छा मीठा गाना गाया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कहते हैं हम गाने तो हरदम हम सुनते ही लेते हैं, लेकिन जो अपनी आवाज से जो गाने हम सुनते हैं सर, सब बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा
0: जी जी जी। बात कीजिए सुधा जी, हमारे साथ ही है, हेलो बोलिए।
2: हेलो,
1: नमस्ते सुधा जी।
2: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। बस बढ़िया हूँ,
1: ओम शांति। बस हम भी अच्छे हैं, आप आए बहुत अच्छा लगा, आपने गाना भी बहुत अच्छा सुना दिया, तेरी आंखों को सुधा दुनिया में रखा, क्या बहुत अच्छा लगा गाना, और आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। और कहते हैं कि हम गाने तो अक्सर सुनते हैं, लेकिन जो अपनी मौत से गाने सुनते हैं ना, तो वो और भी अच्छा लगता है।
2: जी जी, थैंक यू सो मच,
1: आपने बहुत अच्छा गाना सुना, आपका धन्यवाद
2: जी, थैंक यू
1: जी। ही गाने सुनाते रहिए हमको, क्योंकि हमारे जो कोई स्टूडियो में आते हैं मेहमान आते हैं, तो हमको भी खुशी रहती है कि हम आपसे बात कर पाते हैं, जो हमारे कोई भी मेहमान आते हैं तो हमारे से बात हो जाती है,
2: बिल्कुल
1: ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है।
0: जी जी,
1: चलो आज मंगलवार है, हनुमान जी को याद कर रहे हैं, आपको और हमारे सभी मित्रों को आपके दिन की मंगल कामनाएं
0: जी जी
1: हैं। और बारिश तो हो रही है, रात को भी बहुत 6 बजे 7 बजे इतनी जोरों से बारिश आई, बहुत जोरों से बारिश आई।
0: अच्छा,
1: लेकिन 1 घंटा बाद में रुक गई, आती है तो कहते हैं कि कोई नुकसानकारक नहीं आती है, लेकिन हम देख रहे हैं मुंबई में तो राज्य सौराष्ट्र में
0: सब जगह जो है पानी पानी हो गया,
1: बहुत पानी है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे जो हो रहा है बस खेती के लायक बरसात हो रही है।
0: जी जी जी जी,
1: हनुमान जी का चर्चा गाना, हमारे सारंगपुर का जो गाना होता है जो आवाज में है
0: जी जी जी,
1: चलो सुना देना सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हमारे सभी मित्रों को नमस्ते, हमारे गुड़ीलाल जी है, हमारे बुरा राम जी है, तो बुरा राम जी को भी हमारा राम राम है,
0: राम राम।
1: सुभाष भाई है
0: जी जी,
1: किशन भाई है, दया राम जी है, और हमारे बहुत पुराने हमारे कौशिक खान जागीरदार है, और तारीफ हमारे जो ताबिर भाई, बहुत मैं बताऊँ हमारे फर्स्ट मित्र वो तारीफ ताबिर भाई है,
0: बिल्कुल रेडियो सुनते थे काफी,
1: दो बार आ चुके थे, और हमारे जागीरदार भी हमको मिल चुके हैं, वो भी हमारे यहाँ आ चुके हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे सभी पुराने मित्रों को भी आज के दिन की शुभकामनाएं, नमस्ते सर, ओम शांति।
0: ओम शांति, ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए मित्रों, आज हम लोग गुरु हरिकिशन जी के बारे में बातें कर रहे थे, और उनके जो बड़े भाई थे राम राय, उनको ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई और उनको जो है छोटा मानकर उन्होंने उनको जो है विशेष रूप से वो दिल्ली औरंगजेब के पास जाकर उन्होंने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मजबूरन दिल्ली उनको बुलाना पड़ा, और फिर दिल्ली जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने औरंगजेब से कुछ बातें सुनी और बताई, और उसके बाद जो है वो सीधे जो है उनको वापस भेज दिया और फिर उनको गुरु गद्दी पर बैठने के लिए राज़ी कर दिया। तो बहुत ही कम समय में गुरु हरकिशन साहिब ने सामान्य जनता के साथ अपने मित्रतापूर्ण व्यवहार करके राजधानी में लोगों की लोकप्रियता हासिल की, और फिर इस तरह से दिल्ली के आने के बाद भी वो अपने पद पर रहे। हेलो जी नमस्कार।
3: ओम शांति। गुड मॉर्निंग रमेश जी।
0: गुड मॉर्निंग
3: सुधा जी, दीदी सुधा जी,
0: जी जी
3: और हमारे सभी दोस्त सुरेश भाई जी जोताना, सभी नए पुराने सभी दोस्तों को सुभाष भाई का नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है
0: जी, जी,
3: लेकिन कल आपका 2000वां एपिसोड का आपका गुनगोरो सेवा का आपने जो सेवा किया
0: जी, जी,
3: और रेडियो मधुबन के परिवार

0: que llamar. Sudaji ke git. Aur hamari didi chale chale vaswa doctor nahi. Unki baatein wo bhi mahan hai. Unhone bhi bahut सेवा किया है
1: जी।
0: तो कल का प्रोग्राम हमने लाइक भी किया है, बहुत अच्छा लगा। 5-10 मिनट छूट गए थे, बाद में हमने देखा रिपीट वो प्रोग्राम देखा और रात को बहुत ही अच्छा लगा। आपके कविता संग्रह आपके नए अर्पण ए आत्मन धीरे धीरे चल, ए आत्मन धीरे धीरे चल, जो भी नए प्रोजेक्ट सभी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिली और बढ़िया शो हुआ। और अभी भी सुरेश जी जो थाना वाले भाइयों ने जो बातें किया
1: जी जी
0: हमारी के बारे में, बुरा राम जी जिन्होंने फरमाई ओ गीते सुधा जी का गीत सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा। और सभी को नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: ओम शांति भाई,
1: ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए मित्रों, ये थे सुभाष जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे। तो आइए एक और गीत आपके नाम।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझा

0: साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर POK में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने POK के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
5: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर दो दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट पीजी परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा। अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: द बेस्ट राइटर अवार्ड गोज टू मिस सुरेखा।
9: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
8: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
9: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
10: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
9: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।

नमस्कार, मैं मुंबई से राजयोगी ब्रह्मा कुमार निकुंज, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आप सभी का स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष स्टूडियो में मुंबई से कुछ खास थिएटर आर्टिस्ट आए हुए हैं। फिल्म और टीवी के लिए काम करने वाले लोग आए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जब उन्हें हम टीवी या सिनेमा में देखते हैं, लेकिन वो सारे लोग यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित हैं और आवाज़ के माध्यम से आपसे रूबरू होने वाले हैं। तो मैं अभी अगली आवाज़ जो है आप सुनेंगे
1: जयशंकर त्रिपाठी
0: जी का। तो जयशंकर त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और हमारे सुनने वाले दर्शक भी स्वस्थ और
0: मस्त
1: होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जयशंकर जी, मैं चाहूंगा कि एक तो आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो आपकी जो जर्नी है थिएटर की, तो वो कैसे कब शुरू हुई?
1: मैं 1997 से थिएटर से जुड़ा हूँ
0: जी,
1: और मैंने श्रीमती नादिरा बब्बर जी के साथ थिएटर किया। करीब उनके साथ मैं 20 साल से थिएटर से जुड़ा रहा। देश विदेश में काफ़ी थिएटर रंगमंच के साथ, मतलब प्लेज लेके हम लोग गए।
0: बिल्कुल।
1: और अच्छे अच्छे शोज किए वहाँ पर, और भारत भर में भी जहाँ जहाँ प्लेज
0: प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर आप जाते थे।
1: जी।
0: अच्छा, एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे सबसे ज़्यादा जो प्ले आपको करने को अच्छा लगा, कि कुछ चैलेंजिंग वाला रोल था उसमें, ऐसा कुछ है?
1: जी जी,
0: वो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में।
1: कई सारे प्लेज थे, जैसे एक प्ले है यहूदी की लड़की, आगा हश्र कश्मीरी जी का लिखा हुआ, वो उसमें काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि पोएटिक फॉर्म में था वो।
0: अच्छा।
1: और उर्दू काफ़ी थी उसमें, तो स्टार्टिंग का दौर था उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। बाकी उसके बाद प्ले था एक घोड़ा तीन सवार, उसमें एक बहुत ही चैलेंजिंग अच्छा रोल था, जिसमें हमारे मेन लीड कर रहे थे सुनील सिन्हा जी, उनके बॉस का रोल करना था मुझे।
0: अच्छा।
1: पीके बोकाड़िया का तो वो मैंने किया था, वो काफ़ी सराहा गया, और उसको हमने दुबई, मस्कट और पाकिस्तान कई जगह उसके शोज हुए, भारत भर में भी कई जगह हुए।
0: अच्छा अच्छा
1: जी
0: जी। जयशंकर जी, बहुत ही अच्छा लगा आपने अपने जो चैलेंजेस रोल थे उसके बारे में बताया, और मैं चाहूँगा कि जैसे कि ट्रैवलिंग करते हैं तो शोज कितने दिनों का रहता है, कैसे पैकेज होता है, आप कैसे मैनेज करते हैं अलग अलग जगह पे जाने के लिए?
1: वो एक्चुअली शोज़ तो ज़्यादातर, जैसे अगर फेस्टिवल के लिए हम लोग जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं भारत से, तो 2-3 दिन का या 4 दिन का होता है, और ट्रेवलिंग भी बस बाय एयर होती है, नहीं तो बाय बस अगर हमारा नज़दीक
0: वाला है तो बस।
1: हाँ, तो वहाँ बाय बस या ट्रेन से हम सफ़र करते हैं वहाँ पर।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और रही बात क्या मिलता है, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ से किस तरह से वो लोग
0: अरेंज
1: कर रहे हैं।
0: जी,
1: ये
0: जी,
1: सारी उसमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थिएटर के साथ साथ फिर फिल्मों में जुड़ने का भी जो है संयोग आता है
1: जी,
0: तो मैं चाहूँगा कि कौन फिल्म और टीवी सीरियल्स में आपको मौका मिला उसके बारे में भी बताइए।
1: मैंने पहली फिल्म किया था राउडी राठौड़, अक्षय कुमार जी वाली फिल्म
0: जी,
1: उसमें ये प्रोडक्शन था संजय लीला भंसाली का।
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद प्रकाश झा की फिल्म थी अपहरण, फिर हैप्पी एंडिंग जो सैफ अली खान के प्रोडक्शन की थी, एलुमिनेटी की, गोविंदा जी के साथ काम किया था, उनके सेक्रेटरी का रोल था मेरा, और पूरी फिल्म में बहुत अच्छा रोल था।
0: बिल्कुल।
1: फिर पति पत्नी और वो अभी हाल में ही आई थी फिल्म हेलमेट, बहुत हुआ सम्मान, ऐसी बहुत सारी। और बाकी वेब सीरीज आज के दौर है,
0: बिल्कुल,
1: तो वेब सीरीज में मैंने पंचायत, रक्तांचल, और अभी 2 आई है हालताज में, एक विशल ब्लोअर सोनी ब्लोअर सोनी लिप पे, और दूसरी आई है अवरोध सीजन 2, और 2-3 चल रही हैं अभी।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, तो फिल्म में जो है आने वाली है एक्टिंग का भूत, और जी, दूसरी जी, है चीयर्स, और सीरीज में है मैजिक ऑफ श्री।
0: हाँ हाँ,
1: एड फिल्म मैंने काफ़ी किया है जिसमें काफ़ी अच्छा मेरा हो रहा है, और शुरुआती दौर से ही मैंने ऐड करने लगा, करीब आज 750 के आसपास मेरी एड्स हैं।
0: अच्छा
1: जी। हाँ।
0: बिल्कुल।
1: बड़े बड़े प्रोडक्ट जो भी हैं, नाम लेंगे आप उसमें, जैसे नोकिया है, मोबाइल के तो बहुत सारे किए।
0: अच्छा,
1: स्टार्टिंग
0: अच्छा।
1: के तो मतलब जैसे मोबाइल का दौर स्टार्ट हो रहा था
0: बिल्कुल,
1: तो उस दौरान मोटोरोला और टाटा इंडकॉम रिलायंस सैमसंग तो ये उस टाइम पे मैंने काफी स्टार्टिंग से किए थे। जेबीसी के पार्ट टू में मैंने अमित जी के साथ अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया था, उनके साथ एक फिल्म भी की थी लेकिन संयोगवश वो फिल्म आई नहीं।
0: अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में। और मैं चाहूँगा कि जैसे आप 90s से लेकर अब तक का है इंडस्ट्री में, तो शुरुआत वाला जो फेज था जब आप आए नए और अभी में जो चेंजेस देख रहे हैं काफ़ी पूरा जो है ट्रैफिक चेंज आया है, तो वो चेंज थोड़ा सा बताइए कि क्या
1: चेंज। तो बहुत आया है, पहले सिलेक्टेड काम थे, बहुत कम काम होते थे क्योंकि या तो टीवी थी तो उसमें सीरियल्स का था और फिल्म का था, अभी वेब सीरीज जैसे बनने लगी हैं और म्यूजिक एल्बम वगैरह बनने लगे, तो काम की कमी बिल्कुल नहीं है लेकिन ये है कि लोग बढ़ भी बहुत गए हैं तब से।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, एक्टर और भी फील्ड में कि अब एक्टिंग में अच्छा स्कोप है, चलो एक्टिंग करते हैं, तो काफी लोग आ भी गए हैं। थिएटर भी बहुत सारे हर जगह काफी सारे स्टार्ट कर लिए हैं लोगों ने, बहुत सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट लोगों ने खोल दिया है, जो कास्टिंग करते थे आज वो अपना जो है एक्टिंग इंस्टीट्यूट हो गया है उनका, तो वो हर जगह अपना जगह जगह वो कर लिए, तो जगह जगह से आर्टिस्ट भी आने लगे हैं, तो काफी भीड़ थोड़ी सी बढ़ गई है। स्ट्रगल पहले भी था अभी भी है।
0: लेकिन टेक्निकल चीजों में क्या चेंजेस आए हैं?
1: टेक्निकल में भी काफी चेंज आया है, जैसे कैमरे पहले उस समय उस तरह के नहीं होते थे या दूरदर्शन वगैरह होता था, और अब सैटेलाइट वाला और ओटीटी आ गया है, तो मतलब टेक्निकल में भी काफी चेंज हो गया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जयशंकर जी, मैं चाहूँगा कि फिल्मों से काफ़ी जुड़े हुए हैं और लंबा समय तक आप इसमें जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि संगीत के साथ आपका क्या रुझान रहा, म्यूज़िक किस टाइप के सुनते हैं?
1: म्यूज़िक तो पुराने ही मुझे बहुत पसंद हैं
0: जी,
1: और जैसे आज भी कोई भी रफ़ी साहब का है या किशोर दा का है या लता दीदी आशा भोसले जी का है, ये संगीत मतलब जब भी इनके गाने बजते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं गाया कभी नहीं हूँ लेकिन सुनता बहुत हूँ, और प्लेज में भी जब म्यूजिक का म्यूजिकल प्लेज होते थे जिसमें भरम के भूत जस्मा ओढ़न ऐसे बहुत सारे जिसमें गाने बहुत थे, तो फोक में जैसे ये था भरम के भूत था, छत्तीसगढ़ी नाचा एक शैली है वहाँ की फोक उसके ऊपर था, और ये जस्मा ओढ़न था भवई जो गुजरात की है उसके ऊपर था, उसमें भी बहुत सारे गाने होते थे। हमें प्लेज में तो तैयारी करनी पड़ती है, 2-3 महीने की रिहर्सल में हम लोग तैयार तो कर लेते थे लेकिन वैसे गाने का कोई वो नहीं रहा है, सुनता
0: अच्छा,
1: बहुत
0: जो आपका पसंदीदा गीत है जो ऐसा लगता है कि ये गीत मैं कभी भी सुन सकता हूँ, ऐसा कोई गीत है आपके?
1: बहुत सारे ऐसे
0: तो एक हाथ गीत का एक लाइन बताइए, गाइए मत।
1: हाँ जैसे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, इस तरह के काफी
0: देशभक्ति वाले
1: भी मुझे काफी पसंद है
0: जी। हाँ तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जयशंकर त्रिपाठी हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर के बारे में उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आप सभी वो बातें सुनते सुनते आप भी खो गए होंगे उनके पुरानी यादों में, तो चलिए मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो अभी जयशंकर जी ने ही याद किया, मेरे देश के धरती, इस गीत को सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे रूबरू होते हैं। वापस आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना, मेरे देश की धरती। जी हाँ दोस्तों, ये गीत जब भी आप सुनते हैं तो आपका मन जो है नाच उठता है, उमंग बढ़ जाता है, खुशी बढ़ता है। और अभी फिलहाल तो 15 अगस्त भी नज़दीक आ गया, तो ऐसे गीत सुनकर जो है आप बिल्कुल खुश होते होंगे। और क्यों ना खुश हों, क्योंकि हमारे देश की बातें उसमें हैं, किसान की बातें हैं, टेक्नोलॉजी की बातें हैं और भारत की महिमा समाई हुई। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग, जयशंकर त्रिपाठी हमारे साथ हैं, उनसे बातें हो रही थी। अब देखिए, वो फिल्म इंडस्ट्री से जहाँ पर माया नगरी मुंबई से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो है ब्रह्मा कुमारी में आए हुए हैं, आर्ट एंड कल्चर का जो कॉन्फ्रेंस है उसमें आए हुए हैं। तो अब एक तरफ जो है माया नगरी और एक तरफ जो है प्रभु की नगरी, दोनों का वो साक्षात्कार कर चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद आपको क्या फीलिंग आया, आपके आध्यात्मिक प्रज्ञा की बात थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए।
1: जी हाँ, मैं ये सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरा आने का बहुत पहले प्रोग्राम यहाँ बन चुका था।
0: जी, जी जी,
1: लेकिन कुछ मेरे शूटिंग के दौरान मेरे पैर में चोट लग गई थी। भोपाल में शूटिंग कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस बार भी अटेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कोरोना से पहले बात हुई थी कि चलेंगे, लेकिन कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया था। और अभी भी फिर से ऐसा लगा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में आने का मुझे ऊपर वाले ने लिखा था और यहाँ से लोगों से रूबरू होना था, इसलिए ऊपर वाला जो है
0: संयोग बन गया
1: और मुझे यहाँ बुला लिए। बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मेरा पैर अब बहुत अच्छे से अब मैं चल रहा हूँ और यहाँ रेडियो स्टेशन में सीढ़ियों पे चढ़ के और यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है
0: जी। नहीं, ऐसा आध्यात्मिक जो आपने अटेंड किया सेमिनार वगैरह, उसमें से कुछ चीज़ें जो आपको बहुत अपील लगती हैं, अच्छा लगती है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: देखिए, क्या है, भागा दौड़ी की हमारी लाइफ होती है, ज़्यादा करके हम काम करते हैं जिस तरह से स्ट्रेस में रहते हैं। और यहाँ आकर जो राजयोग का सेशन हमने अटेंड किया, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे मन मस्तिष्क के दरवाजे को खोल दिया। हाँ, और अब जो है बहुत एकदम हल्का महसूस कर रहे हैं।
0: अच्छा,
1: और हम चाहते हैं कि और भी लोग जो भी ये हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, और वो जरूर कोई ना कोई अपने क्षेत्र में जो भी कोई वहाँ पे सेंटर हैं ब्रह्मा कुमारीज के, वहाँ जाएं और वो एक बार कम से कम सेशन जरूर अटेंड करें, तो उनको जरूर फील होगा कि किस तरह से यहाँ लोगों को अध्यात्म से जोड़ा जाता है और स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस इसी तरह से रहा है, बहुत अच्छा रहा है।
0: जयशंकर जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आध्यात्मिक अनुभव का। और माउंट आबू में यहाँ पर आने के बाद आपको जो है बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके मन को बहुत अच्छा लगा, और उनसे आपके जो क्या कहते हैं, बहुत सारी जो धुंध था आध्यात्मिकता के प्रति या संसार में जो ईश्वर के प्रति, जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे अनेक मत हमारे बीच में आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया कि ईश्वर एक है और हम सब उसके बच्चे हैं, ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपका। और अब रहता है कि जैसे राजयोग की बात आती है, लाइफ में उसको अचीव करना, अभी हमें समझ आना के बाद हमें उसे प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको सवेरे का टाइम जो है वो शायद यूनिवर्सल टाइम है, जो यहाँ पर आपने प्रैक्टिस किया 4 से 7 के बीच में, है ना? तो ये तो आप कहीं भी जाके कर सकते
1: जी, बिल्कुल
0: हैं,
1: कर सकते हैं।
0: तो इसमें ना ड्यूटी का कुछ आता है, ना कुछ प्रोफेशन का कोई प्रॉब्लम आता है। तो ये हमारा समय ही है आध्यात्मिक प्रज्ञा को इम्प्रूव करने का, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एनहांस करने का ये समय है, तो आप उस समय कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किस तरह की चीजें और इंक्लूड क्या करेंगे और क्या चीजों पर ध्यान रखेंगे।
1: ये जो यहाँ पर हमने जो किया है, इसको तो हमें करना ही करना है, बाकी और चीजें आगे पीछे हो जाएंगी, चलेगी, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ नहीं। राजयोग में तो हमें इस तरह की चीजें बताई गई हैं कि काम करते करते सारी चीजें आप कर सकते हैं, आपका काम सफर नहीं करेगा इससे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ, तो वो चीज तो हम करते रहेंगे, साथ में हमारे ये जो चीज जुड़ गई है ये हमें
0: बना के रखेगी
1: और अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट जो आया है वो
0: करेंगे।
1: हाँ,
0: चलिए जयशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने निजी अनुभवों को साझा करने के लिए। और फिल्म थिएटर, इन सभी बातों को बताते हुए आपने यहाँ पर तो 3 दिन का सेमिनार अटेंड किया, ब्रह्म कुमारीज का विशेष आध्यात्मिक सेमिनार। तो वो चीज़ों में जो आपने रुचि लिया और उसको आत्मसात किया है, तो मैं चाहूँगा कि आपकी आत्मा की जो है शक्तियाँ बढ़ती रहें और आप अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी शुभ इच्छा के साथ बहुत बहुत खुशी आपको। सलाम, नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चलिए मित्रों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर और कलाकार मुंबई से आए हुए हैं, उनसे बातें करने वाले हैं और ये शो जारी रहेगा जहाँ पर आप कलाकारों को सुनते रहेंगे। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आपने ट्विन किया है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम को और बड़ा अच्छा अच्छा जो है इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है और ख़ास मुंबई की बातें आप सुन रहे हैं और कलाकारों से आप बातें सुन रहे हैं और कलाकार भी आज जो है विशेष रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में उपस्थित हैं और साथ में आध्यात्मिक अनुभव भी आप उनसे सुन रहे हैं। तो आइए, अब मुंबई की हमारे साथ एक और आर्टिस्ट कलाकार नीलम महाजन उपस्थित हैं। नीलम महाजन, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते।
1: नमस्कार,
0: कैसे हैं आप?
1: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी अच्छा हो गया हूँ आपको देखकर अभी।
1: आशा करती हूँ कि हमारे सुनने वाले सभी श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे,
0: बहुत खुश हो रहे होंगे कि बहुत देर के बाद एक फीमेल वॉइस सुन रहे हैं, मीठा मीठा,
1: मेरा सौभाग्य।
0: तो आइए नीलम जी, मैं चाहूंगा कि आपका कैसे इस थिएटर से या फिल्मों से जुड़ना हुआ उसके बारे में बताएं।
1: जी, मैं मूलतः दिल्ली से हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा कॉलेज दिल्ली से हुआ है और रंगमंच से जुड़ाव भी मैंने दिल्ली से ही शुरू किया था।
0: अच्छा।
1: और दिल्ली में एक्ट फन करके हमारा एक ग्रुप है जिसके माध्यम से हमने बहुत सारे शोज किए। और कहा जाए तो मेरी जर्नी जो है, मेरी जिंदगी की शुरुआत उसी रंगमंच से हुई है। जीना मैंने उससे सीखा है। मैं अगर आज अपने अनुभवों को काउंट करूंगी तो मेरे अनुभव शुरू ही होते हैं रंगमंच से। उससे पहले की जिंदगी के बारे में आप कुछ पूछेंगे तो मुझे ज्यादा याद नहीं है। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, रंगमंच ही मेरा बचपन, जवानी और शायद बुढ़ापा भी रहे।
0: अरे बाप। चलिए नीलम जी, मैं चाहूँगा कि जो आपको कुछ बचपन की जो थिएटर की बातें हैं या वो थोड़ा सा याद करा के हमें बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें आपने की।
1: कहा जाए तो रंगमंच से जुड़ना भी बहुत ही इत्तेफाकन हुआ था। मैं मुझे पढ़ने का बहुत शौक है
0: जी।
1: तो मैं कॉलेज की लाइब्रेरी से सफ़र करते करते दिल्ली के मंडी हाउस में रशियन कला केंद्र में पहुंची। वहां पे किताबों का खजाना है।
0: अच्छा।
1: तो मेरा रुझान था किताबें पढ़ने पर। आते जाते रास्ते मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कुछ कुछ अभिनय कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: तो देखते हुए रुक जाती थी। उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कैसे लोग अपने आप में हंसते हैं, गाते हैं, मुस्कुराते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो समय पता नहीं चलता था कि कैसे बीत गया। आते जाते में बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो मेरे कॉलेज के भी साथी थे। सौरभ शुक्ला उनमें से एक हैं।
0: अच्छा।
1: मैंने अपनी जिंदगी का जो पहला शो देखा रंगमंच का, वो सौरभ शुक्ला का देखा। और अगर कहूँ कि मुझे तमीज़ नहीं थी कि मैं थिएटर में कैसे बैठूँ और नाटक को देखने के लिए क्या एटिकेट चाहिए, तो वो मुझे में नहीं थे। मैं ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और मुस्कुरा रही थी और बातें कर रही थी। तो मुझे किसी ने बताया कि जब आप प्ले देखते हैं तो उस दौरान आपको ज़ोर से नहीं बोलना होता। तो ये मेरी शुरुआत थी। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक इंसान रह के बहुत सारे किरदारों को निभा सकते हैं। तो बस फिर मुझे लगा मुझे अब थिएटर ही करना है।

0: लेकिन मैं बहुत पारंपरिक एक्टर कभी नहीं रही. जैसे मैं गाने में मेरा हाथ एकदम तंग था, मैं अपनी तरफ से बहुत सुरीला गाती थी लेकिन साथ वाले के सारे सुर बिगाड़ देती थी. तो संगीत में नाटिकाएं मैंने की.
1: अच्छा,
0: लेकिन
1: अच्छा,
0: म्यूट रहकर.
1: अच्छा.
0: तो काफी सारे थिएटर ग्रुप्स के साथ में काम किया. मोहन उप्रेती जी के साथ में काम किया. एक्ट वन हमारा थिएटर ग्रुप है, उसमें एन के शर्मा हमारे डायरेक्टर थे. साथी कलाकार बहुत सारे हैं और आज उनमें से बहुत सारे बहुत कामयाब भी हैं. और उसके अलावा भानु भारती जी के साथ में, रॉबिन दास के साथ में, हनु यादव के साथ में मैंने काफी रंगमंच किया है.
1: अच्छा अच्छा. तो फिल्मों से क्या, कौन कौन सी फिल्मों में आपको मिला काम?
0: फिल्मों में मैंने भोजपुरी की है,
1: अच्छा,
0: सिंधी की है और हिंदी भी की है. लेकिन मैंने सबसे ज्यादा काम जो किया है वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पे किया है.
1: अच्छा, अच्छा,
0: वो
1: अच्छा.
0: मैंने सीरियल्स के लिए किया है.
1: ओके ओके.
0: सैटेलाइट चैनल्स के लिए जो सबसे पहला चैनल आया था जी टीवी, उसका एक बहुत ही पॉपुलर शो था तारा. मेरे शुरुआत कॉस्ट्यूम डिजाइनर की उस सीरियल के साथ में हुई है. उसमें मैंने सीखा भी और किया भी और उसने मुझे बहुत सारी ऊंचाइयों पर पहुंचाया. तारा से शुरू हुआ मेरा सफर बहुत लंबा चला. फ्रैक सिनेमा हमारी कंपनी का नाम था, रमन कुमार विंता नंदा की कंपनी है. उनके साथ में बहुत सारे शोज किए. फिर उसके बाद में शमी आंटी, आशा पारेख और महेश जी, बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया.
1: अच्छा अच्छा.
0: लेकिन कह सकते हैं कि जैसे थिएटर मेरा पहला प्यार है, वैसे मेरे दिल के सबसे नज़दीक सीरियल तारा है.
1: अच्छा.
0: और उसके बाद में कोरा कागज़ जो आशा जी ने डायरेक्ट किया था.
1: चलिए नीलम जी, मैं चाहूँगा कि एक आध जो क्या कहते हैं, कई बार थोड़ा सा स्ट्रेस भी बहुत आता है हमें इन सारी चीज़ों को करते हुए, तो आपका ऐसा कोई ऐसा सिचुएशन रहा जहाँ पर आपको बहुत सारे दो चीज़ों को करना पड़ा और दोनों भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है?
0: जी.
1: क्योंकि कई बार होते हैं ना कि हम फैशन डिज़ाइनर भी है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी है, थिएटर आर्टिस्ट भी है, और हो सकता है कि थिएटर का भी काम आपको मिल रहा है, फिल्म का भी मिल रहा है, तो ऐसे कन्फ्यूजन
0: उसमें होता है, कई बार ऐसा होता है.
1: जी जी.
0: और तब मैं कुछ ऐसा नहीं सोचती कि थिएटर है या फिल्म है या सीरियल है या म्यूजिक वीडियो है.
1: जी.
0: मुझे जौन सी कहानी ज्यादा अच्छी लगती है, दिल के करीब लगती है, मैं उसको चुनती हूँ.
1: अच्छा अच्छा.
0: जैसे जिससे मेरा जुड़ाव ज्यादा हो.
1: कोई एग्जांपल आप बताएंगे कि ऐसा
0: कैसे? असल में मेरे सामने ऐसी चुनाव की स्थिति कभी ज़्यादा आई नहीं.
1: जी, जी जी जी.
0: और जब आई तो मैंने उन सामने वालों को जब बताया कि मैं ये इस समय इस काम में व्यस्त हूँ, मैं दूसरा काम नहीं कर पाऊंगी.
1: बिल्कुल.
0: तो
1: बिल्कुल.
0: इस मामले में लकी रही कि लोगों ने मेरा इंतजार किया.
1: क्या
0: मुझे समय दिया कि हाँ ठीक है, आप एक दिन का समय लीजिए, दो दिन का समय लीजिए, लेकिन आप बाद में हमारा काम कर दीजिए. लेकिन फिर भी जो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया वो भोजपुरी फिल्मों में बहुत मजा आया.
1: अच्छा.
0: मेरे लिए एकदम नई भाषा थी और वहाँ के कलर्स, यूपी बिहार, उस तरह
1: अच्छा,
0: के
1: अच्छा.
0: एकदम डिफरेंट कलर्स के कॉस्ट्यूम्स तैयार करना. मैं आमतौर पे जब कॉस्ट्यूम्स बनाती हूँ तो मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ती थी, कैरेक्टर्स को पढ़ती थी, फिर कैरेक्टराइजेशन करती थी, उनके रंग डिसाइड करती थी कि कैसे रंग उनके ऊपर चलेंगे. लेकिन भोजपुरी में स्क्रिप्ट पढ़ना ही अपने आप में बहुत मज़ेदार रहता था. तो कॉस्ट्यूम करने से ज़्यादा मज़ा मैंने स्क्रिप्ट पढ़ने में लिया. उस भाषा को सीखने की कोशिश की, नहीं कर पाई. पर टूटी फूटी भाषा में मैं रवि किशन जी से बात करने की बहुत कोशिश करती थी और वो मुस्कुराते हुए जवाब भी दे देते थे.
1: तो भोजपुरी वाला जो फिल्म बनते हैं या फिर हिंदी वाला अपना जो मुंबई का फिल्म बनता है,
0: जी,
1: तो दोनों में क्या डिफरेंस आपने देखा, क्या चेंजेस है उसमें?
0: सबसे पहला डिफरेंस तो बजट का है.
1: अच्छा अच्छा.
0: हिंदी फिल्मों का बजट बहुत बड़ा होता है, लार्जर देन लाइफ उनकी कहानी रहती है, सिनेमा ज़्यादा रहते हैं, फुटेज ज़्यादा मिलती है, काम के पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं और कंपटीशन भी बहुत मिलता है. भोजपुरी फिल्मों के साथ में लोग ज़्यादातर अच्छे से बात करते हैं, आपको इज्जत और सम्मान भी बहुत देते हैं और आपकी मदद भी बहुत करते हैं. प्रोफेशनलिज्म के मामले में हिंदी सिनेमा में आपको ज़्यादा कह सकते हैं कि आपके पास में टारगेट्स अलग रहते हैं, आपको अपने आप को प्रूफ भी करना है, नए तरह के कॉस्ट्यूम्स भी बनाने हैं. और हिंदी सिनेमा जो है उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा लोगों तक है.
1: जी जी जी.
0: तो अगर मैं किसी को बताती हूँ कि मैंने भोजपुरी सिनेमा किया है तो गिने चुने लोग हैं जिन्होंने भोजपुरी फिल्में देखी हैं या सुनी हैं, तो उसमें उनको नाम बताती हूँ और फिर उनको कलाकारों का के बारे में बताती हूँ। तो भोजपुरी में कुछ ही कलाकार आज की डेट में फेमस हैं, जैसे निरहुआ हैं, रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं। आज की डेट में फिर भी बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले तक
1: तो कोई नहीं,
0: सिर्फ गिने चुने दो चार लोग थे जिनके बारे में लोग जानते थे। तो प्लेटफॉर्म बड़ा मिलता है, आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन प्यार बहुत मिलता है। अच्छा। भोजपुरी में आपको बहुत प्यार देते हैं और आपको बहुत फ्लेक्सिबल टाइम देते हैं काम करने के लिए। अच्छा। हिंदी सिनेमा में आपको हर वक्त तत्पर रहना पड़ता है,
1: बिल्कुल,
0: कि वो कभी भी कुछ भी रिक्वायरमेंट बोलेंगे। भोजपुरी वाले आपको एक स्क्रिप्ट दे देते हैं जिसके ऊपर आप काम करें, 10 दिन तक आप पढ़कर और कैरेक्टराइजेशन कीजिए, 1 महीने में कॉस्ट्यूम तैयार करके उनको पैकेट्स बना दीजिए, इस आर्टिस्ट के ये कपड़े हैं, इस सीन में ये पहनेगा, बहुत स्मूथली काम
1: रहता है। काम हो रहा है।
0: तो मुझे उसमें मजा इसलिए आया कि मैं अपने बच्चे को संभालने के दौरान भी वो फिल्में कर पा रही
1: हूं। चलिए नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही सुंदर जो है आपने अपना फिल्म सफ़र के बारे में, थिएटर के बारे में बताया। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे आप इस बार, अभी जो 3 दिन का मेडिटेशन शिविर अटेंड किया है ब्रह्म कुमारी का, उससे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करेंगे तो और अच्छा होगा।
0: जी मैं यहाँ पर आना चाहती थी बहुत समय से, लेकिन नहीं आ पाई। मेरी एक मित्र हैं दिल्ली से, थिएटर से जुड़ी हुई, संगीता मोदी, वो मुझे यहाँ लेकर आई और मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी कि मेरे लिए एक नई यात्रा है।
1: जी
0: मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलने वाली, बहुत आलसी टाइप की महिला हूँ, तो यहाँ पर आकर मैंने बहुत सारे नए लोगों से दोस्ती की, उनसे बातचीत की, बहुत समय के बाद मैंने बहुत खुलकर बातचीत की। माहौल इतना अच्छा है यहाँ का, शांति प्रिय वातावरण है, सबके चेहरे पे अच्छी सी मुस्कुराहट रहती है, बहुत पॉजिटिविटी रहती है, जिंदगी को लेकर बहुत क्या कह सकते हैं, सहिष्णुता या
1: समरसता
0: पॉजिटिविटी और बहुत प्यार। कोई आपको छोटा या नया नहीं समझता, सब आपको बराबर समझते हैं। मिलते हैं उतने ही अच्छे भाव से आपसे नमस्ते करते हैं जैसे आपसे बहुत साल पहले आए हुए लोगों से बातचीत करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर पाऊंगी,
1: बिल्कुल
0: शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं अभी भी बहुत अभिभूत हूँ यहाँ आकर। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी कम, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: जी नीलम जी, चलिए एक आध गीत जो आपका पसंदीदा है सुनाइए थोड़ा सा।
0: बहुत सारे,
1: एक कोई गीत सुनाइए।
0: मैंने आपको पहले ही बताया था कि सुरों को लेकर मैं बहुत
1: नहीं, हम लोग सुर नहीं देखेंगे, गाना सुनेंगे।
0: ठीक है, मैं गाने के बोल बताती हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए,
1: क्या बात,
0: ये मेरा बहुत प्रिय गीत है और मैं इसको हर सिचुएशन में अपने आप से जोड़ लेती हूँ। कोई भी मुश्किल आती है तो मैं इससे खुद को जोड़ लेती हूँ।
1: बहुत ही सुंदर गीत आपने याद कराया है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस गीत का आनंद लेंगे। और एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं नीलम जी को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और जो आध्यात्मिक चीज़ें उन्होंने यहाँ पर सीखा है उसे अपने लाइफ में हमेशा बनाए रखें, ऐसी शुभ आशा के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

आप सुनने जा रहे हो प्रभा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन कार्यक्रम आशियाना आपकी अपनी उषा के साथ। आज के कार्यक्रम आशियाना में कुछ इस प्रकार चलने वाले हैं। दिन की शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे से विचार के साथ, फिर आपको घरेलू नुस्खे भी देंगे, खुशनुमा जीवन में ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो नई नई व्यंजन तो आपको सिखाएंगे ही और आपको देंगे सामान्य जानकारी। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, बने रहोगे आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। चलिए एक शक्तिशाली विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आज का शक्तिशाली विचार इस प्रकार है, खुशी अनमोल औषधि है। खुशी अनमोल औषधि है। चलिए आज के विचार का विस्तार करते हैं। खुशी हर उम्र के हर वर्ग के व्यक्ति को चाहिए। आज मनुष्य खुशी को बाहरी वस्तुओं, व्यक्तियों, वैभवों, क्लबों, होटलों, पर्यटन स्थलों में ढूंढ रहा है। वास्तव में खुशी अंतर मन में छुपी हुई है, वो बाजार में मिलती नहीं। अगर संतुष्ट रहे तो खुशी गले में सजे हुए हार बरोबर है। खुशी के खत्म होने के 100 कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसके लिए सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं। खुशी को कायम रखने के लिए सदा सर्व को खुशी दे, फिर हम भी खुश रह सकते हैं। खुशी देने से खुशी मिलती है, दुख देने से दुख मिलता है। जो देंगे वही मिलेगा, यह एक नियम है। खुशी अनमोल औषधि है, यह हमारे जीवन को अनमोल बनाती है। तो ये हुआ आज का पावरफुल विचार, जिसको जरूर हम धारण करेंगे। और चलिए अब सुन लीजिए एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: सागर, रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको घरेलू नुस्खे देते हैं। अगर पित्ती उछलती हो तो आप क्या करेंगे? चलिए, इस प्रॉब्लम में आप 10 ग्राम पुदीना, 20 ग्राम गुड़, 200 ग्राम पानी में उबाल करके छान करके पिलाइए। इससे बार बार उछलने वाली पित्ती ठीक हो जाएगी। 10 ग्राम पुदीना, 20 ग्राम गुड़, 200 ग्राम पानी में उबाल करके छान कर पिलाइए। इससे बार बार उछलने वाली पित्ती ठीक हो जाएगी। अगला नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे। चने, यानी कि चने का आटा होता है ना, बेसन, बेसन से बने मोतियों का लड्डू पर काली मिर्च डालकर खाइए। इससे पित्ती ठीक हो जाएगी। बेसन के बने मोतियों के लड्डू पर काली मिर्च डाल करके खाइए, इससे भी पित्ती ठीक हो जाती है। और भी आप सुनेंगे अगला नुस्खा। पित्ती या छपाकी निकलने पर देसी घी और सेंधे नमक को मिला करके मालिश करिए, फिर कंबल ओढ़कर पसीना लीजिए, पित्ती मिट जाएगी। पित्ती या छपाकी निकलने पर देसी घी और सेंधे नमक को मिला करके मालिश करिए, फिर कंबल ओढ़कर पसीना लीजिए, पित्ती मिट जाएगी। लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे। हींग को घी में मिला करके मालिश करने से भी लाभ होता है। हींग को घी में मिला करके मालिश करिए, इससे भी लाभ होगा। इस तरह पित्ती की प्रॉब्लम में आपको राहत मिलेगी। पित्ती तो आप समझ ही गए होंगे, जिसको हम पस्तोई भी बोलते हैं, शरीर से पस्तोई निकलती है ना, तो इसको पित्ती कहते हैं। तो चलिए, ये सारे ही नुस्खे अच्छे हैं और आप इनको आजमा सकते हैं, अगर पित्ती की प्रॉब्लम हुई, पस्तोई की प्रॉब्लम हुई तो। अब सुना देते हैं आपको एक अच्छा सा गीत, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

भजरे। प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आप सोच रहे होंगे कि ये उषा दीदी बीच में ही गीत गाने लगी है, भजन गाने लगी है। तो इन दो लाइनों का अर्थ आप साथ ही साथ समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। जी हाँ, खुशनुमा जीवन में ये दो लाइनें मैंने इसलिए गुनगुनाई है कि कभी कभी लोभी इंसान जो होता है ना, कभी कभी उसके ऊपर भी कहते हैं कि सवा शेर जो मिल जाता है ना, कहते हैं कि सारा लोभ धुला रह जाता है। कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर शेर से सवा शेर मिल जाए तब पता चले कि हम कितने गहरे पानी में। इसी तरह जो लोभ लालच करता है उसको भी अगर मात देने वाला मिल जाए ना, तो उसकी हालत देखने वाली होती है। तो कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि कंजूस न खाता है न खर्च करता है, उसकी तीसरी गति होती है। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, लोभी और लालचियों का भी यही हाल होता है। बहुत लोभ करके पेट को काट काट करके पैसे जोड़ते हैं, एक पैसों का भी दान नहीं करना, और अपने परिवार को भी बहुत ही कंजूसी से चलाना, जबकि अच्छा खासा पैसा है फिर भी हर चीज में कंजूसी करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, इकोनॉमी से चलना चाहिए, बचत करिए, आप बहुत ही सावधानी से चलिए, लेकिन ये तो नहीं हुआ कि भाई हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 के 100 हम बचा सकते हैं या 100 में से 90 बचा सकते हैं। नहीं, देखिए कुछ लिमिट होती है हर चीज की। कहते हैं कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से थोड़े दान पुण्य के भी निकालने हैं, घर परिवार के खर्च के लिए भी निकालना है, तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी निकालना है और बचत के लिए भी निकालना है। 4 हिस्से होने ही चाहिए, तभी हम खुशनुमा जीवन जी पाएंगे। अगर हम 100 में से 90 रुपये बचाने की कोशिश करेंगे और 10 रुपये खर्च करेंगे, तो आप समझ सकते हो कि हमारी किस तरह हालत होती है। और फिर जब कोई ठग हमें ठग लेता है तो हम अपने किस्मत पर फिर रोना शुरू कर देते हैं कि हाय रे, ये मैंने क्या किया। तो इसी बात पर प्यारे श्रोता बंधु, एक मुझे कहानी याद आ रही जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी कि एक बार एक सेठ ने मार्ग में जाते हुए एक खजूर का पेड़ देखा जिसमें मीठी मीठी और मोटी मोटी खजूर लगी हुई थी। खजूर देख करके लाला जी के मुंह में पानी आ गया। वो सेठ कौन थे? लाला जी। लाला जी के मुंह में पानी आ गया और उन्होंने खाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। खाने की इच्छा हुई तो वो पेड़ पर चढ़ गए। खजूर खाने के बाद जो ही उतरने के लिए धरती की तरफ देखा, त्यों ही सेठ जी का शरीर कांपने लगा। आप सभी जानते होंगे कि खजूर का पेड़ कितना ऊंचा होता है। तो लाला जी ने सोचा कि यदि कहीं उतरते समय इसके नीचे गिर पड़ा तो हड्डियों का भी कहीं पता नहीं लगेगा। ऐसा विचार करते हुए वह थर थर कांप रहा था और खजूर खाने की इच्छा करने वाले अपने मन को बार बार धिक्कार रहा था। इस प्रकार सोच विचार करते हुए बहुत समय तो वहीं पर बीत गया। फिर लाला जी ने सोचा कि इस प्रकार पेड़ पर कब तक बैठा रहूंगा, इसलिए भगवान को याद किया। भगवान के सामने संकल्प रखा कि हे भगवान, अगर मैं इस पेड़ से नीचे आराम से उतर गया तो 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा, भोजन करूंगा। जब वह पेड़ पर से आधा नीचे आया, फिर उसने पेड़ से उतरना शुरू कर दिया। जब पेड़ पर से आधा नीचे आया तो फिर नीचे की तरफ देखा और सोचा, फिर कहा भगवान से कि हे भगवान, अब मैं 100 को नहीं 50 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। प्यारे श्रोता बंधु, वह सेठ जो जो पेड़ के नीचे उतरता रहा त्यों त्यों जिमाने वाले ब्राह्मणों की संख्या भी कम होती जा रही थी। अंत में जब वह आराम से पेड़ के नीचे उतर आया ना, तो उसने सोचा कि केवल 2 बिंदी ऊपर की हटानी पड़ेगी, इसलिए घर पहुंचते ही 1 ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा। ऐसा करने से न तो प्रतिज्ञा ही भंग होगी और न अधिक खर्चा ही करना पड़ेगा। यह विचार करता हुआ सेठ घर चला गया और दूसरे दिन किसी ऐसे ब्राह्मण को खोजने लगा जो कम से कम भोजन करने वाला हो। अब उसका नियम हो गया था कि कोई ब्राह्मण उसकी दुकान के आगे से निकलता, उसी के आहार के बारे में पूछता। बेचारे सरल स्वभाव
वाले ब्राह्मण जितना भोजन करते उससे कहीं अधिक कर देते थे, इस कारण से वह भोजन नहीं कराता। एक दिन एक धूर्त ने विचार किया कि क्यों न इस लालची लाला को लूट करके अपने घर का काम चलाया जाए। ये विचार करके वह तिलक लगाए और तिलक लगा दिया स्वयं के और पंडितों जैसा स्वरूप बना करके लाला की दुकान के सामने से निकला। त्यों ही सेठ जी ने उसे विद्वान ब्राह्मण समझ करके प्रणाम करते हुए कहा, पंडित जी आपकी खुराक कितनी होगी? उसने कहा, इससे तात्पर्य। सेठ जी ने कहा, पंडित जी आप तो बुरा मान गए, तात्पर्य वात्पर्य कुछ नहीं, यूं ही पूछ लिया था, क्रोध न कीजिए महाराज। लाला जी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, यजमान हम ब्राह्मण लोग शत्रु पर भी क्रोध नहीं करते, फिर आप जैसे सज्जनों पर तो अप्रसन्न ही क्यों होने लगे? भाई आप हमारे भोजन के बारे में पूछना ही चाहते हैं तो लीजिए, मैं आपके सम्मुख अपना आहार बताता हूँ। सुनिए, अधिक से अधिक आधा पाव आटा, आधी छटांग दाल और 6 मासा घी, बस इतना भोजन 24 घंटे के लिए पर्याप्त है। सो भी जितना आपको बताया है सारा नहीं, इसमें से कुछ भाग गौ के लिए और कुछ काग तथा कुत्ते के लिए निकाल दिया करता हूँ। यदि सारा भोजन कर लूंगा तो फिर वेद जी को बुला करके चूरन लेते हुए 48 घंटे पेट के दर्द में कराते हुए व्यतीत करना पड़ेगा और दक्षिणा तो हम किसी से लेते ही नहीं। इतना सुनते ही लाला जी का मन आनंद के मारे भर गया और उनका मन खिल उठा और मुस्कुराते हुए लाला जी ने कहा, पंडित जी कल आपका निमंत्रण है, सो आप घर आकर के इच्छा के अनुसार रसोई बना करके भोजन कर लेना। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आप समझिए कि लाला जी इस बात से खुश हो गए और धूर्त को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया। अब आगे क्या हुआ होगा लाला जी के साथ? क्या उस धूर्त ने कहे के अनुसार भोजन किया या फिर अभी नहीं बताऊंगी। एक गीत सुनाने के बाद आप सभी को पता चलेगा कि उस धूर्त ने लाला जी के साथ किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह भोजन खाया और किस तरह लाला जी को लूटा। तो चलिए सुन लीजिए एक गीत। गीत के बाद आप धैर्यता रखिएगा, जरूर आपको सारी बात बताएंगे, पूरी ही कहानी सुनाएंगे, लेकिन एक गीत के बाद। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: लोभ लालच से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, जब ये बात जानता है तो छोड़े क्यों न फिर। चिंता चित्ता है जो जिंदा जलाती है, चिंता चित्ता है जो जिंदा जलाती है। खुशी छीन कर शोक के घुट पिलाती है, खुशी छीन कर शोक के घुट पिलाती है। तो प्यारे श्रोता बंधु, किस सुनने से पहले आपको मैं बता रही थी कि किस तरह लोभी इंसान को कभी सवा शेर जो मिल जाता है ना, तो सचमुच उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जैसे मैंने आपको लाला जी के बारे में बताया कि लाला जी किस तरह खजूर के पेड़ पर चढ़े और खजूर खाने के लालच में चढ़ तो गए, लेकिन उतरना उनके लिए भारी हो गया। फिर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे और 100 ब्राह्मण जिमाने की मन्नत मांगी, फिर 50, फिर 25। लास्ट में जब वो नीचे उतर गए धरा पर, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को जिमाने की मन्नत पूरी करनी चाहिए कि चलो एक ब्राह्मण को जिमा देते हैं, वो भी इस तरह का कि सबसे कम खाता हो। और एक धूर्त ने सोचा कि चलो बहुत सारे ब्राह्मण को लाला जी ने पूछ लिया है, अभी इनका नहीं हो रहा है सेठ, तो चलो अब लाला जी को लूटते हैं। तो इस तरह उस धूर्त ने खाने की मात्रा बहुत कम बताई। तो चलिए और भी मैं आपको आगे बता रही हूँ कि लाला जी के साथ क्या हुआ। लाला जी ने तो निमंत्रण दे दिया, तो फिर सेठ जी क्या करते हैं, लाला जी अपने घर का पता भी दे देते हैं और लाला जी अपने घर पर आते हैं और सेठानी को कहते हैं कि कल एक पंडित जी अपने घर भोजन करने आवेंगे, सो उन्हें जिस वस्तु की इच्छा हो ना दे देना, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें अपने घर आकर किसी बात का कष्ट उठाना पड़े। सेठानी बड़ी धर्मात्मा थी, उसने लाला जी के मुख से धर्म के काम के लिए ऐसी दिल खोल कर बातें आज पहली बार ही सुनी थी, अतः उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने कहा जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन लाला जी तो दुकान पर चले गए। उसके बाद लगभग 9 बजे पंडित जी सेठ जी के घर गए और सेठानी से अपने जिमाने के बारे में पूछताछ की। तब सेठानी ने अपने हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए कहा, पंडित जी महाराज, लाला जी ने मुझसे कह दिया है, अतः आप प्रेम पूर्वक इच्छा अनुसार भोजन करिए, जो आपको चाहिए वे सभी आपकी आज्ञा अनुसार आपके पास पहुंच जाएंगे, इसलिए चौके में चल करके रसोई बनाने का कष्ट कीजिए। सेठानी की ये बात सुनकर प्रसन्नता से फूले हुए पंडित जी ने कहा, बस अभी तो केवल 10 सेर आटा, 2.5 सेर मेवा, 7.5 सेर घी और 10 सेर बूरा ला दीजिए, बुरादा ला दीजिए। जब हलवा लड्डू पूरी तैयार हो जाएगा ना, तो फिर साग मसाला पापड़ और दही मंगवा देना। पंडित जी के कहने की देर थी, सेठानी ने सब सामान मंगवा दिया। प्यारे श्रोता बंधु, इतनी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी कि पहले के जमाने में पंडित लोग अपने हाथ से बना करके खाते थे, किसी के भी घर का खाना नहीं खाते थे, वो सूखा सामान लेते थे और सूखा सामान अपने हाथों से बना करके उन्हीं ही के घर में खाते थे। तो इस तरह पंडित जी ने इतने सामान की डिमांड की। अब पंडित जी की रसोई भी तैयार हो चुकी थी, क्योंकि सेठानी जी ने सारा ही सामान भिजवा दिया था, तो पंडित जी ने रसोई तैयार कर दी थी। और फिर जब सारी रसोई तैयार हो गई ना, तो फिर पंडित जी ने क्या किया, अपने स्त्री और बाल बच्चों को सभी को बुला लिया और सभी ने मिलकर के प्रेम पूर्वक भोजन किया और जो कुछ सामान बाकी बचा उसे उनके हाथ घर पहुंचा दिया। जब ये धूर्तराज घर जाने लगा ना, भोजन करने के बाद जब ये धूर्तराज घर जाने लगा, तब उसने सेठानी जी को बुला करके कहा, सेठानी जी, भगवान आपको सदैव आनंद दे और आपको दिन दुना रात चौगुना लाभ हो, अब दक्षिणा दिलाने का और कष्ट कीजिए, सेठानी ने पूछा, पंडित जी दक्षिणा में क्या दिला दिया जाए? तो उसने कहा, लाला जी इस समय होते तो एक सोने की मोहर जरूर दे देते, अब आपकी जो इच्छा हो सो दे दीजिए। उसकी ये बात सुनकर के सेठानी ने झट से दो मोहर दे करके विदा किया। रात को जब सेठ जी घर आए तो सेठानी ने ब्रह्म भोजन का इतिहास सुनाया तो वह हाय कह करके पलंग पर गिर पड़ा। कौन? सेठ जी। इसके बाद उसने भाग्य को धिक्कारते हुए और सेठानी की मूर्खता पर दुख प्रकट करते हुए कहा, अरे पगली, तूने क्या किया जो ब्राह्मण पर इतना खर्च करके मुझे दिन दहाड़े लुटवा दिया? सेठानी ने कहा, मेरा इसमें क्या अपराध है? आप ही की तो आज्ञा थी कि उन्हें जिस वस्तु की इच्छा हो सो दे दे देना। सेठानी की ये बात सुन सेठ ने क्रोध करते हुए कहा, अरे तुझमें घर की भी फिक्र नहीं थी? मैंने ये थोड़े ही कहा था उसे 50 आदमियों का भोजन का सामान देकर उसे दो मुहर दक्षिणा में दे देना। हाय, वह तो जिस समय दुकान पर आया था आधा पाव आटा, एक छटांग दाल और 6 मासा घी मेरे भोजन के लिए अधिक से अधिक होगा और दक्षिणा लेने के लिए सर्वथा इनकार करता था। इसलिए तो मैंने उसे निमंत्रण दे करके जिमाने के लिए कहा। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, सेठानी को अब पता लगा कि लाला जी कल क्यों दिल खोल करके बातें कर रहे थे, परंतु जो कुछ होने वाला था वह तो हो गया। अब आप समझ सकते हो कि ज्यादा कंजूसी कितनी भारी पड़ती है, ज्यादा लोभ लालच कितना भारी पड़ता है। लाला जी ने भी कहां 100 ब्राह्मणों को खिलाने की बात की, फिर 50 पर आए और फिर 1 पर अटक गए, और 1 ब्राह्मण भी ऐसा कि जैसे मरियल मिले और खाने में न के बरोबर खाए। तो कहते हैं

खर्च करना है तो फिर किसी न किसी माध्यम से वो धन हमारा जाता ही है, इसलिए पेट को मत काटिए। पेट को भूखा रख करके आप अपने आप पर कंजूसी करके आप पैसा इकट्ठा करेंगे तो किसके लिए, किसके लिए करेंगे? कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सपूत है तो वो खुद बना लेगा प्रॉपर्टी, और अगर पुत्र कपूत है तो आपका जमा किया हुआ भी खो देगा। इसलिए आप अपने वर्तमान को सुधारिए, भविष्य की चिंता मत करिए। थोड़ा सा बचाना जरूरी है, वो आप समझदारी से चलिए, लेकिन अपने पेट को आंटी दे करके, मतलब कहते हैं कि लिमिट से ज्यादा कंजूसी करके अगर आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो फिर तनाव तो बना रहेगा ना, दुख ही दुख होगा, खुशियों का तो नामो निशानी नहीं रहेगा, क्योंकि परिवार दुखी तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। और जब हम भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखते हुए आराम से जीवन जिए और जो हम कमा रहे हैं अच्छी तरह उसका खर्चा करें, परिवार को खुश रखें, तो सचमुच परिवार खुश तो स्वयं भी खुश, और इस तरह खुशियां बनी रहेगी। तो चलिए अब सुन लीजिए फिर से एक प्यारा सा गीत, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में आप सभी का वेलकम है। आइए आज बनाएंगे आशियाना के किचन में तल साकड़ी। तो चलिए, तल साकड़ी के लिए सामग्री इस प्रकार है, वैसे तो बहुत कम है फिर भी लिख लेना अच्छी बात है। तो 500 ग्राम तिल ले लीजिएगा, ठीक है, 500 ग्राम लेना है तिल। फिर आप 350 ग्राम ले लीजिए गुड़, ठीक है, और घी ले लीजिए 1 चम्मच। बस इतनी सी सामग्री है जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। 500 ग्राम तिल लेना है और 350 ग्राम ले लीजिएगा गुड़ और घी ले लीजिए 1 चम्मच। बस तो अब चलिए कैसे बनाते हैं वो भी आपको सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, तिल को सेक लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा लाल हो जाए ना तब तक आप तिल को सेकिए, हिलाते रहिएगा। एक अगर हिलाएंगे नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं तिल की क्या कंडीशन होगी, इसलिए हिलाते हुए सेकिए। हल्के लाल कलर के हो जाए बस, फिर आप तिल को एक बर्तन में निकाल दीजिए। फिर डालिएगा गुड़, गुड़ का पाया बनाइए, ठीक है। गुड़ भी हल्का लाल कलर का हो जाए, आपको लगे कि गुड़ अच्छी तरह पिघल गया है और हल्का सा लाल हो गया है, तो फिर उसमें आप डाल दीजिए तिल। तिल डाल करके गैस बंद कर दीजिए और अच्छी तरह दोनों को मिक्स कर दीजिए, तिल और गुड़ को। फिर जो घी लिया है वो घी आप लगाइए एक थाली में। थाली में घी लगा करके जो हमने तिल और गुड़ का पाया तैयार किया है, इसको आप इस मिश्रण को डाल दीजिए एक थाली में, जिसमें अपने हमने घी लगाया है उस थाली में आप डाल दीजिए और कटोरी की मदद से अच्छी तरह चारों तरफ फैला दीजिए, ठीक है। तो इस तरह फैला दिया है, फिर थोड़े से ठंडे हो जाए तो उसको आप चाकू की मदद से काट लीजिए, चिक्की की तरह काटना है। तो इस तरह तिल साकड़ी हमारी तैयार है। आप चाहे तो बेलन से बेल भी सकते हैं, पर बेलन से बेलने के लिए हमको दोनों को थोड़ा और डार्क करना पड़ेगा, तिल को थोड़ा सा ज्यादा डार्क करना पड़ेगा और गुड़ को भी ज्यादा डार्क करना पड़ेगा, तभी आप बेलोगे ना तो वो कड़क हो पाएंगे। और अगर थोड़ा सा लाइट सेकोगे तो इस तरह आप थाली के अंदर जमा दीजिए, फिर चाकू से काट दीजिए और ठंडा होने के बाद आप सारे पीस को निकाल करके एक डिब्बे में भर दीजिए। तो इस तरह तिल साकड़ी बनाई जाती है। चलिए, तिल साकड़ी तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसी तरह की एक और अच्छी सी आपको रेसिपी सिखाने वाली हूँ, लेकिन एक गीत के बाद। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत। आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में गीत सुनाने से पहले आपको सिखा रहे थे तिल साकड़ी। आइए अब बनाते हैं तिल के पापड़। ठीक है, तिल के पापड़ भी बहुत ही इजी है। आप तिल के पापड़ में बस शक्कर चाहिए, तिल चाहिए और बस कुछ भी नहीं चाहिए। शक्कर और तिल, ये दो चीजें चाहिए। अब इसमें आप क्या करेंगे कि कितना लेना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि शक्कर आप जैसे कि दो छोटे चम्मच शक्कर लेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर दो छोटे चम्मच ही तिल लेना है, तो बराबर मात्रा चाहिए। 500 ग्राम तिल तो 500 ग्राम ही शक्कर ले लीजिए, ठीक है। तो सामग्री खाली दो है, तो साथ ही साथ मैं आपको पापड़ कैसे बेलना है वो भी बता रही हूँ। आप क्या करेंगे, गैस चालू करके कढ़ाई को रखिए और दो छोटे चम्मच शक्कर डाल करके चम्मच से हिलाइए। शक्कर अच्छी पिघल जाए, अच्छी तरह पिघल जाए, हल्की सी लाल कलर की हो जाए, हल्की सी, ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर आपके पापड़ डार्क बन जाएंगे। इसलिए हल्के से लाल कलर की हो जाए फिर आप तिल डाल दीजिए। इसमें कच्चे तिल डालना है, सेकना नहीं है, ठीक है। तो कच्चे तिल डाल दीजिए और अच्छी तरह उसको हिला दीजिए। जब शक्कर और तिल एकदम मिक्स हो जाए तो बस आप गरम गरम को आपके प्लेटफॉर्म पर ही डालिए, ठीक है। प्लेटफॉर्म को एकदम स्वच्छ और साफ आप पोंछ लीजिए और पोंछ करके वहाँ पे घी लगा दीजिए। घी लगा करके आप इस तरह जो हमने पाया तैयार किया है ना तिल और शक्कर का, वो आप नीचे डाल दीजिए और उसको दोनों हाथों से गोल गोल घुमाइए। लुआ तैयार होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा गर्म है तो हाथ जलेगा, तो रह के घुमाइए, एक साथ में नहीं घुमाना है। फिर आप जब वो गोल गोल लुआ की तरह तैयार हो जाए बस फिर आप बेलन से बेलिए। पहले थोड़ा धीरे धीरे बेलिए क्योंकि गर्म ज्यादा है ना, तो एकदम जोर लगाओगे तो बेलन के भी चिपकेगा और पापड़ टूट जाएगा। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आप पहले तो बेलन चलाइए, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि अब हमारा ये जो लोहा है थोड़ा सा बढ़ गया है और ठंडा हो गया है थोड़ा सा, तो फिर आप जोर लगा करके फटाफट फटाफट बेलते जाइए। आप चारों तरफ घूम जाइए अगर लोहा नहीं घूमता है तो, और बस जब उसकी कैपेसिटी होगी तब तक वो बढ़ेगा। फिर एकदम ठंडा हो जाएगा तो फिर आप उसको नहीं बेल पाओगे, फिर तो वो टूट जाएगा। इसलिए गरम गरम को इस तरह बेल लीजिए, फिर आप पापड़ को रख दीजिए थाली में, फिर दूसरा पापड़ भी इसी तरह तैयार कर लीजिए। इसमें आप इकट्ठे पापड़ तैयार नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कि साथ में ही आपने पाया कर दिया और साथ में बनाने जाओगे तो एक पापड़ दो पापड़ तो बना दोगे, बाद में वो ठंडे हो जाएंगे तो फिर आप बना नहीं पाओगे। इसलिए एक एक पापड़ का ही आप इस तरह पाया तैयार करिए और एक एक पापड़ को बनाइए। बहुत ही पतले और सॉफ्ट बनते हैं ये पापड़ और आप आराम से, मतलब बाजार से भी नहीं खरीदना पड़ेगा, नहीं तो बाजार से खरीदते हैं तो चिपचिपे भी होते हैं और ज़्यादा मीठे होते हैं, तो किसी को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं होता है, और घर पे तो हम अपने इच्छा के अनुसार बना सकते हैं। तो चलिए, तिल सांकड़ी भी तैयार है और पापड़ भी हमारे तैयार है, तो लीजिए एक स्वच्छ थाली। थाली में आप पापड़ रखिए, तिल सांकड़ी रखिए और तुलसी पत्र भी रखिए, जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए और आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। देखिए, अगर इस तरह की चीजें आप बना करके रखते हैं तो 15-20 दिन महीने भर कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जब चाहे तब आप नाश्ता कर सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी भर सकते हैं, कभी भी जब इच्छा हो जाए तब भी हम बना करके खा सकते हैं। तो चलिए, अब भले आप भोग लग गया है तो आराम से अब आनंद लीजिए तिल सांकड़ी और तिल के पापड़ का, और साथ ही साथ सुनिएगा एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। बीमारियों में कारगर मिट्टी चिकित्सा, कई बीमारियों में कारगर मिट्टी चिकित्सा। मिट्टी के द्वारा हम किस तरह चिकित्सा कर सकते हैं, कितनी ही बीमारियों में कारगर सिद्ध हो चुकी है मिट्टी, तो आइए इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। मिट्टी में सर्वाधिक अवशोषण क्षमता होने के कारण मिट्टी प्रबल कीटाणुनाशक है। मिट्टी में विशेष प्रकार का सूक्ष्म जीवाणु एक्टिनोमाइसिटेस पाया जाता है, जिसका आचरण प्रतिरक्षी जीवों की तरह होता है और इस बैक्टीरिया की गति सर्वाधिक होती है। मिट्टी में इस जीवाणु की अधिकता इसकी गुणवत्ता को बढ़ाती है। जब मिट्टी में पानी डाला जाता है ना, तो इस जीवाणु की गति 20 गुना बढ़ जाती है। मिट्टी चिकित्सा पद्धति में साफ व 12 घंटे भीगी हुई मिट्टी का प्रयोग भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है, जैसे कि सूजन। शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की सूजन आ गई है तो उस जगह मोटी मिट्टी की पट्टी 25 मिनट लगा करके सूजन को तेजी से कम किया जा सकता है। यदि सूजन शरीर के अंदरूनी हिस्सों जैसे अल्सर, लीवर, लीवर ऑफ सिरोसिस, प्लीहा वृद्धि, यकृत वृद्धि है, तो सुबह व शाम दो बार मिट्टी पट्टी का प्रयोग बेहद लाभकारी है। गांठ या फिर रसोली, इसमें शरीर के किसी भी हिस्से में अगर अंदर की गांठ हो, खास करके स्तन, बच्चेदानी, मलद्वार, पेट वगैरह वगैरह में, तो पहले आप गर्म सेक देकर के 1 इंच मोटी चिकनी मिट्टी की पट्टी 30 से 45 मिनट तक सुबह शाम रखिए। गांठ स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगेगी। कैंसर गांठ में भी यह प्रभावी है। कब्ज, पेट रोग, कब्ज, एसिडिटी, अपच, कोलाइटिस, गैस्ट्रिक रोग हो, उस स्थिति में पहले पेट का गर्म सेक देकर के तुरंत 1 इंच मोटी मिट्टी की पट्टी रखने से अंदर जमा मल उखड़ने लगता है और आंतों को बहुत आराम मिलता है। आंखों के रोग, ब्लाइंडनेस, आंखों का विजन कमजोर, रेटिना कमजोर, धुंधलापन वगैरह वगैरह, इन सभी रोगों में आंख पर सीधी मिट्टी रखने से आंखों को आराम मिलता है। माइग्रेन या सिर दर्द होने पर भी आंखों को आराम मिलता है। मिट्टी चिकित्सा का प्रयोग करते समय ध्यान रखना है कि मिट्टी साफ गहरे गड्ढे से ली गई हो। मिट्टी को प्रयोग में लाने से पहले 10-12 दिन धूप में अच्छी तरह सुखा लीजिए। विशेषज्ञ की निगरानी में ही इसका उपयोग करना है, तो इस तरह मिट्टी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है अगर हम सावधानी से यूज करते हैं तो। चलिए, ये तो हुई मिट्टी के लिए जानकारी, और मिट्टी तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि किस तरह की मिट्टी लेनी है। तो अब आपको सुनाते हैं एक गीत, क्योंकि समय हो चुका है गीत सुनाने का। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।

0: चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहें, सुनाते रहें, जन जन तक प्यार बरसाते रहें।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, चलिए जानने योग्य बात आपको बता रहे हैं। पसीना बताएगा सेहत का हाल। हेल्थ एक्सपर्ट ने एक डिवाइस बनाया है जिसे कलाई में पहना जा सकता है। इस डिवाइस में ऐसे सेंसर है जो हमारे शरीर के पसीने का विश्लेषण करके किसी बीमारी के बारे में बता सकते हैं। दिल की धड़कन व अन्य जानकारियां देने वाले तो कई रिस्ट बैंड थे, लेकिन पसीने के विश्लेषण से बीमारी का पता लगाने वाला यह पहला रिस्ट बैंड होगा। इससे बीमारियों का पता आरंभिक अवस्था में लगा सकेंगे। अब मैं आपको आज के अनमोल वचन सुनाना चाहूंगी। आज के अनमोल वचन इस प्रकार है, आपकी एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। अब प्यारे श्रोता बंधुओं, मैं अपना स्वरचित भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, क्षमा गणी सा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन। आनी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा, हो आनी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा, कर जा रे कर जा, नी तर मर जा रे मर जा, आनी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी कैयन आयो हाथे, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी कैयन आयो हाथे, अरे अंत समय आयो जब थाने यमदूत मारे लाते, आनी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा, कर जा रे कर जा, नी तर मर जा रे मर जा, आनी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। थारी मारी कर कर के या जिंदगी सारी खोई, थारी मारी कर कर के या जिंदगी सारी खोई, अर इस जीवन में सब ही पराया अपना है ना कोई, अणी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा, कर जा रे कर जा, नी तर मर जा रे मर जा, अणी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। चार दिनों की जिंदगानी में कर ले आछो काम, चार दिनों की जिंदगानी में कर ले आछो काम, हाथों से कर ले काम, मुख से भज ले प्रभु का नाम, अणी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा, कर जा रे कर जा, नी तर मर जा रे मर जा, अणी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा, हो अणी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर।

0: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी से प्यार वैसे तो सभी को होता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जब हम वो प्यार करना भूल जाते हैं और हमें एहसास कराना पड़ता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और समझ लीजिए, लव यू जिंदगी ऐसा कार्यक्रम ही नहीं, ऐसा मौका भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, अपने इमोशंस को पढ़ेंगे, खुद को बेहतर जानेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं कल्पना जी का, जो कि ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, आप स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, और आप अनेक एपिसोड्स के माध्यम से हमें गाइड करते रहते हैं। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आरुषि जी, बहुत अच्छा लग रहा है फिर से एक बार श्रोताओं से रूबरू होते हुए। हम जो कुछ भी लाइफ में सीखते हैं, जब उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो जो खुशी मिलती है, संतोष मिलता है, वही वो चीजें हैं जो हमें अपने रेडियो के श्रोताओं से जोड़े रखती हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट त्रिनिधि जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी हैं। त्रिनिधि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार आरुषि जी, कल्पना जी नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है लव यू जिंदगी के और एपिसोड में वापस जुड़ के। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितना हमारे श्रोता मित्रों को हर एपिसोड में कुछ नया सुनने और समझने को मिलता है, इस एपिसोड में मुझे भी कुछ नया सुनने और समझने को मिलेगा, और इसलिए खुशी होती है हर बार इस कार्यक्रम
1: जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में बातचीत की थी इमोशनल अवेयरनेस के बारे में,

0: रेटिंग सिस्टम के बारे में आपने बताया था कल्पना जी, किस प्रकार से हम अपने इमोशंस को रेट करते हैं, कि हम 2 पे हैं, कि 5 पे हैं, कि 8 पे हैं। हम जो बातचीत कर रहे थे उसके आखिर तक हम एक क्वेश्चन पे आके रुके थे कि अगर मान लीजिए जेलसी है, या मुझे कोई ऐसी चीज है जो पसंद नहीं आ रही है, या मुझे ऐसा लग रहा है ये क्यों मुझसे आगे बढ़ गया, या मैं कहाँ रह गई, वो कंपैरिजन आ जा रहा है, उसको रेट करने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब मुझे पता है मैं जेलस हूँ, या फिर कभी कभी मैं अवेयर नहीं हूँ कि मैं जेलस, सामने वाला ही गलत लग रहा है, तो इसको रेटिंग करने से क्या मदद मिलती है, या डील कैसे किया जाता है, कुछ इस बारे में अगर आप कंटिन्यू करें।
1: जी बिल्कुल, जब आपके अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशंस होती है, चाहे वो खुद के लिए हो चाहे किसी और के लिए, जब उसकी इंटेंसिटी को हम पहचानते हैं, जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार आया है, तो डॉक्टर पहले आपका बुखार नापते हैं कि कितना है भाई, 98 है, 100 है, 101 है, 102 है, जिस हिसाब से आपका बुखार है उसकी इंटेंसिटी उस तरह से पहचानी जाती है। उसी तरह से कोई भी नेगेटिव इमोशन जो मेरे प्रति क्रिएट होता है, जो दूसरे के प्रति क्रिएट होता है, जब उसकी इंटेंसिटी का पता चलता है, तब हम उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे उसे कम करना है, किस लेवल से कहां तक ले आना है, ये समझ हमें डेवलप होती है। तो इसलिए इंटेंसिटी का जानना जरूरी है। दूसरी बात, नेगेटिव इमोशन चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो दूसरे के लिए हो, नुकसान ही करता है, उसका हमें फायदा होता ही नहीं। तो ऐसे इमोशंस क्रिएट करने की बजाय अगर हम उन्हें रिप्लेस करें, नेगेटिव इमोशंस को रिप्लेस करें, जैसे हम हमेशा कहते आए हैं कि एंगर, हमें गुस्सा आता है, हम एक्सप्रेस करते हैं बोल के, चिल्ला के, डांट के, किसी भी तरह से, उसकी भी एक इंटेंसिटी होती है। बट अगर एंगर को हमें रिप्लेस करना है तो किससे कर सकते हैं कि हमारा पर्पस भी फुलफिल हो, जिस बात के लिए हम गुस्सा कर रहे हैं वो बात दूसरों की समझ में भी आ जाए, लेकिन हमें गुस्सा भी नहीं करना पड़े। तो हमने कई बार इस इमोशनल एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा की है, जिसे हम असर्टिवनेस कहते हैं, कि अपनी बात खुलकर स्पष्ट रीति से कहे भी, लेकिन बिना विचलित हुए, बिना गुस्सा किए, बिना अग्रेशन के, शांत भाव से वो बात जैसी है वैसी कहेगी। सो उसको असर्टिवनेस कहते हैं। तो यह बात आती है, इंटेंसिटी इसलिए जानना है क्योंकि हमें उसे रिप्लेस करना।
0: ओके, दैट्स वंडरफुल। और ये जो आपने एग्जांपल दिया बुखार का, सच में हम वहां तो नापते हैं, लेकिन मन में वो नापतोल करना है ये तो आइडिया ही नहीं आता, कि हमको ये आंकना भी है कि क्या लेवल है उस गुस्से का या जेलसी का, और उससे डील करने में फर्क पड़ता है आपने जैसा बताया। श्रीनिधि जी, या मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, या कुछ ऐसा इमोशंस को ऑब्जर्व करके कोई रिप्लेसमेंट किया है?
2: सबसे पहले तो कल्पना जी ने जो बात कही, मैं समझता हूँ ये हमें से लगभग ज्यादातर लोग कर पाने में सक्षम होते हैं, सिर्फ हमें वो पैमाना नहीं मिलता, अगर वो मापदंड मिल जाता है, स्केल मिल जाता है, तो हम अपने आप को स्केल पे नापने में सक्षम है।
0: ओके।
2: और सिर्फ छोटे बच्चे ही होते हैं शायद कोई ऐसी समझ में ना आए, मगर ज्यादातर एडल्ट्स जो होते हैं या टीनेजर्स भी अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से ऑन स्केल प्रेजेंट कर सकते हैं। आम बातचीत में जो इतनी ज्यादा समझ नहीं भी रखता हो, वो भी व्यक्ति अक्सर अपने इमोशनल स्टेट के बारे में बता देता है, खासकर ऐसे समय पर जब हम नेगेटिव इमोशंस से जूझ रहे हैं या उन इमोशंस के कब्जे में हैं, तो अक्सर सिंपल सा क्वेश्चन ये बात कही जाती है, तो लोग आके बोलते आज मेरा मूड खराब है, मेरे कुछ मत बोलो, आज ये लोग कुछ कहते हुए नजर आते हैं। कभी कभार लोग बोलते हैं आज मेरा मूड बहुत ही खराब है, मेरे से बिल्कुल बात मत करो, ये भी चीज सुनता है लोग बोलते हैं। जैसे चिड़चिड़ापन है, चिड़चिड़ापन में इरिटेशन देखने को मिलता है, और उससे थोड़े और लेवल पे लोग थोड़ा गुस्सा करते हैं, आंखों से दिखाते हैं या चेहरे पे लोग गुस्सा नजर आता है, फिर उससे थोड़ा और गुस्सा होता है तो व्यक्ति गुस्सा मुंह से बोलना शुरू करते हैं, नाक नाक बोलना लगना या फिर ऊंची आवाज में बोलना, ये सारी चीजें देखते हैं। इसी के एक और लेवल पे अगर हम देखते हैं तो व्यक्ति हाथ पैर चलाने लग जाए, उससे एक और लेवल। तो मैं समझता हूँ ये रेटिंग्स हम सभी स्वाभाविक रीति से लोगों में देखते हैं, इनका पारा कितना चढ़ा हुआ है, टेम्परेचर नापा जा सकता है। लोग कहते भी हैं उदासी के लिए भी आज थोड़ा मन ठीक नहीं है, ये बहुत ही बेसिक लेवल है, उसके बाद में नहीं थोड़ा मैं उदास फील कर रहा हूँ। तो कभी कभार तो लोग बिल्कुल ही चेहरे पे वो शक्ल पे नजर आने लगती है, सामने वाला पूछ लेता है कि आज ठीक नहीं लग रहे हो, उदास उदास से लग रहे हो, मायूस लग रहे हो, क्या बात है। कभी कभार लोग सामने से बोल देते हैं कि आज मैं बहुत उदास हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा किसी चीज में। तो ये भी लोग कहते हैं और ये कहने का जरिया हमने खुद तय किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो स्केल नहीं है। नेचुरली कल्पना जी बेहतर बता सकती कि वो अपने प्रैक्टिस में क्या चीजों को देखते हैं, लोग जब अपने स्केल में कहाँ अपने आप को स्केल पे फिट करते हैं। बट स्वाभाविक रीति से भी हम एक स्केल को जानते हैं और अपने शब्दों में हम अलग अलग तरीके से उन्हीं फीलिंग्स को कम, थोड़ा बीच में, थोड़ा ज्यादा और एकदम एक्सट्रीम पे हम ये रीड करना चाहते हैं। हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं तभी भी, और हम सामने वाले के भी भाव से, हाव से, उनके हाव भाव से इन चीजों को माप लेते हैं या आप लेते हैं, ऐसा कहना स्वाभाविक है। और जब रिप्लेसमेंट करने की बात कल्पना जी कह रहे थे, तो ये रिप्लेसमेंट कभी व्यक्ति खुद करता है, कभी कभार वो दूसरों से मदद लेता है। और मैं समझता हूँ कई मामलों में मैंने अपने दोस्तों से मदद ली है, जब मेरा मूड खराब है या फिर मैं उदास महसूस कर रहा हूँ या आज मन नहीं लग रहा है, तो मैंने अक्सर ये चीजें कही है मेरे आस पास रहने वाले लोगों से, मेरा मन नहीं लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है या थोड़ा बेचैनी सी हो रही है। अब ये चीजें जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो सामने वाले आपके मूड को बेहतर करने के लिए प्रयास करते हैं, वो कुछ आपको पॉजिटिव सुनाए, बेचैनी हो रही है तो वो आपको कुछ रीअश्योरेंस देंगे, अगर आप चिंतित हैं तो फिर वो आपको चिंता का कारण पूछेंगे और उसे निवारण करने का प्रयास करेंगे। और कभी कभार हम स्वयं भी अपने आप को ये चीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भाई रेलवे स्टेशन पहुंचना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, हो सकता है आप ट्रेन मिस कर जाएं, तो आपके मन में बेचैनी है और उस समय पर आप एंग्शियस हो जाते हैं। मगर ऐसे समय पर जब आप देख रहे हैं कि मैं अंदर से बेचैन हो रहा हूँ, तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ, और मैंने अनेकों बार ये चीज की है, मैंने अपने आप को याद दिलाया, देखो ट्रेन तो मैं पकड़ ही लूंगा, चाहे दौड़ के पकड़ना पड़े पकड़ लें। और मन फिर से कुछ चीज कहता है नहीं पकड़ा तो, फिर मैं अपने मन को समझाता हूँ कोई बात नहीं, अगर नहीं पकड़ना होगा तो पकड़ेंगे,
0: जैसे क्वेश्चन आंसर, एक डिस्कशन चल रहा है मन के साथ,
2: मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उस क्वेश्चन के लिए, कुछ और आंसर दे रहा हूँ, फिर एक प्रश्न आ रहा है उसके लिए
0: रीशोर कर रहे हैं उसे,
2: उस एंजाइटी को रीअश्योरेंस के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं श्योर कि हाँ मैं पकड़ ही लूंगा, कोई बात, हो सकता है आज ट्रेन लेट हुई हो सकता है मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। अनेक ऐसी चीजें हैं जो आप पॉजिटिव रीअफर्मेशन के रूप में अपने आप को ये रीअश्योरेंस दे सकते हैं, तो एंजाइटी के लिए रिप्लेसमेंट मैं दे रहा हूँ,
0: ऐसे और भी चीजें,
2: ऐसे अनेक चीजें हैं जिसके लिए आप चीजें कर सकते हैं। अक्सर एक और चीज जो मैंने अक्सर ये चीज अपने आप के लिए कहा है, कभी आपको प्यार की महसूसता कम होती है, आपको लगता है कि कोई प्यार कम करता है आपसे, या आज आपको ऐसा महसूस कर रहा है क्योंकि कोई मेरे प्यार से बात करे, यार सुबह से मतलब लोगों ने मेरे को परेशान किया हुआ है, प्यार से बात ही नहीं करते हैं लोग, तब उस समय पर मैंने अपने आप को याद दिलाया मैं दूसरों से प्यार की अपेक्षा क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैंने अपने आप को कहा है, मैंने अपने आप को ये भी समझाया है कि मैं प्यार लेने वालों में से नहीं हूँ, प्यार देने वालों में मैं दाता हूँ, मेरे पास प्यार का भंडार है, मैं प्रेम से भरपूर हूँ, ये मैंने अपने आप को याद दिलाया है। बहुत बार मैंने अपने आप को याद दिलाया है कि मैं प्यार के सागर की संतान हूँ, परमात्मा भगवान प्यार का सागर है जिसके लिए हम गाना गाते हैं कि प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर मेरे पास है, मैं दूसरों से क्यों अपनी प्यास बुझाऊं। तो अनेक ऐसी चीजें अपने आप को कहने से भी वो चीज आपका जो हाव भाव है, जो आपका फीवर चढ़ा हुआ है, नीचे उतर जाता
0: है। कितना फर्क पड़ता है खुद से बात करने से, और जिसको सेल्फ लव पे भी हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, बातचीत की है। कल्पना जी, मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे लास्ट एपिसोड में भी आपने कहा था कि हम इमोशन को आइडेंटिफाई कभी कभी गलत करते हैं, मतलब वो प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन है या कोई और चीज है, तो वो राइट आइडेंटिफाई कैसे करें। बहुत बार प्यार को लेके ही कंफ्यूजन होता है, नहीं है, जब लोग अपने पार्टनर चूज करते हैं तब भी बहुत कंफ्यूजन होता है, कॉलेज में भी कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है, तो वो राइट इमोशन को आइडेंटिफाई कैसे करें, खासतौर से अगर प्यार की बात हो।
1: बिल्कुल, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 10-12 साल की उम्र से लेकर 20-25 साल की उम्र तक, प्यार वाला ये इमोशन हमारी लाइफ में एंटर होने लगता है।

0: है तो बॉय के प्रति, बॉय है तो गर्ल के प्रति आकर्षित होने के कई कारण होते हैं। जैसे कि कोई पढ़ाई में अच्छा है तो मुझे अच्छा लगने लगता है, जिसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटीज है, जैसे कोई गाने वाला है, कोई म्यूजिशियन है, उसको अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने आते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करता है तो मुझे अच्छा लगने लगता है और मैं समझती हूँ वो प्यार है। मतलब जनरली जब बड़े होते हुए बच्चे समझते हैं कि वो प्यार, तो वो अच्छा लगना कोई और प्यार होना, इसमें अंतर है। हमें फिल्मों के एक्टर्स भी अच्छे लगते हैं जो रोल प्ले करते हैं, हम कहते हैं हम उनके फैंस हैं। क्रिकेटर्स
1: बिल्कुल।
0: भी हमें जो अच्छे लगते हैं हम कहते हैं हम उनके पीछे पागल है। हाँ, अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो ये जब इतने सारे खिलाड़ी हैं उनके प्रति भी हमें बहुत ज्यादा आकर्षण होती है, तो हम कहते हैं हम उनके फैन हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हमें उनसे प्यार है, पर कई बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है इस भावना को, कहा जाता है हम प्यार करते हैं। तो बड़े होते बच्चों में आकर्षण, अट्रैक्शन और प्यार, ये चीज ना समझ में आने के कारण वो जैसे लोग आजकल फेसबुक पर मिलते हैं या किसी सोशल मीडिया पर मिलते हैं, हेलो हाय हो जाती है, कभी कभी फेक प्रोफाइल से भी बात करते हैं और बातें करते करके उनकी बातें अच्छी लगने लगती हैं। वो जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को वो वैलिडेट कर रहे हैं, उससे वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमें उनसे प्यार हो गया ऐसा हम समझते हैं। कई बार उस व्यक्ति को देखा भी नहीं हुआ। तो मैं किस्सा सुनाना चाहूंगी कि कैसे बढ़ती उम्र के बच्चों को प्यार, आकर्षण और भुलावे में अंतर समझ में नहीं आता है। तो एक 15-16 साल की कन्या थी, कुमारी थी, और गुजरात के एक गांव में रहती थी। उसे अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कनेक्ट होते होते एक व्यक्ति से पहचान हुई, जिसका XYZ नाम था, जिसने बताया कि मेरी ये उम्र है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं से मत बातचीत में उनका सिलसिला आगे बढ़ता नहीं। तो जब भी कभी वो उससे बात करती वो बिल्कुल फ्री होके उसकी बातें सुनता, उसकी इमोशंस को समझता। कभी भी उसका कोई मूड खराब है या लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी से, शेयर करो तो वो ध्यान से सुनता और उसको और भी ज्यादा अच्छी तरह गाइड कर। तो उसने उसको धीरे धीरे अपना सपोर्ट सिस्टम समझना शुरू किया और घर वाले, परिवार, भाई बहन, माता पिता से ज्यादा वो व्यक्ति उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, जो ऑनलाइन दूर कहाँ बैठा है पता नहीं, ऑनलाइन वो सिंपथी या एम्पथी उसको दिखा रहा है। वो उससे कहा उसने कि मुझे प्यार हो गया। अब माँ बाप को चिंता हो गई कि ये किससे प्यार कर रही है। सो चलो ठीक है, माँ बाप ने कहा मिलाओ उससे, कहाँ है हम मिलते। तो उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं आती हूँ तुम्हें मिलने के लिए। तो उस धीरे धीरे बात करना कम कर दिया और फिर उसको एक दिन बुलाया भी। और यही नहीं, वो सामने वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को इतना मजबूर कर दिया कि रिचार्ज करना उसका, उसके खर्चे उठाना, इसके लिए भी ये लड़की तैयार होने लगी और वो करने लगी। एक जगह उसने बुलाया मिलने के लिए, वो गई वहां मिलने के लिए, लेकिन वो वहां नहीं आया, बहाना बना दिया और ऐसे ही उसको मैनिपुलेट करता गया। आखिर में वो लड़की की मानसिक अवस्था इतनी खराब हो गई, इतना डिप्रेशन में चली गई, उसने पढ़ाई छोड़ दी और आखिर उसको रिहैब में डालना पड़ा। सो, हम अपने इमोशंस के साथ बहते हुए कहाँ तक पहुंच रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को कोई किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये समझ में नहीं आता है। इसीलिए लव, प्यार, हमारे प्रोग्राम का भी नाम है लव यू जिंदगी। जिंदगी से भी प्यार होता है, उस प्यार की भावना को समझना बहुत ज्यादा जरूरी।
1: फीलिंग को आपने जैसे कहा आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बहुत जो रिपरकशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। श्रीनिधि जी, यहाँ मैं आपकी भी ओपिनियन जानना चाहूँगी। एट सच यंग एज, मतलब इतनी कम उम्र में, जब हम सब कुछ सीख ही रहे होते हैं, जिंदगी को जान ही रहे होते हैं, दुनिया हमने पूरी देखी भी नहीं है, उस समय कैसे आइडेंटिफाई करें और क्या फ्रेंड्स की हेल्प लें या फिर खुद से ही जो समझ में आ रहा है समझ लें, रीच आउट करें, क्या लगता है आपको?
2: इसमें दो चीजें हैं आरुषि जी। सबसे पहले तो ये है कि जब हम ऐसे किसी सिचुएशन में होते हैं जब हम अपने इमोशंस को नहीं रीड कर पाते या समझ नहीं पाते या हम समझते तो हैं मगर

0: सिचुएशंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये होता है, स्वाभाविक है कि हम अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप छोटे बच्चे हैं तभी आप स्ट्रगल करेंगे, आप युवा होते हुए स्ट्रगल कर सकते हैं, टीनेजर होते हुए स्ट्रगल कर सकते हैं, आप उम्र के बेहतर पड़ाव पे पहुंचकर नौकरी विक्री करने के बाद भी आप स्ट्रगल कर सकते हैं। यहाँ तक भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अधेड़ उम्र में मिड लाइफ क्राइसिस के रूप में आप इन इमोशंस से स्ट्रगल कर सकते हैं, और कभी कभार बुढ़ापे में भी, इनफैक्ट जब आप लाइफ के किसी ट्रांजिशन से गुजर रहे होते हैं तब भी आप इन चीजों से स्ट्रगल कर सकते हैं। तो पहले तो ये मान लेना चाहिए कि हाँ, इमोशंस को कई बार प्रोसेस करना आसान नहीं होता या हम सक्षम नहीं होते उस घड़ी। इसमें आपकी गलती नहीं है, इस समय पर किसी दूसरे इंसान की गलती नहीं है, बस वो है, ये सच्चाई है, ऐसा होता है। बिल्कुल वैसा ही है कि किसी को किसी चीज का इन्फेक्शन हो जाना शरीर में, वो स्वाभाविक है, मतलब वो हो सकता है। आप लाख अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें मगर फिर भी अगर कोई वायरस कहीं से अटैक करता है या कोई महामारी जैसी चीज है या कोई ऐसी चीज है वो आपको अटैक कर सकती है। और ये चीजें हमारे इमोशंस के साथ भी होता है, जैसे हम फिजिकल हेल्थ में इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाते हैं कभी कभार, ऐसे ही हमारे मेंटल हेल्थ में भी ये चीजें हो सकती हैं, भावनात्मक रीति से इसी चीज को सहन कर सकते हैं। तो ये मान लेने से क्या होता है कि हम ये भी समझने लग जाएंगे कि अगला हिस्सा इसका ये है कि जब आप सक्षम नहीं हैं उस चीज को प्रोसेस करने में आप मदद लेंगे। और सबसे पहले मदद की जब बात की जाती है हम अपने स्वजनों से मदद लेते हैं, और हमारे युवा साथियों के लिए मैं समझता हूँ ये युवाओं की उम्र के साथ की बात है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे हमउम्र लोग हमें बेहतर समझ सकते हैं और इसी वजह से हम अपने दोस्तों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और टीनेज में आप देखेंगे कि जैसे आप टीनेजर्स में थोड़े आगे बढ़ते हैं, जब आप 16 17 18 साल के होने लगते हैं आप ज्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिताना पसंद करते हैं। लोगों का कॉलेज स्कूल जल्दी खत्म हो भी जाता है तो जल्दी घर नहीं आते, वो ज्यादा टाइम दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो मेरे जैसे ही हैं, उनके भी इमोशंस मेरे जैसे हैं, इसलिए वो मुझे बेहतर समझ पाएंगे। पर ये चीज होता है बचपन में, शायद ये चीज ऐसी नहीं होती, युवा काल में खासकर बढ़ते उम्र में टीनेजर्स में ये चीज जरूर देखने को मिलती है। तो इसलिए दोस्तों से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, मगर ये भी समझने की जरूरत है कि संभव नहीं है कि आपके दोस्त जो आपके हम उम्र हैं, खासकर वो जब युवा काल के दहलीज पर हैं, लेटर टीनेजर्स में हैं, तो उनके अंदर उसी प्रकार की मैच्योरिटी हो, ये संभव नहीं। और हर कोई आपकी मदद करना चाहेगा भले उसके पास वो स्किल सेट्स हो या वो भावनात्मक रूप से वो इतना सक्षम है या नहीं है। मदद करने का भाव आपके सच्चे मित्र हमेशा आपके लिए रखेंगे, आपके लिए अच्छा सोचेंगे, इसलिए वो कोशिश करेंगे कि वो आपकी मदद कर सके। अगर क्या ये गाइडेंस हमेशा सही होता है या नहीं, इस पर जरूर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वो अपनी प्रज्ञा अपना विजडम अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे और उनका भी अनुभव कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि वो भी आपके उम्र है। तो युवा साथियों के लिए ये समझने की जरूरत है कि ऐसे समय पर भले ही आप अपने दोस्तों से बातचीत करने में कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल करें, उसमें कोई दो राय नहीं, शेयर करना ही चाहिए, मगर सही मार्गदर्शन के लिए, जो मार्गदर्शन आपके दोस्त आपको दे रहे हैं उसे किसी बड़े से वेरीफाई करके तब लागू किया जाना चाहिए। वरना क्या होता है कि अनुभव के अभाव के कारण कभी कभार हम मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य गलत नहीं होता दोस्तों का, वो भी आपका भला करना चाहते हैं, मगर भले उद्देश्य के साथ भी अगर हम कोई गलतियां करते हैं तो उसका खामियाजा बुरा ही निकलता है। इसलिए सोच समझ के साथ उन चीजों को करने की आवश्यकता है, और इसलिए ऐसे लोगों से जो इमोशनली मैच्योर हैं, अनुभवी हैं, उन लोगों के पास मदद लेना चाहिए। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि पेरेंट्स के साथ बातचीत करने में हिचकिचाहट होती हो या वो क्या मानेंगे क्या कहेंगे, ये सोच लेते हैं कि इनहिबिशन क्रिएट कर लेते हैं। अक्सर बच्चे बुजुर्गों के साथ, अपने दादा दादी नाना नानी उनके साथ खुलकर बात करने में विश्वास रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, ये हमें जज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ओपन रह सकते हैं इनके साथ। तो वो चीजें यहाँ मायने रखती है, और मैं समझता हूँ कल्पना जी एग्री करेंगे इस बात को कि जब लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं तो वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ये विश्वास रहता है कि जिनके साथ हम ये बातचीत कर रहे हैं उनके साथ हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर बातचीत करेंगे और जो कुछ भी हम उनके सामने कहेंगे वो पूर्णतया कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो उन्हें जज नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगाएंगे, उन्हें एक खराब उदाहरण के रूप में कहीं प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी एक प्राइवेसी और सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। एक विश्वास वहां पर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। मैं समझता हूँ कल्पना जी बेहतर बता पाएंगे इस विषय।
1: कल्पना जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
2: जी मैं सहमत हूँ श्री दीदी जी से, उन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि हमें जो अगर वैलिडेशन लेना है, किसी से गाइडेंस लेना है, तो हमारे बड़ों से चर्चा कर लेनी चाहिए। बट थोड़ा सा इससे आगे बढ़कर मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम अपने आप से कनेक्टेड होते हैं
1: जी,
2: तब अपने लाइफ के डिसीजंस लेना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे अगर हम हमारे क्रिकेट की दुनिया में अभी आजकल जो छाई हुई नई सनसनी है, हमारे वैभव सूर्यवंशी है, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं, तब ये महसूस होता है कि इस छोटे से बच्चे को अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का ये जो हिम्मत है कितनी छोटी उम्र में आ गई। उन्होंने छोटी उम्र में उनके पिताजी की मदद से इस स्किल को समझा और उस स्किल को हासिल करने में बचपन से लेकर अब तक, मतलब अभी भी बच्चा ही है, उसके पीछे वो चले गए। और इस वजह से उन्होंने, हम इमेजिन कर सकते हैं कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टीज में जाना, इतनी सारी बातें मिस की होगी उन्होंने, परंतु उन्हें पता था कि उनके लाइफ का डिसीजन उनके फादर ने और उन्होंने मिलके लिया है और वो बहुत सही लिया है, इसलिए उस डिसीजन के साथ वो चलते रहे। तो वैसे ही जब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कभी भी होता है, जैसे श्रीमती जी ने कहा कि वो किसी भी उम्र में हो सकता है, बचपन में भी हो सकता है, बड़े होने पर भी हो सकता है, तो अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट्स के लिए साइलेंस में बैठकर खुद के साथ जुड़ने का अभ्यास करते हैं, तो मेरी क्या कैपेसिटीज है, मेरी क्या वैल्यूज है, मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या जानना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ये चीजें हमें धीरे धीरे समझने लगती हैं और अपने ख्वाब के पीछे हम अपनी एनर्जी लगाना शुरू करते हैं। और हमारे सामने उदाहरण तो है ही, छोटी सी उम्र में अपने ख्वाब के पीछे उन्होंने सही एनर्जी लगाई तो उसका रिजल्ट उनको कितना बेहतर मिल रहा है, इससे अच्छी तरह हम नहीं समझ सकते
1: जी। कल्पना जी हम अंतिम चरण में पहुंच गए आज के एपिसोड के, हम एकदम लास्ट में पहुंच गए हैं, तो मैं मेडिटेशन का तो आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि हमें कराएं साथ साथ। क्या कोई ऐसे प्रश्न हैं जो हम खुद से डिटैच होके पूछ सकते हैं, जो हमें प्यार के इमोशन को सही आइडेंटिफाई करने में मदद करे, जो साइलेंटली बैठ के ऑब्जर्व कर सके खुद के बारे में, अगर कुछ?
2: बिल्कुल। सुबह उठने के बाद जब हम अपने दिन की तैयारी, मेंटल और फिजिकल तैयारी करते हैं, मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि वो थोड़ा टाइम सुबह उठने के बाद का अगर आप खुद के साथ आप बिताते हैं और ये 5 या 7 मिनट सोचने में बिताते हैं कि आज मुझे फिजिकली और मेंटली अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे प्रस्तुत करना है, तो हमारा माइंड इतना सुंदर जवाब हमें देता है, वो सोचकर हमें आश्चर्य लगेगा। तो पॉजिटिव प्लान जब हम बनाते हैं तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, आज मैं इमोशनली किस तरह से बैलेंस्ड वे में फिजिकली और मेंटली अपने आप को प्रेजेंट करूंगा या करूंगी, ये सवाल हम पूछ सकते हैं। आज मैं अपनी भावनाओं को सही शब्दों के साथ सही व्यक्ति के सामने व्यक्त करने का प्रयास करूंगा, इस तरह से छोटे छोटे सवालों से। क्या मैंने आज ध्यान से सुना है जो लोग कह रहे, लोगों की बातें सुनते समय अगर हम ध्यान से सुने और उनको समझने की कोशिश करें, उनके भावनाओं को समझने की कोशिश करें, तो वो भी एक अभ्यास होता है कि दूसरे क्या कहना चाहते, शायद उनके शब्दों से व्यक्त नहीं हो रहा, वो भावनाओं से समझ आ रहा है। सो ये चीजें मैं पहले समझूंगा और फिर बात में जवाब दूंगा। क्या आज किसी को मेरी बातों से खुशी मिली है, आज मैंने किसी को नाराज करने जैसा कोई काम तो नहीं किया या करूंगा। सो ये छोटे से प्रश्न हैं जिनके साथ हम आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगी कि हमारे युवा शांति से बैठकर ये अभ्यास करें, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, जिसमें कुछ पॉजिटिव और पावरफुल अफर्मेशंस हो जो हमें इमोशनली मैच्योर बनाने में काम आएंगे। तो आज अभी भी मैं इस कार्यक्रम के अंत में श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि 1 मिनट के लिए वो शांति से बैठ जाएं। सबसे पहले तो गहरी और लंबी सांस लें और अपने को एहसास कराएं कि मैं इस 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल फुर्सत में हूँ खुद को समझने के लिए अपने श्वासों पर ध्यान दें, उन्हें अच्छी तरह से महसूस करें। अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखते हुए अपने हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास करें, कितनी नॉर्मल है, कितनी स्टेबल है, कितनी शांत है। कानों से सुनने वाली एकदम छोटी सी आवाज जो बहुत मधुर है, उसे सुनने का प्रयास करें। और अंत में अपने मन में 3 बार दोहराएं, मैं एक शांत प्रेममय समझदार आत्मा हूं, मैं एक शांत प्रेममय समझदार आत्मा हूं। मेरे प्रत्येक शब्द में सम्मान, मधुरता और सकारात्मक ऊर्जा है। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी। आज बहुत एक इंटरेस्टिंग चर्चा हुई और हमें समझ में आया कैसे अपने इमोशन को रेट करना है, कैसे उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हम खुद से पूछ सकते हैं और कैसे हम दोस्तों की और कब बड़ों की मदद ले सकते हैं क्लैरिटी लाने के लिए जीवन में और इमोशंस को बेहतर समझ के बेहतर एक्शन लेने के लिए, ताकि हमारी लाइफ को वो बेहतर बनाए और हमें नुकसान ना करे। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का इस जर्नी पे हमें लेके जाने के लिए। मुलाकात होगी लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए लेते हैं इजाजत और जिंदगी से खुलकर कहते हैं कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम ऐसी नारी शक्ति पर आधारित है जिनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव या कुछ अलग उनके जीवन की कोई कहानी होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि नारी शक्ति के साथ जो घर में रह रही है या बाहर जो भी करती है तो उनके साथ इस तरह की परिस्थितियां भी आ सकती है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप नारी शक्ति की शक्ति को भी पहचान सकते हैं, उसके स्ट्रगल को भी आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी ही नारी शक्ति से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है मधु राठौड़। आप गुजरात जूनागढ़ जिला बांटवा गांव के रहने वाले हैं। आपकी उम्र 52 वर्ष है। आपने 12th तक पढ़ाई की हुई है। सिलाई कढ़ाई बुनाई का आपको बहुत ही शौक है, कुकिंग का और विशेष करके सफाई का बहुत ही शौक है और अध्यात्म में गहरी रुचि रखती है। तो ऐसी नारी शक्ति से आपसे मिलवाने जा रहे हैं। मधु जी नमस्कार।
1: धन्यवाद जी,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में।
1: धन्यवाद
0: मधु जी। चलिए, आपकी उम्र 52 है, मतलब पिचपन के आसपास पहुंच चुकी है। और कहते हैं ना, पिचपन में जब बचपन की बातें करते तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या कहेंगे?
1: बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी
0: जी,
1: तब से मुझे कुछ ऐसे लगा, बचपन से तो वैसे माँ बाप, हम 5, 3 बहनें हैं, 2 भाई है, छोटा सा परिवार है और माता पिता है, दादी थी। फिर दादी तो अचानक से हार्ट अटैक आया और चली गई। उसके बाद सत्संग चला था घर में, जैसे कि तो सत्यनारायण की कथा हर 11 को होती थी। तो मम्मी सब कहती थी कि जाओ आप ना सबको, जो सगे संबंधी है उसको कहना कि हमारे यहाँ सत्संग है तो आ जाना। फिर सबको वो फूल लाना, प्रसाद लाना, वो सब मम्मी मुझे देती थी कि आप वो करो। फिर तो सब लाते थे, फिर ना बरसात आई, ये सब इकट्ठा करते हैं पैसा और उसका कुछ बड़ा करना था। तो मैं तो छोटी थी, तो एकदम बरसात आई तो सारा पैसा ऐसे पास रहता है, 25 पैसे का 30 पैसे का
0: जी
1: हाँ, तो वो सब इकट्ठा किया हुआ था और घर की जो कांधी कहते मतलब माड़िया कहते उसमें लगा था। तो बरसात आने की वजह से जोरदार वो बिक गया। फिर सब को सुखाया बहनों ने, मेरी 2 बहनें हैं और भाभी है, सब सुखाया। फिर तो मम्मी ने और सत्संग की जो मंडली थी ना, बड़ी पहली बार मेरी मम्मी ने ही वो सत्संग चालू किया। तो कहते हैं कि अब ना कुछ उसका नया करे, हमारे यहाँ जो राजपूत के मंडली होती है ना बहनों की, तो उसमें सत्संग में से जो इतने पैसे इकट्ठे हुए थे तो उसका कुछ अच्छा सा करे जो सबको काम भी आए उसमें।
0: चलिए मधु जी, सत्संग की बातें हम जरूर जानेंगे, पहले हम बचपन की बात जानना चाहेंगे। आप जैसे बता रहे थे कि 5 भाई बहनों, ठीक है, अच्छा आप 3 बहनें और 2 भाई हो, आपका नंबर कौन सा आता है?
1: मेरा लास्ट का नंबर 5वां।
0: तो आप तो सबके चहेते रहे होंगे।
1: बहुत बहुत बहुत चहेते रहे।
0: आपके पिताजी क्या काम करते थे उस समय?
1: वो किसान थे, किसान। पहले तो मैं जब से आई ना तब से तो हमने बहुत खेती देखी। इससे पहले कहते थे कि हमारे 7 थे ना घर में, जैसे 5 बच्चे और 2 माँ बाप और दादी, उसमें बहुत एकदम करकसर से जीवन था।
0: जी जी, मुश्किल से हाँ, चल पाते थे गृहस्थी की।
1: हाँ, नहीं, पापा का यही एक सपना था कि मैं बड़ी खेती लूँ। इसके लिए उसने करकसर से हम सबको ऐसे सिखाया कि करकसर से रहोगे, लोभ से नहीं, करकसर से।
0: जी जी।
1: तो उसने 100 बीघा, मतलब अभी उसका पैसा होता है वो 15 करोड़ होता है, तभी कभी कुछ नहीं था। फिर भी पापा ने, हम काका कहते थे, हम साथ में रहते थे,
0: जॉइंट परिवार था।
1: हाँ, जॉइंट परिवार था, मतलब मेरे जो बड़े पापा के बड़े भाई वो साथ में रहते थे, उसका 6 बेटा
0: जी
1: हाँ, और साथ में रहते थे। तो साथ में रहने की वजह से जो बड़े बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं
0: जी, काका बोलते हैं और बड़े पापा के बेटे,
1: हाँ पापा के बड़े भाई, उसको हम अदा बोलते हैं गुजराती में
0: जी।
1: तो वो अदा का सब बच्चे इकट्ठे रहते, तो वो मेरे पापा को काका कहते थे, तो हम भी काका ही कहते हैं, लास्ट तक काका किया। तो काका का यही सपना था और मुझे बहुत पढ़ाया उसने, सब हमारे भाई बहन है ना, उसमें से मुझे ज्यादा पढ़ाया।
0: अच्छा, बाकी आपसे सब कम पढ़े लिखे है?
1: सब कम पढ़े लिखे,
0: भाई भी?
1: भाई भी।
0: तो सब क्या करते, खेती का काम?
1: हाँ, सब खेती का ही काम करते हैं।
0: तो आपके सामने 100 बीघा जमीन का जो आपके पिताजी का
1: वो बनाया उसने अपने।
0: संकल्प था तो लिया?
1: हाँ, वो पूरा किया। पहले ऐसा नहीं था, फिर पूरा किया। फिर उसको तो इतना उमंग आया। उसके बाद सब, पहले भाई की शादी हुई, बड़े भाई की। उसके बाद तीन तीन की साथ में हुई और मेरी अकेली हुई।
0: अच्छा, आपकी शादी की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन बात कर रहे थे आपके बचपन की, कि इस तरह आपके पिताजी खेती का काम करते थे, किसान थे। आपके माताजी भी कुछ करते थे?
1: हाँ, घर का काम करती थी और खेत में पिताजी को बहुत साथ देती थी। सारा पूरा काम करके, अपना बाता बना करके, और मुझे कहती थी कि आप ये घर संभालो, और पढ़ाई करने के बाद हम आएंगे तो आपको ये खिचड़ी बना के रखनी है, ये सफाई करनी है, और चूल्हा चूल्हा ये सब कुछ अच्छे से रखना है, ताकि आए तो सिर्फ हमें सब्जी और रोटी दोनों ही बनानी है, और पूरा घर का ख्याल रखना है, बाहर सब आपको करना है, और फिर आप ये सब पढ़ाई करने के बाद फिर पेड़ाई कर लेना और सफाई कर लेना। तो मम्मी भाता बनाकर, मतलब रसोई बनाकर जाती थी।
0: जी
1: हाँ, और साथ में पिताजी को बहुत बहुत साथ देती थी।
0: तो आपके भाई बहन भी जाते थे खेत में?
1: सब जाते थे, सब के सब।
0: आप अकेले घर पर रहते?
1: हाँ, मैं अकेली घर पर रहती। मैं डरती नहीं थी। मेरे से जो तीसरे नंबर की बहन है ना, जैसे हम तीन बहन हैं, तो तीसरे नंबर की बहन वो अकेली नहीं रहती।

0: थी, वो डरती थी, वो कहती थी मैं अकेली नहीं रहूंगी। मम्मी बहुत कहती थी कि आप रहो इसके साथ। फिर मैं कह देती हूँ कोई बात नहीं मम्मी, आप जाओ उसको भी ले जाओ, मैं अकेली रहूंगी। और मैं बहुत बड़ा था तो मैं उसमें अकेली रहती थी और सब काम कर लिया करती, और मम्मी मुझे ऐसी शाबाशी देती, देखो तो आपसे छोटी है तो भी वो अकेली रहती है और सारा डरती भी नहीं है, कोई आते है तो ऊपर से देख लेती हूँ कि कौन आया है, अगर कोई हमारा संबंधी आते है तो मैं खिड़की खोलती हूँ, अगर कोई और है तो खिड़की भी नहीं खोलती। ऐसे में बहुत तैयार थी, तो मम्मी और पापा दोनों की चहेती थी।
1: जी
0: पापा पापा तो हमें साथ में ही सुलाते थे, वो तो मेरी सगड़ी है जैसे बोलते। मैं इतनी गर्म रहती हूँ ना, तो वो खेत में से आते और पापा को मैं पानी देती हूँ, कुछ खाने को देती हूँ, तो पापा की बहुत चहेती थी, छोटी थी इसलिए। बहुत बचपन प्यार से ही गुजरा और सबका, भाई बहनों का अभी तक प्यार मिल रहा है।
1: जी जी
0: हाँ,
1: जी
0: बहुत प्यार मिला है।
1: जी
0: और अभी वो पे दुलार देते तो कहते हैं कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो, ऐसे कहते हैं अभी भी।
1: जी जी वो कहते हैं ना कि नमे सौने गमे, गुजराती कहावत है। तो
0: हाँ,
1: आपके अंदर नम्रता थी तो आप सभी के दिलों पर राज करते थे।
0: अभी भी कर रही हूँ। और
1: बचपन से जो स्वभाव संस्कार जो हमारे अंदर पड़ जाते हैं वो लाइफ टाइम चलता है।
0: हाँ, वो आगे ज्यादा हो जाता है बढ़कर। तो बचपन ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं चला कि देखो सबने इतना साथ दिया। और मैं मेरा उत्साह और उमंग बहुत बढ़ाते थे भाई बहने,
1: जी
0: जो मेरे से चारों भाई बहन है ना, बहुत उत्साह उमंग बढ़ाते थे। जैसे कि खेतों में बुनाई होती है, कटाई होती है, वो हम एक दो मजदूर रख करके हम स्वयं करते थे।
1: अच्छा
0: मजदूर चार आते थे, वो चार बहनें आती थी, दो बहनें अपनी और दो भाई उसके, वो चार ही आते थे और हम सब मिल करके ये सारा खेत संभालते थे।
1: सौ
0: तो
1: सौ बीघा जमीन में।
0: हाँ, सब
1: अच्छा
0: मजदूर नहीं, ना कोई किराए का रखा, रात में कोई नहीं, सब अकेले ऐसे ही करते थे। तो हमने बचपन से यही सीखा कि मेहनत करो और मेहनत से आगे बढ़े। और पापा का तो बहुत था कि ये ले वो ले, बहुत था को ना, मेहनत में बहुत विश्वास था।
1: जी, चलिए मधु जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन समय हो चला है यहाँ पर एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। मधु जी के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं जो हम फिर से सुनेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, हर रिश्ते में अपनापन जगाए, नन्हे कदमों से सपने बुनती, घर को स्वर्ग सा बना जाए, घर को स्वर्ग सा बना जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ऐसी ही बेटी जुड़ी हुई है, ऐसी ही मातृ शक्ति जुड़ी हुई है, मधु राठौड़, जिनके अनुभव हमने सुने हैं। इसी कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे। मधु जी पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: जी थैंक यू जी।
4: तो मधु जी आपके बचपन की बातें चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा स्कूल की बातें बताएंगे कि आपके टीचर्स के साथ, सखियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
5: हाँ मेरी सखियाँ भी बहुत बढ़िया थी। एक सखी तो बहुत अच्छी थी, मैंने उसे अपना माना था, उसका वो अलग था। फिर मैंने पहले आठवीं पढ़ी तो मम्मी होली का त्यौहार था, जैसे अभी होली आ रही है, तो होली का त्यौहार था तो मम्मी ने कहा कि अब मैं ना सारा रसोई या बाता बोलते हैं ना, वो बाता कर रही हूँ, तो आप ना आज जाओ शिव के मंदिर पर। और वहाँ से गुजरात में ये होता है कि बड़ा शिवरात्रि का महत्व होता है, शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं और भांग का प्रसाद मिलता है, और बड़ी उत्साह उमंग से शिवरात्रि पूरा दिन रहते हैं। और शिवरात्रि के दिन खाना कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा फ्रूट लेना है, दूध लेना है और वो प्रसाद लेना जरूरी है। तो प्रसाद नहीं, माताजी लाई थी तो उसने कहा आप जाओ तो मुझे मंदिर भेजा। तभी एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी मिली और मैं आठवीं कक्षा में वो प्रदर्शनी देखी। तो वो प्रदर्शनी पहले तो कुछ समझ में नहीं आई, बाद में इतनी मन को भा गई कि बार बार वही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे। इसमें इतनी लगती थी कि मैं ही वही देवी हूँ, और मुझे इतना अच्छा अनुभव होने लगा कि मैं बस इसी मार्ग पर चलूँ। घर पर आई, प्रदर्शनी देखी तो उस प्रदर्शनी में सुना कि मैं कौन हूँ, वही बहुत अच्छा लगा। फिर पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, और माताजी तो चली गई खेत में और मैं घर पे, तब स्कूल पे रजा होती है तो घर पे थी। उसके बाद आध्यात्मिक में मेरा जुड़ाव बहुत रहा, मैं बहुत अच्छा लगता था कि मैं आध्यात्मिक में कैसे आगे चलूँ। फिर हर 11 के दिन और पूनम के दिन मेरी माताजी कथा करती है, सत्संग सब बहनें आती है, सत्संग की 50 बहनें होती है, तो माताजी सत्संग में होने के कारण मैं इतनी आध्यात्मिक रही पहले से। भक्ति भाव उसमें प्रसाद होता है, महाप्रसाद की बहुत महिमा होती है सत्संग में, सत्यनारायण की कथा वो सत्संग, फिर पाठ पूरा हो जाता है, 5 अध्याय होता है, पूरा होने के बाद प्रसाद सबको बांटते।
4: अच्छा तो आप अध्यात्म में चलने लगे, तो फिर घर में किसी ने विरोध तो नहीं किया?
5: जी छोटी थी तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, पर ऐसे कहा कि अच्छा है, मम्मी अध्यात्म से जुड़ी थी तो अध्यात्म में बहुत रुचि थी मेरी पहले से ही।
4: तो भक्ति के संस्कार आपको बचपन से?
5: बचपन से
4: जी। और आठवीं से आपको थोड़ा अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया?
5: स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया।
4: अच्छा, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ कि आपकी सखियों के साथ कैसा था?
5: सखियों के साथ तो इतना मैं सखी नहीं करती थी, मुझे ऐसे आध्यात्म में अच्छा लगता है बस।
4: अच्छा, ये बताइए आप स्कूल में कोई पार्टिसिपेट करते थे जैसे गाने? हाँ, में
5: हाँ, जो कोई स्पर्धा होती है, कोई भी स्पर्धा होती है, तो पहले तो मैं लींबू चमची में वो स्पर्धा किया ना, तो मेरा वो इसमें फर्स्ट नंबर आया, पहला नंबर आया, जो अच्छा लगा कि आगे बहुत बढ़ना चाहिए, उत्सव उमंग बढ़ा, जैसे पहले नंबर आया ना तो अंदर से लगा कि बहुत आगे मेहनत करनी चाहिए, फिर तो आगे आगे नंबर आता ही गया।
4: अच्छा, तो हर साल आप भाग लेते थे?
5: हाँ, हर साल भाग लेते।
4: अच्छा, और डांस गरबा ये भी करते थे?
5: हाँ, गरबा करते, डांस तो अकेले अकेले करते।
4: तो करते थे अकेले स्टेज पर?
5: हाँ, अकेले अकेले स्टेज पर करते थे, पर थोड़ा हिचकिचाते पर कर लेते थे, फिर बाद में एक भी किया फिर तो अच्छा लगा तो करते रहते थे डांस भी।
4: कभी टूर्नामेंट में भी गए? गेम्स में कोई गेम्स खेलते थे?
5: गेम्स तो नहीं खेली।
4: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
5: पढ़ाई में बहुत बढ़िया था, और एक फोकस था कि आगे बढ़ना है, मतलब इतना तो लाना ही है, तो पढ़ाई में भी रुचि बहुत रही, दसवीं में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बारहवीं तक, पर बारहवीं तक में तो मेरी शादी हो गई थी, मैं बारहवीं तो वहाँ ससुराल में किया।
4: अच्छा, बारहवीं पढ़ रहे थे और शादी करवा दी?
5: हाँ, बारहवीं में तो मेरा जो रिजल्ट आया ना वो ससुराल में आया, पढ़ाई तो वहाँ, शादी तुरंत कर दी।
4: तो आपका ससुराल कहाँ है?
5: ससुराल भी वही बांटवा में ही है।
4: बांटवा में ही? कितना बड़ा शहर है बांटवा? शहर है या गांव है?
5: वैसे शहर भी कहो तो शहर भी है और गांव भी है,
4: तो वहीं पर आपका पियर भी और ससुराल भी? वहीं पर
5: गांव में सब। कई बार गई नहीं, रेल तो मैंने कहीं देखा नहीं, आध्यात्मिक में रहे और गांव में ही शादी हो गई।
4: तो आप बता रहे थे कि छोटे थे तब तो कोई विरोध नहीं करते थे, तो शादी के समय किसी ने विरोध किया क्या?
5: नहीं, फिर तो युगल को मैं आध्यात्मिक में ले गई तो उसको भी अच्छा लगा, फिर विरोध होगा आध्यात्मिक में,
4: फिर क्या हुआ, विरोध हुआ?
5: हाँ, ससुराल में कहते कि नहीं, हम कोई पकड़ बकड़ नहीं है, हम आध्यात्मिक में नहीं चल सकते, अब तो हमें बेटा चाहिए बेटी चाहिए, ऐसे आप शादी किए तो ये करना है वो करना है।
4: कौन बोलता है?
5: सास ससुर बोलता है, पर हमारे में लाज प्रथा थी, घूंघट निकालने की प्रथा थी
4: जी,
5: तो मेरे पापा ने ही शादी के वक्त किया था कि आप घर जाके घूंघट उठाओ, वो अलग बात है, हमारे यहाँ तो शादी होगी तो घूंघट में ही होगी
4: जी।
5: पापा जी ने यही बोला था, और माता जी और बड़ी दो बहनें हैं वो भी अच्छे से शिक्षा देती रही कि हमें अपने मर्यादा में ही रहना है, कभी इधर उधर पाँव ना जाए, फिसल ना जाए, वो बड़ा ध्यान रखना है किसी के साथ, बहुत सारी हमें मदद की बातें मिली उसी से
4: जी,
5: बड़ी दो बहनें थी उसे से सब मिला।
4: तो फिर ससुराल में सब कैसे रहते थे? शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
5: सासी तो घूंघट निकालते थे और बहुत स्ट्रगल हुआ।
4: मतलब आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करते थे?
5: तभी तो करते थे, पर जब आध्यात्मिक में जुड़ी, आध्यात्मिक में मेरा मन रुचि लगी, तभी विरोध हुआ।
4: तो आपने कहा कि आपके हस्बैंड तो आपके साथ जाते थे
5: पहले, उसने थोड़े टाइम किया, थोड़े टाइम वो मेरे साथ चले, मैंने कहा प्यार से उसे बोला ना कि चलो हम जाते हैं, इसमें आध्यात्मिक में क्या, बहुत अच्छा है लगता है, वो सत्संग में जाने लगे, अब मेरे साथ आए, उसमें साप्ताहिक होता है कोर्स, उस वो किया उसने, और उसके बाद विरोध किया, और घर में तो जाते हैं तो सबको पता चलता है ना ससुराल में, तो मैं कह कर के जाती थी कि मैं सत्संग में जा रही हूँ, तो फिर आने के बाद सबको अच्छा नहीं लगता है, मैं अपना काम टाइम पर करती थी, सबको बहुत प्यार से रखती थी, फिर भी उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि हम पकड़ लोग नहीं है, सत्संग में हमारा आध्यात्मिक में नहीं जाना है, सत्संग में नहीं जाना है, तो फिर मन नहीं लगता था सत्संग के बिना, तो
4: फिर आपने विरोध किया?
5: मैंने विरोध नहीं किया, मैंने चलती रही, सत्संग में जाती रही
4: जी।
5: फिर छुप छुप के जाने लगी, इसे थोड़े सामने, फिर तो उसको पता चल गया कि ये वहां से वहां हंस जाती है, तो सामने से आकर दो चमाट लगा देती।
4: अच्छा, तो इस तरह आपके साथ विरोध होने लगा।
5: बहुत
4: अच्छा। ससुराल में कितना बड़ा परिवार था, मतलब संयुक्त परिवार था या आप अकेले रहते थे सास ससुर के साथ?
5: संयुक्त परिवार था, 10 जने रहते थे। 4 भाई है, 2 बहने हैं, 2 ननद है और सास ससुर है, जेठ जेठानी, उसके 3 बच्चे
4: जी जी
5: बच्चे थे। हाँ,
4: तो इतना बड़ा परिवार था, आप कह रहे 10 जने थे, इतना बड़ा परिवार रहते थे साथ में।
5: हाँ, सबका काम भी हमें ही करता है, ऐसे कोई काम का भाग नहीं हुआ था, सब इकट्ठे काम करते थे। और मैं तब पानी की तंगी थी तो खेत में जाकर के कपड़े धोने होते हैं
4: जी जी।
5: हाँ,
4: जी
5: और वहाँ नहाने का सब मना होता है, नहाते नहीं थे, कहते कि नहीं हम थोड़ा ब्राह्मण लोग है, हम ब्राह्मण लोग नहीं है, वो क्या बोलते है, ब्राह्मण लोग नहाते हैं, हम नहीं नहाते। तो 2-3 दिन में नहाने देते थे और जैसे कि चलता था।
4: अच्छा, नहाने रोज नहीं देते थे और आपको स्वच्छता पसंद है, तो फिर क्या करते है?
5: फिर मैं तो नहाती हूँ तो उसको विरोध होता है कि ये कैसी है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कहते बोलते थे ना कि नहीं नाना नहीं है, हम थोड़ा ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते हैं वो नहाते थे।
4: जी चलिए मधु जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए, इनके अनुभव हमने काफी कुछ सुने हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो मधु जी, जैसे आपकी शादी हो गई, आपको अध्यात्म में गहरी रुचि थी, सत्संग में आप जाते थे, ससुराल में फिर आप जाने लगे तो विरोध होने लगा, फिर आप रोज नाते तो नाने का भी विरोध होने लगा, तो पानी कहाँ से भर के लाते थे? घर पर नल था?
2: हाँ जी, नल तो था, पर ऐसे भी सबका मन भी देखना है ना। उसका मन नहीं है और हम ना रहे, फिर भी नाना ही है, जरूरी है। फिर नहाते थे, नाना तो जरूरी लगा, तब भी लगा और अब भी लग रहा है।
1: नाते और रोज डांट खाते?
2: रोज डांट भी खाते, और उसको हम अच्छे नहीं लगते थे। क्यों? नहाने के लिए मना करते और हम नहाते, तो संबंध ऐसे प्यार से नहीं रहता है।
1: आपके हस्बैंड के साथ?
2: हाँ, वो तो बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे है।
1: तो कौन मना करते है?
2: सासू, जेठानी, वो कहते कि नहीं नहाना है, ये क्यों नहाना है इसे।
1: तो फिर साथ में ही रहे या अलग हो गए?
2: नहीं, फिर तो साथ में रही, जब तक पहली बेटी आई, दूसरा बेटा आया, तब तक साथ थे।
1: अच्छा, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे उस समय?
2: वो होम गार्ड में थे, अभी तो रिटायर हो गए।
1: अच्छा, तो आपके गांव में थे?
2: हाँ, गांव में ही सेवा होती है ना सरकारी होम गार्ड की, जैसे पुलिस के नीचे।
1: जी जी,
2: कॉन्स्टेबल के नीचे होती है।
1: अच्छा, तो जैसे आपका मायका भी वहीं था और
2: ससुराल भी गांव में?
1: जी, जैसे आप बता रहे थे कि कपड़े धोने आप खेत में जाते थे, तो पानी की कमी थी तो आपके मायके में भी कपड़े धोने आप खेत पर जाते थे?
2: जी नहीं, वहाँ तो घर पे ही था सब कुछ, घर पे ही कपड़े धोते थे, पर ससुराल में ना दुष्काल हुआ तो वहाँ थोड़ी तंगी हुई पानी की, तो कहते कि आप खेत में जाओ। तो मैंने तो जैसे शादी की आई और तुरंत कपड़े या जो चद्दर वो रजाई होती है ना, एक साथ 18 रजाई धोई, एक दिन भी मैंने बैठी

0: नहीं हूं,
1: इतना काम करते थे।
0: एक दिन भी बैठी नहीं हूं। जैसे आज इधर पांव रखा, शाम को शादी करके आए, सुबह सब बोलने लगे इतना काम है, इतना काम है, वो है, इतना धोना है। तो मैंने सीधा कहा चलो मैं आती हूँ, मैं और मेरी जेठानी साथ में गए। फिर एक दिन आई, दूसरे दिन तो सास बोलने लगी कि इतना काम मैं अकेली क्या करूँगी। तो वो तो घर पर रही रसोई के लिए और मैं अकेली गई।
1: कपड़े धोने
0: हाँ
1: तो शादी होते ही आपके काम में लगा देते हैं। नई नई बहू आई तो थोड़ा लाड़कुड़ भी तो करते हैं ना
0: करते हैं ना, अभी हम भी कर रहे हैं, हमारी भी बहू है, हम भी बहुत करते हैं।
1: जी।
0: क्योंकि ऐसे आध्यात्म में जाते हैं ना, तो जैसे हम पर बीती है ना, उस पर ना ही बीते, उसको तो इतना लाड प्यार करते, उसको तो आप करके, आप अभी भी, मैं, मेरी बहू है, उसको आप कहकर ही बुलाती हूँ।
1: जी
0: उसको ऐसे तुकार के नहीं बुलाते, प्यार से ही उसे बुलाते, अगर बुलाना है तो प्यार से ही
1: जी
0: बुलाते।
1: जी अच्छा तो जैसे आपका काम में लगा दिया तो आपके मायके वालों ने कुछ नहीं कहा?
0: नहीं, माँ पापा का तो यही था कि मेहनत करो, मेहनत आपको जगह देगी,
1: जी
0: मेहनत से ही आगे बढ़ना है ना।
1: तो इतना आप काम करते थे तो सास ससुर प्यार करते थे आपको?
0: नहीं, हो अपना अपना तरीका होता है ना, अपना अपना नजरिया होता है।
1: अच्छा किसी का प्रेम नहीं मिला?
0: नहीं, आध्यात्मिक में बहुत रुचि इसलिए तो जगी ना।
1: अच्छा तो इसलिए आपको थोड़ा सत्संग से प्रेम बढ़ा।
0: हाँ, प्रेम और बड़ा।
1: फिर कितने समय में आप पियर जाते थे? अच्छा
0: पीहर तो गांव में ही था, क्योंकि वहां खाना, मुझे वहां तेल बहुत लगता था सब्जी में, और मायके में तेल नहीं था, तो साग भाजी में मायके ही खाती थी। अब माता जी मेरी और मेरी भाभी थी, सब कहते थे अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता, यहाँ खा लो, और खा करके वहां जाती हूँ ससुराल में।
1: तो रोज जाते थे खाना खाने?
0: हाँ, वहाँ रिवाज है, गांव में जो शादी होती है ना, वो 4 बजे या 5 बजे मायके में रोज जाती है,
1: अच्छा
0: अभी भी।
1: टाइम मिल जाता है
0: नहीं, टाइम निकालते, वो रिवाज हो गया है।
1: तो 5 बजे जा करके खाना खा के वापिस आ जाते हैं।
0: हाँ
1: फिर ससुराल में खाना नहीं खाते थे? तो
0: नहीं, सब्जी में बहुत तेल होता है, कोई स्वाद नहीं तो क्या।
1: आप नहीं बोलते कि सब्जी में थोड़ा तेल कम डालो या आप खुद नहीं बनाते?
0: नहीं, सबको यही पसंद है, मेरी पसंद नहीं है तो इसमें क्या बड़ी बात है, हम माँ मई के खा लेते हैं।
1: नहीं तो जैसे नहीं कहते कि आपके चाहिए उत्ती अलग से बना दो?
0: अलग कोई नहीं बनता किसी का।
1: अच्छा तो इस तरह आपके जीवन यात्रा रही। तो वो कहते हैं ना गांव में पियर और गांव में ससुराल है तो थोड़ी मुश्किल तो रहती है बैलेंस बनाने में। तो मुश्किल रहती थी आपके जीवन में भी?
0: हाँ, पर आध्यात्म में बहुत रुचि थी ना, तो मुश्किल नहीं लगा।
1: जी अच्छा। और आप बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट मिलता था।
0: तभी मिलता था, फिर वो आध्यात्मिक में जुड़े तो थोड़ा कम हुआ। फिर ससुराल में सास ने और बोला कि अब तो 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल में तो बच्चा होना चाहिए। मैके में भी यही कुछ रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर तो बेटी हुई। बेटी हुई तो जेठानी थी, वो खेत में चली जाती थी, पूरा काम मेरे पर आ जाता था। जैसे गायों को दोना, भैंस रखते थे, इसको दोना, सब काम करना, और बच्चे को रखना। थोड़ा
1: जी
0: थोड़ा थोड़ा ज्यादा सासू का साथ था, वो सासू थोड़ी बेटी को रखती थी, साथ में थे ना, जॉइंट फैमिली में
1: जी
0: तो रखती थी।
1: दूसरे और कोई सदस्य नहीं थे परिवार में?
0: हाँ थे ना, वो है, एक चूल्हे पर ही रसोई बनती थी, पर यहाँ से कटोरी में लेकर वो अपने घर में खाती थी। वो मेरी सास की सास थी ना वो।
1: अच्छा तो मधु जी जैसे आप कह रहे थे कि आपको सत्संग का शौक था इस वजह से परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करते थे और काम की जिम्मेवारी काफी रहती थी आपके ऊपर। और फिर आप कह रहे थे कि बच्चे होने के बाद आप अलग हो गए। तो सभी अलग हो गए जेठानी आप या फिर सास ससुर के साथ रहते थे आप?
0: सभी अलग हो गए, देवरानी भी अलग हो गई, मैं भी हो गई। फिर तो देवर की शादी हुई, उसके बाद 1 साल में सब अलग हो गए।
1: जी फिर तो आपको सत्संग में जाने से कोई नहीं रोकता था?
0: नहीं, कोई नहीं रोकता था, मैं चुपके से ही जाती थी सत्संग में। वो जो मेरे पति है ना, उसको जाना अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं अपना ढूंढती थी अंदर से कि भाई क्या मेरी कमी है, मेरा कोई काम छूट ना जाए, उसको बराबर से टाइम देती हूँ, उसका खाना पीना सब काम करना।
1: अच्छा, आप सारा काम करते थे और भजन कीर्तन भी करते थे? अच्छा,
0: साथ में बहुत भजन कीर्तन साथ में ही रहता था।
1: और आप क्या करते थे
0: और
1: कभी
0: सिलाई
1: बच्चों को?
0: करते थे, हाँ बच्चों को पढ़ाई
1: हाँ,
0: में
1: आपको सिलाई का भी शौक रहा, तो सिलने में आप क्या क्या सिलते थे?
0: ब्लाउज सिलते थे, ड्रेस सिलते थे, सिलाई का काफी शौक था। मैं ब्लाउज भी बना लेती थी और अपना पूरा जो भी है वो सब मैं सिलाई कर लेती हूँ।
1: जी, तो आप जैसे सास जेठानी देरानी सबके साथ रहते थे, वहां पर भी सिलाई करते थे या अलग होने के बाद शुरू
0: अलग
1: किया?
0: होने के बाद साथ में तो टाइम ही नहीं मिलता था
1: जी,
0: क्योंकि 10 जने का काम था।
1: इसलिए आप अलग होने के बाद सिलाई का काम शुरू किया। तो आप अपना ही सिलते थे या मोल का भी सिलते थे?
0: मैं अपना ही सिलती थी। फिर दो थे, भैंस थी और खेत थी। अलग होने के बाद तो खेत को संभालना होता है। सुबह 8 बजे भाता बना करके 8 बजे निकल जाना, 1 घंटे का चलने का खेत दूर थी।
1: अच्छा,
0: हाँ तो वहाँ पहुँच के आध्यात्मिक में रुचि थी ना, तो वहाँ भी मैं पढ़ लेती थी, कुछ भजन भजन कर लेती थी
1: वहां भजन किसके साथ करते थे?
0: ऐसे अपने ऐसे ही मन से। तो जब मजदूर आते हैं ना उससे पहले मैं पहुँच जाती थी।
1: अच्छा, तो
0: हाँ
1: आपके हस्बैंड भी जाते थे?
0: वो दोपहर को रोटी लेकर आते थे, उसको क्या भाता बोलते हैं। हाँ तो वो भात लेकर के आते, मैं अपने भाता लेकर के जाती थी सुबह और बच्चों को मेरी माँ रखती थी
1: अच्छा
0: अलग होने के बाद।
1: जी,
0: हाँ और शाम को आती थी चल करके, साइकिल भी नहीं कुछ नहीं था, चल के आना चल के जाना। तो 1 घंटा तो हो जाता है आने जाने में, 2 घंटा
1: तो खेत में क्या करते थे आप? कुछ बोते थे? बुआई
0: बोते तो वो
1: आप ही करते या मजदूर करते? आप देख रेख करते?
0: बुआई तो उसी से होती है, ट्रैक्टर से होती है।
1: जी।
0: पहले तो बैल था ना, बैल से होती बुआई, तो फिर उसमें सफाई होती है ना वो हम करते थे।
1: अच्छा,
0: उसके बाद बड़े होकर के कटाई होती है ना, जैसे मूंगफली को पाड़ते हैं, भेगी करते हैं जैसे गुजरात।
1: जी, खटी करते हैं और फिर
0: हाँ
1: उसकी मिट्टी हटाते हैं,
0: हाँ और
1: मतलब
0: फिर
1: खेत के काम में आप व्यस्त
0: सारे
1: रहते
0: काम,
1: हैं।
0: सारे काम करते थे
1: जी
0: जो मजदूर वाला होता है ना, वो सारा काम करते थे।
1: जी जी और पढ़ाई में आपको शौक था और उसी घाम में आपकी शादी हुई, तो आपके टीचर लोग नहीं कहते कि क्या तू इन कामों में लग गई, पढ़ाई कर लेती तो अच्छा रहता?
0: टीचर बहुत अच्छी थी, पढ़ने जाते थे तो भी वो ऐसे वार्ता बोलते, ऐसे ही पढ़ाई की भार नहीं दिया, भणतर में तो बहुत अच्छा।
1: जी, आप इस तरह खेत में जाते, खेत में आते, आपका टाइम पूरा हो जाता, फिर सिलाई कब करते हैं?
0: सिलाई तो मैं जिस दिन नहीं जाना होता है ना तब करती हूँ, और कभी कभी तो खाने पीने के बाद टाइम निकाल करके जो बनाना है ना वो मन से बना लेती हूँ, करना है कि यही करना है, यही चाहिए घर में और अपने पहनने में, तो रात को भी मैं सिल लेती थी।
1: अच्छा, जब जरूरत पड़ी कि हाँ मेरे को इस तरह के कपड़े चाहिए, तो आप खुद का सिल लेते थे।
0: खुद का सिल लेती।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है मधु जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुन करके पुणे लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मधु जी के अनुभव और भी बाकी है, तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: चौहान, हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, उसकी बातों में सच्चाई रहती है। जो नारी का मान रखे उसकी हर राह उजली रहती है, उसकी हर राह उजली रहती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। मधु जी के काफी अनुभव सुने हैं, और भी हम कहना चाहेंगे, मधु जी आप पूरे जीवन, अभी तक 52 साल की उम्र है तब तक आप पाटवा गांव में ही रहे, उससे बाहर आपका जाना नहीं हुआ
2: कभी नहीं।
1: तो जैसे आपकी दो बहनें बड़ी है, कभी उनके यहाँ जाना हुआ होगा?
2: एक तो गांव में ही है, एक बाजू में मजेठी है, वहाँ है।
1: अच्छा, पास पास में ही है।
2: हाँ, कभी कभी जैसे कि प्रसंग होते हैं, उसकी बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तभी जाना हुआ
1: जी। और आप कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं?
2: नहीं, पहली बार एक आध्यात्मिक ही बैठे।
1: हाँ, पहले जब आप रहे अपने ससुराल में तब तक ट्रेन में नहीं बैठे?
2: ट्रेन देखा ही नहीं था, दूर बाटवे।

0: ये तो ट्रेन नहीं है, जूनागढ़ से।
1: जूनागढ़ से मिलते हैं। अच्छा, और जैसे अब आपकी उम्र 52 साल की है, आपके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू भी आ गई है, बेटी की भी शादी हो गई होगी।
0: हाँ, बेटी की भी शादी हो गई है, वो उसका भी दो बेटी है, बेटा है छोटा।
1: अच्छा, तो आप नहीं पढ़ पाए तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया?
0: बहुत खूब पढ़ाया, यहाँ तक कि उसको तो नौकरी भी दिलाई, यहाँ तक
1: बेटी को?
0: बेटे को भी। अभी बेटा भी है, वो लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर वहाँ पाजोद में है।
1: अच्छा, दोनों बच्चे जॉब करते हैं आपके?
0: हाँ, बेटी नहीं करती, बेटी को तो अच्छा ससुराल मिला है तो उसको नहीं करने देते, पर अब वो विदेश जाने वाली है।
1: जी, शादी हो गई
0: हाँ
1: और बेटा जॉब करता है। अभी आपको कोई दिक्कत नहीं?
0: जी, नहीं
1: अभी कोई सत्संग से रोकता नहीं?
0: जी, नहीं।
1: आपके हस्बैंड सहयोग करते हैं अब?
0: हाँ, वो सहयोग करते हैं थोड़ा, मैं बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ तो सत्संग में, तो मुस्कुरा देते हैं, कुछ बोलते नहीं है।
1: जी,
0: मैं
1: हाँ।
0: उसको भी बोलती हूँ आप भी हमारे साथ चलो।
1: अभी भी आपके सास ससुर सभी है?
0: सास है अभी सब?
1: जी, अब अच्छे रहते हैं आपके साथ?
0: हाँ, बढ़िया रहते हैं सबके साथ, प्यार से मिलजुल कर रहते हैं।
1: जी,
0: हाँ,
1: एक समय था जब कोई आपके साथ अच्छे नहीं रहते थे तो आपका दिल
0: नहीं,
1: दुखता था।
0: एक समय तो यही था कि जब मैं अलग हुई ना, तब तो मेरे से सब विरोधी थे, फिर मेरी ये सत्संग की वजह से मैं सबसे साथ मिलजुल रही हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं उसको स्वीकार लेती हूँ, जैसे भी है मैं मिल जाती हूँ उसके, हर प्रसंग में उसके आगे होती हूँ।
1: जी, बिल्कुल। तो आपने सबके साथ तालमेल बनाए रखा?
0: अभी भी बना ही रखा है।
1: जी, और बहू के साथ आपका कैसा व्यवहार है?
0: बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, उसका नाम भी ऐसा ही है जैसा उसका काम है, उसका नाम है शीतल। तो बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है।
1: जी, तो आपने बहू और बेटी को समान समझा?
0: हाँ, बेटी से बढ़कर भी बहू को मैंने अपने दिल में रखा है।
1: जी
0: कहते हैं ना, बेटी तो आती है तो जाती है,
1: जी
0: बेटी से हमारा क्या। हाँ, आती है, वो फोन भी करती है, सब हालचाल पूछती है, पर बेटी से बढ़कर है बहू,
1: जी बहुत
0: और बहुत
1: बढ़िया
0: बहुत अच्छी है,
1: जी
0: बहुत प्यारी है, और उस जैसा इसका नाम है ना, वैसा उसका गुण है।
1: जी और सिलाई काम आज भी आप करते हैं या
0: हाँ,
1: छोड़ दिया?
0: नहीं, करती हूँ अभी भी। अभी तो बहुत अच्छा सिलाई काम हाथ में बैठ गया है।
1: तो आप अपना ही करते हैं या अभी भी मोल का करते हैं?
0: उनका बेटे ना बोलते हैं कि अभी कोई जरूरत नहीं मम्मी, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, खेती है,
1: जी,
0: अभी बहुत अच्छा है।
1: तो पहले आप मोल का भी करते थे?
0: पहले पोल का नहीं, घर का पूरा करती थी, खेत करती थी, और पशुपालन, पशुपालन मेरे ऊपर था।
1: अच्छा, कितनी गाय भेजते हैं?
0: 3 गाय भैंसे थी, और उसके बछड़े बच्चे होते हैं वो थे,
1: तो आप अकेले
0: और
1: संभालते थे?
0: हाँ, हस्बैंड का तभी थोड़ा कम था साथ सहयोग,
1: जी, तो
0: कहती
1: वो
0: है
1: क्यों सहयोग नहीं करते थे फिर? आपने इतना क्यों पाला, खेती को
0: पैसे
1: संभाला?
0: के लिए, पैसा तो चाहिए ना घर चलाने के लिए, तो खेत में से जो उत्पादन होता है वो तो इतना नहीं होता था तब।
1: लेकिन आपके हस्बैंड तो होमगार्ड थे ना, तो सैलरी तो आती होगी ना?
0: हाँ, वो उसके खाते में जमा होती है, वो घर पर नहीं देते थे ना,
1: अच्छा, घर में पैसे नहीं देते थे
0: नहीं
1: तो
0: देते थे
1: घर
0: इसलिए।
1: कैसे चलेगा?
0: हाँ, बस दूध घर का है, सब्जी खेत की आती है, गेहूं भी खेत के आते हैं, तो और क्या चाहिए। जैसे कि बाहर से कुछ लेना है ना, तो वो गाय भैंस का जो दूध बेचने के बाद जो पैसा आता है ना, उसमें से मेरा घर चल जाता है।
1: इसलिए आपने गाय भैंस रखी कि
0: हाँ
1: आपके हस्बैंड पैसे नहीं देते थे?
0: हाँ तभी भी नहीं देते, अभी भी नहीं देते,
1: अभी भी नहीं देते?
0: नहीं देते।
1: तो फिर पैसों का क्या करेंगे वो?
0: वो तो क्या करेगी, ले जाएंगे साथ में, कोई नहीं ले जाता है ना, यहाँ ही पड़ा रहेगा।
1: अच्छा, तो आप जैसे आबू आए, अभी आप रेडियो मधुबन में हमारे साथ है, तो किराया भी लगता है, पैसा भी चाहिए बाहर जाने पर, तो कौन देता है फिर आपको? अच्छा,
0: बेटा देता है ना,
1: बेटा देता है।
0: बेटे से मांगती हूँ, मेरा स्वभाव यही है कि मैं भांगती नहीं, वो सामने से बोलता है कि अभी तो आपका खलास हो गया होगा, इतना दिया था, अब खलास हो गया होगा तो लो मम्मी, मैं तो पहले तो ना ही बोलती थी, मुझे नहीं चाहिए। फिर यहाँ आए तो
1: बाहर जाते हैं तो फिर पैसे दे देते हैं बेटा, लेकिन हस्बैंड आज भी नहीं देते हैं।
0: नहीं
1: और आज भी जॉब उनकी जारी है,
0: नहीं वो रिटायर्ड हो गए।
1: रिटायर्ड हो गए, पेंशन आती होगी।
0: नहीं पेंशन नहीं आती उसमें, नहीं आती है, होम गार्ड
1: अच्छा
0: में नहीं आती है।
1: अच्छा फिर भी थोड़ा बहुत पैसा उनके हाथ में होगा, लेकिन देते नहीं है
0: हाँ वो सारा जमीन का पैसा तो आता ही है ना,
1: जी, खेती बाड़ी का।
0: खेती बाड़ी का
1: तो फिर खेती बाड़ी में से भी आपको नहीं मिलता, जबकि आप तो काम करते हैं।
0: से नहीं मिलता।
1: अच्छा
0: ये महिलाओं की जिंदगी ऐसी टगल वाली है।
1: हाँ, फिर भी आप खुशी खुशी उसको बर्दाश्त करके चल रहे हैं।
0: स्वीकार लिया ना जैसे भी है।
1: जी। तो चलिए कार्यक्रम के अंत में आप हमारी बहनें सुन रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे?
0: मेहनत करना है, मेहनत से डरना नहीं है, और हर परिस्थिति का डट के सामना करना है। जब सामना करेंगे आगे बढ़ेंगे तभी हमें अंदर से खुशी भी आएगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।
1: जी चलिए, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है मधु जी, सभी नारी शक्ति को, कि मेहनत करना है और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है। जैसे आप पशुपालन करके थोड़ा बहुत पैसे बचा करके कहीं जाते हो तो लेके जाते हो,
0: नहीं
1: बाकी घर से नहीं मिलता है।
0: और सहन शक्ति एक बड़ी शक्ति है, वो सहन शक्ति से हमारा सबके साथ संबंध अच्छा रहता है।
1: जी,
0: सहन करेंगे ना तो सबके प्यारे रहेंगे।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है मधु जी ने, बहुत बहुत आभार। आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव सभी के साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू जी, थैंक यू उषा दीदी जी, आपका बहुत बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, और बहुत बहुत दुआएं देती हूँ आपको।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मधु जी राठौड़ हमारे साथ बने हुए थे। आप जूनागढ़ बांटवा से पधारे हैं और आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए हैं। देखिए, आपने जाना है कि नारी शक्ति कितनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका एक रुपये पर भी अधिकार नहीं होता है, फिर भी आप खुश है, परिवार को साथ में लेके चलते हैं। और सत्संग में जाना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप ईश्वर भजन करते हैं। तो परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया और आपके साथ अव्यवहार किया, फिर भी आप सहनशीलता के दम पर और मिलनसार संस्कार होने के दम पर सभी को साथ में लेके चले और हमेशा खुश रहे, और आज भी खुश है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: देखो एक बार फिर से बारिश का मौसम आ गया। क्या आपके इलाके में भी घनघोर घटा छाई हुई है और टिप टिप बारिश हो रही है? अगर नहीं हो रही हो तो हम यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं बादलों को, इन बादलों में छुपे प्रेम को और बारिश की बूंदों को स्वीकार कीजिए। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आज हम देखना चाहते हैं कि बारिश के मौसम से, इस ऋतु परिवर्तन से पर्यावरण में, प्रकृति में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और यह चेंजेस देखने के लिए महसूसता की शक्ति को बढ़ाना है और सुनना है आज के गीतों को। तो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम कार्यक्रम है गुलदस्ता। मैं हूँ आपकी वही सुरों की सहेली स्वर्णलता। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मम्मी मम्मी।
2: हाँ बेटा।
1: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है। वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पिटती होगी। क्यों ना हम उसे पढ़ाएं?
3: इतना तो हम

0: ऋतु परिवर्तन से मनमोहक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे ही कोई ऋतु का परिवर्तन होता है, उस समय इंसान के मन में भी और बाहर प्रकृति में भी कुछ न कुछ ऐसी बातें देखने को मिलती हैं, जिससे हमारा मन हर्षित हो जाता है और हर्षित मन कुछ न कुछ इजहार करना चाहता है। हर्षित मन कुछ न कुछ नया करना चाहता है ना? सुर से मन को हरने आ जाती हूँ मैं स्वर्णलता, और घटाओं बूंदों पानी से रिमझिम रिमझिम ये जो बरखा की बूंदे हैं, यह भी हम सब के हृदय को हर लेते हैं। घटा दीवानी है, नदियाँ गीत गाती है, लहरों में सरगम की गूंज होती है, मस्तानी पुरवाई चलने लगती है, बूंदों में है छमछम। तो मनमोहक बादल को देखने के लिए और प्रकृति में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उसे समझने के लिए आज के गीतों को हम सुनेंगे। आज के गीतों में सिर्फ वोकल सॉन्ग्स ही नहीं बल्कि ऑर्केस्ट्रा भी है, साज भी सुनने को मिलेंगे, तो है ना कमाल की बात। बने रहिएगा अंत तक रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुरों की सहेली के साथ आप बने रहेंगे कार्यक्रम के अंत तक सुनते हुए मुस्कुराते हुए।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: मेघा गरजे बूंद न बरसे। बरखा ऋतु के आगमन पर आपने देखा कितना मन हर्षित हो रहा था, और अपने इस हर्षित स्थिति को दर्शाने के लिए मेघ मल्हार गाया जा रहा था। रिमझिम रिमझिम बूंदे आई, अपने संग ठंडी पुरवाई लाई। खिले बाग और महके चमन, भा गई बारिश सबका मन। काले बादल नभ पर छाए, देखो मोर भी नाच दिखाए। मेंढक ने गीत सुनाया, बरखा रानी का मन ललचाया। तो जब बारिश का मौसम आता है या बरखा ऋतु मेहरबान होती है, उस दौरान बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बहुत रिपीट होते हैं, जैसे टिप टिप पानी बरसा, घनन घनन मेघ गरजा, मेघा बरसे, छम छम नाचत आई बहार। ये सब काव्य जगत की रौनक को बढ़ाते हैं, खासकर ये शब्द। तो ऐसे ही हमारे गीतों में भी ये शब्द भरे पड़े हैं। इन शब्दों को आप चुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता, और मैं हूँ सुरों की मल्लिका स्वर्णलता।
1: 10 प्रकार ऑफ मल्हार, लेट्स बिगिन। मिया मल्हार।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: बैक टू बैक दो प्रस्तुतियों का अपने आनंद लिया कार्यक्रम गुलदस्ता में, जहां पर आज हम बरखा ऋतु के आने के बाद जो भी परिवर्तन होते हैं, चाहे हम मनुष्यों में, चाहे प्राणी जगत में, चाहे वनस्पति जगत में, यह सब हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने देखा कि कैसे म्यूजिक बनाने वाले भी इन सब बातों को देखते हैं और उसे शामिल करते हैं, चाहे धुन में, चाहे शब्दों में, चाहे किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, पर वो उस सिचुएशन में सटीक शब्द ज़रूर पिरोते हैं, है ना। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर हम सब एंजॉय कर रहे हैं बरखा के गीतों को, कार्यक्रम है गुलदस्ता। दोस्तों, एवरी ईयर बारिश को लाने का प्रयास किया जाता है, हमारे दिल में शास्त्रीय संगीत की जो मिठास है वह रंग जाती है। बारिश ऋतु से तपती धरती को शीतलता मिलती है और प्राणियों के हृदय में भी, वनस्पति जगत में भी हरियाली छा जाती है। तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बीत जात बरखा। तो इस गीत को हम सुनेंगे और एंजॉय करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वर्षा ऋतु का आनंद आप एकांत में भी ले सकते हैं, तो परिवार वालों के साथ भी ले सकते हैं। और हाँ, यह ऋतु अपनों की याद दिलाती है, जिनके साथ आपका रेगुलर उठना बैठना होता है, जिनके साथ बहुत मीठी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। ऐसी आत्माएं, ऐसे लोग, ऐसी रूहें आपको याद ज़रूर आएंगे। ऐसे दिनों में आपने कौन सा खास कार्य मिलकर किया जिसे आनंद दुगुना हो गया था बीते दिनों, वो बातें भी याद आती हैं। रेडियो मधुबन पर आप सब छाए हैं और आप सबको याद होगा कि थोड़ी देर पहले हमने 10 प्रकार के आपको मल्हार सुनवाए थे। उसमें एक शब्द आया था सावन, पर जनाब अभी सावन आया नहीं है। बरखा ऋतु दो भागों में विभाजित होते हैं, एक मॉनसून का मौसम जो बरखा ऋतु लेकर आता है, और दूसरा सावन जब बारिश और तेज हो जाती है। तो अभी मॉनसून का प्रभाव चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। जी हाँ, मॉनसून के कारण भी बारिश में तीव्रता आ जाती है। तो आज के कार्यक्रम को आप एंजॉय कर रहे हैं और आज हमने कुछ वाद्य यंत्र भी शामिल किए हैं जिससे आप मेघ मल्हार भी सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने बैक टू बैक प्रस्तुतियों में सुना था। तो इन दिनों मेरे मन में तो बारिश के शब्द ही गूंज रहे हैं मन में। धरती पर हरियाली छाई, खेत खेत में खुशहाली आई, बच्चों ने कागज की नाव बनाई, पानी में फिर उसे दौड़ाई। तो ऐसी बातें आप भी नोट कर रहे होंगे, तो आप भी रच डालिए कोई कहानी या कोई कविता। तो आइए सुनते हैं अगला गीत।
1: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

बारिश पर और बरखा ऋतु पर हम विविधता से भरे गीत सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में। आज हम सभी ने जाना कि बारिश का जो पहला फेज होता है वह मॉनसून कहलाता है और दूसरे फेज में हम सावन के महीने में एंटर करते हैं। तो सावन के महीने में बारिश अति तीव्रता में होती है और मॉनसून जो है उस समय भी बारिश बहुत होती है, लेकिन तेज हवाओं का बहाव उस समय बहुत होता है। तो मॉनसून आखिर क्या है? मॉनसून एक अरबी शब्द मौसिन से बना है जिसका अर्थ है मौसम। यह मुख्य रूप से जून से सितंबर तक हिंद महासागर और अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम हवाओं द्वारा होते हैं। तो इस मौसम में क्या होता है कि गर्मियों में ज़मीन तेज़ी से गर्म हो जाता है और समुंदर से ठंडी और नमी भरी हवाएं ज़मीन की तरफ चलती हैं, जिसके कारण बारिश होती है, तूफान आते हैं, बहुत हवाएं बहती हैं और उथल पुथल खूब होती है इस समय। तो आज के प्रोग्राम को आप ध्यान से सुन रहे होंगे हमेशा की तरह, तो आइए हम अगले गीत की ओर बढ़ें। लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियां आपको सुनवाना चाहूंगी। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, उमड़ घुमड़ कर काले बदरा छा रहे हैं, गुड़ गुड़ करके बादल भी गरज रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि बरखा ऋतु में ऐसे शब्द बार बार हमें पढ़ने को सुनने को मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ।

0: This is Uma Shankar Mishra, former director CBI, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: तपती धरती को खुश करने के लिए और तपते मन को भी खुश करने के लिए, बारिश की बूंदों को लाने के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं। कोई वाद्य यंत्र बजाकर, कोई गीत गाकर, कोई तो कविता पढ़कर, कोई तो कुछ उपन्यास रचकर। तो देखिए ना, इस समाज में लोग तरह तरह के कार्यों में लगे हैं ताकि बारिश आप तक पहुंच सके। तो उनकी इन प्रयासों को भी हम करते हैं प्रणाम, नमस्कार। और आप ऐसे ही हर साल बारिश को लाने के निमित्त बनते हैं। तो बारिश ऐसे ही नहीं आ जाती, कहीं ना कहीं उसे लाने के लिए लोगों की जो पॉजिटिव भावनाएं हैं वो काम करती हैं। सुखद प्रयास ही सुखद फल देते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं।
1: मैया मोरी मैं नहीं मां खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: कार्यक्रम गुलदस्ता में अभी आपने मन को हर्षाने वाला, मन को प्रज्वलित करने वाला राग मेघ सुना, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग आप सभी ने सुना और यह खास आप सबके लिए हमने पेश किया सितार में। सितार जो कि बहुत ही चर्चित वाद्य यंत्र है और इस वाद्य यंत्र में हमने राग मेघ को एंजॉय किया हम सभी ने। तो आज के प्रोग्राम की विशेषता यही है कि हमने वोकल सॉन्ग के अलावा इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग भी आपके लिए रखा है। हम इसे भी सुन लें, थोड़ा सा हम अपना जो टेस्ट है वह भी बदल लें सुनने का, है ना। 10 प्रकार के मल्हार तो आपको हमने सुनवाए और इसलिए हमने राग मेघ को सुनवाया वाद्य यंत्र में। तो आज स्वर्णलता को जाने की इजाज़त दीजिए और जाते जाते आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि बारिश के पानी को हम सब थैंक यू करें, क्योंकि इसके कारण सारे रास्ते धुल जाते हैं। बड़े बड़े कार्यालय जिसको आप बाहर से धो नहीं सकते, लेकिन बारिश के पानी के कारण ये धुल जाते हैं, है ना। बारिश में कलाकारों की महफिल भी खूब सजती है, वे भी आनंद स्थिति को वातावरण में फैलाते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं। और इसके अलावा हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे ही हर साल हम बारिश के मौसम का लुत्फ उठाएं और बारिश हमेशा हम सबको आगे बढ़ाए। ठंडी ठंडी हवा चल रही, मन को भा रही है, बागों में लताओं पर फूल खिल रहे हैं। तो आज स्वर्ण लता को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और बारिश में रेनकोट और छतरी लेकर जाना ना भूलें। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते दोस्तों।
1: पता है इस रविवार को मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्या कहा? नहीं पता। हाँ भाई, तुम्हें कैसे पता होगा? अभी मैंने तुम्हें बताया ही कहाँ है। इस रविवार को मैं जा रहा हूँ अपने चाचा जी के घर। उनके बेटे का जन्मदिन जो है दोस्तों, सच में कितना मजा आता है ना जब कोई अपने जन्मदिन की दावत देता है। खेलना, कूदना, खाना पीना, भाई मुझे तो बहुत मजा आता है। चलो अब जल्दी से चलते हैं जमाल के घर।
2: क्या कहा? जमाल के घर क्यों?
1: अरे भाई, आज जमाल का जन्मदिन जो है और आज उसके घर में है दावत।
3: नहीं पकड़ पाया ना, दिखाता हूँ सबको।
4: बच्चों चलो जल्दी से शरबत पी लो।
5: अभी खेलने दो ना अम्मी।
4: अरे जमाल सुना तो।
5: ए पकड़ लिया।
4: देखिए ना जमाल के अब्बू, जमाल ना खुद शरबत पी रहा है ना ही अपने दोस्तों को पीने दे रहा है।
6: जमाल की माँ, यही तो मजा है बचपन का। एक बार खेलने लगे तो फिर कुछ याद नहीं रहता, ना भूख ना प्यास।
7: ना भूख ना प्यास, बचपन के दिन बड़े खास।
4: मीना, मीना बेटी।
8: जी चाची।
4: जमाल से कहना कि शरबत पी ले।
8: अभी कहती हूँ चाची। जमाल, जमाल।
5: जी मीना दीदी।
8: आओ शरबत पीते हैं।
5: बाद में पी लूंगा मीना दीदी, चलो ना खेलते हैं। राजू अब तेरी बारी है।
7: अब तेरी बारी है, तेरे बाद हमारी है।
5: हाँ, अब तेरी बारी है। मान लूं। नहीं, नहीं, चलो तेरी बारी है।
8: नहीं नहीं, तेरी बारी है।
9: हाँ हाँ,
8: अब राजू हम सब पकड़ेगा।
9: अच्छा फिर से।
4: क्या करूं इन बच्चों का।
6: जमाल की माँ, मेरे पास एक तरकीब है।
4: तरकीब?
6: हाँ, पहले तुम जरा मेरे लिए एक कप चाय बनाओ, फिर बताता हूँ।
4: लो बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप।
7: बाप रे बाप, चाय बनाओ आप।
1: जमाल की माँ चाय बनाने के लिए रसोई में गई।
5: राजू अब तुम भागो, मैं पकड़ता हूँ।
8: ठीक है, आओ
7: आओ, दौड़ लगाओ।
5: अम्मी अम्मी, राजू ना।
4: जमाल ध्यान से।
5: क्या हुआ अम्मी?
4: देखो तो, ये क्या है?
5: चूल्हा।
4: और चूल्हे में क्या है?
5: आग।
4: और आग से क्या उठ रहा है?
5: धुआं।
4: इसीलिए रसोई से दूर जाके खेलो, वरना इस धुएं से खांसी आ जाएगी।
7: खांसी आ जाएगी, बड़ा सताएगी।
5: लेकिन अम्मी,
4: जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। देखो, एक तो रसोई में चूल्हा भी जल रहा है और कढ़ाई भी गर्म है। अगर तुम खेलते खेलते उस पे गिर गए या गलती से उसे छू लिया तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा।
7: हाथ जल जाएगा, छाला पड़ जाएगा।
5: ठीक है अम्मी, चल मिठू।
7: चल मिठू, चल मिठू।
4: ये लीजिए जमाल के अब्बू चाय। अब बताइए इन बच्चों को एक जगह बैठाने की तरकीब।
6: अभी लो। जमाल, जमाल।
5: जी अब्बू।
6: पता है तुम्हारी अम्मी ने क्या बनाया है?
5: क्या बनाया है अब्बू?
6: सोचो।
5: अम्मी ने, हाँ, आपके लिए चाय बनाई है।
7: चाय बनाई है, आपको पिलाई है।
6: हाँ भाई मिट्टू, चाय तो बनाई है, लेकिन उसने जमाल और उसके दोस्तों के लिए हलवा भी बनाया है।
5: गाजर का हलवा?
4: हाँ, गाजर का हलवा, गर्मा गर्म।
7: गर्मा गर्म, खाने में कैसी शर्म।
5: मीना दीदी, राजू आओ, गाजर का हलवा खाते हैं।
7: हलवा खाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं।
6: देखा जमाल की माँ, काम कर गई ना मेरी तरकीब।
4: ये रहा गर्मा गर्म गाजर का हलवा।
5: सबसे पहले मैं खाऊंगा।
4: रुको जमाल।
5: क्या हुआ अम्मी?
4: जरा देखो तो, हलवे में से क्या उठ रहा है?
5: धुआं। ओ समझ गया, धुएं से खांसी आ जाती है।
4: इस धुएं से खांसी नहीं आएगी।
8: मैं समझ गई जमाल, चाची का मतलब है हलवा ठंडा करके खाओ, नहीं तो जीभ जल जाएगी।
7: जीभ जल जाएगी, नानी याद आएगी।
1: उस
2: दिन जमाल की दावत में मिट्ठू ने सबको खूब हंसाया। जमाल और मिट्ठू की तो मानो पक्की दोस्ती हो गई थी। और अगले दिन मीना के घर में।
8: मीना, मीना, क्या हुआ राजू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो?
5: मीना, मिट्ठू का कुछ पता नहीं चल रहा।
8: मतलब?
5: पता नहीं कहाँ चला गया, सब जगह देखा लेकिन मिट्ठू कहीं नहीं मिला। कहीं फिर से जंगल में तो?
8: राजू तुम स्कूल में देख के आओ, मैं जंगल में जाके देखती हूँ।
2: मीना और राजू ने हर जगह ढूंढा लेकिन मिट्ठू कहीं नहीं मिला। वो दोनों उदास होके अपने घर के बाहर बैठ गए। तभी उन्हें सामने से आती दिखी जमाल की माँ। और पता है जमाल की माँ के साथ कौन था? उनके साथ था मिट्ठू।
8: चाची जी, मिट्ठू आपके साथ?
7: आपके साथ मिट्ठू, आपके साथ।
8: मिट्ठू कहाँ चले गए थे, शरारती कहीं के?
4: मीना बेटी, आज मिट्ठू की समझदारी की वजह से ही जमाल का हाथ जलने से बच गया।
8: मैं समझी नहीं चाची।
4: दरअसल जमाल के अब्बू के खेत पे जाने के बाद जब मैं हैंडपंप पे पानी भरने गई तो मिट्ठू तुम यहाँ?
7: तुम यहाँ? जमाल रसोई में है वहाँ।
4: क्या? मैं भाग के घर पहुँची तो देखा कि जमाल गरम गरम हलवे का बर्तन उठाने की कोशिश कर रहा था। जमाल ये क्या कर रहे हो?
5: हलवा ले रहा था अम्मी।
4: कितनी बार तुमसे कहा है कि आग और गरम चीजों से दूर रहो?
5: गलती हो गई अम्मी।
4: गलती तो मेरी भी है, मुझे तुम्हें घर में अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तुम ही सोचो, गरम बर्तन उठाते हुए अगर तुम्हारा हाथ जल जाता तो?
7: हाथ जल जाता, चीखता चिल्लाता।
5: आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मैं आज के बाद कभी भी आग और गरम चीजों के पास नहीं जाऊंगा।
7: नहीं जाऊंगा, हलवा भी ठंडा करके खाऊंगा।
8: अरे वाह मिट्ठू, तुम तो बड़े समझदार निकले।
7: समझदार निकले, होशियार निकले।
8: लेकिन चाची, मिट्ठू था कहाँ? हमने तो इसे पूरे गांव में ढूंढा, आपके घर भी गए थे।
4: मिट्ठू हमारे खेत में जमाल के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। जब आते जाते लोगों ने मुझे बताया कि तुम और राजू मिट्ठू को ढूंढ रहे हो तो मैं इसे सीधा यहाँ ले आई।
7: यहाँ ले आई, समझदारी दिखाई।
2: भाई वाह, आज तो खूब हंसाया मिट्ठू ने। दोस्तों, आप सब भी अपने छोटे भाई बहनों का खूब ख्याल रखना और उन्हें कभी भी गर्म चीजों या आग के पास नहीं जाने देना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक नई कविता।
8: बात हमारी ध्यान से सुनना, रखना याद जरूर।
7: गर्म चीज और आग से रखना तुम बच्चों को दूर।
2: भाई वाह, क्या बढ़िया कविता लिखी है अपनी मीना और मिट्ठू ने। तो क्या कहते हो, इसी बात पे हो जाए एक बढ़िया सा गाना।

0: गाना सुन के तो दिल बाग बाग हो गया। चलो अपनी खुशी को थोड़ा और बढ़ाते हैं कुछ खेल के।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे दिमाग लगाओ शब्द बनाओ। मैं तुम सबको एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है, और हर नए शब्द से जुड़ा क्या बनाना है? हाँ, तो आज का शब्द है कुर्सी। चलो अब कुर्सी शब्द के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ।
2: बहन जी, कुर्सी का पहला अक्षर है क, और क से होता है काजल।
1: शाबाश कृष्णा। और मुहावरा,
3: आँख से काजल चुराना यानी बड़ी सफाई से कोई चीज चुरा लेना।
1: बिल्कुल ठीक दीपू। चलो अब अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
4: क के बाद कुर्सी में आता है र, और र से होता है रंग।
1: शाबाश रानो। और मुहावरा,
5: रंग में भंग डालना मतलब खुशी में विघ्न डालना।
1: बिल्कुल सही गोलू। चलो बच्चों कौन बताएगा आखिरी शब्द?
6: बहन जी, क और र के बाद कुर्सी में आता है स, और स से सफेद।
1: बिल्कुल ठीक कहा मीना ने। अब बताओ सफेद से जुड़ा मुहावरा?
2: चेहरा सफेद पड़ना मतलब बहुत घबरा जाना।
1: बिल्कुल ठीक कृष्णा, शाबाश। मजा आया ना बच्चों?
0: मजा तो मुझे भी खूब आया, और आया भी क्यों ना, मीना से मिलके दिल खुश जो हो जाता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? फिर ठीक है, तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
7: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: रुको, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, ओ एक बाइक पे तीन है, ओ तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: कॉमिक चीकू,
4: कपड़े सुखाने की रस्सी लगी है, मैं इस रस्सी पर चलूंगा।
3: मीकू रस्सी पर चलने की प्रैक्टिस करने लगा।
4: मैं गिर गया।
3: मीकू साबुन वाले पानी में गिर गया।
4: ये तो साबुन वाला पानी है।
3: उसी समय बिल्ली आई और उसने मीकू को पकड़ लिया।
5: हाँ, गीला हो गया है, खाने से पहले सुखा लेना चाहिए।
3: बिल्ली ने मीकू को रस्सी से लटका दिया।
5: जब तक ना सूखे तब तक सो जाती हूँ।
3: चीकू मछली पकड़ कर आ रहा था।
6: अरे ये क्या, मीकू रस्सी में लटक रहा है। मीकू को बचाने के लिए बिल्ली को हटाना पड़ेगा।
3: थोड़ी दूरी पर वह आग जलाकर मछली को भूनने लगा।
6: मछली की खुशबू से बिल्ली जरूर इधर आएगी।
3: बिल्ली उठकर मछली ढूंढने लगी।
5: कोई मछली पका रहा है।
3: इधर चीकू ने मीकू को उतार लिया।
6: अब भाग।
3: बिल्ली वापस आ गई।
5: अरे मीकू तो भाग रहा है, मैं अभी पकड़ती हूँ।
6: बिल्ली तो मीकू को पकड़ लेगी, इस मछली के कांटे से बिल्ली को रोकूंगा।
3: चीकू ने बिल्ली को मछली के कांटों में फंसा दिया और इस तरह चीकू ने अपनी दोस्ती निभाते हुए मीकू की जान बचा ली।

सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा चार की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू। पहला पाठ, ईंटों से बनी इमारत। पृष्ठ एक, बंगाल के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। जब इसकी इमारत बनवाई जा रही थी, तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनवाने की योजना थी। जमाल, कालू और पीआर नाम के राजमिस्त्रियों को ये काम पूरा करना था। वो स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ मुर्शीद कुली खान का पुराना मकबरा देखने गए। चित्र देखें, यहां पर मुर्शीद कुली खान के पुराने मकबरे का चित्र बना है। इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना बड़ा सा फर्श है। इन्हें लगभग 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया था। ध्यान से देखो कि दिए गए पांच फर्श पैटर्नों में ईंटें किस तरह सजाई गई हैं। यहां पर मकबरे के एक हिस्से का चित्र है और दाहिनी तरफ है पैटर्न एक और पैटर्न दो, पृष्ठ दो, पैटर्न तीन, पैटर्न चार और पैटर्न पांच। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर तीन पैटर्न दिखाए गए हैं। तुम्हें कौन सा फर्श पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा है? रिक्त स्थान, क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं? रिक्त स्थान। सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आए। जमाल ने कहा, उन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे, हमने तो इन्हें भुला ही दिया था। चलो हम भी इस स्कूल के फर्श पर कुछ नए नए पैटर्न बनाएं। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता था। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते और गाते हैं और नए नए पैटर्न खुद भी बनाते हैं। इसी पृष्ठ पर निचले हिस्से में एक तरफ बच्चों का चित्र है और सबसे नीचे फर्श के अलग अलग पैटर्नों का चित्र बना है। पृष्ठ तीन, इस पृष्ठ पर कुल 11 पैटर्नों के चित्र बने हैं, जो इस प्रकार हैं: पैटर्न क, पैटर्न ख, पैटर्न ग, पैटर्न घ, पैटर्न ण, पैटर्न च, पैटर्न छ, पैटर्न ज, पैटर्न झ, पैटर्न य और पैटर्न ट। अब तुम इन पैटर्न को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दो। कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार में है? तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हो? अब तुम फर्श के कुछ नए पैटर्न बनाओ। पृष्ठ चार, ईंट का चित्र कैसे बनाएं? यहां एक ही ईंट के दो चित्र दिए गए हैं। ईंट की एक ही सतह देख सकते हैं, दूसरे चित्र में तीन सतहें नजर आ रही हैं। उस चित्र पर गोला लगाओ जिसमें तीन सतहें नजर आ रही हैं। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर की तरफ दाहिनी ओर दो ईंटों के चित्र बने हैं। एक ईंट में कितनी सतहें होती हैं? रिक्त स्थान, क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है? रिक्त स्थान। ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाओ। नीचे बनाई गई आकृतियों में से कौन कौन सी ईंट की सतह दर्शाती हैं? सही का निशान लगाओ। यहां पर त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज और अंडाकार कुछ आकृतियां दी गई हैं। इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है? सही का निशान लगाओ। यहां पर कुछ त्रिभुज चित्र बनाओ जिसमें उसकी तीन सतह नजर आएं। क्या तुम इस बॉक्स का ऐसा चित्र बना सकते हो जिसमें कि उसकी चार सतह नजर आएं? इसी पृष्ठ पर सबसे नीचे की तरफ दाहिनी ओर एक ज्योमेट्री बॉक्स का चित्र बना है। पृष्ठ पांच, ये दीवार गिर नहीं सकती। एक दिन मुनिया और जैनब ईंटों के साथ दोनों ने अलग अलग तरह की दीवारें बनाई। इसी पृष्ठ पर दाहिनी तरफ मुनिया की दीवार और बाईं तरफ जैनब की दीवार है। यहां पर जैनब और मुनिया द्वारा बनाई गई दीवारें दर्शाई गई हैं। जैनब ने कहा कि उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी। मिस्त्री भी ईंटें एक के ऊपर एक नहीं रख सकते हैं,
जैसा कि मुनिया ने किया है। तुम्हें क्या लगता है, कौन सी दीवार ज्यादा मजबूत होगी, क्यों? ऐसी दीवारें ढूंढो जहां ईंटों के पैटर्न अलग अलग ढंग के हों, दीवार के अलग अलग पैटर्न। यहां ईंटों के तीन अलग अलग पैटर्नों के चित्र दिए गए हैं। क्या तुम ईंटों को रखने के तरीके में अंतर देख पा रहे हो? यहां पर ईंटों के तीन पैटर्न का चित्र है। अब हर दीवार की फोटो का मिलान यहां दिए गए सही चित्र से करो। इस पृष्ठ के सबसे नीचे दीवारों के तीन पैटर्न का चित्र है। पृष्ठ 6, झरोखे से झांको। जिन मिस्त्रियों ने जागृति स्कूल बनाया था, उन्होंने अलग अलग तरह के जाली के पैटर्न भी दीवारों पर बनाए। यहां पर जाली के विभिन्न पैटर्नों का चित्र बना है। यहां पर दिए गए दो चित्रों में तुम्हें जाली के कितने पैटर्न नजर आ रहे हैं? पृष्ठ 7, ये एक और सुंदर जाली का चित्र है। यहां पर एक जाली का चित्र बना है। यहां दी गई दीवार के कुछ ईंटों में लाल रंग भरो और अपना जाली पैटर्न बनाओ। क्या स्कूल के इस चित्र में झरोखा देख सकते हो? यहां पर स्कूल के एक झरोखे का चित्र बना है। यहां दी गई दीवार पर काले रंग से कुछ झरोखे बनाओ। इस पृष्ठ पर सबसे अंतिम भाग में एक दीवार का चित्र बना है। पृष्ठ 8, ये जाली केरल के एक पुस्तकालय की इमारत पर बनी है। यहां पर पुस्तकालय की एक जाली का चित्र है। ध्यान से देखो कि ईंटों के कोनों से किस प्रकार दीवार में त्रिभुज बनाया गया है। यहां पर ईंटों के कोनों से बना त्रिभुज दिखाई दे रहा है। क्या तुमने कभी ईंटों से बनी त्रिभुज की आकृति को देखा है? इस चित्र में पेड़ के आसपास लगी ईंटों को देखो। यहां पर वृक्ष के आसपास ईंटों से बनी क्यारी का चित्र है। ईंटें त्रिभुज के आकार में दिखाई पड़ रही हैं। क्या इस चित्र में तुम्हें मेहराब नजर आ रही है? ये चित्र फैजाबाद के एक स्कूल का है। पता करो, अपने आसपास और मेहराब ढूंढो और उनके चित्र बनाओ। इस पृष्ठ के अंतिम भाग में बाईं ओर एक मेहराब का चित्र बना है। पृष्ठ 9, क्या तुमने किसी पुल में मेहराब की आकृति देखी है? तुमने और एक पुल के ऊपर बने मेहराब का चित्र है, एक विशेष मेहराब। ये चित्र ओरछा से लिया गया है। देखो इसमें मेहराब की बनावट कैसी है। इसका नाम भी बहुत अच्छा है, घूंघट वाली मेहराब। यहां पर एक और मेहराब का चित्र है। इस खिड़की की जाली सुंदर है ना, ये पतली ईंटों से बनाई गई है। क्या तुमने कभी पतली ईंटें देखी हैं? आसपास देखो। पृष्ठ 10, जागृति स्कूल के मिस्त्रियों जमाल और कालू ने बताया कि उनके दादाजी कई अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कुछ को चित्र में दिखाया गया है। यहां पर ईंटों का एक चित्र बना है। इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं? सबसे बड़ी ईंट की कितनी सतह नजर आ रही हैं? क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिसकी 6 से अधिक सतह हैं? पता करो ईंट का आकार। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटें देखी हैं? एक ईंट को लेकर उसे मापो। क, उसकी लंबाई कितनी है, रिक्त स्थान। ख, उसकी चौड़ाई कितनी है, रिक्त स्थान। और ग, उसकी ऊंचाई कितनी है, रिक्त स्थान। मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है, उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेंगी, रिक्त स्थान। ईंटें ही ईंटें भट्टी से निकली। गणेश और साहिबा ईंटें बनाने वाली भट्टी के पास रहते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये चिमनी कितनी ऊंची होगी? क, लगभग 5 मीटर। ख, लगभग 15 मीटर। और ग, लगभग 50 मीटर। यहां पर एक चिमनी का चित्र दिया गया है।
जिसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पृष्ठ 11। गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबी कतार को देखना अच्छा लगता है। वो ईंटों को बनते हुए भी देखते हैं। यहां पर धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबी कतार का चित्र है। नीचे ईंटों की भट्टी के चार चित्र दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से देखो। सही क्रम यहां लिखो। रिक्त स्थान। चित्र क, यहां पर बनी हुई ईंटों का चित्र बना है। चित्र ख, यहां पर ईंटें बनाई जा रही हैं। चित्र ग, यहां पर मिट्टी को ईंट बनाने वाले सांचे में डाला जा रहा है। खोदकर निकाली गई मिट्टी से ईंटें कैसे बनाई जाती हैं? चित्र देखो और समूह में चर्चा करो। पृष्ठ 12। क्या तुमने कभी ईंट पकाने की भट्टी देखी है? क्या तुमने कभी ये अंदाजा लगाया है कि वहां कितनी ईंटें हो सकती हैं? भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी हैं, हजारों की संख्या में, शायद 100,000 से भी ज्यादा। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी है? इस संख्या को 100,000,000 कहते हैं। क्या तुम इसे लिख सकते हो? अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने 100,000 की संख्या कहां सुनी है। पता करो, इस चित्र को देखो और अंदाजा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं। किसी ड्राइवर से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। यहां पर ट्रकों के दो चित्र दिए गए हैं जिसमें ईंटें लदी हुई दिखाई दे रही हैं। मन ही मन गणित। भजन ने ईंटें खरीदी। भजन ईंटें खरीदने गया। उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1,000 ईंटों के हिसाब से होती है। अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं। पुरानी ईंटें 1200 रुपए प्रति 1,000 ईंटें। ईटापुर की नई ईंटें 1800 रुपए प्रति 1,000 ईंटें। ब्रिकाबाद की नई ईंटें 2,000 रुपए प्रति 1,000 ईंटें। भजन ने ब्रिकाबाद से नई ईंटें खरीदना तय किया। उसने 3,000 ईंटें खरीदी। उसने कितने पैसे दिए? रिक्त स्थान। अगर वो 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? चींटा बोला, इसे बिना लिखे करो। इसी के साथ पहला पाठ ईंटों से बनी इमारत यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा। तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदो। ध्वनियांकन विकास सांगवान। निर्माण सहयोग रुचि शर्मा। निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: हेलो सैंडी भाई, आप कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ वेदांत, तुम कैसे हो?
0: मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप आज इतने उदास क्यों हो? आपकी आवाज़ से लग रहा है।
1: मैं उदास नहीं हूँ, बस

0: क्या हुआ सैंडी, पूरा इंसिडेंट बताओ तो।
1: पता है दीदी क्या हो, मैं क्लास में कोई बच्चा है उसमें थोड़ा पढ़ने वीक है, तो उस बात को लेकर सब बच्चे से चिढ़ा रहे थे, तो काफी रोने जैसा हो गया, फिर वो शायद छुट्टी लेके घर भी चला गया।
0: ओहो,
1: कुछ ज्यादा ही नहीं, वो रोने जैसा हो गया,
0: छुट्टी लेके घर भी चला गया। ये तो बहुत गलत बात है, किसी को इतना परेशान कर देना कि उसे बुरा लग जाए, रोना आ जाए। पता है इसे क्या कहते हैं?
2: क्या कहते हैं दीदी?
0: दृष्टि, आपको पता है?
3: दीदी नहीं।
0: इसे कहते हैं बुलिंग, यानी सताना,
2: टॉर्चर करना।
0: किसी को इतना परेशान कर देना कि वो रोने लगे या फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, इरिटेट हो जाए।
3: दीदी मैंने ये वर्ड बचपन में सुना था, तो मुझे लगा कि इसका मतलब होगा बुल को खुजली हो रही है।
4: दीदी बुलिंग का मतलब मेंटली टॉर्चर भी होता है ना?
0: बच्चों बुलिंग कैसे भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है। ये जैसे हम कहते हैं ना शैतानी, तो ठीक है, मस्ती मजाक तो ठीक है, लेकिन जब वो बदमाशी में बदल जाए, किसी को हर्ट करे, किसी को फिजिकली पेन हो या फिर मेंटली प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर हम उसको बुलिंग कहेंगे, सिर्फ मस्ती नहीं कहेंगे उसको।
3: ओ दीदी आपने तो कुछ नई बात सिखाई आज।
2: पता है दीदी मेरे साथ भी क्लास में यही होता है, सब मुझे चिढ़ाते हैं।
3: कैसे?
4: विधान दिया, आप चिंता मत करना, अगर अब से आपको कोई चिढ़ाए तो मुझे बुला देना। किसको? आकाश को।
0: क्या बोलते हैं विधान?
4: विधान भैया आप तो इतने मोटे हो, आपको लोग पतली हड्डी क्यों बोलते हैं?
0: इसी को बुलिंग कहते हैं आकाश, जो आप इस वक्त कर रहे हो।
5: हाँ दीदी, जैसे कभी भी भैया गार्डन जाएंगे तो उन्हें कोई भी उनके नाम से ना बुला के हड्डी हड्डी बुलाता है।
3: और दीदी मैंने कभी कभी आकाश भैया को भी देखा है कि वो विधान भैया को बोलते रहते हैं कि पता नहीं कुछ बांस के ऊपर हड्डी लटक रही है।
0: अच्छा वेदांत, आपको ये तो जैसे मस्ती में कभी कभी चिढ़ाते हैं, कभी कभी आपको इस चीज का बुरा भी लगा है क्या?
2: बहुत बुरा लगता है, मैं तो अपनी हर बात आके अपनी मम्मी को बताता हूँ। मम्मी बस इतना कहती है कि अगर तुम ऐसे छोटी मोटी बातों से उदास हो जाओगे तो लाइफ में आगे कई ऐसी सिचुएशन आएंगी, तो तुम हमेशा इन्हें इग्नोर करो, ऐसे कहने से तुम बंद हो ना जाओगे। लेकिन फिर भी मुझे दुख बहुत पहुँचता है।
5: भैया रेडियो में आप बच्चों में सबसे सीनियर हो, और आपने मतलब हमसे भी ज़्यादा इतने अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी लिए हैं, और आपको कितने तरह के सॉफ्टवेयर भी चलाने आते हैं।
2: हाँ वो तो है।
3: और भैया आप इतने अच्छे हो, इतने स्वीट हो, कोई आपको कैसे चिढ़ा सकता है, मैं तो ये सोचती हूँ।
0: लेकिन जब आपने मम्मी से शेयर किया और मम्मी ने आपको गाइड किया, तो उसके बाद तो फिर बुरा नहीं लगता?
2: उसके बाद नहीं बुरा लगता, क्योंकि जब भी हम अपनी कोई दुखी चीज़, मम्मी हमेशा कहती हैं कि कोई भी चीज़ आपके साथ होती है बुरी चीज़, चाहे वो बुराई हो चाहे खुशी हो, उसको शेयर करते हैं ना तो मन का वो दुख कम हो जाता है, और खुशी शेयर करते हैं तो और मन को खुशी मिलती है।
0: अच्छा आकाश, आपने कभी ऐसी चीज़ कोई नोटिस की है जब आपके स्कूल में भी आ हो?
4: दीदी हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में, हमारी सेक्शन में हर रोज बुलिंग होती है, हर पीरियड में होती है।
0: अच्छा क्या होता है बताओ।
4: दीदी कुछ ऐसे पॉइंट किए हुए बच्चे हैं जिनके ऊपर बुलिंग की जाती है, जैसे उनमें कभी कभी मार्क मेरे पे भी पड़ जाता है, लेकिन मैं कभी इन पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि दीदी पहली बात तो बात रिसेस से चालू होती है। एक मोटा सा लड़का है, उसका पेट बहुत ही बाहर है, तो वो रिसेस में लेट तक खाना खाता है, बैल भी बज जाती है, तो जो हमारा क्लीनिनेस मॉनिटर है वो उसे हमेशा चिढ़ाता है, मोटू अभी तक खाना ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा कम खाया कर, पेट फूल रहा है तेरा बहुत ज़्यादा। और कभी कभी एक लड़का है, कभी कभी एक और लड़के को चिढ़ाते हैं कि प्लास्टिक का पतला, वो बहुत ही पतला है।
0: तो क्या उसको बहुत बुरा लगता है, कभी आपने उससे बात की?
4: अरे दीदी उसको क्या बुरा लगता है, जो उसको चिढ़ाता है वो उसी को चिढ़ाता है,
0: मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। तो किसी को ऐसे हर्ट नहीं होता?
4: नहीं, कभी कभी जो हेल्दी लड़का है वो कभी कभी गुस्सा हो जाता है, बाकी सब नॉर्मल चलता है।
0: अच्छा तो गुस्सा हो जाता है वो, तो फिर क्या करता है?
4: फिर क्या करता है, अपने बाल इधर उधर कर देता है हाथों से, और फिर एक जगह जिसका भी बेंच मिलता है उसका बैग नीचे रखता है, जो उसको चिढ़ा रहा होता है बैग नीचे रखता है और उसी के ऊपर बैठ जाता है।

0: जो ये भी कभी कभी होता है क्योंकि उस टाइम तो नहीं पता चलता, ऐसा लगता है थोड़ा सा चिढ़ाया चल गया, लेकिन जब वो बार बार बार बार वही चीज होती है तो वो मन में घर कर जाती है और ऐसे रिएक्शंस फिर बाहर निकलते हैं। सैंडी, आपने कभी ऐसा कुछ नोटिस किया है या हुआ है?
1: 9th, 10th, 11th, 12th हमें क्लास में चलती रही है और मैंने खुद ने शायद किया है।
0: अच्छा, और कोई इंसिडेंट एक शेयर करो आप।
1: हाँ, 11th क्लास में हम 10-11 जने फ्रेंड है, तो हमारा क्या ना, हम सब दो जने आगे बैठेंगे, दो जने पीछे बैठेंगे, दो जने सबसे पीछे बैठेंगे, तो ज़्यादातर मैं आगे बैठता था, तो हमारी थर्ड पीरियड हमारा मतलब फ्री रहता था, तो हम सब साथ में बैठ जाएंगे। तो हमारा ऐसा क्या था कि हम सोच ही रखते आज किसकी इसकी उड़ानी है, तो ऐसे करके हमने एक क्लास में एक लड़का था उसको ज़्यादा उड़ा दी थी, क्योंकि थोड़ा वो हाइट में भी छोटा है, फिर बाद में थोड़ा पढ़ने में तो ठीक ठाक है, पढ़ने में तो हमसे काफ़ी होशियार है ऐसे तो, बाकी हमारे क्लास में ऐसा था कि हमको कोई बोल भी नहीं पाता था, क्योंकि हमने किसी की मजाक उड़ाया तो उसकी हिम्मत नहीं कि हम मजाक आके बोल दे तो मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, फिर सर को भी बोल दे, क्योंकि कुछ हमारा थोड़ा सा रुतबा था इसीलिए, बाकी तो हमने कुछ उसकी ज़्यादा कुछ उड़ा दी थी, तो फिर वो थोड़ा रो भी गया, फिर रो गया तो हमने चुप तो करा दिया, फिर दो दिन स्कूल नहीं आया, तो फिर उसके बाद से फिर हमने फिर बंद कर दिया किसी को बुलिंग करना, फिर तब से हमने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं उड़ाना, तब से फिर मजाक ही करते रहे, फिर वही 11th, फिर 12th में आके वापस हमारा वही स्टार्ट हो गया, 11th तो बंद कर दिया हम लोगों ने, फिर 12th में अब खाली पीरियड रहता था, टीचर होते नहीं थे तो फिर करे क्या, तो फिर हम लोग यही करते थे। फिर एक बार हमारी क्लास में कुछ फ्रेंड है दो तीन, उनसे मेरी थोड़ी दोस्ती टूट गई थी, क्योंकि अब पंकज की क्लास और हमें क्लास से कभी बनती नहीं है, तो मैं हमेशा पंकज को सपोर्ट करता था, तो हमारी क्लास वाले बोलते थे कि तू उस क्लास साइंस क्लास को सपोर्ट करता है जबकि कॉमर्स में है, मतलब मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, तो मैं सपोर्ट करूँगा जब उनके साथ में होगा, तो फिर मेरी क्लास वालों ने सोचा कि जब उनके साथ रहता था मेरी मतलब बोलिंग करने की कोशिश करी, मैंने सोचा कि इसको सताएंगे, उन्होंने कोशिश करी पर मैं उन पर ही भारी पड़ गया।
0: अच्छा, मतलब आपने बुरा नहीं माना, उन्होंने
1: बुरा मानता ही नहीं था, क्योंकि पंकज ने मुझे बोल रखा तेरे जब कुछ बोले ना तो डबल उनका फायदा उठाएगा, तो हम वो मुझे पेड़ में बोलते थे, फिर रिसेस होता था, रिसेस मैं और पंकज साइंस का हमारी पूरी क्लास, मैं उन पर भारी पड़ जाता था, फिर उन्होंने फिर छोड़ ही दिया, फिर मुझसे बात करने ही बंद कर दिया, बोले इससे तो बोलना ही नहीं।
0: जब हम नहीं चिढ़ते हैं तो अल्टीमेटली उनको स्टॉप करना ही पड़ता है।
1: हाँ, अगर हमें कोई चिढ़ाता है तो हम उसे नोट करते हैं ना, तो सामने सोचता कि हाँ इस बात पे बुरा मान रहा है, उस पर नोट ही नहीं करना, तो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, फिर चुप हो जाएगा।
0: बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और यश, आपने कभी ऐसी कोई चीज नोटिस की है?
2: हाँ, हुआ तो था।
3: किसके साथ भैया?
2: पिछले साल जब मैं पिछले स्कूल में था तब एक लंबा सा लड़का था और थोड़ा हेल्दी था और मतलब मारपीट बहुत करता था, बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं था, और बस उसकी हाइट वेट और मतलब थोड़ी बॉडी की वजह से उसके मतलब सब उसी के पीछे रहते थे, कोई भी उसको कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, बहुत चिढ़ाता था बेकार में, मैंने उससे कुछ पंगा नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोलता था उससे, वो बेकार में मेरे को चिढ़ाता रहा और फिर मतलब मैं कुछ भी नहीं करता रहा, मैंने उसे छोड़ दिया, वो बेकार में बोलता था बहुत।
0: तो वो क्या बोलता था आपको, क्या चिढ़ाता था?
2: दीदी वो तो ऐसा बहुत कुछ बोल जाता था जो नहीं बोलना चाहिए। मैंने टीचर को भी 2-3 बार कंप्लेंट की बट लेकिन वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाता था, वहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं बट लेकिन वहाँ पे कोई इतना देखता नहीं था।
0: तो फिर क्या हुआ अल्टीमेटली, आपने क्या किया, कैसे उसकी बुलिंग को स्टॉप किया?
2: मैं बस उस पर ध्यान नहीं दिया करता ज़्यादा, उसके बाद फिर आते जाते वो कभी भी अगर मेरी तरफ देखे तो अपने आप ही बिन ध्यान दिए वो खुद भी चले जाता था।
0: अच्छा, देखो ये तो फिर वही तरीका हुआ जो सैंडी ने अपनाया कि मतलब जब हम ध्यान नहीं देते, जब वो लगातार परेशान करे बट हम उस पर चिढ़ते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं, तो अपने आप स्टॉप हो जाता है। लेकिन बच्चों एक और बात याद रखना, अगर बुलिंग इतनी बढ़ जाए कि आपको वो हार्म करने लगे किसी भी तरीके से तो बड़ों को बताना बहुत जरूरी है।
2: जी दीदी, उस समय मेरे साथ ऐसे बहुत हुआ था, मेरे को मतलब अभी भी लगता है जब मैं सोचता हूँ उसके बारे में तो मतलब मुझे लगता है कि मैंने उस समय किसी और को क्यों नहीं बताया।
1: दीदी पता है मेरी मौसी है वहाँ पास में रहते हमारे, उनका ना लड़का अभी 9th में आया, उसको काफ़ी बच्चों ने मतलब इतनी ज़्यादा बुलिंग कर दी थी कि वो स्कूल नहीं जाने, बोले मुझे स्कूल जाना ही नहीं, बोले वो स्कूल मुझे पसंद ही नहीं। फिर मौसी ने मुझे फ़ोन किया, बोले कि घर पे आओ, बोले देखो क्या बात है, क्योंकि मुझसे हर बात शेयर करता था कि स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, किस बात के लिए, बोले काफ़ी स्कूल अच्छी है, फिर भी ना बोल रहा, बोले नहीं मुझे स्कूल में पढ़ना ही नहीं, बोले पढ़ाई नहीं होती, बोले ये बोले पढ़ाई नहीं होती, पहले तो अच्छी लगती थी अब तो। फिर मैं गया, फिर मैंने उससे बात करी, बोले क्या हुआ, उसने मुझे बताया भैया लड़के मुझे वो चिढ़ाते, बोले उस बात के लिए मुझे परेशान करते रहते, तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम स्कूल गए, फिर उस प्रिंसिपल से बात करी, तो प्रिंसिपल ने फिर बच्चों के सामने बच्चों के लिए फिर एक्शन लिया, फिर उस दिन से उसको बुलिंग करना बंद किया। फिर मैंने उसको समझाया कि अगर तुझे कुछ बोलता ना तो नोट मत किया कर, फिर अगर उनकी कोई बात होती तो उनको नोट किया कर, फिर तू उनके साथ बुलिंग किया कर। फिर उस दिन से फिर उसको स्कूल में अच्छा लगने लगा।
0: एक्चुअली हमें बुलिंग करना तो रास्ता नहीं है सही, क्योंकि हम भी वही करेंगे जो गलत है। कभी कभी हमें डरना नहीं है, जब जवाब देना है तो जवाब भी देना है, लेकिन कई बार जब बुलिंग हो तो इग्नोर भी करना है। और जैसा कि सैंडी ने बताया कि बड़ों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है।
2: कई बार ऐसा होता है दीदी, बुलिंग की वजह से बच्चे स्कूल भी छोड़ देते हैं, और कई बार तो ज़्यादा बात बढ़ जाती है तो बहुत गलत स्टेप भी ले लेते हैं, सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। इसलिए अच्छा ये होता है कि आप अपने बड़ों के साथ शेयर करें।
0: अच्छा, कभी आप लोगों ने ये सब तो एक एक इंसिडेंट्स शेयर किए अपने, उसके बाद जो इफेक्ट होता है उसको नोटिस किया है कभी?
1: हाँ, बस ये देखा बच्चों की मतलब वो उदास हो जाते हैं, उनसे कुछ बुलिंग करते हैं ना तो उन्हें ऐसा डर हो जाता है कि स्कूल में मैं जाऊँ, सोचते हैं कि जब क्लास में बैठूं कि नहीं बैठूं, बस उनका ये रहता है कि क्लास कब खत्म हुई, मैं कब घर जाऊं,
0: कब घर जाऊं। मतलब वो स्कूल को एंजॉय नहीं करते,
2: पढ़ नहीं पाते हैं।
1: हाँ, और अपनी कोई बातें होती है ना जो कि वो खुल के किसी सामने बोल भी नहीं पाते, फिर डरते हैं कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर मेरा मजाक बनाएंगे, फिर मुझे बुलिंग करेंगे, तो बहुत डरते हो।
0: आकाश, आपने कभी ऐसा कुछ इफेक्ट नोटिस किया है, इसका क्या होता है अपने ऊपर या अपने किसी दोस्त के ऊपर?
4: जनरली मैंने मूवीज में देखा है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन जब मैं सेकेंड थर्ड क्लास में था उस टाइम फर्स्ट में तो नया स्कूल में आया था, तो नए बच्चे को तो इतना परेशान करते हैं नहीं, जैसे सेकेंड थर्ड क्लास मेरी बहुत ख़राब गई, क्योंकि उस टाइम बच्चे मेरे जो दोस्त भी थे फर्स्ट क्लास के वो भी उस टाइम मेरे दुश्मन बनते जा रहे थे। मतलब मैं पेंसिल शार्पन करने के लिए भी डस्टबिन तक जाता था, उसमें भी पता नहीं मेरी बुलिंग कर लेते थे।
0: तो आप क्या मतलब आपको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था या?
4: फिर उस टाइम मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी ये किस स्कूल में मेरे को भर्ती कर दिया, यहाँ पे तो कम से कम भेड़ भी चैन से नहीं पढ़ पाएगी।
0: अच्छा, मतलब आपको स्कूल जाने का मन नहीं करता था।
4: उसके बाद फिर फिफ्थ क्लास में ये हुआ तो मैंने मैम को बोला, तो मैम ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। फिर मेरे एक दोस्त है भैया जो अभी यहाँ पे नहीं, मेरे हमारे गांव में रहते, तो जब मैं समर वैकेशन में उनके पास गया था तो मैंने उन्होंने बोला तो कोई परेशान तो नहीं करता, मैंने बोला ऐसा सा, उन्होंने बोला कि ये जो बात तेरे साथ हो रही है ये तू है ना क्लास में जाकर उन्हीं के ऊपर ये बोल। तो फिर जब मैंने दो तीन बच्चों की ऐसे ही उड़ा दी, तब अपने आप जो मेरे दुश्मन भी थे ना, दो तीन साल पुराने दुश्मन, वो भी मेरे दोस्त बन गए।
0: लेकिन फिर जिनके साथ आपने मजाक किया उनको भी तो वैसे बुरा लगा होगा।
4: दीदी बुरा लगने की बात नहीं, एक बार अगर हम उनका मजाक उड़ा देते हैं ना तो उनको गिल्टी फील होती है, भाई इसने तो मेरा मजाक उड़ा दिया, अब तो मेरा पूरा साल बर्बाद, फटाफट से इससे दोस्ती कर लेते हैं।
0: मतलब जो बच्चे चिढ़ाते हैं आप उन्हीं को चिढ़ाते थे?
4: उसके बाद से अब हालांकि पूरी क्लास फ्रेंड है।
0: एक्चुअली जब हम मस्ती करते हैं साथ में तो मस्ती करना ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम उनसे भी ज़्यादा कुछ बड़ा कर दें मस्ती मजाक के चक्कर में, उन्हें जवाब देने के चक्कर में, तो जो इफेक्ट हम पे हुआ कई बार वो दूसरों पर भी हो सकता है। ठीक है, उन्हें जवाब ज़रूर दें लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दें।
3: दीदी मैं तो हमेशा से बुलिंग से बहुत मतलब वो रहती हूँ, मतलब मैं कभी उस पर ध्यान ही नहीं देती, मतलब दूसरे के साथ होता है ना तो मैं अपनी मम्मी को ज़रूर बताती हूँ, लेकिन फिर हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं उसके लिए, अगर उसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हमको क्या प्रॉब्लम।
0: मतलब जिसको परेशान किया जा रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं?
3: नहीं, उसको प्रॉब्लम होती है लेकिन वो अपनी मम्मी पापा को नहीं बताता है, तो मम्मी भी बोल देते हैं कि अब उसके मम्मी पापा को कुछ पता ही नहीं है तो फिर हम कैसे कुछ कर सकते हैं। और हमारी पहले जो मैं स्कूल में थी उसके टीचर्स भी इतने वो नहीं थे कि हाँ उस बात पर ध्यान दो।
0: अच्छा, तो बताओ ऐसे में फिर आपको क्या करना चाहिए?
3: मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैं कभी ऐसा कुछ करती ही नहीं हूँ कि मेरे साथ ऐसी कुछ स्थिति हो जाए।
0: लेकिन उस टाइम आप अपने उस दोस्त को ये जरूर कह सकते हो कि वो जाके अपनी बात अपने मम्मी पापा से कहे, या किसी दीदी या किसी बड़े से तो एटलीस्ट शेयर करे ही करे।
3: जी दीदी, ऐसे तो मैं कह सकती हूँ, लेकिन मतलब मेरा कभी ध्यान नहीं गया।
0: आपका ध्यान नहीं गया? अक्सर हम बच्चे अपने बातों में भी इन्वॉल्व होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है क्या करना है। लेकिन अगर आपको कोई दिखे ऐसा फ्रेंड जिसको बहुत परेशान किया जा रहा है, तो आप उसे ये जरूर समझाओ कि कई बार बच्चे डर जाते हैं अपनी बात कहने में, लेकिन ऐसे में डरना नहीं है। डरोगे तो वो बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। इसलिए अपनी बात किसी बड़े को जरूर कहो, और आपके दोस्त के साथ अगर ये हो तो उसे ये बात समझाओ।
3: जी दीदी,
0: है ना, क्योंकि आप लोग हर चीज मिलके सॉल्व नहीं कर सकते हो, अभी छोटे हो।
3: जी दीदी,
0: है ना वेदांत।
2: जी दीदी, हमें हर बात अपने बड़ों को बतानी जरूरी होती है।
0: कभी आपकी क्लास में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है और आपने उसमें क्या किया है?
4: दीदी, जब जमशेदपुर में गया था तो वहाँ पे स्कूल जैसा कुछ माहौल था नहीं, तो जो क्रिकेट खेलते थे बच्चे, उनमें से किसी एक ने, जो उसकी टीम था, वो उसका आखिरी ओवर था और वो अच्छा बॉलर था, तो उसने दूसरी टीम वाले का विकेट नहीं लिया, तो उसकी टीम वाले ने उसको खूब मारा, खूब पीटा, और पीछे से जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे उनको भी बुला के बुलाया, देखो बेटा देखो, थर्मोकोल लात मारो उसके ऊपर।
0: तो फिर उस बच्चे ने कुछ कहा नहीं?
4: तो फिर वो बच्चा है ना बहुत उदास हो गया, फिर उदास होने के बाद फिर वो साइड में जाके बैठ गया, फिर उन्हीं के सारे दोस्तों ने उसको आइसक्रीम खिलाई, और वो आइसक्रीम खा के, वो भी ऐसे नहीं खिला रहे थे प्यार से, अरे तू मेरा दोस्त है खा ले, ऐसे नहीं, मुंह खोला धड़ाधड़ सारी आइसक्रीम का कप और उसका जो कोन आता है वो सब मुँह में डाल।
0: तो आपके टीचर्स वहाँ पे नहीं थे उस वक्त?
4: दीदी, जमशेदपुर में गाँव था ना, मतलब क्या बोलते हैं, ग्राउंड में हम लोग खेल रहे थे, तो सबको लगा हम लोग मस्ती कर रहे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद वो भी आइसक्रीम खा के हंसने लगा, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसको मार रहे थे तब बाप रे बाप।
0: लेकिन अगर आप लोगों को, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, फिर से यही बात है, अगर आप लोगों को कभी ऐसी कोई बात दिखे तो अपने बड़ों को ज़रूर बताओ।
2: जी दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा।
0: और यश, आप क्या कहना चाहते हो?
2: दीदी, जब मेरे साथ हुआ था तब मैं घर पे तक तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन दीदी जैसे ही मैं अपनी जो हमें गाड़ी हमारे स्कूल तक छोड़ती थी, जैसे उधर बैठता था, मेरे दिल में यही डर होता था कि जैसे अगर मैं जाऊंगा तो क्या होगा मेरे साथ।
0: ऐसा क्यों?
2: पता नहीं, पहले तक जब तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता तब तक मेरे को स्कूल में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बहुत इन्जॉय करता था, जैसे आता था मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ मिलते थे। अभी मतलब मेरे को इस वाले स्कूल में भी यही लगता है, क्योंकि अभी इतना नया तो नहीं हूँ, बट लेकिन फिर भी नए होने के कारण भी कुछ लोग मेरे को अभी भी बोलते हैं।
0: क्या बोलते हैं आपको?
2: कि नया है तो नए जैसे बिहेव कर, यहाँ पे बड़ा बनने की कोशिश मत कर। उस समय सोच के लगता है कि यहाँ पे मतलब कैसा माहौल है,
5: तुम्हारी कोई जगह नहीं है,
2: स्टूडेंट जैसे कोई इज्जत देता ही नहीं है, एक टीचर तक खुद कहती है यू न्यू स्टूडेंट, ऐसे न्यू स्टूडेंट करके नाम से कभी नहीं बुलाई हो।
0: अच्छा,
5: टीचर भी अब कितना नाम याद रखे।
0: ठीक है, हाँ टीचर्स को कभी कभी नाम याद करने में समय लग जाता है,
2: लेकिन दीदी हर समय तो नहीं होगा ना, कभी ना कभी तो कोई ना कोई स्टूडेंट बोलेगा ही, और बहुत बार बोला भी है कि ना ये नाम है, बट लेकिन फिर भी हर बार यही बुलाते थे।
0: ओके, आप उन्हें रिमाइंड करा सकते हो, और तो और बच्चों अगर आपको इस चीज़ का बुरा लगता है ना, तो उनसे बात भी कर सकते हो कि सर या मैम मेरा नाम ये है और आप जब मेरे को ऐसे बुलाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बच्चों, आप लोग को एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छे से बिहेव करना है, लेकिन किसी से डरना नहीं है।
3: जी दीदी,
4: हाँ दीदी,
0: और चाहे कितनी बुरी बात हो, कोई हमारे बारे में कुछ भी क्यों ना बोले, उसको स्ट्रॉन्गली अपने बड़ों को बताना है, कभी भी छुपाना नहीं है, क्योंकि छुपाने से बात
5: ताकत ना हो, पर स्ट्रॉन्गली बड़ों को बताना।
0: बिल्कुल
5: है।
0: आप ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनोगे जब ये सब चीजें आप फेस करते हो और अच्छे से आगे बढ़ते हो, तो आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बन के निकलते हो, है ना
3: दीदी?
0: ठीक है, और आपके कभी फ्रेंड के साथ भी ऐसा हो तो भी आपको बड़ों को बताना है। और खुद के साथ हो तो भी डरना नहीं है, छुपाना नहीं है।
3: दीदी आपको पता है मतलब ये बुलिंग टाइप नहीं है, लेकिन मेरी दो फ्रेंड्स हैं वो अमीर गढ़ की है, तो हमारे एक सर है वो ना इतना बुरा बोलेंगे, मतलब वो पेपर्स दिखा रहे थे तो मतलब वो रोल नंबर वाइज खड़े थे, सर ने बोला ये अमीरगढ़ वाले ऐसे ही कंफ्यूज रहते हैं, अपना रोल नंबर भी ठीक से याद नहीं रखते, तो वो तो रोल नंबर वाइज ही खड़े थे, फिर उनको क्यों ऐसा बोला, सिर्फ अमीरगढ़ से दुश्मनी की वजह से उनकी बस तक में जाकर बुरा बुरा बोलते हैं, और मेरे सामने भी उन्होंने ऐसा किया है। वो बोलते हैं कि तू तो इनके साथ मत ही रह, तू अमीरगढ़ चली जाएगी ना एक बार तो फिर तू भी इन्हीं की तरह पागल बन जाएगी।
0: कोई नहीं, कई बार जो ऐसे लोग बोलते हैं हम समझा तो नहीं सकते, तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, जो बात हमारे काम की नहीं है उस पर हमें ध्यान देना ही नहीं है,
1: इग्नोर करना।
3: और मेरी फ्रेंड बिल्कुल रोने जैसी हो गई, इतनी उदास हो गई, फिर मैंने उसको समझाया कि सर तो ऐसे बोलते रहते हैं।
0: और आप उसको भी समझा सकते हो कि ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा कोई बात हो तो किसी दूसरे टीचर से शेयर भी कर सकते हो। वैसे भगवान ने दो कान दिए हैं, एक कान से
3: सुनो एक कान से निकालो।
1: पर हाँ अच्छी बातें रखना हो
3: जी,
0: अच्छी बातें लो और बाकी बातें जाने दो, क्योंकि उससे आप कम ज्यादा नहीं हो जाते, आप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे ही रहोगे। और इसके लिए एक काम ये करना है, सुबह सुबह जब मॉर्निंग में आप लोग उठते हो तो खुद को याद दिलाओ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं बहुत ही अच्छा करने वाला हूँ।
3: जी दीदी,
4: दीदी कपाल भाती
0: नहीं, अपनी लाइफ में हमेशा डेली मॉर्निंग में उठ के खुद को जब हम ये चीजें याद दिलाते हैं तो जब ऐसे वीक मोमेंट्स आते हैं तो हमें वो चीज याद आ जाती है।
5: और सबसे बड़ी चीज मेरी मम्मी सिखाती है कि जो भी दिन में आपके साथ हुआ रात को वो भगवान को बताना चाहिए, इससे आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है।
3: मेरी मम्मी भी मुझे बोलते हैं।
0: तो क्या आप लोग ये चीजें एक्सरसाइज करते हो?
5: जी
3: जी
5: दीदी।
0: ठीक है, आकाश और सैंडी और यश, बहुत सारे तरीके मिल गए ना?
5: हाँ जी,
0: है ना। और कुछ नहीं तो आप लेटर भी लिख सकते हो।
5: हाँ
0: लिख
5: जी।
0: के गॉड को दिखा सकते हो, वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, है ना?
3: जी हाँ जी, जी।
0: तो इन्हीं सब रास्तों के साथ आगे बढ़ते जाओ, स्ट्रांग रहो और कभी भी मन में कोई गलत ख्याल नहीं लाना, बड़ों को बताना। ओके
3: ओके दीदी,
4: ओके दीदी।
0: तो चलो अब इस एपिसोड को हम यही खत्म करते हैं और कुछ और नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पिटती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, कक्षा 8 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। अध्याय 1 आरंभिक जीवन।
3: पृष्ठ संख्या 1
2: सिद्धार्थ का जन्म। प्राचीन काल में भारत में एक प्रसिद्ध राजवंश था, नाम था इक्ष्वाकु वंश। इसी वंश के शाक्य कुल में शुद्धोदन नाम के एक राजा हुए। कपिलवस्तु उनके राज्य की राजधानी थी। उनके राज्य में सारी प्रजा सब प्रकार से सुखी और सुरक्षित थी। पृथ्वी जैसी गौरवशाली उनकी पत्नी थी, नाम था माया। एक रात महारानी माया ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा जैसे चंद्रमा बादलों में चुपचाप प्रवेश करता है, वैसे ही एक सफेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर गया है। इससे उन्हें न किसी प्रकार का भय हुआ न कष्ट, उन्हें सुखद अनुभूति हुई कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है। सचमुच गर्भ धारण करने के कुछ मास बाद महारानी माया को किसी सघन वन में एकांतवास करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने पति महाराज शुद्धोदन से निवेदन किया कि अब वे कुछ समय के लिए नंदन वन के समान सुंदर लुम्बिनी वन में निवास करना चाहती हैं। अपनी गर्भवती पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए महाराज शुद्धोदन ने स्वीकृति प्रदान की और अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महारानी ने लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान किया। कुछ समय तक सुख से लुम्बिनी वन में निवास करने के बाद एक दिन महारानी को लगा कि अब प्रसव काल आ गया है, अतः वे एक शैया पर लेट गईं। उस समय अनेक स्त्रियों ने उनका अभिनंदन किया। जैसे ही पुष्य नक्षत्र का उदय हुआ, महारानी माया ने बिना किसी पीड़ा के एक पुत्र को जन्म दिया। उन्हें लगा जैसे वह आकाश से उतर आया हो। उसका अंतःकरण पवित्र था, उसके शरीर से तेज निकल रहा था जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। सूर्य के समान तेजस्वी परंतु देखने में चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाले इस बालक के शरीर से प्रकाश निकल रहा था।
3: पृष्ठ संख्या 2।
2: पृष्ठ 2 पर एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि एक हाथी आकाश से नीचे उतर रहा है और महारानी माया शैया पर लेटी हुई है। आइए अब सुनते हैं पाठ।
3: पृष्ठ संख्या 3।
2: उसी समय आकाश से दो जल धाराएं प्रवाहित हुईं, एक शीतल और दूसरी उष्ण। इनसे इस बालक का अभिषेक हुआ। सोने और चांदी से निर्मित तथा मूंगे मणियों से जड़ित शुभ्र शैया पर जब वह बालक विराजमान हुआ तो उसके चारों ओर स्वर्ण कमल हाथों में लेकर यक्षों के राजा खड़े हो गए। आकाश में देवताओं ने उसका अभिनंदन किया और बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिए। इस बालक के जन्म के समय आकाश से सुगंधित लाल और नीले कमलों की वर्षा होने लगी। मंद मंद पवन प्रवाहित होने लगी तथा सूर्य और भी अधिक चमकने लगा। इस नवजात दिव्य शिशु के दर्शन करने के लिए आए दिव्य पुरुषों से वह वन प्रांतर पूरी तरह भर गया। उन्होंने बालक पर पुष्पों की वर्षा की। इस बालक के जन्म का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि जो पशु प्रकृति से ही हिंसक थे वे हिंसा भूल गए। सारे संसार ने अपूर्व शांति का अनुभव किया। विभिन्न पशु पक्षी मधुर स्वर में बोलने लगे। नदियां शांतिपूर्वक बहने लगीं। सारी दिशाएं निर्मल हो गईं और निरभ्र आकाश में दुंदुभी बजने लगी। केवल माया को छोड़कर सारा संसार इस बालक के जन्म से अत्यंत प्रसन्न हो गया। बालक के अद्भुत दिव्य जन्म को देखकर महाराज शुद्धोदन की आंखों से भय और प्रसन्नता की अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगीं। बालक की अति मानवीय शक्ति को देखकर माता माया भी भय और प्रीति से भर गईं। इस अवसर पर वृद्ध महिलाओं ने मंगलाचरण किया और नवजात शिशु के उज्ज्वल भविष्य के लिए देवताओं से प्रार्थना की। आचरण शास्त्र के ज्ञाता और शीलवान ब्राह्मणों ने जब बालक के सभी लक्षण सुने और उन पर विचार किया तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपका पुत्र आपके कुल का दीपक है। आप किसी बात की चिंता न कीजिए, आनंद उत्सव मनाइए, क्योंकि यह बालक न केवल आपके वंश की वृद्धि करेगा अपितु यह संसार में दुखियों का संरक्षक भी होगा। दीपक के समान प्रकाशवान तथा सोने की कांति से युक्त शरीर वाले इस बालक में जो लक्षण हैं, उनसे लगता है कि यह तो बुद्धों में श्रेष्ठ होगा या परम राज्यश्री प्राप्त करेगा। यदि यह पृथ्वी के राज्य की इच्छा करेगा तो न्याय से पृथ्वी को जीतकर सभी राजाओं में ऐसे ही शोभायमान होगा जैसे सभी ग्रहों के बीच सूर्य प्रकाशित होता है। यदि वह मोक्ष के लिए वन जाएगा तो अपने तत्व ज्ञान से सभी मतों को परास्त कर सारे संसार में सम्मानित होगा और सुमेरु पर्वत के समान प्रतिष्ठित होगा। जैसे सभी धातुओं में स्वर्ण, पर्वतों में सुमेरु, जलाशयों में समुद्र, प्रकाश पुंजों में सूर्य श्रेष्ठ है, वैसे ही आपका यह पुत्र सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ सिद्ध होगा।
3: पृष्ठ संख्या 4।
2: ब्राह्मणों की ऐसी बातें सुनकर राजा ने पूछा, आपने इस बालक में जिन लक्षणों को देखा है वे न तो पूर्ववर्ती राजाओं में देखे गए हैं और न ही ऋषि मुनियों में, इसका क्या कारण है? ब्राह्मणों ने राजा को समझाते हुए कहा, बुद्धि, सुकर्म और यश के विषय में पूर्ववर्ती या परवर्ती का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता है। इस प्रकार के गुण किसी विशेष कारण से ही उत्पन्न होते हैं। इस संबंध में आप कुछ दृष्टांत सुनिए। विभिन्न गोत्रों के आदि पुरुष भृगु और अंगिरस जिस राजनीति शास्त्र को नहीं बता सके, उसी राजनीति शास्त्र को उनके पुत्र शुक्र और बृहस्पति ने बता दिया। पुराकाल में जब वेद लुप्त हो गए थे तो आगे चलकर व्यास ने उन्हें संपादित किया। इस कार्य को वशिष्ठ जैसे ऋषि भी न कर सके थे। इसी तरह जिस कार्य को वाल्मीकि ने कर दिखाया था वह कार्य उनके पूर्ववर्ती च्यवन ऋषि नहीं कर सके थे। अतः राजन, इस श्रेष्ठता का प्रमाण न तो अवस्था से है और न ही वंश से। श्रेष्ठता को कोई भी कहीं भी प्राप्त कर सकता है। इतिहास बताता है कि जिन कार्यों को पूर्ववर्ती ऋषि और राजा नहीं कर सके उन्हीं कार्यों को उनके परवर्ती व्यक्तियों ने कर दिखाया। ब्राह्मणों से इस प्रकार आश्वासन और अभिनंदन प्राप्त कर राजा के मन की शंकाएं मिट गईं। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी और उन्हें सम्मानित कर विदा किया। उसी समय महर्षि असित को अनुभूति हुई कि इस समय कपिलवस्तु में जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाले शाक्य मुनि ने जन्म लिया है। अतः वे उसके दर्शन के लिए अपने आश्रम से कपिलवस्तु की ओर चल दिए। कपिलवस्तु में ब्रह्मवेत्ता राजपुरोहितों ने महर्षि असित का स्वागत किया और उन्हें सम्मानपूर्वक राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोए और विधिवत पूजा की। राजा ने महर्षि से निवेदन किया, हे महर्षि, मैं धन्य हूं, आपके आगमन से मेरा कुल अनुग्रहित हुआ है। हे सौम्य, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? मैं आपका शिष्य हूं, आप आज्ञा दें।
3: पृष्ठ संख्या 5।
2: राजा के वचन सुनकर ऋषि गदगद हो गए और धीर गंभीर वाणी में बोले, हे राजन, आप अतिथि प्रिय हैं, धर्माभिलाषी महात्मा हैं। आपने जो कुछ कहा है वह आपकी अवस्था और आपके वंश के अनुरूप है। किंतु मेरे आने का प्रयोजन कुछ और ही है। मैंने दिव्य आकाशवाणी सुनी थी कि आपको जो पुत्र प्राप्त हुआ है वह अवश्य ही बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। इसके बाद मैंने स्वयं ध्यान योग से इसके भविष्य को भी जान लिया है। इसीलिए मैं यहां आया हूं, शाक्य कुल की उस पताका के दर्शन करना चाहता हूं। राजा ने ऋषि असित की सारी बातें ध्यान से सुनी और प्रसन्न होकर धाय की गोद से शिशु को लेकर उन्हें दिखाया। महर्षि ने राजकुमार को बड़े विस्मय के साथ देखा। उन्होंने देखा कि उसके चरणों में चक्र के चिन्ह हैं, अंगुलियों और हाथ पैरों पर अन्य शुभ लक्षण अंकित हैं। बालक को देखकर महर्षि की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दीर्घ निःश्वास लेकर आकाश की ओर देखा। महर्षि असित की आंखों में आंसू देखकर राजा का हृदय धड़कने लगा, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, जिस बालक के शरीर पर दिव्य चिन्ह हैं, जिसका जन्म चमत्कारी है और जिसके भविष्य को आप उज्ज्वल बताते हैं, उसे देखकर हे धीर, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं? हे भगवन, कुमार चिरायु तो है, क्या वह मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलांजलि दे सकेगा? हे महर्षि, मुझे शीघ्र बताएं, मेरा हृदय व्यग्र हो रहा है। इसी पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें महर्षि ने बालक को गोद में लिया हुआ है और राजा उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। अब सुनते हैं पाठ।
3: पृष्ठ संख्या 6।
2: महर्षि असित ने राजा को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि तुम्हारा पुत्र बुद्ध होगा, वह शाक्य कुल भूषण बनेगा, यह निश्चित है। मैं तो इसलिए विकल हूं कि मेरे जाने का समय आ गया है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के सुलभ उपायों को बताने वाला यह बालक अब उत्पन्न हुआ है। यह कुमार विषयों से विरक्त होकर राज्य को त्याग कर अपने तप से तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा। यह ज्ञानमय सूर्य सांसारिक मोह के अंधकार को अवश्य नष्ट करेगा। महर्षि असित ने बताया, दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए इस संसार को यह बालक ज्ञान की विशाल नौका से उस पार ले जाएगा। यह धर्म की ऐसी नदी प्रवाहित करेगा जिसमें प्रज्ञा का जल होगा, शील का तट होगा और समाधि की शीतलता होगी। इसी धर्म नदी के जल को पीकर तृष्णा की पिपासा से व्याकुल यह संसार शांति लाभ करेगा। जैसे भटके हुए राही को कोई राह बताता है, वैसे ही संसार रूपी जंगल में भटके मनुष्यों को यह मोक्ष का सीधा मार्ग बताएगा। इसलिए हे राजन, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो इसके बताए धर्म को मोहवश या आसक्तिवश नहीं मानेंगे। मैं ही अभागा हूं कि इसके उपदेशों को सुनने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। महर्षि की इन बातों को सुनकर राजा शुद्धोदन, उनकी पत्नी तथा अन्य सभी संबंधी अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षि भी राजकुमार के भविष्य के बारे में बताकर जैसे वायु मार्ग से आए थे वैसे ही चले गए। बाद में उन्होंने अपनी बहन के पुत्र को समझाया कि वह बड़ा होकर बुद्ध के मार्ग का ही अनुसरण करे। ज्योतिषियों तथा महर्षि असित से अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सारी बातें सुनने के बाद राजा ने बड़े उत्साह से जन्मोत्सव का आयोजन किया। उसने अपने कुल के अनुरूप बालक का जात कर्म संस्कार किया। 10 दिन पूरे होने पर अपने पुत्र के कल्याण के लिए जप होम तथा अन्य मंगल कार्य किए। पुत्र की उन्नति के लिए स्वर्ण मंडित सींगों वाली बहुत सी गायों का दान दिया और शुभ मुहूर्त देखकर प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। पुत्र को लेकर अनेक सगे संबंधियों के साथ महारानी हाथी दांतों से निर्मित श्वेत पालकी पर सवार होकर नगर में आई। जब रानी ने पुत्र के साथ अपने महल में प्रवेश किया तो राजा शुद्धोदन वैसे ही प्रसन्न हुए जैसे कार्तिकेय के जन्म से शिव प्रसन्न हुए थे।
3: पृष्ठ संख्या 7।
2: अंतःपुर विहार। महाराज शुद्धोदन के पुत्र के जन्म का कुछ प्रभाव हुआ कि उनका घर धन धान्य और हाथी घोड़ों से संपन्न हो गया। उनके सभी मनोरथ सफल हो गए। उनके जो शत्रु थे वे मध्यस्थ हो गए, जो मध्यस्थ थे वे मित्र बन गए, और जो मित्र थे वे और भी अधिक प्रिय हो गए। इंद्र ने उचित समय पर वर्षा की और खेत लहलहाने लगे। महाराज शुद्धोदन के राज्य में धार्मिक जनों ने स्वर्ग जैसे सुंदर उद्यान, देव मंदिर, आश्रम, कुएं और तालाब बनवाए। राज्य में किसी ने धन के लोभ के लिए धर्माचरण नहीं किया और धर्म के लिए किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। इस तरह उनका राज्य चोर, शत्रु आदि के भय से मुक्त, स्वतंत्र और धन धान्य से संपन्न हो गया। सूर्यपुत्र मनु के समान इस राजा के राज्य में बालक के जन्म काल से ही सर्वत्र प्रसन्नता छा गई, पाप नष्ट हो गए और धर्म प्रकाशित हो गया। इस बालक के जन्म से ही राज्य और राजकुल में संपत्ति आई और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। इसीलिए राजा ने बालक को सर्वार्थ सिद्ध कहते हुए उसका नाम सिद्धार्थ रखा। महारानी माया अपने पुत्र का देवर्षियों जैसा प्रभाव देखकर अतिशय प्रसन्न थी, पर इस आनंदातिरेक को वह अधिक दिनों तक सह न सकी और कुछ ही दिनों में स्वर्गवासी हो गईं। माता के स्वर्गवासी होने पर मौसी गौतमी ने उस बालक का अत्यंत स्नेहपूर्वक लालन पालन किया। बालक उदयाचल पर उदित सूर्य के समान, वायु प्रेरित अग्नि के समान तथा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सगे संबंधियों और मित्रों ने बालक को अनेक उपहार दिए। किसी ने बहुमूल्य चंदन के खिलौने दिए तो किसी ने मोतियों की माला दी, किसी ने सोने के रथ तो किसी ने सोने चांदी की रंग बिरंगी पुतलियां दी। इस प्रकार बालक सिद्धार्थ विविध प्रकार की बाल क्रीड़ाएं करते हुए बड़ा होने लगा। सिद्धार्थ की कुमारावस्था बीतने पर राजा ने अपने कुल के अनुरूप उसका विधिवत उपनयन संस्कार किया और बालक की शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था की। बालक सिद्धार्थ अत्यंत मेधावी था। जिन विद्याओं को सामान्य बालक वर्षों में सीखते हैं उनको उसने कुछ ही समय में सीख लिया। इस प्रकार विद्याभ्यास करते हुए सिद्धार्थ ने किशोरावस्था पूरी की और वह युवावस्था की ओर बढ़ने लगा।
3: पृष्ठ संख्या 8।
2: इस पृष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें सिद्धार्थ के विवाह को दर्शाया गया है। अब सुनते हैं पाठ।
3: पृष्ठ संख्या 9।
2: महाराज शुद्धोदन को महर्षि असित द्वारा की गई भविष्यवाणी याद थी कि यह बालक बड़ा होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान कर सकता है। इसीलिए उन्होंने अंतःपुर में ऐसी व्यवस्था करवाई जिससे सिद्धार्थ की आसक्ति सांसारिक विषयों में बढ़े और वह भोग विलास में इतना लिप्त हो जाए कि उसे किसी प्रकार का वैराग्य ना हो और वह राज महलों में रहकर भोग विलास में डूबा रहे। इसी विचार से राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ का विवाह करने का निश्चय किया और इसके लिए उपयुक्त कन्या की तलाश शुरू की। अंत में उन्होंने यशोधरा नाम की सुंदर कन्या का चयन किया और फिर बड़े उत्साह से उसका विवाह कुमार के साथ कर दिया। विवाह के बाद राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिताने लगे। महाराज शुद्धोदन ने राजमहल में ऐसी व्यवस्था की थी कि राजकुमार राजमहल में ही रहे, भोग विलास में तल्लीन रहे और ऐसा कोई दृश्य उसके सामने न आए जिससे उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो। यहां एक चित्र है जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमारी यानी उनकी पत्नी यशोधरा सिंहासन पर बैठे हैं और उनके इर्द गिर्द दासियां हैं और वो आमोद प्रमोद कर रहे हैं।
3: पृष्ठ संख्या 10।
2: राजमहल में राजकुमार सिद्धार्थ सुंदर स्त्रियों के नृत्य गान तथा वीणा वादन आदि का आनंद लेते रहे। सुंदरियों के साथ राजकुमार ऐसे तन्मय हो गए कि राजमहल से बाहर निकलते ही न थे। राजकुमार को भोग विलास में तल्लीन देखकर राजा बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने और अधिक दान दिए। परंतु राजकुमार सिद्धार्थ विषय सुखों में आसक्त नहीं था। उसने चपल घोड़ों जैसी इंद्रियों को वश में कर लिया था। उसने अपने गुणों से सारे राज परिवार और पूर्ववासियों के मन को जीत लिया था। राजा शुद्धोदन राजकुमार के क्रियाकलापों से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए ग्रहों की पूजा की तथा गायों और स्वर्ण का दान दिया। राजा स्वयं सदा सत्य का आचरण करते थे, राग द्वेष से रहित होकर शासन व्यवस्था चलाते थे तथा प्रजा से अधिक कर नहीं लेते थे। जैसे योगी की इंद्रियां उसके अनुकूल रहती हैं, वैसे ही राजा के सदाचरण के कारण सारी प्रजा उनके अनुकूल रहती थी। यशोधरा के साथ राजकुमार सिद्धार्थ के विवाह के कुछ समय बाद उन्हें चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम राहुल रखा गया। राजा ने बड़े उत्साह के साथ अपने पौत्र का जन्मोत्सव मनाया। उन्हें अब पूरा विश्वास हो गया कि उनके वंश का विस्तार होगा। जैसे वे अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, वैसे ही उनका पुत्र भी अपने पुत्र से प्रेम करे। इस अभीष्ट पूर्ति के लिए उन्होंने अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए। राजा शुद्धोदन ने अपने पुत्र के लिए राजकाज चलाया, वंश वृद्धि के लिए पुत्र का पालन किया, यश के लिए कुल की रक्षा की और स्वर्ग के लिए वेदों का अध्ययन किया। सामान्यतः राजा अपनी राज्य लक्ष्मी की रक्षा के लिए पुत्र की रक्षा करते हैं, परंतु इस राजा ने धर्म रक्षा की इच्छा से पुत्र की रक्षा की। संवेग उत्पत्ति। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ ने सुना कि राजमहल से बाहर एक सुंदर उद्यान है। वहां घने वृक्ष हैं जिन पर कोयलें कूकती हैं तथा कमलों से भरे सुंदर सरोवर हैं। राजकुमार सिद्धार्थ को वह उद्यान देखने की इच्छा हुई। उन्होंने महाराज से वन विहार करने के लिए आज्ञा मांगी। राजा ने आज्ञा दे दी। वे चाहते थे कि राजकुमार के मन में किसी प्रकार का वैराग्य उत्पन्न ना हो, इसलिए अनुचरों को ऐसी व्यवस्था करने की आज्ञा दी कि जिधर से राजकुमार निकलें उस मार्ग पर कोई रोगी या पीड़ित व्यक्ति दिखाई न दे। राजकर्मचारियों ने राजमार्ग से उन सभी व्यक्तियों को शांतिपूर्वक हटा दिया जो विकलांग थे, वृद्ध थे या रोग पीड़ित थे। इतना ही नहीं, उन्होंने राजमहल से लेकर उद्यान तक का मार्ग अच्छी तरह सजा भी दिया।
3: पृष्ठ संख्या 11।
2: राजा की आज्ञा प्राप्त कर अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर राजकुमार सिद्धार्थ उद्यान देखने के लिए राजमहल से बाहर निकले। वे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत और चार घोड़ों से युक्त रथ में बैठे थे जो श्वेत पुष्पों और पताकाओं से भली भांति सुसज्जित था। जब नगरवासियों ने सुना कि राजकुमार पुरकानन देखने आ रहे हैं तो राजकुमार के दर्शनों के लिए वे अपने अपने घरों से बाहर आ गए। उन्होंने मन ही मन उनका अभिवादन किया और उनके दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। राजपथ पर राजकुमार के दर्शनों के लिए जगह जगह प्रजाजन एकत्रित हो गए थे। स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर या झरोखों से झांक कर उनका दर्शन कर रही थीं। सुंदर वेश वाले पुरवासियों से भरे इस राजपथ को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत ही प्रसन्न थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनका यह नया जन्म हुआ है। राजकुमार और पुरवासियों को इस प्रकार प्रसन्न देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि यदि कुमार में वैराग्य भाव पैदा नहीं हुआ तो क्या होगा। इतने में सिद्धार्थ को राजपथ पर एक वृद्ध पुरुष दिखाई दिया। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी से बातचीत कर रहे हैं।
3: पृष्ठ संख्या 12।
2: अन्य सभी व्यक्तियों से विलक्षण उस जर्जर शरीर वाले वृद्ध पुरुष को जैसे ही सिद्धार्थ ने देखा वह चौंका और बड़े ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। फिर उसने अपने सारथी से पूछा, हे सूत, यह कौन है? यह कहां से आया है? सफेद बालों वाला यह पुरुष हाथ में लाठी क्यों लिए हुए है? इसकी आंखें भौहों से कैसे ढक गई हैं? इसका शरीर क्यों झुका हुआ है? क्या यह कोई विकृति है या इसकी यही स्वाभाविक स्थिति है या यह अनायास ही ऐसा हो गया है? राजकुमार के इन प्रश्नों को सुनकर सारथी सोचने लगा, अब मैं क्या कहूं? राजा की आज्ञा के अनुसार वह इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था, किंतु न चाहते हुए भी उसने सभी बातें राजकुमार को बता दी। उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, रूप और शक्ति का नाश करने वाली यह जरावस्था है, यह बुढ़ापा है जिसमें स्मृति का नाश हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। इसी वृद्धावस्था ने इस पुरुष को तोड़ दिया है। इसने भी बाल्यावस्था में दूध पिया है, सुंदर शरीर प्राप्त कर यौवन का सुख भोगा है और अब काल क्रम से यह बूढ़ा हो गया है। सारथी की बातें सुनकर राजकुमार चकित हो गया, क्योंकि उसे इस प्रकार का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। उसने फिर बूढ़े की ओर देखा और सारथी से पूछा, क्या यह दोष मुझे भी होगा? क्यों, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने उत्तर दिया, हां आयुष्मान, समय आने पर आपको भी वृद्धावस्था अवश्य प्राप्त होगी। सारथी का उत्तर सुनकर राजकुमार उद्विग्न हो उठा। उसने दीर्घ निःश्वास लिया, सर हिलाया और बड़े ध्यान से पुनः उस पुरुष को देखा। फिर चारों ओर प्रसन्नचित्त जनता की भीड़ को देखकर वह सोचने लगा, ये लोग कैसे हैं जो स्मरण शक्ति और सारे पराक्रमों को समाप्त कर देने वाली इस वृद्धावस्था को देखकर भी अनुद्विग्न बने रहते हैं। उसने फिर सारथी से पूछा, हे सूत, चलो घर चलें, अपने घोड़ों को मोड़ दो। मन में जब बुढ़ापे का भाव भर गया हो तो इस उद्यान में मेरा मन कैसे रम सकता है? राजकुमार की आज्ञा पाकर सारथी ने रथ को राजभवन की ओर मोड़ दिया। थोड़े ही समय में राजभवन आ गया। राजकुमार अब भी बुढ़ापे के बारे में सोच रहा था। वह रथ से उतरकर अपने भवन में गया और तरह तरह से इसी विषय में सोचता रहा, परंतु उसे किसी प्रकार शांति का अनुभव न हुआ। वह अपने पिता के पास आया, उनसे पुनः उद्यान भ्रमण की आज्ञा ली और उसी राजपथ पर पुनः उसी प्रकार बाहर आ गया।
3: पृष्ठ संख्या 13।
2: राजकुमार सिद्धार्थ का रथ जैसे ही उद्यान की ओर अग्रसर हुआ उसे एक रोगी दिखाई पड़ा। उसका पेट बढ़ा हुआ था, कंधे झुके हुए थे और वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सिद्धार्थ ने उसी समय रथ को रुकवाया और सारथी से पूछा, हे सूत, यह दुबला पतला व्यक्ति कौन है जो दूसरों का सहारा लेकर चल रहा है और कराहता हुआ हाय मां कह रहा है? सारथी ने उत्तर दिया, हे सौम्य, यह व्यक्ति बीमार है, रोग से पीड़ित है और असमर्थ हो गया है। राजकुमार ने दया भरी दृष्टि से उस रोगी को देखा और फिर सारथी से पूछा, क्यों सारथी, यह रोग इसी व्यक्ति को हुआ है या किसी को भी हो सकता है? सारथी ने बताया कि रोग भय तो सभी प्राणियों को लगा रहता है, कोई भी रोग से पीड़ित हो सकता है, परंतु लोग यह जानते हुए भी परवाह नहीं करते। सारथी का उत्तर सुनकर राजकुमार का मन और भी बेचैन हो उठा, उसका हृदय कांपने लगा। फिर करुण स्वर से वह बोला, अरे ये मनुष्य कैसे अज्ञानी है जो रोग भय से ग्रस्त होने के बाद भी निश्चिंत रहते हैं। उसने सारथी से कहा, हे सूत, अब तुम रथ को घर की ओर ले चलो, लौट चलो, मुझसे यह रोग भय सहा नहीं जाता। राजकुमार का आदेश पाकर सारथी ने रथ को महल की ओर मोड़ दिया। राजकुमार का हृदय पहले बुढ़ापे के भय से और अब रोग के भय से दुखी था। वह शीघ्र महल में लौट आया और कमरे में जाकर विचारों में डूब गया। राजा शुद्धोदन ने इस प्रकार जब दो बार राजकुमार को दुखी मन से लौटा हुआ देखा तो उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उन्होंने सारथी को बुलाया और उससे सारा वृत्तांत सुना। राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि राजकुमार जरा और रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को देखकर बहुत व्याकुल हो गए हैं और घर लौट आए हैं, तो उन्हें लगा जैसे

0: मंत्रियों को बुलाकर इस विषय पर विस्तार से विचार विमर्श किया। राजकुमार के मन को बदलने के लिए उन्होंने और अधिक भोग विलास तथा आमोद प्रमोद की अच्छी व्यवस्था अंतःपुर में ही कर दी। राजा ने सोचा था, इंद्रियां स्वभावतः चंचल होती हैं, अतः राजकुमार भोग विलास और आमोद प्रमोद में सब कुछ भूल सकता है। हो सकता है वह इस प्रकार विषयों में आसक्त होकर यहीं रहे और हमें छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाए। परंतु राजमहल के आमोद प्रमोद के विशेष आयोजन का भी राजकुमार के मन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस पर राजा ने यह सोचकर कि नगर दर्शन से राजकुमार का मन बदल सकता है, राजकुमार के लिए पुनः नगर दर्शन की विशेष व्यवस्था की। उन्होंने पूरे नगर को भली भांति सुसज्जित करवाया, सर्वत्र विविध कलाओं में निपुण सुंदरियों को नियुक्त किया और ऐसी व्यवस्था की जिससे राजकुमार का मन किसी भी प्रकार उद्विग्न न हो। उन्होंने राजकुमार के रथ और उसके सारथी को भी बदल दिया। सारी व्यवस्था करने के बाद महाराज शुद्धोदन ने पुनः राजकुमार सिद्धार्थ को नगर दर्शन के लिए प्रेरित किया और अनेक युवक युवतियों के साथ नगर दर्शन के लिए बाहर भेज दिया। नगर के सुसज्जित मार्गों और सुंदर युवक युवतियों को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्नतापूर्वक नगर दर्शन करते हुए जब वे आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा दिखाई दी। राजकुमार ने जब इस सुंदर वातावरण में शव यात्रा देखी और उसके साथ रोते बिलखते लोगों को देखा तो वह चौंक गया। उसने रथ रुकवाया और सारथी से पूछा, हे सूत, यह क्या है जिसे चार आदमी अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं? उसके पीछे आने वाले लोग क्यों रो रहे हैं? जिसे लोग उठाकर ले जा रहे हैं उसे तो बहुत अच्छी तरह से सजाया है, फिर भी ये लोग रो क्यों रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मुझे ठीक ठीक बताइए यह सब क्या है। यद्यपि राजा ने सारथी को समझा दिया था कि वह ऐसी कोई बात राजकुमार को ना बताए जिससे उसका मन बेचैन हो, परंतु सारथी राजकुमार का आग्रह नहीं टाल सका। उसने राजकुमार को बताया कि यह ऐसा व्यक्ति है जिसकी चेतना, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय गुण आदि समाप्त हो चुके हैं। अब ये लकड़ी के टुकड़े के समान है, जिसे बड़े लाड़ प्यार से पोसा गया था उसे ही आज ये लोग रो धोकर हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे हैं।
1: पृष्ठ संख्या 15।
0: सारथी की ये बातें सुनकर राजकुमार अत्यंत व्यग्र हो गया। उसने पहली बार मृत व्यक्ति के दर्शन किए थे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने पुनः सारथी से पूछा, क्या यह स्थिति सभी की होती है या इसी की है? क्या यह इसी का अंत है या सभी का यही अंत होता है? सारथी ने उत्तर दिया, हां राजकुमार, सभी प्राणियों की यही अंतिम गति है, क्योंकि सभी नाशवान हैं। चाहे कोई व्यक्ति उत्तम हो, मध्यम हो या अधम हो, अंत सभी का है और अंत सबका एक सा ही है। सारथी की बातें सुनकर राजकुमार यद्यपि अधीर तो नहीं हुआ, परंतु मृत्यु की प्रथम प्रतीति के कारण वह उसके विषय में सोचने लगा। थोड़ी देर विचारों में डूबे रहने के बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, फिर भी लोगों को डर नहीं लगता? मनुष्य क्यों सावधान नहीं होते? लगता है लोगों का मन बड़ा कठोर है, तभी तो मृत्यु मार्ग पर चलते हुए भी वे उसे भूले रहते हैं। हे सारथी, लौट चलो, चलो घर चलें, यह समय आमोद प्रमोद का नहीं है। मृत्यु को जानकर भी भला कोई बुद्धिमान व्यक्ति कैसे अपने आप को आमोद प्रमोद में डुबो सकता है? सारथी को घर लौटने की आज्ञा देकर राजकुमार संसार की असारता के विषय में सोचता हुआ विचारों में डूब गया। यद्यपि राजकुमार ने सारथी को रथ को राजमहल ले चलने के लिए कहा था, परंतु उसे राजा की आज्ञा

0: याद थी। अतः वह राजकुमार के रथ को राजमहल न ले जाकर पद्मखंड नाम के उद्यान की ओर ले गया। राजा की आज्ञा के अनुसार इस उद्यान को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था। धीरे धीरे राजकुमार का रथ वन प्रांतर की ओर अग्रसर होने लगा। राजकुमार ने विविध प्रकार के पुष्पों से युक्त छोटे छोटे वृक्षों को देखा, जिन पर मतवाली कोयलें कूक रही थीं। पास ही सुंदर पुष्प करिणी थी, जिसमें अनेक कमल खिले हुए थे। सारा उद्यान नंदन वन जैसा सुंदर लग रहा था, परंतु इस सुंदर वन प्रांतर में भी राजकुमार का मन नहीं लग रहा था। पद्मखंड उद्यान में राजा शुद्धोदन द्वारा नियुक्त नवयुवतियों ने जब सुना कि राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो उन्होंने द्वार के पास ही उनका स्वागत किया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक राजकुमार को रथ से उतारा और प्रेम भरी आंखों से निहारा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं कामदेव उनके सामने आ गया हो। राजकुमार के सुंदर रूप को निहार कर वे इतनी मुग्ध हो गई कि न कुछ बोल सकी, न हंस सकी, बस देखती ही रही।
1: पृष्ठ संख्या 16।
0: इस प्रकार प्रेम विह्वल स्त्रियों को कुछ न करते देखकर कुमार के मित्र तथा राजपुरोहित के पुत्र उदाई ने सुंदरियों से कहा कि आप सभी रूप और यौवन से संपन्न हैं, सभी कलाओं में निपुण हैं, अतः अपने हाव भाव से राजकुमार को आमोद प्रमोद में तल्लीन कीजिए, उनके मन के वैराग्य भाव को दूर कीजिए। उदाई की ये बातें सुनकर सभी स्त्रियां राजकुमार को आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करने लगीं। उन्होंने राजकुमार को निकट से निहारा और अपने हाव भाव से उन्हें आकर्षित करने का प्रयास किया। सुरम्य वातावरण में सुंदर स्त्रियों के बीच राजकुमार प्रसन्न तो दिखा, परंतु वह जितेंद्रिय था, अतः अनासक्त भाव से सब कुछ देखता रहा। मन ही मन सोचता रहा कि क्या ये स्त्रियां यौवन की अस्थिरता नहीं जानती? क्या ये नहीं जानती कि जिस रूप के कारण ये उन्मत्त हैं, उसे बुढ़ापा शीघ्र ही समाप्त कर देगा? अवश्य ही इन स्त्रियों ने रोग नहीं देखा, तभी तो ये इस प्रकार प्रसन्न है। इन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है, तभी तो इस प्रकार हंस रही हैं। नौ युवतियों के बीच भी राजकुमार को ध्यान मग्न देखकर साथ में आए उनके मित्र उदाई ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे मित्र, यह क्या है? आप क्यों इतने उदासीन हैं? आप तो बलवान हैं, सुंदर हैं, युवक हैं, फिर भोग विलास का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? उदाई की ये बातें सुनकर राजकुमार ने धीर गंभीर वाणी में उत्तर दिया, हे मित्र, आप जो कह रहे हैं वह ठीक ही है, परंतु मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं विषयों की उपेक्षा नहीं करता और मैं यह जानता हूं कि सारा संसार विषयों की उपेक्षा नहीं करता। मैं यह भी जानता हूं कि सारा संसार विषयों में ही डूबा हुआ है, किंतु इस जगत को अनित्य जानकर अब मेरा मन इसमें रम नहीं रहा। जरा व्याधि और मृत्यु न होती तो मेरा मन भी इनमें अनुरक्त होता, परंतु मैं जानता हूं इस यौवन और सौंदर्य को बुढ़ापा समाप्त कर देगा। हे मित्र, ऐसे क्षण भंगुर यौवन में अनुराग अज्ञान के कारण ही हो सकता है। राजकुमार सिद्धार्थ जब अपने मित्र से वैराग्य उत्पन्न करने वाली बातें कर रहा था, तभी सूर्य अस्त होने लगा। सभी नव युवतियां नगर की ओर लौटने लगीं और सारे उद्यान और नगर की शोभा अंधकार की चादर में सिमटने लगी। इस समय राजकुमार सिद्धार्थ को बोध हुआ कि इस जगत में सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ अनित्य है। जगत की अनित्यता के विषय में सोचते हुए वह अपने राजभवन की ओर चल पड़ा। थोड़े समय में राजभवन पहुंचकर वह सीधे अपने महल में गया और संसार की नश्वरता के विषय में और विचार करता रहा।
1: पृष्ठ संख्या 17।
0: राजा शुद्धोदन ने जब सुना कि राजकुमार सभी विषयों से विमुख होकर लौट आया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जैसे किसी हाथी के हृदय में वाण लग जाने से वह रात भर सो नहीं पाता, वैसे ही महाराज भी रात भर सो नहीं सके। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनके साथ मंत्रणा करते रहे कि क्या उपाय किए जाएं जिससे राजकुमार का मन बदले, उसका वैराग्य समाप्त हो और विषयों के प्रति आसक्ति जागे। प्रश्न एक, सिद्धार्थ के बारे में महर्षि असित की क्या भविष्यवाणी थी, संक्षेप में बताइए। दो, आप कैसे कह सकते हैं कि बालक सिद्धार्थ विशेष मेधावी था। तीन, महाराज शुद्धोदन सिद्धार्थ की सुख सुविधाओं की व्यवस्था के लिए क्यों विशेष प्रयत्नशील रहते थे। चार, राजकुमार सिद्धार्थ के मन में संवेग की उत्पत्ति के क्या कारण थे। यहां पहला अध्याय समाप्त हुआ। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र का ध्वनि पाठ। वाचन स्वर अजीत होरो। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। ध्वन्यंकन विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली 2019।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग राजस्थान, गुड इवनिंग गुजरात, गुड इवनिंग आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं। जितने भी हमारे देश विदेश में लोग सुन रहे हैं, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत याद और शुभकामनाएं। आइए आज के दिन विशेष को यादगार बनाते हैं। 7 जुलाई आज का तारीख है और गुरु हरकिशन सिंह राघव जी, महेंद्र सिंह धोनी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठाकुर रामलाल, माधवी सरदेसाई, रणधीर सिंह, अनिल विश्वास, कला वेंकटराव, मोहम्मद बरकतुल्ला, असुमान सिंह, चंद्रशेखर वैद, सागर अहलावत, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही विक्रम बत्रा, दिलीप कुमार, मदन लाल मधु, अब्दुल कवि देश नवानी, देशान वी लाल ढेंगा, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के दिन कुछ लोगों की बातें ज़रूर आपको शेयर करूंगा और आशा करूंगा कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुंदर विचार के साथ। आशा करूंगा कि सुंदर विचार आपको मोटिवेट करता है, आपको समृद्ध करता है। तो एक सुंदर सफल विचार आपको सुनाएंगे। आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर रेडियो माधुबन, और अनमोल विचारों का ताता आपको देते हैं। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वो चीज़ों को ही अलग तरीके से करते हैं। इसीलिए हमेशा देखिए अलग तरीके से कैसे किया जाए। आइए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, अभी आपके नाम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत विचार आपने सुना, और मैं अभी बात करना चाहूँगा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो विशेष सामाजिक सेवा में आगे रहे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जी हाँ, हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार। 20 वर्षों की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेदशाला के जीर्णोद्धार तथा उससे संबंध शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था, और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने दी जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की थी। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक गांव में वासी ज्योतिविद महाउपाध्याय पंडित शिवाराम शास्त्री राम राज सम्मान पाकर जयपुर राजस्थान बस गए थे। उनके तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी ने सन 1883 में चंद्रधर को जन्म दिया। घर में बालक की सांस्कृतिक भाषा, वेद पुराण आदि के अध्ययन, पूजा पाठ, संध्या वंदना तथा धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला, और मेधावी चंद्रधर ने इन सभी संस्कारों को, विधाओं को आत्मसात कर लिया। गुलेरी जी 10 वर्ष के ही थे कि उन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। पंडित कीर्तिधर शर्मा गुलेरी को ये तब कहना था कि 5 वर्ष में अंग्रेजों का टेलीग्राम अच्छी तरह पढ़ लेते थे। चंद्रधर ने सभी परीक्षाएं पहले नंबर में पास किया, फर्स्ट रैंक। चंद्रधर बीए की परीक्षा में सबसे पहले अव्वल रहे। 1904 में गुलेरी जी विशेष मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। चंद्रधर का अध्यापक के रूप में उनका बड़ा मान सम्मान था। अपने शिष्यों में चंद्रधर लोकप्रिय तो थे ही, इसके साथ अनुशासन और नियमों को सख्ती से अनुपालन करते थे। उनका योग्यता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुला भेजा और हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिलाया। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और पहले श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। कोलकाता विश्वविद्यालय से FA पहली श्रेणी में और प्रयाग विश्वविद्यालय से BA करने के बाद चाहते हुए भी वे आगे की पढ़ाई परिस्थितिवश जारी नहीं रख सके। हालांकि उनके स्वाध्याय और लेखन का क्रम चलता रहा। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्होंने जयपुर की वेदशाला के जीर्णोद्धार से संबंधित शोध कार्य के लिए मंडल ने उन्हें चुन लिया गया, और इस तरह से अंग्रेजी ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी, जिसका नाम मैंने शुरू में बताया था, दी जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स। अपने अध्ययन काल में उन्होंने 1900 में जयपुर में नगरीय मंच स्थान में योग दिया और सन 1902 में मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी संभाल लिया। तो इस तरह से साहित्य के साथ जुड़कर जयपुर में अपनी जो है अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे। तो आइए इनके बारे में और बातें जानते हैं, लेकिन अभी आपको ले चलते हैं एक और खूबसूरत गीत की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ कार्य क्षेत्र के बारे में। अगर बात करें चंद्रशेखर शर्मा जी की, तो 1900 में जयपुर में नगरीय मंच की स्थापना के योगदान दिया और फिर इस तरह से अलग अलग जो है पत्र पत्रिकाओं से जुड़कर पुस्तकालय बनाने का भी इनका विशेष जो सोपन था वो पूरा हुआ। अकेडमिक शोध परख लेखन में इनकी ज़्यादा दिलचस्पी रही और 29 वर्ष की जीवन काल में गुलेर जी ने किसी आज़ाद ग्रंथ की रचना तो नहीं की, किंतु फुटकर रूप में बहुत लिखा, अनगिनत विषयों पर लिखा और अनेक विधाओं की विशेषताओं और रूपों को समेटते हुए संजोते हुए कुछ लिखा। उनके लेखन का एक बड़ा हिस्सा जहाँ विशुद्ध अकेडमी अथवा शोध परख है, उनकी विज्ञान और उसके साथ पंडिते का परिचय देता है, वही उससे भी बड़ा हिस्सा उनके खुले दिमाग, मानवतावादी दृष्टि और समकालीन समाज, धर्म, राजनीति और आदि विषयों को गहन सरोकार का परिचय प्राप्त कराता है। तो इस तरह से उनकी पुरानी हिंदी जैसी अकादमी और महर्षि च्यवनप्राश जैसे रामायण, च्यवन का रामायण जैसे शोध कार्य रचनाओं तक में दिखाई देता है। फिर उसके बाद कहानियाँ वगैरह तो बहुत सारे इन्होंने लिखी और विशेष रूप से निबंध की एक सुंदर कलेक्शन इनकी है, कविताओं के कलेक्शन है, कहानी संग्रह। उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा। तो इस तरह के भाषा विशेषज्ञ थे, शोध पर कार्य किया, वस्तु विषय की व्यापकता के साथ वो उन्होंने देखा चीज़ों को। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हिंदी साहित्य में सबसे अधिक ख्याति 1915 में सरस्वती मासिक में प्रकाशित कहानी उसने कहा था उसके लिए हुई, और ये कहानी शिल्प और विषय वस्तु की दृष्टि से आज भी मील का पत्थर मानी जाती है। तो ये थी कुछ खास बातें चंद्रधर शर्मा के बारे में। और 12 सितंबर 1922 को काशी में इनका देवासन हुआ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ आपको जोड़ता हूँ, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप होबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 एफएम होबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए एक और खास व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। इनका नाम है गुरु हर किशन सिंह। जी हाँ, विशेष रूप से इनके बारे में अगर बात करूं तो ये एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनके जीवन में विशेष रूप से 7 जुलाई 1656 को इनका जन्म हुआ। और गुरु हरकिशन साहब जी का जन्म ऐसे तो बता अंदाजन ही ये चीज़ें बनी हुई हैं। कई लोग जो है उन्हें 31 मार्च भी कहते हैं, कई लोग उन्हें 7 जुलाई कहते हैं, तो इस तरह से कई चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई है। प्रॉपर तारीख नहीं है, लेकिन विक्रम संवत 1713 की बातें यहाँ पर बताई गई हैं, जिसमें 7 जुलाई 1656 को इनका जन्म बताया गया है। तो आइए ऐसे विशेष, जब ये गुरु हरे कृष्ण जी का जन्म तो इस तरह से है, कुछ कुछ तारीख इधर उधर हो जाता है। आप हर राय और माता किशन कौर के दूसरे बेटे थे और 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही आपको गुरु गद्दी प्राप्त हुई। सिर्फ 3 वर्ष तक शासन किया, लेकिन वो बहुत बड़े ज्ञानी थे और हिंदू धर्म ग्रंथ भागवत गीता के ज्ञान से अपने पास आने वाले ब्राह्मणों को विशेष रूप से चौंका देते थे। इनके बारे में कई चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। बालक की ज्ञान की परीक्षा लेने के उद्देश्य से राजा जय सिंह ने अपनी एक रानी को दासी के वेश में गुरु के चरणों के पास अन्य दासियों के साथ बिठा दिया। बताया जाता है कि गुरु हरकिशन ने तुरंत रानी को पहचान लिया। हरकिशन के बड़े भाई राम राय, जो पहले से ही मुगल बादशाह औरंगजेब के समर्थक थे, उन्होंने गुरु नियुक्त किए जाने का विरोध किया और इस मामले का फैसला करने के लिए औरंगजेब ने 8 वर्षीय हरकिशन को दिल्ली बुलाया। और फिर कहानी आगे बढ़ी और कीरतपुर में गुरु हर राय जी के 2 समय दीवान लगते थे। हजारों श्रद्धालु वहां अपने दर्शन के लिए आते थे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। एक दिन गुरु हर राय जी ने अपना अंतिम समय नजदीक पाया और देश प्रदेश के सारे मसंदों को हुक्म भेजा कि अपने संगत के मुखियों को साथ लेकर शीघ्र ही किरतपुर पहुंच जाए। इस तरह जब सिख सेवक और सूढ़ी बेदी भल्ले सभी जो है संत महंत अभी वहां पहुंचे, आपने दीवान लगाया और सबको बताया कि हमारा अंतिम समय नजदीक आ रहा है, हमने गुरु गद्दी का तिलक अपने छोटे सुपुत्र श्री हरि कृष्ण जी को देने का निर्णय किया है। इसके उपरांत गुरु जी ने श्री हरि कृष्ण जी को सामने बिठाकर उनकी 3 परिक्रमा किया और 5 पैसे और नारियल आगे रखकर उनको नमस्कार किया और साथ ही साथ वो वचन भी दिया कि आज से हम आपको गुरु गद्दी दे रहे हैं, आपको इनको हमारे ही स्वरूप समझना है और इनकी आज्ञा में रहना है। गुरुजी का ये हुक्म सुनकर सारी संगत ने ये वचन सहर्ष स्वीकार किया और भेंट अर्पण की। इस प्रकार संगत ने श्री हरि कृष्ण जी को गुरु स्वीकार कर लिया। तो ये थी कुछ खास बातें विशेष गुरु हर किशन जी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। कई बार ऐसे चमत्कारी घटनाएं इतिहास में जुड़े हुए हैं जिसको सुनकर समझने में बड़ी बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हकीकत यही है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति, मैं हूं गायक कलाकार रामशंकर और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आपको अभी ले चलते हैं एक विशेष व्यक्ति के बारे में। बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, है ना। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जब आप सुनेंगे उनकी बायोग्राफी तो बड़ा अच्छा लगेगा और आप जानते भी हैं और समझते भी हैं ऐसे विशेष क्रिकेटर की कहानी। थोड़ी थोड़ी तो आपने न्यूज़ में भी सुनी, टीवी में देखा उन्हें, तो अब रेडियो पर उनकी कहानी आपके लिए। आज सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ क्रिकेट को धर्म और क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और अगर बात की जाए इस खेल के कैप्टन की, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि उसके ऊपर पूरे देश का कितना दबाव होता होगा। लेकिन आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, उनके डिसीजंस की तो दांत देनी होगी, जिन्होंने इतने दबाव के बाद भी अपनी कप्तानी से भारत को T20 वर्ल्ड कप और वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी जीतें दिलाई हैं जो कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक सपना सा लगने लगा था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिनकी अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम तीनों फॉर्मेट्स में नंबर एक का ताज हासिल कर चुकी है। दोस्तों, उन्होंने क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि हर भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट को चाहने वाला उन पर गर्व करता है। यहां तक कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का कहना है कि धोनी दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तान हैं। मुझे खुशी है कि वे मेरे खेलते समय मेरे कप्तान रह चुके हैं। तो दोस्तों, आइए भारतीय टीम की नई किस्मत लिखने वाले कैप्टन कूल के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को बिहार के रांची शहर में हुआ था, जो कि अब झारखंड राज्य में है। उनके पिता का नाम पान सिंह और मां का नाम देवकी है। वैसे तो धोनी का होम टाउन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लावली नाम के एक गांव में है, लेकिन उनके पिता पान सिंह की जॉब मैकोन कंपनी में जूनियर मैनेजमेंट ग्रुप में लग गई, जिसकी वजह से उन्हें पूरे परिवार के साथ रांची में शिफ्ट होना पड़ा। धोनी के साथ ही साथ उनकी एक बहन है जिसका नाम जयंती है और एक भाई भी है जिसका नाम नरेंद्र है। धोनी ने अपनी शुरू की पढ़ाई DAV जवाहर विद्यालय मंदिर श्यामली रांची से की थी। MS भले ही आज सफल क्रिकेटर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन बचपन में उन्हें बैडमिंटन और फुटबॉल का बहुत शौक था और उस समय तक शायद क्रिकेट का उन्होंने कभी कुछ ज्यादा सोचा नहीं था। फुटबॉल की बात करें तो वह इस खेल में इतने अच्छे थे कि छोटी उम्र में ही उन्हें डिस्ट्रिक्ट और क्लब लेवल पर मैचेस खेलना स्टार्ट कर दिया था। वह अपनी फुटबॉल टीम में एज अ गोलकीपर खेलते थे। उनका गोलकीपर के तौर पर अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए फुटबॉल टीम के कोच ने उन्हें क्रिकेट में हाथ आजमाने के लिए भेजा। हालांकि धोनी ने उससे पहले कभी क्रिकेट नहीं खेला था, फिर भी उन्होंने अपने विकेट कीपिंग से सबको बहुत प्रभावित किया और कमांडो क्रिकेट क्लब के रेगुलर विकेट कीपर बन गए। क्रिकेट क्लब में उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें 1997-98 के दौरान विनू माकन ट्रॉफी अंडर 16 चैंपियनशिप के लिए चुना गया, जहां उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। धोनी सचिन तेंदुलकर और एडम गिलक्रिस्ट के बहुत बड़े फैन थे। वह अपने शुरुआती दिनों में लंबे लंबे बाल रखा करते थे, क्योंकि उन्हें बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम बहुत पसंद थे और वह उन्हीं की तरह दिखना चाहते थे। जॉन की तरह ही धोनी को भी तेज रफ्तार से बाइक और कार चलाने का शौक है और आज भी जब भी कभी धोनी को टाइम मिलता है तो वह अपनी फेवरेट बाइक से घूमने निकल जाते हैं। क्लास 10 तक उन्होंने एक साधारण तरीके से क्रिकेट खेला, क्योंकि उस समय तक उन्हें खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना होता था। और फिर 10th के बाद से वह क्रिकेट को ज्यादा टाइम देने लगे थे। लेकिन उसी बीच उन्होंने रेलवे में TT के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया और वह उसमें सेलेक्ट हो गए। उसके बाद धोनी साउथ रेलवे के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर 2001 से 2003 तक एज अ TT काम किया। MS के साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि वह एक नेक दिल इंसान थे और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया करते थे। दोस्तों, धोनी हमेशा उनकी शरारती हरकतों के लिए जाने जाते हैं। एक बार की बात है, जब धोनी रेलवे के क्वार्टर पर रह रहे थे, तभी वह अपने दोस्त के साथ मिलकर खुद को सफेद कंबल में पूरी तरह ढक लिया और देर रात तक अपने कॉलोनी में घूमते रहे। वहां का पहरेदार और कुछ और लोगों ने लंबे बाल और पूरी तरह सफेद कपड़े में ढका हुआ उन्हें देखा और डर कर वहां से भाग निकले। लोगों को यहां तक यकीन हो गया था कि कॉलोनी में कोई भूत घूम रहा है। उनकी इस शरारत से लोग बहुत डर गए थे और अगले दिन यह एक बड़ी खबर बन गई थी। वह रेलवे में नौकरी के साथ ही साथ 2000 से 2003 तक रणजी ट्रॉफी का हिस्सा बने रहे। धीरे धीरे क्रिकेट की तरफ उनका पागलपन इतना बढ़ गया कि उनका काम से मन हटने लगा और उन्होंने क्रिकेट में पूरी तरह से अपना कैरियर बनाने का सोच लिया। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि वह नेशनल क्रिकेट टीम में कैसे सिलेक्ट हुए। तो दोस्तों, बता दूं कि BCCI की एक टीम होती है जो छोटे शहरों से सबसे अच्छे टैलेंट्स को खोजने का काम करती है, और उसी टीम में से प्रकाश पोडार की नजर धोनी के अद्भुत खेल पर पड़ी और उन्होंने धोनी को नेशनल लेवल पर खेलने के लिए सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों, बता दूं कि प्रकाश पोडार बंगाल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। MS धोनी को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 2003 में उन्हें इंडिया ए टीम के लिए चुना गया और वो ट्राई सीरीज खेलने के लिए केनिया गए, जहां पाकिस्तान की टीम भी आई हुई थी। इस सीरीज में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें पाकिस्तान के 223 रनों का पीछा करते हुए उस मैच में उन्होंने अर्धशतक बनाया और भारतीय टीम को मैच जीतने में हेल्प की। अपने परफॉर्मेंस को और मजबूत करते हुए धोनी ने इसी टूर्नामेंट में 120 और 119 रन बनाकर 2 शतक पूरे किए। यहां पर धोनी ने कुल 7 मैचों में 362 रन बनाए थे। तभी धोनी के शानदार परफॉर्मेंस पर उस समय के कैप्टन सौरभ गांगुली का ध्यान गया और साथ ही साथ भारत ए टीम के कोच संदीप पाटिल ने

बांग्लादेश के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस अच्छा ना होने के बावजूद भी वे पाकिस्तान के खिलाफ वनडे टीम के लिए चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी के बल्ले की गूंज तब सुनाई दी जब अपने पांचवें ही मैच में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक ठोककर भारत को जीत दिला दी। उस मैच में धोनी ने 123 गेंदों पर शानदार 148 रनों की पारी खेली थी। यह किसी भी विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर हाईएस्ट स्कोर था। उसके बाद भी उन्होंने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और टीम में अपनी मजबूत जगह बना ली। 2007 में जब राहुल द्रविड़ ने टेस्ट और वनडे कैप्टेंसी से इस्तीफा दे दिया और सचिन तेंदुलकर को टीम का कैप्टन बनने के लिए कहा जाने लगा तो सचिन ने विनम्रता से मना कर दिया और धोनी को कैप्टन बनाने के लिए कहा, जिससे बोर्ड के मेंबर्स भी सहमत हो गए और धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट के कैप्टन बन गए। उसके बाद से धोनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऐसी कप्तानी की कि 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम किया और फिर 2011 में वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर लिया। दोस्तों, भारतीय टीम को एक अच्छा कैप्टन के तौर पर कपिल देव, अजरुद्दीन और गांगुली के बाद अगर कोई मिला वो थे महेंद्र सिंह धोनी। अगर धोनी के पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने 4 जुलाई 2010 को साक्षी से शादी की और 6 फरवरी 2015 को उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम जीवा रखा। दोस्तों, धोनी को 2008 में ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। धोनी पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्हें यह सम्मान मिला। इसके अलावा धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, उनकी कप्तानी में भारत ने 28 साल बाद एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में दोबारा जीत हासिल की। दोस्तों, 30 दिसंबर 2014 को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया था। उसके बाद 4 जनवरी 2017 को वनडे और T20 की कप्तानी भी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह एक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलते रहेंगे। दोस्तों, धोनी की कप्तानी में टीम में कभी भी विवाद नहीं होता है क्योंकि वो अपने शांत सोच से टीम में एकता बनाए रखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ना केवल एक बेहतरीन खिलाड़ी बल्कि एक बेहतर इंसान भी है, जो कभी मैच की जीत का श्रेय खुद को नहीं मानते हैं बल्कि पूरी टीम को इसका श्रेय देते हैं, जिसके कारण टीम के सभी खिलाड़ी भी उनका सम्मान करते हैं।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार, अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसके क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है, और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए महेंद्र सिंह धोनी की पूरी कहानी आपको हमने सुनाई, आशा करूंगा कि आप सभी बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए जाते जाते एक और शख्सियत के बारे में कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। एक राजनीतिक है राघव जी। जी हाँ, ये विशेष भारतीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री और राजनीतिक रहे, मध्य प्रदेश की राजनीति में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। राघव जी मध्य प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री हैं और विदिशा से मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। राघव जी लोकसभा और राज्यसभा से भी सदस्य रह चुके हैं और वे 6ठी लोकसभा और 9वीं लोकसभा संसद के सदस्य थे। तो आई इनके जन्म आज के दिन 1934 को विदिशा मध्य प्रदेश में हुआ, और अपनी शिक्षा दीक्षा के अंतर्गत उन्होंने एक एमकॉम तथा एलएलबी की डिग्रियां प्राप्त की। और राघव जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद वकालत का पेशा अपनाया। एक वकील के रूप में वे टैक्स कंसल्टेंट हैं। राघव जी सन 1958 से इस पेशे में जुड़े हुए हैं। तो चलिए ये थी कुछ खास बातें इनके बारे में। और राघव जी को विशेष रूप से 4 दिसंबर 2005 को मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के मंत्रिमंडल में सम्मानित किया गया, और 20 दिसंबर 2008 को गठित शिवराज चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में उन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो ये थी कुछ खास बातें, और इसी के साथ चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर और एक और सुंदर विचार आपके लिए। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

रेडियो 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है युवा मंच। और दोस्तों, आज तारीख है 7 जुलाई। वैसे तो हम जानते हैं कि मौसम बदलता है, मौसम के साथ साथ शरीर का ध्यान कैसे रखना है वो भी बदलता है। और दोस्तों, साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकार से अपना बचाव भी करें। अब बचाव करना होता है शरीर का, मन का, साथ साथ एक और बचाव है जो आज की दुनिया में बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, हम सब सिर्फ अपने गांव के, शहर के या इस देश के ही रहवासी नहीं हैं, बल्कि हम सभी एक और दुनिया में रहते हैं और उस दुनिया को कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं तो उसके कायदे कानून, उसमें होने वाली चीज़ों का भी पता होना चाहिए। जैसे पता रखते हैं ना हम कि आसपास क्या हुआ, किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से नहीं जाना है, कहाँ पे क्या समस्या चल रही है, हम पता रखते हैं। और अगर कोई हमारे घर पे आता है तो हम उसे बताते भी कि भाई देखो, वहाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, तो तुम इस बात का ख्याल रखना। अब ये जानकारियाँ कई बार हमें बचाती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं। तो जब हम इंटरनेट की दुनिया में रहते ही है दोस्तों, तो क्यों ना इंटरनेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका भी पता रखा जाए। जी हाँ, आपको बताएंगे, एक नई जानकारी की ओर लिए जाएंगे रेडियो मधुबन पर। दोस्तों, हम हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि आपको कोई ना कोई नई जानकारी ज़रूर दें। तो दोस्तों, इस बार भी आपको कुछ ऐसी ही जानकारियाँ मिलने वाली हैं। पहले मैं आपको बता दूं एक सुंदर से प्रयास के बारे में, अगर आपने अभी तक नहीं जाना है तो। उस प्रयास का नाम है साइबर दोस्त। जी हाँ, जिसे आप किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और इस पर आपको सही जानकारी मिलेगी, इसकी गारंटी है। कैसे भाई? ये ऐसा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, यानी कि गृह मंत्रालय का शुरू किया गया एक बहुत सुंदर सा प्रयास है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा। तो आप यहाँ पे सही जानकारी पा सकते हैं। चलिए, कुछ और जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे ज़रूर, पर फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर आएंगे। युवा मंच जारी रहेगा, सुनते रहिए, मुस्कराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: The official cyber safety awareness initiative by the Indian Cybercrime Coordination Center, Ministry of Home Affairs. आज का सेशन ऑपरेशन साइहॉक 5.0 पर बेस्ड है, एक मेजर साइबर क्राइम क्रैकडाउन जहां ऑर्गेनाइज साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स, फेक कॉल ऑपरेशंस और फाइनेंशियल फ्रॉड चेन्स पर एक्शन लिया गया है। इस ऑपरेशन के थ्रू सामने आया कि साइबर फ्रॉड्स अक्सर इंडिविजुअल स्कैम्स नहीं होते बल्कि ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं। इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है श्री रजनीश गुप्ता सर, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस IFSO दिल्ली पुलिस। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे।
3: थैंक यू
2: सर। टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि ऑपरेशन साइहॉक की शुरुआत कैसे हुई और इस ऑपरेशन के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था।
3: साइहॉक की जो शुरुआत हुई वो पिछले साल ये देखा गया कि जो हॉटस्पॉट बन रहे हैं दिल्ली में, ऐसे तीन तरह के हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए, जैसे बैंक के खाते जो म्यूल खाते हैं, फ्रॉडस्टर्स कहीं भी हों या जो विक्टिम कहीं भी हों ऑल ओवर दिल्ली, पर उसका पैसा दिल्ली के बैंक अकाउंट से निकल रहा है। दूसरा हॉटस्पॉट ATM का था जहां से वो पैसा कैश निकाल रहे हैं, और तीसरा चेक विड्रॉल हॉटस्पॉट्स थे। तो इनकी संख्या को देखते हुए और ये देखते हुए कि साइबर का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, एक इंटेंसिव ऑपरेशन प्लान किया गया। I4C के जो CFCF RMS पोर्टल पर जो हॉटस्पॉट्स का डाटा लेकर उसको हमने 15 जिलों में बांटा और क्राइम ब्रांच और IFSO की यूनिट्स में उनके हिसाब से उनको दिया गया, और फिर वो ऑपरेशन लॉन्च किया गया नवंबर में पहली बार, 19 और 20 नवंबर को पहला ऑपरेशन, और फिर हर दो महीने में अब तक हम 5 ऑपरेशन कर चुके हैं साइहॉक के नाम से, जिसमें हमने साइबर फ्रॉडस्टर्स जिनकी जो रूट्स तो जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे थे उनके खिलाफ हमने FIR की। इसका सबसे मूल सिद्धांत ये था कि चाहे वो कंप्लेनेंट या विक्टिम या NCRP कंप्लेंट कहीं की भी हो, दो या दो से ज्यादा कंप्लेंट्स होने पर और उसका अकाउंट नंबर अगर दिल्ली में है तो धारा 112 में, जिसमें पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा को हमने लगाया, और ये मैं बताना चाहूंगा कि चाहे उसका विक्टिम का कंप्लेंट फॉर्मल नहीं भी था दिल्ली में, पर दिल्ली के चूंकि ढांचे को वो इस्तेमाल कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इस्तेमाल कर रहा था, और सिंस इट वॉज एन ऑर्गेनाइज्ड पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा में लगाते हुए हमने FIR दी, और यहाँ के खाता धारकों को और उनसे जो ट्रेल मिली बाकी क्रिमिनल्स को हमने अरेस्ट किया, जिसकी वजह से हम इन दो दिनों के ऑपरेशंस में, हर ऑपरेशन हमारा 2 दिन चला, और उन 2 दिनों में हम लोगों ने जैसे लगभग जितने भी हमारे यहाँ दिल्ली में जैसे 225 पुलिस थाने हैं, 179 ज्यूरिस्डिक्शनल थाने हैं, साइबर क्राइम के थाने हैं, और रेलवेज और IGI एयरपोर्ट के थाने हैं, उन सभी थानों ने लगभग 2500 से लेके के आसपास जो पुलिस ऑफिसर्स हमने डिप्लॉय किए, तो उन्होंने ना सिर्फ दिल्ली में लोगों को अरेस्ट किया बल्कि इसकी जो कड़ियां मिली हमें और स्टेट्स में भी मिली, लगभग ऑल ओवर कंट्री मैं कहूंगा मिली, और इस साइहॉक 5.0 में तो हम लोगों ने 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर अपनी टीम्स भेज के करीब 3000 लोगों को हमने वो किया, और जो फाइनल फिगर जो अरेस्ट किए मैं शेयर करना चाहूंगा वो 916 लोग हमने अरेस्ट किए और 691 लोगों को हमने बाउंड डाउन किया, और ओवरऑल 4290 लोगों के खिलाफ हमने एक्शन लिया एक साइहॉक 5.0।
2: सर, ये तो काफी काबिल-ए-तारीफ है। सर, ऑपरेशन साइहॉक अब 5th फेज तक पहुंच चुका है, जैसे आपने बताया पिछले फेजेस से लेकर साइहॉक 5.0 तक साइबर क्राइम पैटर्न्स में क्या मेजर चेंजेस देखने को मिले और इस ऑपरेशन को कंटीन्यूअसली एक्सपैंड करने की जरूरत क्यों महसूस हुई।
3: ये बहुत पर्टिनेंट प्रश्न है। जैसे ही हम लोगों ने साइहॉक 1.0 लॉन्च किया था नवंबर में, हमने देखा कि इसका इम्पैक्ट बहुत हुआ और नंबर ऑफ फ्रॉड कॉल्स जो हमारे विक्टिम्स की जो कॉल्स है काफी कमी आई। हमें ये लगने लगा था कि ये ज्योग्राफिक न्यूट्रल जैसे क्राइम जैसे मानते हैं कि चाहे वो विक्टिम्स बाहर के भी थे, लेकिन चूंकि हमने उन क्रिमिनल्स को जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे थे पकड़ना शुरू किया, तो वो उसका इम्पैक्ट दिल्ली पर भी आया। तो ये एक अप्रोच थी। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल क्राइम के अंदर हम देखते हैं, क्राइम से क्रिमिनल तक हम जाते हैं, पहले FIR दर्ज होती है और फिर हम क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर इस केस के अंदर हमने क्रिमिनल से क्राइम तक पहुंचने की कोशिश की और इसकी सफलता को देखते हुए इस ऑपरेशंस की फ्रीक्वेंसी को जब लागू किया गया तो देखा कि नेक्स्ट ऑपरेशन में भी लगभग हम उतने ही लोगों को पकड़ पा रहे हैं और ज्यादा लोगों को पकड़ पा रहे हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात इन ऑपरेशन से ये लगी कि ना सिर्फ साइबर के थाने इसमें इन्वॉल्व थे, चूंकि इसके अंदर बाकी पुलिस स्टेशन की पुलिस कर्मियों को भी हमने टास्किंग दिया, जैसे हर पुलिस स्टेशन में 3 से 5 टीम्स बनाई गई हेडेड बाय वन सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। उन टीम्स का जो लर्निंग हुआ, ना सिर्फ मनी ट्रेल के पीछे भागते हुए, तो हमने लिंकेजेस देखे, जो दिल्ली के खाता धारक थे उनके लिंकेजेस मिले कि उनके खाता धारक खुलवाए गए ऐसे व्यक्ति ने जो महाराष्ट्र में है, जो केरला में है, जो असम में है। तो उनके जो लिंकेजेस को जब हम पकड़ने गए तो हमने देखा कि इसका एक्सपेंस ऑल ओवर कंट्री है, और क्रिमिनल्स के जब तार जुड़े हुए थे आपस में, तो साइहॉक 5.0 में हमने देखा वी वर एबल टू मतलब इतना जो संख्या जो हमने अरेस्ट की देखी 916 जो सबसे ज्यादा रही, वो इसलिए रही कि हमने टीम्स को पहले से प्रिपेयर किया और जो डाटा की शेयरिंग हुई वो जैसे 31 मई तक का डाटा हमने शेयर किया, और ये ऑपरेशन के अंदर 16 तारीख और 17 तारीख को जो ऑपरेशन किया, तो 15 दिनों के अंदर हमारी सभी टीम्स लगभग पूरे कंट्री के अंदर जब हमने एडवांस में भेजी और दे वर एबल टू अरेस्ट सो मेनी पीपल। तो जो एक्सपेंस है इसका और जो लर्निंग है वो ना सिर्फ सीमित रही साइबर थानों तक, बल्कि सभी जो पुलिस स्टेशन दिल्ली के हैं उन सभी थानों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हमें ज्यादा सफलता मिली।
2: तो जैसा आपने बताया ऑपरेशन साइहॉक 5.0 जैसे लार्ज स्केल ऑपरेशन में मल्टीपल स्टेट्स और एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन रहती है, तो उसमें एग्जैक्टली लोगों का क्या रोल रहता है?
3: ये जैसे मल्टी एजेंसी में मैं कहा, एक तो बात ये हुई कि हमारे लोग गए डिफरेंट पुलिस स्टेशन डिफरेंट स्टेट्स में यूनियन टेरिटरीज में। बिसाइड्स इसमें मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, हमारे को एक तरफ तो IFOC एज ए सेंट्रल एजेंसी जहां पर सभी बैंक्स बैठते हैं वहां पर उनसे मदद मिली, तो एक वर्टिकल तो हमारा एक अम्ब्रेला हुआ जहां पर IFOC से हमें मदद मिल रही है बैंकिंग के जरिए, बैंक्स की जो इन्फॉर्मेशन आने चाहिए। जैसे अगर हम नॉर्मल रूटीन में अगर बैंक से इन्फॉर्मेशन मांगते हैं खाता धारक की, तो उसके अंदर टाइम लगता है, ईमेल भेजते हैं और फिर आती है, पर हमारे को ये इन्फॉर्मेशन एक पोर्टल पर के जरिए हम रिक्वेस्ट करते हैं और तुरंत मिलती है, और उस टिकट को हम IFOC की मदद से तुरंत विद इन फ्यू मिनट्स आई वुड से हम रिजॉल्व कर पा रहे थे। जैसे ATM के अंदर अगर हमें ATM का अगर कंसर्न बैंक पता करना है, कंसर्न खाता पता करना है, खाली हमें ATM कार्ड पता है लेकिन खाता नहीं पता, तो वो चीज का जो इंफॉर्मेशन की जो जो स्पीड थी वो हमारी कोऑर्डिनेशन से बहुत बड़ी। तीसरा पिलर हमारा इसमें टेलीकॉम नेटवर्क है, जो टेलीकॉम के साथ जो हमारा इसमें तालमेल हुआ, जैसे कुछ हमने सिम बॉक्सेस के लिए जैसे साइहॉक 4.0 में हम लोगों का सिम बॉक्स पे बहुत ज्यादा था, इस ऑपरेशन में हमारा जो था वो सबसे ज्यादा APK बेस्ड फाइल्स फ्रॉड्स का था, तो टेलीकॉम का इसमें हमारे को बहुत बड़ा इसमें सहयोग मिला। और एक जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एफर्ट के अंदर जो हम लोगों ने इस बार एक ऑप्स रूम जो बनाया था उसके अंदर हम लोगों ने जो डिफरेंट हमारे जिले हैं विद इन दिल्ली, हमने उन जिलों के कोऑर्डिनेटर एक ACP रैंक ऑफिसर को भी हमने इसमें रखा, जिससे हमारा जो कोऑर्डिनेशन और जो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन था वो एक्सपीडाइट हुआ एंड वी वर एबल टू हैव ए लॉट ऑफ लर्निंग्स जो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले साइबर ऑपरेशंस में हम यूज भी करेंगे।
2: सर, अक्सर आम सिटीजन सोचते हैं कि साइबर फ्रॉड एक इंडिविजुअल स्कैम है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑर्गेनाइज साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स कैसे ऑपरेट करते हैं?
3: ये बहुत अच्छा सवाल है। ये दरअसल इसमें दो तरह के हम लोगों ने फ्रॉडसेस की संख्या देखी। एक फ्रॉडसेस वो हैं जो जानतारा टाइप में हैं जो इंडिविजुअली आपके फोन को हैक करते हैं और मनी साइफन ऑफ करते हैं, जो पैसा बहुत अमाउंट छोटा है पर वॉल्यूम बहुत बड़ा है. और दूसरा जो टेक्नोलॉजिकली मैंने देखा कि यहाँ पर बैंक्स जो जो कॉरपोरेट बैंकिंग के जो करंट बैंकिंग के जो खाते हैं उसमें बहुत बड़ा अमाउंट आता है, 1 करोड़ 2 करोड़, और वो फिर साइफन होता है मल्टी बल्क आरटीजीएस फैसिलिटी के थ्रू. ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं ये ज्यादातर बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके अंदर वो फ्रॉडस्टर आपका जो म्यूल अकाउंट खाता है उसका यूजर आईडी पासवर्ड लेते हैं और उसकी फैसिलिटी को यूज करते हुए एक ही क्षण में आपका पैसा डिफरेंट अकाउंट्स में भेज देते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ट्रेस देम. तो एक तरफ छोटा अमाउंट है पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ बहुत बड़ा अमाउंट है लेकिन संख्या कम है, लेकिन वो भी एक्सपेंड कर रही है. इसके अंदर जो बड़ा वाला अमाउंट है इसमें अभी हमने देखा कि जो छोटे वाले अमाउंट के लोग हैं वो एपीके फाइल भेजते थे, व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, एपीके फाइल से आपका व्हाट्सएप उससे हैक हुआ, फिर आपके मित्रों को वो एपीके फाइल गई एंड इट गोज इनटू एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और जो मतलब इट इज द कैपेसिटी ऑफ द फ्रॉडस्टर, वो जितना लोगों को एक्सपेंड कर रहा है और जितने लोगों को टच कर रहा है, तो कहते हैं ना 100 में से एक आदमी तो ट्रैप हो ही जाएगा. दूसरी तरफ एक जिप फाइल का हमने प्रयोग देखा जिसके अंदर मैलवेयर आ रहा है, कंपनी के लोगों को वो जिप फाइल आरबीआई के माध्यम से आरबीआई का लोगो लगाया और एक ऐसा एक अर्जेंसी दिखाती है कि भाई आप कंप्लायंस करिए और इस जिप फाइल के अंदर जो हमारा फॉर्म है वो भरिए 3 दिन के अंदर, वरना आपका जो कंप्लायंस है वो पूरा नहीं होगा. उन जिप फाइल्स के अंदर हमने देखा कि जो मैलवेयर अटैक हो रहा है उससे बॉस का डीपी लगाकर बॉस के नंबर पर फ्रॉडस्टर अपना नंबर रिप्लेस कर देता है और फिर वो कमांड देता है अकाउंटेंट को कि मैं ऐसे ऐसे मीटिंग में बैठा हूं, मैं आपका बॉस हूं, आप मेरे इस कंपनी के अकाउंट में से लेके इतने पैसे 2 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दीजिए. नाउ दिस काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग बीइंग डन स्टार्टिंग इज जिप फाइल. प्लेटफॉर्म वही है, फ्रॉडस्टर लेकिन ज्यादातर बाहर बैठे.
2: सर, साइबर क्रिमिनल्स टेक्नोलॉजी और नए मेथड्स का यूज करके लोगों को टारगेट कर रहे हैं. जैसे आपने बताया एपीके फाइल्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज एंड अब जिप फाइल भी बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिल रहा है. आज के टाइम में सिटीजंस को सबसे ज्यादा किस टाइप के साइबर फ्रॉड से अलर्ट रहना चाहिए?
3: देखिए, जितने भी मैलिशियस लिंक्स, चाहे वो एपीके फाइल का आइकन बना हो, चाहे वो जिप फाइल का आइकन बना हो, चाहे वो एसएमएस में कोई लिंक आया हो, इनसे सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है.
2: सर, हमारे एक व्यूअर का सवाल आया है, अगर कोई सिटीजन साइबर फ्रॉड का विक्टिम बन जाता है तो इमीडिएटली उसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि लॉस को मिनिमाइज किया जा सके?
3: 1930 पर रिपोर्ट करें और 4 चीजें नोट कर लें. पहला, अपना बैंक अकाउंट नंबर, कितने पैसे गए हैं, अमाउंट कितना गया है, अगर कई ट्रांजेक्शन में गया तो हर एक का इंडिविजुअल अमाउंट, कौन सी डेट और टाइम को गया है, और लास्ट यूटीआर नंबर. ये यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर हर एक केस का यूनिक होता है, हर एक केस का नोट करना है, चाहे वो बैंक की स्टेटमेंट से मिल जाएगा, आपके हर ट्रांजेक्शन में अगर एसएमएस आया तो वहां से मिल जाएगा. लेकिन मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहूंगा कि फोन कॉल्स में कोई भी अछूता नहीं रहा और 100 में से 1 व्यक्ति ही विक्टिम बनता है, तो वो अगर 99 लोग खाली जिसे फ्रॉड की कॉल आई, अटेम्प्ट हुआ, बच गए, लेकिन उस कॉल को ब्लॉक करने के अलावा रिपोर्ट भी करें और रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करें संचार साथी ऐप का, किसी भी मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड या iOS जैसे भी है. और संचार साथी ऐप में जैसे ही आप रिपोर्ट करते हैं तो उसकी चक्षु जो एक बटन है सबसे जो पहले वाला, उसका फायदा ये होता है कि अगर 3 व्यक्ति या 3-4 व्यक्ति उसको रिपोर्ट करते हैं तो वो नंबर ब्लॉक हो जाता है, तो फ्रॉडस्टर विल नॉट बी एबल टू मेक ए कॉल. और वो जो 99 आदमी या जो जो जो लास्ट मैन है जो विक्टिम बन सकता है वो बच जाएगा.
2: सर, आखिर में साइबर फ्रॉड नेटवर्क से बचने के लिए सिटीजंस को कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
3: मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को यहाँ दोहराना चाहूंगा, रुको, सोचो और फिर एक्शन.
2: जी सर. सर ऑपरेशन साइबर 5.0 और ऑर्गेनाइज साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स के वर्किंग पैटर्न्स पर आपकी इनसाइट्स हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और अवेयरनेस ड्रिवन रही। बहुत बहुत धन्यवाद इस साइबर सेफ लाइफ सेशन का हिस्सा बनने के लिए एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और साइबर सेफ्टी अवेयरनेस सेफ टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ स्टे साइबर अवेयर। थैंक यू।
3: थैंक यू।

0: साइबर क्रिमिनल्स कैसे माइंड गेम्स को यूज करके विक्टिम्स को टारगेट और मैनिपुलेट करते हैं?
1: तो जो वर्ड आपने कहा ना माइंड गेम, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन अब नहीं रहा, एक माइंड गेम बन गया, जैसे मैं कहती हूँ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, माइंड मैनिपुलेशन, या फिर मैं कह रही हूँ कि सिस्टम को हैक नहीं कर रहे हैं, इमोशन को हैक करें। अभी इमोशन को कैसे हैक करेंगे, यानी कि किसी ना किसी टाइप के आपको मैनिपुलेशन में डालेंगे। आप में एक जल्दबाजी कोई डिसीजन लेने के लिए आपसे कहा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि आपका आधार जो है वो इससे यूज हुआ है, या आपका खाता अकाउंट यहाँ पे सिंक है, या फिर एक कोई अथॉरिटी बन के कॉल करेगा, तो कहीं ना कहीं अर्जेंसी क्रिएट करते हुए आपके दिमाग को इतना भी टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप लॉजिकली सोच पाए। तो वो कहते हैं ना, मतलब इमोशनल

0: आपके इमोशन स्ट्रांग हो जाएंगे तो लॉजिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं कम हो जाती है और फिर आप एक ट्रैप में आते हुए डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं जो आपके डिसीजन नहीं होते हैं, स्कैमर आपसे वो डिसीजन करवा रहा होता है और इसीलिए ऐसे हम कहते हैं माइंड गेम, इट इज अ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल ट्रैप।
1: स्कैमर्स विक्टिम का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए फिर कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करते हैं?
0: अब जैसे ट्रस्ट बिल्ड करना, यानी ये ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट है, राइट? अब ह्यूमन बिहेवियर में यदि देखें तो वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर रहा है, कुछ तीन चार चीजें इन्वॉल्व है। या तो वो कहेगा कि मैं एक अथॉरिटी बोल रहा हूँ, RBI, CBI, एक पुलिस ऑफिसर, मैं एक अथॉरिटी हूँ, मैं DOT से हूँ, या फिर मैं कह लूँ I4C MHA से हूँ, तो एक अथॉरिटी बन के काम करेगा। सो वी कैन नॉट, यू नो, वी ट्रस्ट अथॉरिटी। तो वो अथॉरिटी जब बनता है हम इमीडिएटली ट्रस्ट कर लेते हैं, तो ये एक जो फैक्टर है उसने यूज किया। उसके बाद वो आपके अंदर एक फियर, एक भय आपके अंदर डालता है। अब वो भय कैसा भी हो सकता है कि एक दो मिनट में आपका खाता अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, आपका आधार मिसयूज किया गया है, आपकी ये फोटो चारों दिशाओं में मैंने फैला दी है, सो एंड सो फोर्थ, यानी कि वो कई तरीके के फियर फैक्टर आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता है। एक होता है ग्रीड, राइट? अथॉरिटी, फियर, अर्जेंसी, 5 मिनट में बंद हो जाएगा, 5 मिनट में पैसा चला जाएगा, OTP यहाँ हो जाएगा। उसके बाद आपसे एक ग्रीड, यानी कि लालच में भी आपको डाला जाता है, आपसे कहा जाता है कि यदि आप ये क्लिक करेंगे तो ये मिल जाएगा, लाइक, रिव्यू, शेयर, कमेंट का जमाना है, आप ये इसमें इतना निवेश करेंगे तो आपको इतना हाई रिटर्न मिल जाएगा, वो क्रिप्टो हो चाहे वो एक इन्वेस्टमेंट स्कैम हो, ऐसी कुछ चीजें हैं जहाँ पे ट्रस्ट। अब देखिए, ट्रस्ट एक और चीज होती है, यदि आप और मैं एक रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मैं आपको आपके नाम से बुलाना शुरू कर दूं, आपकी ही लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दूं, तो रीजनल कनेक्ट, आपका नाम, इतना पर्सनल तरीके से एंगेजमेंट रखना, अगेन इट गिव्स अनदर लेवल ऑफ ट्रस्ट। सो इस तरीके से कई तरीके से एक स्कैमर जो है विक्टिम के साथ ट्रस्ट डेवलप करता है।
1: मैम, जैसे आपने बताया कि साइकोलॉजिकली उनको मैन्युपुलेट और ऐसे तरीकों से ट्रस्ट गेन किया जाता है, तो जब साइबर क्रिमिनल किसी विक्टिम को टारगेट करते हैं तो उससे पहले वो जरूर किसी ना किसी तरीके की प्लानिंग करते होंगे, तो वो किस तरह की प्लानिंग या प्रोफाइलिंग और रिसर्च करते हैं?
0: तो आपने भी देखा होगा कि पेंशन रिलेटेड स्कैम सीनियर सिटीजन के साथ हो जाते हैं, जॉब स्कैम स्टूडेंट के साथ हो जाते हैं, यानी कि ये कुछ ऐसे नहीं अचानक से क्राइम किए जा रहे हैं, इट इज अ वेल रिसर्च क्राइम, यानी कि वो आपके बारे में थरोली एक रिसर्च करता है, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग हो गई, आपके फोन नंबर्स कई बार लिए जाते हैं, आपका नाम मिल जाता है, एड्रेस, लोकेशन, डेजिग्नेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो प्रोफाइल पूरी क्रिएट करते हैं। प्रोफाइलिंग भी अलग तरीके से बिजनेसमैन के साथ, शायद टैक्स से रिलेटेड, टैक्स रिटर्न, GST और इनसे रिलेटेड आ रहे होंगे, जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनके साथ चालान रिटर्न आ जाएगा, शायद जो लोग चारधाम यात्रा जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ वो स्कैम हो रहे हैं। इट मीन्स इट इज अ वेल रिसर्च ऑर्गेनाइज स्कैम। तो ये आपके बारे में एक अच्छी प्रोफाइलिंग करके रखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रैप में लेके जाते हैं कि किसको, किस तरीके का फ्रॉड किसके साथ किस लेवल पे लेके जाना है।
1: मैम, आई थिंक आज के टाइम में हम लोगों को यही गाइड करते हैं, यही सजेस्ट करते हैं कि चाहे वो ऑनलाइन सोशल मीडिया हो या फिर वो कभी शॉपिंग कर रहे हैं किसी वेबसाइट पे, कम से कम डेटा अपना दें और कभी भी सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ओवर शेयर ना करें अपनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन यूज करके उसके अगेंस्ट या तो आपको रीच आउट करके टारगेट कर सकते हैं, वरना आपकी ही इंफॉर्मेशन यूज करके आपके किसी रिलेटिव बेसिकली इम्पर्सोनेट करके
0: Absolutely. So that is what we keep saying. Minimize your digital footprints. Social media पे सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करें जिन्हें आप जानते हैं. Influencer is very common. कोई भी एक fake identity बना के, बैरूपिया बन के आपसे ट्रस्ट बिल्ड करके बात कर सकता है, कॉल कर सकता है, वीडियो कर सकता है. अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखिए, उतने ही लोगों से जुड़िए जितना आप जानते हैं, और फिर भी कभी कुछ हो जाए, सो वी हैव अ प्रोविजन वेयर टू रिपोर्ट ऑल्सो ऑफ दोस सस्पेक्ट एंड द स्कैमर्स.
1: मैम, अक्सर लोग स्कैम का ऐसे शिकार हो जाते हैं, तो इससे पीछे, इसके पीछे कौन से कॉमन ह्यूमन बिहेवियर्स या साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हमें देखने को मिले?
0: देखिए, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स की बात जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, एक इमोशनल ट्रैप किस तरीके से, अब यदि मैं डिजिटल अरेस्ट ही देखूँ तो सबसे पहले किसी ने मुझे कॉल किया, कॉल करके कहा कि भाई आपका खाता अकाउंट इस खाता अकाउंट से सिंक दिखा रहा है, आपका पैसा गलत अकाउंट में जा रहा है, ये आपका आधार मिसयूज है, या फिर कोई रिटर्न है, या XYZ किसी भी टाइप का यदि फ्रॉड है, तो सबसे पहले वो सामने वाले को इतना प्रेशर में डालता है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 2 मिनट में आपके खाता अकाउंट से पैसा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा या फिर 2 मिनट में ट्रांसफर हो गया, डू यू हैव टाइम टू रिस्पॉन्ड, डू यू हैव टाइम टू वेरीफाई एट टाइम्स? सो वो जो एक टाइम टू वेरीफाई है, जो समय है, समय का जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि इतना भी समय नहीं है कि मैं वेरीफाई कर पाऊँ, दैट प्रेशर समवेयर यू नो इट इज अ ट्रिगरिंग पॉइंट कि इस पर प्रेशर क्रिएट। दूसरा, यदि लालच का है, यदि इन्वेस्टमेंट है या फिर रिटर्न है या क्रिप्टो है, ऐसे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जहाँ पे आपको एक लालच में डाला जाता है। कई जगहों पे हमें भय दिखाई देता है कि इसको फियर फैक्टर में डालो, मैं एक अथॉरिटी बोल रहा हूँ, सामने वाला अथॉरिटी का नाम सुन के डर जाएगा, एक रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, वो डर जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आज यूज की जा रही है। आप देखिए, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म या फिर एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है, सामने वाला समझ गया है कि ह्यूमन बिहेवियर को कैसे एक्सप्लॉइट करना है। उस ह्यूमन बिहेवियर में भी क्या है, लालच, ट्रस्ट, हम इंसान ट्रस्ट जल्दी करते हैं, राइट, फियर, अथॉरिटी, अर्जेंसी, प्रेशर, टाइम, यानी कि वेरीफाई करने का समय मत दो, एक के बाद इतना ज्यादा ट्रैप में लेके जाओ, लेवल ऑफ ट्रैप्स, सो दैट इट मे कन्वर्ट इनटू स्कैम।
1: हाँ बिल्कुल, जैसा आपने मेंशन किया, फियर, अर्जेंसी और अथॉरिटी जैसे एलिमेंट्स स्कैम्स में प्रैक्टिकली कैसे यूज किए जाते हैं, कुछ कोई एग्जांपल्स हमें देखने को मिले हो?
0: मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया, मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ, राइट, और आपका खाता अकाउंट या फिर मैं ये कह लूँ कि आपका बैंक अकाउंट यू नो इस अकाउंट के साथ खाता अकाउंट सिंक दिखा रहा है, गलत अकाउंट में पैसे आपके जा रहे हैं, इस पर इंक्वायरी रेज की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो एक सामने वाला ये नाम अथॉरिटी सुन के वी नेवर यू नो एक्चुअली क्वेश्चन द अथॉरिटी, बट रादर वी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू द अथॉरिटी, राइट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट। देन समथिंग इज लाइक कॉल्ड एज अर्जेंसी, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एक 5 मिनट में आपका ये बैंक अकाउंट 1 घंटे में, 5 मिनट में, 2 मिनट में बंद कर दिया जाएगा, राइट, आपका आधार जो है वो मिसयूज, सो दोस काइंड ऑफ अर्जेंसी दे कैन क्रिएट। उनको ये पता है कि इसमें रिस्पॉन्ड टाइम कम है, एक अर्जेंसी क्रिएट करी, तो अथॉरिटी, अर्जेंसी। फिर आपकी बात आई, हमने कहा कि प्रोफेशनल टोन में उसने बात की, राइट, कि आपका KYC अपडेट करना है, आपकी रीजनल लैंग्वेज में, एक बैंक ऑफिशियल बन के वो बात कर रहा है, सो एक प्रोफेशनल टोन, एक टेक्स्ट मैसेज को इस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है, स्क्रिप्टिंग की जाती है, इट लुक्स सो प्रोफेशनल, सो दे मेंटेन अ प्रोफेशनल टोन आल्सो व्हाइल स्क्रिप्टिंग दिस। फिर एक ग्रेजुअल एंगेजमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ हो रहा है, यदि आप देखें तो ट्रस्ट भी धीरे धीरे ही बिल्ड किया जाता है, आपका नाम, आपकी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करते हुए आपकी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है, ताकि आप ट्रस्ट करने लग जाएं जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और उसके बाद एक अथॉरिटी का नाम लेते हुए आपको फियर, प्रेशर में डाला जाता है, ताकि वो एक फाइनेंशियल स्कैम में कन्वर्ट हो जाए, या फिर मैं कह लूँ कि डेटा या फिर रेपुटेशन स्कैम में कन्वर्ट हो
1: जाए। मैम, अभी हम रिसेंटली ही कुछ साइबर क्रिमिनल विक्टिम्स से मिले थे, और उनका एग्जैक्टली यही कहना था कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बनकर उनको कॉल करता है और बिल्कुल उनकी प्रोफाइलिंग की हुई होती है, कोई कभी दिल्ली जल बोर्ड से कॉल करके उनको बोलेगा कि आपके मीटर में ये इशू है, और जो भी एट द रिसीविंग एंड है वो एकदम डर ही जाएगा, सबसे पहला थॉट ये आएगा कि नहीं मेरे घर का पानी ना बंद हो जाए, मेरे घर की बिजली ना बंद हो जाए, तो डर के मारे वो बिल्कुल वेरीफाई नहीं करते, वो दो बार सोचते भी नहीं है, और वो इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, या इमीडिएटली जो भी उनको स्कैमर बोल रहा है वो एक्शन ले लेते हैं। तो आई थिंक ये कॉन्स्टेंटली हम लोगों को गाइड करते रहते हैं कि रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। जो
0: मैं एक केस यहाँ पे बस इतना बताऊंगी विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी, आई मेट वन सीनियर सिटीजन लेडी, अब सोचिए जब उनको कॉल आता है पहली बार, तो उनका नाम, फोन नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, खाता अकाउंट नंबर, मतलब ये सारी चीजें एकदम सही बताई जाती हैं। सो जस्ट इमेजिन हाउ वेल रिसर्च इट इज टू रीच आउट टू द सीनियर सिटीजन। अब इतनी बातों बताने के बाद फिर भी चलिए आपके दिमाग में एक संदेह होता है, उसको और ट्रस्ट में बदला जाता है व्हेन दे कम अप विद द अथॉरिटी दैट आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ अथॉरिटी, आपके साथ पूरा यहाँ पे कोऑपरेट किया जाएगा, आपसे सिर्फ कुछ जानकारी ली जा रही है, तो यहाँ तक भी उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, इनके बारे में, मेरे बारे में इनको नॉलेज है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है। अब यहाँ से थर्ड लेवल ऑफ और बढ़ते हैं, वहाँ पे आप वो परिवारजनों के बारे में भी बताने लग जाते हैं, उनके साथ भी यही हुआ, उनकी दोनों डॉटर्स के बारे में और डिटेल बताने लग गए, सो इट मीन्स समबडी इज नोइंग एवरीथिंग, दैट इज व्हाट, एंड देन स्टार्ट्स जब इतना प्रेशर क्रिएट करना कि आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप वेरीफाई कर लें, कॉल कर लें, चेक कर लें, वो टाइम भी ये नहीं देते।

0: मैंने आपसे कहा कि कोई आपसे कह रहा है कि आपको बस एक ओटीपी भेजा है, आपने शेयर करना है कि कूपन कोड है या फिर एक डिलीवरी है आपके यहाँ, राइट, इस ओटीपी को शेयर कर दें। आपका सीवीवी मैनेज करने की बात कर रहे हैं, केवाईसी अपडेट करने की बात कर रहे हैं, आपसे एक व्हाट्सएप पे फेक आइडेंटिटी के थ्रू बात कर रहे हैं, या फिर आपको एक एजेंसी में लेके जा रहे हैं, या कह रहे हैं कि हाई रिटर्न मिलेगा आपको, आप जल्दी से इसको ऐसे करिए, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इस .apk फाइल को क्लिक कर लीजिए, ऐसी जितनी भी बातें की जा रही है, बहुत सारी मोडस ऑफ ऑपरेंडी यूज की जा रही है, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है ना, हमने अपनी जिंदगी में पहले भी की थी, राइट, तो इतनी जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। जमाना जरूर टेक्नोलॉजी का है, डिजिटल वर्ल्ड है, आधुनिक युग में है, लेकिन यहाँ पे वो जो आपने कहा कि रुको सोचो, यानी कि पॉज एंड वेरीफाई, पॉज एंड वेरीफाई, रुकिए पहले वेरीफाई कर लीजिए। घर में भी कोई आता था, दरवाजा खुलने से पहले हम वेरीफाई करते थे, राइट, तो प्लीज वेरीफाई कर लीजिए, उसको खुद कॉल कर लीजिए, अपना अकाउंट खुद चेक कर लीजिए, राइट, हर चीज को वेरीफाई कर लीजिए, रुक जाएगी, इतनी अर्जेंसी नहीं है, कुछ अर्जेंसी होगी तो आप सबसे पहले एक्शन लेंगे। सो दोज स्मॉल थिंग्स आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं आपको फिर कहूंगी स्कैमर्स जो है वो आपके इमोशन पे अटैक कर रहे हैं, और ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है, जब इमोशन हमारे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो लॉजिकल थिंकिंग डिक्लाइन होने लगती है, सो वी नीड टू बैलेंस दिस।
1: आखिर में लोग अपने आप को मेंटली अवेयर रखकर साइबर सेफ रहने के लिए कौन से सिंपल हैबिट्स अडॉप्ट कर सकते हैं?
0: तो थ्री गोल्डन रूल्स की बात कर रहे हैं, पैनिक मत होइए, मैंने पहले भी कहा कि पैनिक मत होइए, टाइम प्रेशर पे मत जाइए, राइट, ये जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, पैनिक मत होइए, पैनिक आपको किया जा रहा है, आप कॉल कट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, आप उसे दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, ओटीपी पिन जैसी चीजें केवाईसी अपडेट अथॉरिटी कभी भी ऑनलाइन वर्चुअल कॉल्स पे नहीं कराती है, तो इन चीजों को एकदम कहते हैं ना कमर कस लीजिए कि ये सब चीजें नहीं होती हैं, और इन छोटे छोटे ट्रैप्स में हमें नहीं जाना है। जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, फेक प्रोफाइल की बात की, क्योंकि वहीं तक लोग आज हम तक पहुँच पा रहे हैं, सोशल मीडिया और डिजिटल फुटप्रिंट्स को जितना हम प्रोटेक्ट कर पाए उतना बेहतर होगा। सोशलाइज करना सभी को पसंद है, राइट, सोशलाइज करना, और आज एक स्टेटस को भी है, फोमो भी चल रहा है कि मैं कहीं ना पीछे रह जाऊं, ठीक है आप पीछे मत रह जाएं, लेकिन कुछ सेफ्टी सावधानी जरूर रखें, जैसे अपने फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम जो भी आप प्रोफाइल यूज कर रहे हैं मेटा रिलेटेड, राइट, उस प्रोफाइल को आप लॉक करके रखें, नोन टू नोन ही सिर्फ फ्रेंड्स बनाएं, बहुत सारे सेफ्टी फीचर हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, मेनी सच थिंग्स। आई थिंक जिस दिन आपने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया अवेयरनेस, कहते हैं ना आज का सबसे बड़ा फायरवॉल जो है वो अवेयरनेस है, इससे बड़ा फायरवॉल आपके हाथ में है और वो है आपका अवेयरनेस।
1: मैम, साइबर क्रिमिनल्स के माइंड गेम्स और उनके साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स पर आपने जो आज इनसाइट शेयर करी है वो हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही। थैंक यू साइबर सेफ्टी सेशन का हिस्सा बनने के लिए, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे साइबर सेफ। थैंक यू मैम।

0: बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक होती हैं।
1: भगवान के साथ संबंध, the relationship with God, and friends, believe me, शायद हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं पहचाना। Two good reasons. एक तरफ भगवान को कहते वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं। We have become God fearing rather than God loving. आप कहेंगे सर, no, we don't fear God. Then there's a second good reason why we have not understood God. Because, friends, more than 80% of the war that is fought today is directly or indirectly in the name of God. चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वार हो, अमेरिका इराक वार हो, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम हो, गुजरात प्रॉब्लम हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, have we really understood God? किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का। We are fighting in the name of God and we call ourselves intellectuals. Friends, let's understand the name very clearly. Hindus मनाते हैं दिवाली और हमारे इस्लाम भाई बहने मनाते हैं रमजान, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हम समझ सकते हैं। अरे दिवाली में है अली A-L-I, तो रमजान में है राम R-A-M. दिवाली में है अली, रमजान में है राम। दिवाली में है दिल D-I-L, तो रमजान में है जान Z-A-N. अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है। वो परमात्मा के साथ वो संबंध जोड़ना जरूरी है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम सभी जो आत्माएं हैं उस एक परमात्मा के संतान हैं, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट वी कैन एस्टैब्लिश विद द ऑलमाइटी गॉड, एंड दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय भी होना बहुत बहुत जरूरी है। जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो उनका जो स्नेह है, क्योंकि परमात्मा को कहते हैं वो स्नेह और प्रेम का सागर है, तो ऑटोमेटिकली वो स्नेह और प्रेम हमारे में आने लगती है और हमारा जीवन फिर से प्रेममय, सुखमय और शांतिमय बन जाता है। तो हम सबको एक ऐसा कार्य करना है जिससे समाज जो है फिर से ऐसे सुखमय बन जाए।
2: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
3: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इनटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: ओ जी कहना सुनना, आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: को क्या होता है?
1: अरे तिकु नहीं पता क्या? इसमें पता है, लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: चिट्ठी।
1: चिट्ठी आई है, क्या बात है, दो दो दो। वाह, बहुत दिनों बाद चिट्ठी आई है मुझे।
2: बेटा रघु, उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आज हूँ कल चली जाऊंगी। कुछ दिनों से ना तुम्हारे गांव का वो जो गुड़ है वो खाने का बड़ा मन हो रहा है। मरने से पहले अगर थोड़ा सा खा पाती तो, अगर एक दो दिन के अंदर मुझे भिजवा देता तो मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाती। बेटा अच्छे से रहना, तेरी प्यारी बुआ।
1: हा हा हा हा, बुआ जी मेरे गांव का खजूर का गुड़ खाना चाहती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास इतना काम है, मेरा जाना मुश्किल है। बुद्धू को भेज दूं क्या? लेकिन बुद्धू जा पाएगा? उसे भेजूं या ना भेजूं? नहीं, बुद्धू ही जाएगा। बुद्धू बुद्धू बुद्धू, अरे बुद्धू।
3: आपने बुलाया मालिक?
1: हाँ सुनो, तुम्हें मेरी बुआ जी के घर जाना होगा, ठीक है? मेरी बुआ जी को खजूर का गुड़ खाना है।
3: खजूर का गुड़? वाह, ये सुनकर तो मेरे जीभ में भी पानी आ गया मालिक। लेकिन आप खाने कहाँ देंगे मालिक?
1: अच्छा, ये बातें करना बंद कर, तुझे अभी जाना होगा। और हाँ, तुझे ट्रेन में जाना होगा।
3: ट्रेन में जाना है मालिक?
1: जा सकोगे?
3: जा सकूंगा, हाँ बिल्कुल जा सकूंगा मालिक।
1: अच्छा ठीक है, चलो अब जल्दी जाके तैयार हो जाओ, मैं तब तक खजूर के गुड़ का इंतजाम करता हूँ।
3: ठीक है मालिक।
1: सुनो बुद्धू, ट्रेन के अंदर बहुत भीड़ होगी, इसलिए गुड़ की हंडी का ध्यान रखना, सावधानी से लेके जाना, हंडी को फोड़ मत देना।
3: ठीक है मालिक, मैं एकदम सावधानी से जाऊंगा, चिंता मत कीजिए।
1: अच्छा सुनो, ट्रेन में जैसे ही बैठने की सीट मिले तो तुरंत बैठ जाना, बहुत सारे स्टेशन आएंगे, तुम थक जाओगे। और हाँ, एक और बात, ट्रेन की टिकट काट लेना नंदीग्राम की, क्यों, याद रहेगा ना?
3: हाँ मालिक, याद रहेगा मुझे, मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ। अच्छा मालिक, मैं चलता हूँ, आशीर्वाद दीजिए मालिक।
1: जीते रहो, चलो शुभ यात्रा।

0: अरे वाह, बाप रे बाप, कितने दिन बाद मैं ट्रेन में चढ़ूंगा। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि मैं तो बता ही नहीं सकता। मेरा मन खुशी से उछल रहा है। नहीं, मैं अपने आप पे थोड़ा काबू रखता हूँ। मालिक ने कहा है ना कि मिट्टी का हांडी टूटना नहीं चाहिए, तो मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। मैं तो चुपचाप चला जाऊंगा। भले ही मेरा नाम बुद्धू है, पर मेरे पास बहुत दिमाग है।
1: अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे। टिकट खिड़की तो मुझे दिख ही नहीं रही है। देखता हूँ लाइन में लग के।
2: कहाँ की टिकट?
0: क्यों, ट्रेन की?
2: हाँ वो तो पता है, लेकिन जाओगे कहाँ?
0: अरे ये यहाँ पे पास में है ना, जहाँ ट्रेन जाती है। नाम क्या है? हाँ, नंदीग्राम। याद आया, याद आया। अब तो मुझे टिकट काटनी होगी। भैया, ओ भैया, ये नंदीग्राम जाने के लिए ट्रेन कहाँ से मिलेगी भैया?
3: यही खड़े रहो, आ जाएगी।
0: अच्छा, अब क्या आपके पास एक कैंची है?
3: है ना। ये क्या, तुम ये क्या कर रहे हो?
0: क्यों भैया जी, टिकट काट रहा हूँ। मेरे मालिक ने कहा है, बुद्धू याद से टिकट काट लेना।
3: क्या पागल आदमी है।
0: अरे वाह, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। चलता हूँ, चढ़ जाता हूँ। ए भैया, भैया जी, तो मुझे भी थोड़ी सी जगह दीजिए ना, मैं भी जाऊंगा ना। अरे तो थोड़ी जगह दीजिए, अरे मैं गिर जाऊंगा ना। थोड़ा सा जगह दीजिए, मुझे भी चढ़नी है। अरे मुझे बिना लिए कैसे जा सकती है ट्रेन, मैंने तो टिकट काटी है। अरे भैया जी, जगह दीजिए ना, मैं कैसे चढ़ूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतनी भीड़।

0: बाप रे बाप, इतनी भीड़।
1: मेरी हांडी को पकड़ के किसने खींचा?
2: ये तो लेकिन बहुत बड़ा उपकार हुआ, हांडी की वजह से मैं भी ट्रेन में चढ़ सका। ये सब तो मेरे बचपन की याद दिलाती है मुझे।
0: चुक चुक करती ट्रेन चलती, मैं चढ़ता डब्बे में।
2: हाँ, लेकिन सिर्फ चढ़ने से काम नहीं चलेगा। मालिक ने कहा है कि हांडी को अच्छे से संभाल के रखना, क्योंकि खजूर के गुड़ की बात है ना। आप लोग सुने भैया जी, खजूर के गुड़ की बात है।
0: ये क्या, मैंने भूल दिया।
2: अरे आप लोगों ने सुना नहीं ना।
3: क्या बात है, इसकी हांडी से खाने की खुशबू आ रही है। आहा, इस हांडी को चुराना ही होगा।
2: अरे वाह, एक जगह खाली मिली है, बैठ जाता हूँ जाके।
0: अरे भैया जी, मुझे भी बैठने दीजिए ना।
4: ए, उठो उठो उठो बाबा, ये तुम्हारे बैठने की सीट नहीं है।
0: क्यों चाचा जी, मैं तो पहले बैठा ना। सीट पर बैठने के लिए मैंने पूरे 5 रुपए दिए हैं।
4: ये सीट उसके लिए है जिसके सर पर बाल नहीं है। देखो लिखा भी है, देखो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देखो मुझे मत देखो, पीछे देखो पीछे।
2: अच्छा समझा, ये बात है। ओ समझा, ये सीट सिर्फ टकले लोगों के लिए है। अच्छा, मेरे तो बाल हैं, तब तो मुझे खड़ा ही रहना पड़ेगा। अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है मुझे। हाँ
4: अच्छा, तुम इस हंडी को लेकर कब से खड़े हो, तुम्हें समस्या नहीं हो रही है क्या?
0: थोड़ी समस्या तो हो रही है, आपने भी बहुत सही बात बोली टकलू चाचा। भैया।
4: अरे तो हंडी मुझे दे दो ना, मैं पकड़ लेता हूँ।
2: अच्छा आप पकड़ेंगे, वाह आपने तो मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया। ये लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ।
4: ऐसे खड़े खड़े?
2: हाँ मैं खड़े खड़े बैठे बैठे किसी भी समय सो सकता हूँ, मेरे को ना सोना बहुत अच्छा लगता है।
4: सो जाओ सो जाओ सो जाओ।

0: अरे चलो चलो चलो, स्टेशन आ गया है, चलो। अरे ये क्या कर रहा है? आखिरी स्टेशन आ गया और ये सो रहा है भाई। ओ भाई, ओहो, पता नहीं कौन से जन्म की नींद पूरी कर रहा है। ओ भाई उठ जाओ, आखिरी स्टेशन आ गया, चलो उठो।
1: नंदीग्राम आ गया है बाबू।
0: नंदीग्राम? वो तो कब का पीछे रह गया है, ये तो रामगढ़ है आखिरी स्टेशन। तुम्हें कहाँ जाना है?
1: रामगढ़? ये क्या, मैं तो एक स्टेशन आगे आ गया। ये क्या सर्वनाश कर दिया मैंने, अब मेरे पास तो एक रुपया भी नहीं है। अब मैं वापस कैसे जाऊंगा, मैं बर्बाद हो गया। अरे तूने क्या कर दिया रे बुद्धू, मेरा खजूर का गुड़ भी नहीं दिख रहा है, वो टकलू लेके चला गया।
0: क्या हो गया, तुम्हारा क्या चला गया?
1: अरे मेरा नहीं, मेरी बुआ का खजूर के गुड़ का हांडी था, वही लेके चला गया टकलू।
0: क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। चलो अपना टिकट दिखाओ, चलो। ये क्या, ये तो फटा हुआ टिकट है।
1: ये फटा हुआ नहीं, कटा हुआ है। मेरे मालिक ने कहा था कि टिकट काट लेना, तो मैंने कैंची से टिकट काट ली। मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा, मेरे को उनके पास भेज दीजिए, मेरे को उनके पास भेज दीजिए।
0: अरे कैसा पागल आदमी है, तुम्हें कहाँ जाना है?
1: मालिक के पास। मालिक?
0: तुम्हारे मालिक का घर कहाँ है?
1: मणिकपुर। आपने टाई दीजिए ना, नाक पोंछनी है।
0: अच्छा ठीक है, अब ये ट्रेन वापस जाएगी, रोना धोना बंद करो और चुपचाप इसी में बैठ जाओ। जब ट्रेन मणिकपुर पहुंचेगी तो तुम उतर जाना, ठीक है? और हाँ, इस बार सोना मत, समझे?
1: हाँ चाचा, ठीक है, मैं समझ गया। मालिक। मालिक, मालिक।
2: अरे आ गया बुद्धू, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या हुआ, मेरी बुआ को गुड़ की हंडी देकर आया?
1: हाँ मतलब ये हुआ है।
2: क्या वो ये क्या हुआ है बताओ?
1: मुझसे एक छोटी सी भूल हो गई है मालिक।
3: ये तूने क्या कर दिया, उसके हाथ में हंडी देकर तू सो गया? गधा है तू, बेवकूफ। रुक जा, अभी देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। आज तक तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर पाए हो।
1: अरे बाप रे बाप, नहीं मालिक, नहीं मालिक, अब कभी नहीं करूँगा मालिक, मैं कभी नहीं सोऊंगा मालिक, मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो।
3: रुक जा, आज तो तू गया काम से, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे।

ये कहानी सतला गांव की है। इस गांव में रमेश नाम के एक बूढ़े चाचा अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनका कोई बेटा या बेटी नहीं था जो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके, इसीलिए वे खुद मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का खर्च संभालते थे।

0: रमेश चाचा किशोरीलाल सेठ के सरकारी गोदाम में चावल की बोरियां उठाने का काम करते थे। एक सुबह रमेश चाचा अपने रोज के मजदूरी के काम पर निकल गए। जैसे ही वे गोदाम पहुंचे, रोज की तरह उस दिन भी गोदाम चावल की भारी बोरियों से भरा हुआ था और बिना किसी देरी के रमेश चाचा उन्हें उठाने में लग गए। पूरे दिन कड़ी मेहनत में लगे रहने के कारण समय का पता ही नहीं चलता। काम करते करते कब शाम हो जाती है यह उन्हें पता ही नहीं चलता और अंत में रमेश चाचा थके हारे घर लौट आते हैं। थके हारे चाचा हाथ मुंह धोकर आकर खाट पर आराम करने बैठ जाते हैं। तभी चाचा की पत्नी बिमला उनके लिए गर्मा गर्म फाफड़ा, तीखी चटपटी चटनी और मिर्च लाती है।
1: जी देखिए, मैंने आपके पसंदीदा गर्मा गर्म फाफड़े बनाए हैं।
2: अरे वाह बिमला, आज तुमने गर्मा गर्म फाफड़े बनाए हैं। और ये क्या, वह लाल चटपटी चटनी भी बनाई है। आज तो मजा आ जाएगा खाने में।
0: फिर क्या था, रमेश चाचा दिन भर की थकान भूलकर फाफड़ा खाने लगते हैं।
2: वाह क्या स्वाद है, जी तो करता है बस खाते ही जाऊं। बिमला कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है।
1: जी धन्यवाद, पर आप जो दिन भर इतनी मेहनत करते हो उसके सामने तो कुछ नहीं है ये।
0: अगली सुबह हो जाती है, रमेश चाचा फिर से अपने काम पर निकल पड़ते हैं। आज रमेश चाचा को अपनी पगार मिलने वाली थी।
3: हाँ तो रमेश, ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह है।
0: रमेश चाचा पैसे हाथों में लेकर गिनने लगते हैं और उनके हिसाब से ये कम होते हैं।
2: साहब जी ये क्या, ये तो बहुत कम है, यह तो आधी तनख्वाह है। इस महीने तो ज्यादा काम भी किया है, साहब जी कृपा करके पूरी तनख्वाह दीजिए।
3: अरे ओ रमेश, जुबान मत लड़ाओ मुझसे, बड़े साहब के मना करने के बाद भी मैंने तुझे काम पर रखा है और तू मुझसे ही जुबान लड़ाता है। कान खोलकर सुन, तुझे इतनी ही तनख्वाह मिलेगी। अधिकारियों को पता चल गया है तेरे बारे में, इसलिए तू आज से यहाँ काम नहीं कर सकता, समझा? चल निकल अभी।
2: साहब जी आप यह क्या बोल रहे हैं, मुझे थोड़ी कम पगार भी चलेगी पर ऐसे मुझे काम से मत निकालिए साहब। मेरा कोई बेटा भी नहीं जो हम बूढ़े पति पत्नी को संभाल सके, यह मजदूरी ही एकमात्र सहारा है। कृपा करके मुझे काम से मत निकालिए साहब जी।
3: अरे अब रोना धोना बंद करो और निकलो यहाँ से, वरना तेरे चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे बिरजू, इस बूढ़े को निकाल यहाँ से अभी के अभी।
2: मालिक मुझे काम से मत निकालिए, मैं कम तनख्वाह में भी काम करूंगा, कृपा करके काम से मत निकालिए।
3: ए बूढ़े निकल यहाँ से, बोला ना एक बार, चल निकल।
0: वो आदमी रमेश को धक्के मारकर वहाँ से निकलवा देता है। रमेश चाचा असहाय होकर अब घर की ओर चल पड़ते हैं।
1: जी आज आप जल्दी घर आ गए, और आपका चेहरा इतना मायूस क्यों है?
2: अरे अब क्या बताऊं बिमला तुम्हें, मुझे आज काम से निकाल दिया है।
0: उस रात दुख के कारण रमेश चाचा और उनकी पत्नी ऐसे ही भूखे पेट सो जाते हैं। अगले दिन रमेश चाचा चिंतित हालत में सोच रहे थे कि तभी उनकी पत्नी गर्मा गर्म फाफड़े बनाकर लाती है। रमेश चाचा फाफड़े खा रहे थे कि तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है।
2: बिमला क्यों ना मैं फाफड़े कारखाने के बाहर बेचूं? बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ काम करने वाले।
1: जी ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, पर हम सिर्फ फाफड़े नहीं इसे जलेबी के साथ बेचेंगे। मैंने सुना है कि शहर में जलेबी फाफड़ा बहुत बिकते हैं, हमारा जलेबी और फाफड़ा भी जरूर लोग खरीदेंगे।
2: हाँ तुमने सही कहा, लोग फाफड़े के साथ जलेबी खाना जरूर पसंद करेंगे।
1: जी पर हमारे पास तो ठेला नहीं है, बेचने के लिए ठेला तो लगेगा ना।
2: बिमला मुझे जो आधी पगार मिली है उसमें ठेला और जलेबी फाफड़ा बनाने का सामान आ जाएगा।
0: फिर क्या था, वो दोनों बाजार से एक पुराना ठेला और जरूरी सामान खरीद लेते हैं। और अगले दिन से रमेश चाचा अपनी पत्नी के साथ कारखाने के बाहर एक जलेबी फाफड़े का ठेला लगाते हैं। हवा में गर्मा गर्म फाफड़े की खुशबू फैल गई थी। खुशबू से एक आदमी ठेले पर आता है।
4: अरे वाह चाचा, इस फाफड़े की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज से पहले इस गांव में एक साथ जलेबी फाफड़ा का ठेला नहीं लगाया किसी ने, एक प्लेट जलेबी फाफड़ा तो खिलाओ।
0: रमेश चाचा उस आदमी को गर्मा गर्म एक प्लेट जलेबी फाफड़ा देते हैं। वो आदमी भी मजे से जलेबी फाफड़ा खाने लगता है।
4: वाह चाचा क्या स्वाद है तुम्हारे इस फाफड़े का, और साथ में ये स्वादिष्ट जलेबी, मजा आ गया।
0: ऐसे ही देखते देखते अब कई सारे लोग ठेले पर आने लगते हैं। मजदूर, किसान और सामान्य लोग भी जलेबी फाफड़ा खाने आते हैं। देखते देखते उनका सारा सामान बिक जाता है और वो ठेला लेकर घर चले आते हैं। आज दोनों बहुत खुश थे और चैन से खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रमेश चाचा फिर से जलेबी फाफड़ा बेचने लगते हैं और कल की तरह आज भी कई सारे लोग ठेले पर आए थे। उसी कारखाने के बाहर थोड़ी ही दूरी पर प्रेम नाम के आदमी का भी जलेबी का ठेला था। प्रेम बहुत मतलबी था और उसकी जलेबी बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं थी।
5: देख रहे हो प्रेम भाई, कल का आया हुआ यह बूढ़ा कैसे तुम्हारा धंधा बर्बाद कर रहा है। भीड़ देख रहे हो उसके ठेले पर।
6: हाँ भाई, मुझे दिख रहा है सब। जल्द ही मुझे इस बूढ़े का ठिकाना लगाना होगा, वरना मेरा घर उजाड़ देगा ये। तुम बस कल का इंतजार करो और मजे देखो।
0: उस रात प्रेम एक मेडिकल की दुकान पर जाता है।
6: अरे सूरज भाई, तुम्हें तो पता है ना मुझे क्या चाहिए।
3: हाँ प्रेम भाई, वो मुझे पता है। तुम्हें क्या चाहिए? वो स्वाद बढ़ाने वाली दवा तो है, पर इस बार दाम जरा ज्यादा देना होगा। क्या है ना कि आजकल पुलिस की चेकिंग ज्यादा बढ़ गई है, तो उनसे बचकर दवाई लानी पड़ती है।
6: अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, खाली गारंटी का बोलो।
3: अरे जगत भाई, 100% गारंटी है। इससे खाने से आदमी आपके ठेले के पास ऐसे खींचा आएगा जैसे कोई भौरा फूल को देखकर आता है।
0: उस रात प्रेम वो केमिकल अपनी चाशनी में मिला देता है और फिर अगले दिन प्रेम अपना ठेला लगाता है।
6: आओ भाई, आओ बहन, जलेबी खाओ, स्वादिष्ट जलेबी मात्र आधे दाम में।
0: आधा दाम सुनकर सभी लोग रमेश चाचा के ठेले से हटकर प्रेम के ठेले के पास जाते हैं और जलेबी खाने लगते हैं।
7: वाह भाई, क्या जलेबी है! वाह, मजा आ गया। उस जलेबी से अच्छा तो तुम्हारे पास की जलेबी है और दाम भी सस्ता है। अब आगे से यहीं आएंगे खाने के लिए।
6: हाँ भाई, सबको मिलेगी स्वादिष्ट जलेबी आधे दाम में, ये लो।
0: प्रेम सभी को जलेबी के साथ अपनी स्पेशल चाशनी भी एक्स्ट्रा देता है।
5: वाह क्या जलेबी है, और चाशनी तो कमाल है, मजा आ गया।
7: हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: उस दिन रमेश चाचा का एक भी प्लेट फाफड़ा जलेबी नहीं बिक पाता और वो दोनों निराश होकर घर आते हैं।
8: क्या करें भाग्यवान, आज तो कुछ कमाई नहीं हुई। पता नहीं अचानक सभी लोगों को उस जलेबी वाले के जलेबी इतने पसंद कैसे आने लगे, और मात्र 10 रुपए में एक प्लेट जलेबी दे रहा है, मानो जैसे उसने कुछ जादू किया हो।
0: अगले दिन भी उनके ठेले पर कोई नहीं आता, तभी एक गरीब आदमी प्रेम के ठेले पर आता है।
9: अरे भाई, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है, एक प्लेट जलेबी और थोड़ी चाशनी दे दो।
6: अरे इस भिखारी को यहाँ ठेले पर ज्यादा देर खड़ा रखा तो इज्जत चली जाएगी, इसे एक प्लेट जलेबी देकर यहाँ से भगा देता हूँ, वही अच्छा होगा।
0: प्रेम उस गरीब आदमी को एक प्लेट जलेबी और थोड़ी सी चाशनी दे देता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। बाद में फिर वही आदमी रमेश चाचा के ठेले पर भी जाता है।
9: अरे भाई, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है।
8: अरे भाई, लगता है तुमको सच में मदद की जरूरत है। लो, तुम पेट भरने तक यहाँ जलेबी फाफड़ा खा सकते हो।
9: नहीं भाई, मुझे सिर्फ एक प्लेट जलेबी फाफड़ा दे दीजिए।
0: रमेश उस गरीब आदमी को एक प्लेट जलेबी फाफड़ा दे देता है और फिर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। रमेश चाचा की आज एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई। दूसरी ओर आज प्रेम के ठेले पर पहले से बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। इसी तरह दिन ढल जाता है और आज भी रमेश बिना कुछ बेचे घर लौट आता है।
8: हे ऊपर वाले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, दुनिया में अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी एकमात्र उम्मीद थी 2 पैसे कमाने की, और वह भी मिट रही है। क्या ईमानदारी और मेहनत का कोई मोल नहीं? हे ऊपर वाले, कृपया मेरी मदद कीजिए।
0: फिर अगले दिन वह अपना ठेला कारखाने के बाहर लगाता है, पर आज भी उनके जलेबी फाफड़ा बिकने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। तभी वहाँ अचानक पुलिस की गाड़ी आती है और उसमें से पुलिस वाले प्रेम के ठेले के पास जाते हैं। तभी सभी लोगों को पता चल जाता है कि प्रेम अपनी चाशनी में कुछ केमिकल मिलाकर बेचता था, जिससे लोगों को उसकी जलेबी खाने का नशा हो गया था।
6: साहब, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है, मैंने कुछ मिलावट नहीं की है।
3: इतना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कल के दिन जो तुम्हारे ठेले पर गरीब आदमी तुमसे जलेबी और चाशनी लेकर गया था, वो दूसरा कोई नहीं बल्कि हमारा आदमी ही था। कुछ दिनों से हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि इस इलाके में लोग ठेले का खाना खाकर बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए जांच करने के लिए सभी ठेले वालों से हमने सैंपल जमा किए, और इसलिए कल के दिन उसने तुम्हारी जलेबी नहीं खाई।
0: इतना सुनकर प्रेम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
7: अच्छा, तो इतने दिन से यह मिलावटी जलेबी खिला रहा था, तभी मैं सोचूं कि मुझे बार बार इसके जलेबी खाने का मन क्यों कर रहा है।
5: हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो, वो किशन पता है, वो उस दिन से अस्पताल में भर्ती है, उसने आखिरी बार यहीं से जलेबी खाई थी।
3: हमने इस इलाके में सभी ठेलों की जांच की है, पर यहाँ सिर्फ एक ही ठेला है जहाँ हमें कोई मिलावट नहीं मिली, और वो है रमेश चाचा का जलेबी फाफड़ा का ठेला।
7: हाँ, सही कहा साहब। भाइयों, आज से हम जैसे सभी सिर्फ रमेश चाचा के यहाँ जलेबी फाफड़ा ही खाएंगे, वही असली मेहनत का स्वाद और शुद्धता है।
0: तब से सभी लोग रमेश चाचा के ठेले पर जलेबी फाफड़ा खाने जाते हैं।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना

0: ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है. थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे. एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ. आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर. तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है. आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए.

عقل ہے خوشی زندگی کی یہی ریت ہے ہار کے بعد ہی جیت ہے.

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते हैं तो हमें खुशी है, क्योंकि इस तरह कार्यक्रम को लेकर बच्चों का पास पहुंचते हैं, बच्चों को एक मंच एक स्टेज मिलता है, बच्चे भी धीरे धीरे सीख जाते हैं और हर स्कूल में जाते हैं तो बच्चों का भागीदारी देखने को मिलता है, बढ़ चढ़ कर लेते एक का बाद एक देते हैं प्रस्तुतिकरण। उनका पास जो हुनर है, जो टैलेंट है, जन जन तक पहुँचाने के लिए रेडियो मधुबन आज पहुँचा है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुनियापुरा, जो कि आबू रोड का पास ही नज़दीक है, रेलवे स्टेशन का पास है। और आबू रोड को कौन जानते हैं, सभी तो जानते हैं। तो आज बच्चों का आवाज़ को बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो होने के नाते कम्युनिटी का आवाज़ जन जन तक पहुँचाने के लिए हमें पहुँचते हैं। तो आज प्रार्थना से ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य प्रार्थना से शुरू होता है, क्योंकि माँ शारदा को याद करते हैं। प्रार्थना में हमें सरस्वती माँ को वंदना करते हैं, उनका आशीर्वाद, उनका भाव और भावना हमारा भाव और भावना उनके तक पहुँचे और माँ सरस्वती का गीत प्रस्तुत करेंगे, जिसे प्रार्थना सत्र मिलते हैं। हमारा 7-3 छात्र है, तो अपना अपना परिचय देंगे प्लीज, अपना नाम और कौन सा क्लास और कहाँ से।
1: मेरा नाम सुमित्रा सिंदल, मैं कक्षा 8वीं की विद्यार्थी हूँ।
0: वेरी गुड।
1: और मैं सोनियापुरा आबू रोड शिक्षक की कॉलोनी में रहती हूँ।
0: वेरी गुड। नेक्स्ट।
2: मेरा नाम वंदना कुमारी है, मैं लुनियापुरा में रहती हूँ, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छा। पहला बार आए, थोड़ा झिझक किसको होता है, किसको डर लगता है, किन को डरने का बात नहीं, क्योंकि रेडियो आपका रेडियो है, आपके द्वारा ही प्रस्तुतकरण होता है। तो चलिए एक प्रार्थना करेंगे वंदना एंड ग्रुप, ओके शुरू करेंगे। वेरी गुड। हमारे श्रोता मित्र ध्यान से सुने, वो भी अपना वॉल्यूम को तेज रखते हुए ध्यान मुद्रा में माँ सरस्वती की याद में बैठेंगे, वो भी अपना अपना जगह में। और सभी बच्चे भी रेडी है, सभी बच्चे प्रार्थना मुद्रा में रहेंगे। जोर से बोले नहीं, जोर से बोलो हाँ जी। क्या बात है, पूरा छत तो उठ जाएगा और हमारा सीनियर साहब का पास भी पहुंच सकता है ये आवाज। चलिए शुरू करते हैं माँ सरस्वती को वंदना और वंदन का ग्रुप।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति। और खासकर जब प्रार्थना सत्र में बच्चे स्कूल में आते हैं तो माँ सरस्वती की याद में शुरू करते पढ़ाई, और जिसका चलते हमें बहुत कुछ शक्तियाँ और ज्ञान मिलता है। ज्ञान शक्ति और ध्यान से हम भरपूर हो जाते हैं, और बच्चे आगे होकर अपना स्कूल का, खुद का और गांव का और देश का नाम रोशन करते हैं। बनना बढ़ोकर क्या बनेगी?
1: IAS।
0: अरे वाह, उसके लिए प्रिपरेशन तो अभी से करना पड़ेगा। हाँ। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टर बनेंगे तो उस तरह सभी प्रश्न का उत्तर भी देना पड़ेगा। आज रेडियो में आपको प्रश्न उत्तर कार्यक्रम में आपको इंटरव्यू मिल रहा है, तो आप बड़ा होकर क्या बनेंगे, उसके लिए क्या प्रिपरेशन, क्या मेहनत कर रहे हैं बताओ, क्योंकि हमारा श्रोता भी सुन रहे हैं आपको।
1: सर, मैं जीके बनने की तैयारी कर रही हूं।
0: अरे भाई, अभी से 8वीं क्लास से उनका लक्ष्य है, तो अभी स्कूल का नाम रोशन जरूर करेंगे, और हमारे मैम भी सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत प्रोत्साहन दे रहे। तो मैम, ये बड़े होकर तो बनेगी IAS ऑफिसर, और उसके लिए मेहनत भी करते, आप उनको क्या, जब तक है तो आप नहीं भी पढ़ाई करें तो उनको क्या संदेश देंगे, क्या उनको वार्ता देंगे?
1: हम इनको नियमित रूप से पढ़ाई करने के लिए कि कितने घंटे पढ़ाई करने चाहिए, तो उस हिसाब से उनको पढ़ाई करने के लिए बोलेंगे, और बार बार उनको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की बार बार उनको मोटिवेट करेंगे, उनको जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
0: वंदना मैम का आवाज़ से आप खुश है?
1: हाँ।
0: मैम जैसे बताया है, आपका फोकस रहना चाहिए, एक टारगेट लक्ष्य जो रखे हैं उसके लिए आपको लक्षण दिखाना चाहिए, तो इसलिए आपका मम्मी पापा आपको कितना सहयोग देते हैं?
1: सर बहुत ज़्यादा, सर वो बोलते हैं कि पढ़ते रहना चाहिए।
0: पढ़ते रहना, जब तक आप ना मंजिल तक नहीं पहुँचे तब तक पढ़ाई 20 नाखून लगा कर जब पढ़ेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। ये हमारा वंदना का आवाज़ है, और हमें भी ऐसा है जरूर बंदना आगे जाकर कुछ अभी से मेहनत करेंगे तो जरूर, और 5 साल 12 साल तक मेहनत करेंगे, बारीक तक पढ़ाई करेंगे तब तक मेहनत करेंगे। अभी से जीके शुरू कर दिए और होना चाहिए। और आपका अच्छा दोस्त का नाम बताओ देखिए बंदना।
1: सुमित्रा।
0: अरे वाह, सुमित्रा नाम सुनते तो कौन सा रामायण महाभारत को याद होता है? सुमित्रा पाठ जो करते हैं, सुमित्रा कौन सा रामायण में है ना महाभारत में, सुमित्रा का जो नाम है?
1: सर रामायण, सर वो एक देवी है, उनका नाम
0: सुमित्रा है। अच्छा, देवी भी सुमित्रा और रामायण में भी सुमित्रा का है ना, तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि तुमको अभी से जीके पूछ रहे का आगे जाकर ऐसा पूछ रहे कितना पूछ लिया जीके का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए। और हमारा साथ सुमित्रा भी है। सुमित्रा, आप अपना नाम को कौन दिया? सुमित्रा फादर ने रखा नाम। धन्यवाद देंगे, अच्छा नाम है, खुश है नाम से, जैसे नाम उस तरह काम भी करना चाहिए, बहुत अच्छा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हमारा और एक छोटे से बच्चे भी आएंगे, बड़े बच्चे से भी धीरे धीरे छोटे बच्चों की तरफ हम जा रहे हैं, और आप सुन पा रहे हैं खासकर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लुनियापुरा का आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए बच्चे शुरू करें। परमिशन मिल गया, बच्चे बोले हमें परमिशन दे दी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और अगला कड़ी में, अगला भाग में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ चार छात्र है। हेलो, नाम बताए।
2: मेरा नाम प्रीतम है।
1: ओके,
2: मैं लुनियापुरा में रहता हूँ। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ।
1: वेरी गुड।
3: मेरा नाम हितेश है, मैं चोरियाफली में रहता हूँ और 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
1: वेरी गुड।
4: मेरा नाम ध्रुवन चौधरी है और मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ और लुनियापुरा स्कूल।
1: So, आठवीं क्लास।
5: मेरा नाम धीरज राणा है, मैं विकास के उच्च प्राथमिक विद्यालय दुनियापुर में पढ़ता हूँ। मेरी क्लास कक्षा 8वीं है।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी इसमें खेल कौन खेलता है? सभी खेल खेलते हैं। कौन सा खेल अच्छा लगता है?
6: क्रिकेट।
1: अरे वाह, क्रिकेट तो बहुत अच्छा गेम है ना। क्रिकेट में कितने आदमी खेलते हैं?
6: 11।
1: एक दूसरा वाला 11, 11, 22। ओके, वेरी गुड, पास हो गया। सभी बच्चे, सभी को शाबाश। चलिए एक प्रस्तुति सुनाएंगे। और भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम काल तक जा रहा है और भारत पूरा आगे बढ़ रहा है। और बच्चों का आवाज़ से देश का प्रति जो जज्बा देखने को मिलेगा, क्योंकि देशभक्ति गीत सुनाएंगे। सभी बच्चे सुनाएंगे, बच्चे रेडी? ओके, शुरू कर दीजिए।

0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत सुंदर प्रस्तुति, और हमें खुशी लग रहा है ऐसे बच्चे देश का प्रति अभी से शुरू कर दिए हैं, और जिस देश का नाम इतना सुंदर है और उस भारत भूमि में हम रह रहे हैं, और भारत माँ कहते हैं, भारत को क्या कहते हैं, भारत माता की, भारत माता की। बच्चे तो तुरंत जाए, वेरी गुड, छोटे बच्चे भी पीछे से बोले जाए, ऐसे होना चाहिए शुरू से बच्चों को। हाँ बहुत अच्छा, उसे रोक नहीं पा रहे वो आवाज़ को, छोटी सी बच्ची है फिर भी, फिर से बोलो वंदे
1: मातरम,
0: वंदे
1: मातरम,
0: भारत माता की। वाह कितना सुंदर, सब जय जय गान करना चाहिए, और इस गीत के माध्यम से हमारा रक्त खून में पूरा देश का प्रति भक्ति भावना आता है। तो इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में हमारा साकी दृष्टा रूप में हमारा मैम भी सुन रहे, मैम आपका परिचय दीजिए, बच्चों का जो ये गीत में इतना सुंदर से भर पाला देश का प्रतिमा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, अपना परिचय दीजिए मैम।
2: मेरा नाम अनिता है, मैं आज की छुटाती विद्यालय से मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे माता सीता ने अपने जो त्याग किया था और जिस वजह से वो इतने प्रसिद्ध हो गए, वैसे ही आप सब भी अपने माता सीता की तरह ही अपना चरित्र बनाकर रखें और उनकी तरह ही रहें, और आप भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रुक रुक, भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हमें अच्छा लग रहा है बच्चों का साथ, हम भी बच्चे बन रहे हैं, बीच बीच में मैम और सर का भी इंटरेक्शन हो रहा है और उनका दिल का भावना रख रहे हैं। बच्चों का प्रति कैसे नस्वार होकर अपना जी जान देकर बच्चों को आप समान बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। पाली जिला से भी आकर यहाँ पर बच्चों को अपना हुनर को उजागर करने के लिए तत्पर रहते। तो चलिए, और एक छोटी सी परी, नन्ही परी आई है, तो वो भी अपना तोतली तोतली आवाज़ में कुछ सुनाएगी, क्योंकि इस कार्यक्रम को सजाने के लिए ग्रुप का साथ एक सिंगल एकल भी होना चाहिए। हेलो, क्या नाम है?
4: राधिका।
3: हाँ राधिका, कितना सुंदर प्यारी नाम है ना राधिका। और कौन सा क्लास राधिका?
4: फिफ्थ
3: क्लास। तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है राधिका?
4: नीतू।
3: सभी दोस्त अच्छा नहीं, सभी बच्चे नीतू ही अच्छा लगता है तुमको? उसके पास क्या विशेषता है, क्या गुण है जो आपको अच्छा लगता है? सहयोग देता है, सहाय करता है, क्या करती है?
4: वो मेरा हर समय साथ देती है, हमें पढ़ाई में मेरा साथ देती है।
3: कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है राधिका? हिंदी। और घर में कौन कौन है?
4: मेरे पापा, भाई।
3: कोई भी चीज़ आपको घर में आता है नया चीज़, जैसे आम का सीजन हो, चाहे केला का सीजन हो, कोई ड्रेस हो नया साल में हो, पहले किसको देते? भाई को ना तुमको?
4: भाई को।
3: इतना प्यार करता है ना भाई का प्रति? भाई छोटे ना बड़े?
4: छोटे।
3: छोटे फिर भी उनको बहुत प्यार है ना, तुम्हारा भी प्यार है उससे? प्यार करता है तुम? सब कुछ उनको मिलता है, तुमको बाद में, ऐसे तुमको भी मिलना चाहिए। दोनों को पापा को बोलना मुझे पहले दो, हम लड़की है, हमें आगे जाना है। लड़का तो आगे जाता है, लेकिन लड़की और लड़का दोनों बराबर है, ऐसे सोचना, मम्मी को पापा को बोलना। भाई का नाम क्या है?
4: हिमांशु।
3: चलिए, कौन सा प्रस्तुति करेंगे अभी? कुछ गीत गाएगी, कविता गाएगी, सुना।
4: मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी।
3: अच्छा, ये गीत कविता किसको किस आता है, हाथ उठाओ। देखिए बच्चे, किसको किस कविता आता है हाथ उठाओ। मछली वाला किसको किस आता है हाथ उठाओ, लंबा हाथ। अरे बच्चे भूले नहीं, छोटे क्लास नर्सरी स्कूल में और आंगनबाड़ी में होती है, फिर भी बच्चे बड़े आठवीं क्लास का बच्चों को भी याद है। चलो बहुत अच्छा, सभी मिलकर गाएंगे, फिर से इनका साथ देंगे, ठीक है? बोलो। अभी नेक्स्ट प्रस्तुति।
4: ऊपर पंखा चलता है, नीचे बबलू सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा ने, मामा गया दिल्ली, दिल्ली से लाया दो बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा।
3: देखो ये बच्चे, ये गीत सबका अभी भी याद है सभी को, अभी ये बोल रही थी राधिका, सभी बच्चे धीरे धीरे अपना मुख को हिला रहे थे, लेकिन अभी उनको चांस मिलेगा राधिका का साथ, पुनः मिलकर गाएंगे सभी बच्चे।
5: यस सर।
3: चलिए शुरू करिए।

0: Ba. पर सभी के लिए मैं ताली बजा देता हूँ। मैंने अभी देख रहा था क्लास में सभी बच्चे 40-50 बच्चे सभी का मुख से पूरा गीत चल रहा था। ये गीत अभी भी याद है, कहीं भी बड़े हो जाएंगे तब ये गीत याद रहेगा, है ना? रहेगा ना सभी को ये गीत याद रहेगा?
1: यस सर।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका तुम्हारा स्कूल में कितना टीचर्स है? कितना?
1: चार।
0: याद है मैम का नाम बताओ देखिए?
1: संतोष मैम, अनीता मैम और पीटीआईजी सर।
0: ओके।
1: और दूसरे सर का नाम है?
0: कोई बात, कोई बताएगा दूसरा सर का जो एचएम कौन प्रभारी को नाम क्या बताएंगे? हाँ बताओ जोर से।
2: मोहित सर।
0: मोहित सर, मोहित सर के लिए ताली बजाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोहित सर भी सुन रहे, अभी यहाँ पर नहीं है फिर भी मोहित सर जब रेडियो सुनेंगे तो उनको बोलगा इंटरव्यू बोला। चल सभी को मिलकर धन्यवाद देते हैं, मोहित सर को भी और सभी सर को का बहुत बहुत धन्यवाद। और राधिका बताओ, आबू रोड कभी गए?
1: हाँ।
0: आबू रोड में क्या क्या है?
1: आबू रोड में बहुत सारे मंदिर है।
0: ओके।
1: बहुत सारे दुकाने है, बहुत सारी चीजें भी है, स्कूल वगैरह भी है, कॉलेज भी है।
0: अरे वाह।
1: हॉस्टल वगैरह है।
0: हॉस्टल भी है। अरे वाह।
1: मेले भी है।
0: मेले भी होते हैं। और प्ले ग्राउंड है कि नहीं खेल खेलने के लिए? दरबार स्कूल देखा है?
1: हाँ।
0: उसका पीछे बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है। जब भी आप लोग जाते होंगे, कभी गए सही बच्चे गए प्ले ग्राउंड दरबार स्कूल? नजदीक है। और शांति कुंज पार्क? अरे वाह, बताया नहीं राधिका शांति कुंज। हाँ सबको धन्यवाद। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चलेंगे। रेडी है? अंतिम प्रस्तुति ग्रुप आएंगे। राधिका के लिए जोर से ताली बजाओ। राधिका मुझसे राधिका, गुड, वेल डन।

0: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: चलिए एक का बाद एक प्रस्तुतियां मिल रहा है, बच्चे भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे हैं और एक को देखकर दूसरे भी सीख जाते हैं, बड़े भी सीख जाते हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और 3 छात्र उपस्थित है, वो अपना परिचय देंगे। आप सब सुन पा रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुनियापुरा का आवाज, वो भी सबका आवाज मिलकर का गुलदस्ता बन गया। और हमारा मैम भी इस कार्यक्रम को सजा रहे, सभी स्टाफ को धन्यवाद देते हुए। रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं, सभी को एक मंच देते हैं और जिसका चलते उनका आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो हमारा साथ 3 छात्र है, अपना अपना नाम बारी बारी बताएंगे प्लीज। ओके,
4: मेरा नाम हिमांशी है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं गुरु कृपा के आगे रहती हूँ।
3: वेरी गुड, नेक्स्ट।
5: मेरा नाम दीक्षा कुमारी है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ, मेरा स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुनियापुर आबू रोड है और मैं गुरु कृपा कॉलोनी में।
6: मेरा नाम दिव्यांशी है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ, मैं कहा मोहल्ले में रहती हूँ।
3: वेरी गुड। देखो बच्चों का अंदर में कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, और अपना बात को, क्योंकि ये शहरी बच्चे हैं कि लुनियापुरा आबू रोड का ये एक पार्ट है, इसलिए बच्चों का अंदर में कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, तो पूरा शहरी बच्चों को भी अपना टक्कर देंगे और जब भी कंपटीशन होगा तो लोग बच्चे आगे जाएंगे। तो चलिए सभी को स्वागत करते हैं प्रोग्राम के लिए। कौन सा गीत प्रस्तुत करेंगे उनके पास है, मैं बताऊँ तो मुझे मालूम नहीं, फिर भी बच्चे करेंगे। कविता सुनाओ।
7: ऊंचा खड़ा हिमालय झुका है, नीचे चरण तले नित सिंधु झुमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लह रही है, जगमग छटा न्यारी पग पग चल रही है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह सर्व भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृ भूमि मेरी, झरने अनेक चढ़ते हैं जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है मस्त झाड़ियों में।
3: क्या बात, प्रकृति को ये समर्पित है।

0: आती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृ भूमि मेरी। जन्मे जहाते रघुपति, जन्मी जहाती सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। श्री गौतम ने जन्म लेकर जिसका सूर्य बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृ भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी।
1: सभी का आवाज में थोड़ा सा आया, तो अभी एकल में वो सुनाएगी।
0: ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लह रही है, जगमग छटा निराली पग पग छर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृ भूमि मेरी। झरने अनेक झरते हैं, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, मस्त झाड़ियों में। अमराई घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्ल पवन तनमन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृ भूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थी सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सूर्य बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दया सिखाई। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृ भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी।
1: सुंदर उसने अपनी प्रस्तुति को दी और भारत को पूरा रिप्रेजेंट करता है। भारत में सब कुछ जो चीज कहीं नहीं वो भारत में है। भारत इसलिए मातृभूमि कहते हैं। जन्मभूमि, कर्म भूमि, तपस्या भूमि, सिद्ध भूमि, देवताओं का भूमि, तपोभूमि कहते हैं। और खासकर हमारा आबू राज में 33 करोड़ देवी देवता का वास कहते हैं। और बच्चे इस गीत का माध्यम से, कविता का माध्यम से सुंदर प्रस्तुति दिए हैं, हमें खुशी है। और क्या नाम बताए?
2: हिमांशी।
1: हिमांशी, क्या कहना चाहेंगे अपना जो दोस्त लोग को, क्या कहेंगे? पढ़ाई में कितना मेहनत करना चाहिए, क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ, कितना घंटा तुम मेहनत करते हो पढ़ाई? स्कूल में 6 घंटा पढ़ाई करते, इसके बाद घर में?
2: घर में मैं शाम को पढ़ती हूँ और छुट्टी में सुबह 2 घंटे पढ़ती थी और शाम को।
1: और थोड़ा मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। चलिए, हमारे साथ हमारा इस कार्यक्रम को हमारे साथ कैसे छोड़ेंगे सर? आप मुझे स्वागत करते हैं, आप अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए क्या खजाना लेकर आए?
3: नमस्ते, मेरा नाम मोहित टाइगामनी, मैं माधव यूनिवर्सिटी में अध्ययन करूँ और यहाँ पर इंटर्न के रूप में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुनियापुरा में। मैं बच्चों को यही बोला जाऊँगा कि अपने आने वाले समय में जिस प्रकार से शिक्षा को अपने जीवन में और विद्यालय को अपने घर जैसा माने, और विद्यालय में जिस तरह शिक्षण होता है उसी तरह घर पर जाकर भी उसी चीज़ का अध्ययन करें, जिससे आने वाले समय में आपको अध्ययन करने में दिक्कत नहीं आएगी। जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है वही आप घर पर जाके पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदा है।
1: तो रिवाइज हो जाता है,
3: रिवाइज हो जाता है, रिविजन के बाद आपको काफ़ी दिक्कत नहीं आती। उसकी
1: कोई चीज़ बार बार हम अभ्यास करें, एक्सपर्ट बन जाते हैं, और पढ़ाई जो करते हैं उसका घर में जाकर होमवर्क तो मिलता ही है, तो उसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो पढ़ेंगे ना बात है ना सर? बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर रेडियो मधुबन का ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या जानते हैं आप?
3: ब्रह्मा कुमारी का नाम सर यही होगा आज पहली बार सुना, लेकिन मेरे को आज
1: रेडियो, क्योंकि रेडियो पर जैसे साइकिल कौन जानता है आजकल, मोटर कितना एरोप्लेन तक लोग पहुँच रहे हैं, साइकिल में कौन
3: साइकिल,
1: लेकिन साइकिल का मतलब साइकिल का जगह ना आज भी रेडियो जो देते जहाँ दुरुस्त जगह में लाइब्रेरी में वो खबर बड़ा सुनते रेडियो। अभी तो 50 साल का अंदर बाद 30 साल का अंदर में सब इंटरनेट पर, इसका बाद पहले तो रेडियो ही सबका घर में, हम भी देखे होंगे, मैं भी देखे होंगे घर में रेडियो से हम सुनते होंगे, इतना वैरी किया था सब चीज़ है ना। तो रेडियो अभी उसका जगह में, वो अपना जगह में बैठे रहा, साइकिल कितना बड़ा हम मस्ट गाड़ी ले हमारा साइकिल में काम साइकिल का जब यही इस रेडियो में होता है, मन का बात हो जाए कोई भी चीज़ जो खबर मिलता है एफएम के माध्यम से, कार में ड्राइविंग कर रहे तभी मिले, आजकल मोबाइल में भी आता है एफएम आता है, आजकल भी इंटरनेट सब सुविधा है, आप भी बहुत है पूरा ऑल इंडिया के और वर्ल्ड का भी सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, और ब्रह्मा कुमारी और रेडियो मधुबन का बारे में आपको ना बताए। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था खास सभी का आवाज़, बच्चों का साथ बड़ों का भी आवाज़ लेकर उनकी हमको खुशी लगा। तो क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, क्या मैसेज की मैसेज रेडियो के माध्यम से आप मैसेज सुनो, जैसे अभी नौकरी के लिए तलाश करें और आगे पोस्टिंग आएगा तो उसके लिए आप क्या मेहनत करते हैं, आपका अनुभव दूसरा स्टूडेंट के लिए, हम जिन्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बने की हम चाहते क्या एक मैसेज बात
3: मेहनत करती रहनी चाहिए और शिक्षण को कभी जीवन से दूर नहीं करना चाहिए।
1: ताली बजाओ बच्चे।
4: तो बेटे आप सबसे इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, आप इस बात को लेकर सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा धन्यवाद सभी को नाम का साथ।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो की कैन हो वेलकम बैक दोस्तों, मैं लेकर के आया हूँ आपका अपना पसंदीदा शो खुशी के नगमे दिल की बातें। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने रेडियो चैनल 107.8 FM रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों आज भी हम मौसम बारिश का मना रहे हैं। जी हाँ, सब जगह बारिश चल रही है, हल्की हल्की ठंडक होने लगी है, गर्मी से राहत हल्की राहत होने लगी, उमस है दिन में लेकिन हल्की राहत होने लगी है गर्मी से। और शाम होते ही हल्की बारिश होते ही सबसे पहले एक चीज़ याद आती है, वो है चाय का कप और हाथ में गर्मा गर्म पकौड़े। जी हाँ, कौन कौन आज गर्मा गर्म पकौड़े खा रहा है हमें ज़रूर बताइए कॉल करके 9414151415 पर। और अगर नहीं खा रहे हैं तो ज़रूर से आज, अगर बारिश हो रही है, मौसम सुहाना है, तो बिल्कुल घर में आज बताइए कि हमें पकौड़े खाने हैं, चाय पीनी है। जी हाँ दोस्तों, आज है 7/7। देखो तारीख भी कितनी प्यारी है ना, अब एक साल और, अगले साल 2027 में ये तारीख जैसे आएगा तो 7/7/27 हो जाएगी। क्या बात है, 3 सत्य, आज है 2 सत्य, 7 का ये नंबर और ऊपर से सावन का ये पावन महीना। खिड़की के बाहर ज़रा देखिए, आसमान में बादलों की चादर ओढ़ ली है और ये हल्की हल्की बूंदें जैसे मिट्टी से खुशी खुशबू चुरा कर पूरे मोहल्ले में बिखर रही है। सावन की इस पहली पहली फुहार में भला किसका दिल नहीं झूम उठेगा। देखिए आज तो मेरा दिल झूम रहा है, हाँ, क्योंकि आबू रोड में आज पूरे दिन बारिश नहीं हुई। मैं सोच रहा था कि आज बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी, लेकिन आज यानी कि कल रात से लेकर के अभी तक में बारिश नहीं हुई। बट आपके अगर इलाकों में कहीं भी बारिश है तो आप हमें ज़रूर से बताइए। इसी बहाने कुछ शब्द मेरे जहन में आए, आपको सुना देता हूँ। ये सावन की बारिश ये सुहाना समा, ये सावन की बारिश ये सुहाना समा, दिल ढूंढता है फिर वही बीता हुआ जहां, बूंद जैसे गिरती है इस जमीन पर, लगता है खुदा खुद गा रहा है कोई नगमा यहाँ। बूंद जब गिरती है जमीन पर, लगता है खुदा खुद गा रहा है कोई नगमा यहाँ। क्यों, सही कहा ना। इस मौसम में जैसे मैंने कहा, चाय की चुस्की हो, अपनों का साथ हो और रेडियो मधुबन की आवाज़ हो, जी हाँ, तो ज़िंदगी की हर बात खास बन जाती है। चलिए इस भीगे मौसम की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए पहला नगमा लेकर के आ रहे, फिर करते ढेर सारी बातें।

0: आज बाहर का मौसम जितना सुहाना है, रेडियो मधुबन का माहौल भी उतना आशिकाना है। और जैसे ही हम बात किए, हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे। चलिए सुनते हैं, बात करते हैं बातें हमारे कॉलर से। हेलो हेलो,
1: हाँ बुराराम बोल रहा हूँ। से
0: बुराराम जी, कैसे हैं आप?
1: आपके ध्यान में बैठे हैं, खास से और प्रोग्राम सुन रहा था
0: जी,
1: और आपकी राह भी देख रहा था। 8 बजे कभी आ रहे थे आपसे मुलाकात होंगे।
0: क्या ये, चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज तो आपका फोन भी एकदम जल्दी, मतलब टाइम से आ गया है, एग्जैक्ट 8 बजते ही जैसे ही शो शुरू हो रहा आ गया।
1: मैं वो पहले ही लगा देता हूँ। हाँ भाई, जो और सब सुरेश भाई और मदन भाई और सुमार भाई और सब मधुबन प्रेमियों को, सबको मेरा हाथ जोड़ के आपको राम राम, और आपको भी राम राम।
0: आपको भी राम राम बुरा राम जी।
1: अच्छा, मेरा मेरी फरमाइश है
0: जी,
1: सावन को आने दो।
0: सावन को आने दो,
1: सावन को आने दो, ऐसा करके गाना है।
0: ओके चलिए, कोशिश करते हैं हम आपका ये गाना प्ले करें और आपको जरूर से सुनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच सुरेश बुराराम जी कॉल करने के लिए।
1: ओके
0: जी, हाँ, तो जो भी सुन रहा है उन सभी को बुराराम जी की तरफ से बहुत बहुत दिल से राम राम है, और उनको भी जो भी हमारे सुन रहे उन सभी की तरफ से बहुत बहुत राम राम। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस गाने के बारे में, जैसे हमने कहा कि आशिकाना है, और जैसे ही बात करें, चलिए फिर से एक और हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे, सुनते हैं उनसे। हेलो नमस्कार। नमस्कार बुरियाल जी, कैसे हैं?
2: बहुत अच्छा है, बुराराम जी आ गए हैं। बुराराम जी बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था
0: जी।
2: जी आने वाले हैं
0: जी, साथियों
2: को मेरा प्यार है, मेरा भी एक गाना है सर,
0: बिल्कुल सुना दीजिए।
2: मेरे काम की नहीं।
0: चलिए
2: ठीक है सर,
0: बिल्कुल चलिए,
2: कोशिश कोशिश
0: बिल्कुल। अब ठीक आ रही है? अच्छा, हो सकता है बारिश वहाँ हो, उस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। बारिश है? हो सकता है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज को ये कोशिश करेंगे आपको ये गाना आपको सुनाए, और बने रहिए रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है सुभाष जी सुन रहे होंगे अभी आपको, और जैसे ही उन्होंने आपको सुना होगा तो सुभाष जी बिल्कुल से फोन करेंगे। हाँ, इस वजह से हाँ हो सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच बुरीलाल जी कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये देखिए, एक प्यार है, हम सभी जो भी रेडियो के साथ जुड़े हैं या खुशी के नगमे के साथ जुड़े, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी हमारे लिसनर्स हमारे सुनने वालों को याद कर कर के उन्हें प्यार देते हैं, नमस्कार करते हैं, राम राम करते हैं, दिन की बधाइयाँ देते हैं, और कॉल्स आते हैं, तो बड़ा प्यारा लगता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। शायद एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए सुनते हैं उनको भी। हेलो
3: नमस्ते,
0: बढ़िया सुरेश जी, कैसे हैं आप?
3: अच्छा, पहली बार लगा है तो वेट थोड़ा सा था, तो मैंने सोचा चलो मैंने बुरीराम जी हो गए, लेकिन बुराराम जी आए।
0: हाँ, सबसे पहले बुराराम जी आए
3: तो हाँ, दूसरी बार लगाया तो बुरीराम जी आ गए
0: जी, बिल्कुल।
3: तो चलो मैं तो अब लगा दूँ, तो बस तीसरी बार आपसे बात हो रही है।
0: यस बिल्कुल, और हम आज यही आज हम यही सोच रहे थे कि सबसे पहले कॉल बुराराम जी का आया। बुराराम जी बोल रहे थे कि आज मैं तो वेट करके बैठा था कि सबसे पहले कॉल करें, और बड़ा अच्छा भी लगा, बुराराम जी ने भी कॉल किया, बुरीलाल जी का भी कॉल आया।
3: बिल्कुल बिल्कुल, चलो हमको भी अच्छा लगा, क्योंकि जब तो समय से आ जाते हैं तो अच्छा है
0: जी, बिल्कुल
3: लेट हो जाते हैं तो जल्दी लेता जाता, लेकिन चलो अच्छे है, हमारे तीन लाइन में आ गए, पुरीलाल जी, गुड़ाराम जी और हम भी
0: जी।
3: चलो अच्छे अच्छे फरमाइश भी हमारे पुरीलाल जी ने की है कि ये दुनिया मेरे काम की नहीं
0: जी,
3: सब काम की है बुरीलाल जी, ऐसे मत समझो।
0: आज बुरीलाल जी को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बारिश में उनको दर्द भरे गाने सुनने, लेकिन बुरीलाल जी आज मौसम बारिश का है, मस्ताना हो रहा है, कुछ मस्ताने गाने बजाए।
3: गाना तो सभी जो बारिश हो रही है तो बारिश का ही गाना सुना देंगे। चलो हम भी, एक बहुत पुराना गाना है हमारे लता जी का गाया हुआ,
0: हाँ,
3: कि बरसात में हमसे मिले, हमसे मिले तुम न सजन, तुमसे मिले हम
0: बरसात में,
3: बरसात में हमसे मिले तुम, तुमसे मिले हम
0: बरसात में, हमसे मिले तुम। ठीक
3: है, बहुत पुराना गाना है, लता जी का गाया हुआ है, शायद बरसात का फिल्म नाम भी नहीं बरसात होगी।
0: चलिए शायद हमसे मिलिए, बरसात में हमसे मिले तुम सजना।
3: हाँ नहीं, बरसात में हमसे मिले तुम न सजन, तुमसे मिले हम,
0: बिल्कुल
3: बरसात में वही गाना।
0: ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं आपके लिए ये गाना प्ले करें और आपको ये गाना भी सुनाएं। नमस्कार, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए सुरेश जी। यस, तो हम बात कर रहे थे प्यार की, और देखिए यही प्यार होता है।

बैक टू बैक कॉल्स आते हैं और बैक टू बैक बातें होती है और बैक टू बैक खुशी के नगमे में खुशी बढ़ते जाती है, दिल के अंदर के अरमान जगते जाते हैं हवा हवा। मुझे तो बड़ा आनंद आता है इस तरह से जब होता है ना कि हाँ मुझे पता है कि आज एक साथ तीन कॉल आने वाले, दो कॉल आने वाले, चार कॉल आने वाले। अभी थोड़ी देर पहले मेरा मूड ऐसे ही ऑफ हो रहा था, मैं अपने साथी को बता रहा था कि आज थोड़ा सा मूड ऑफ लग रहा है, थोड़ा सा थकान हो रही है, काम ज़्यादा था, ये था वो था, लेकिन जैसे इस कुर्सी पे बैठते हैं, स्टूडियो लाइव होता है और आप लोगों से बातें होती है, तो दिल बिल्कुल अलग सा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे थे अभी हमने जो गाना सुना रिमझिम के तराने लेकर के, जब सावन की पहली फुहार धरती को छूती है तो दिल खुद ब खुद गुनाने लगता है, और जब बात बारिश के गानों की हो तो एक ऐसा गाना जिसके बिना हमारी हर बरसात अधूरी है, एक ऐसा ब्लैक एंड वाइट दौर का जादू जो आज भी हर धड़कन को रंगीन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा था 1960 में आई काला बाजार, अभी हमने जो गाना सुना वो था काला बाजार का। इस बेहद खूबसूरत नगमे के गाने के जो बोल थे, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी को पहली मुलाकात। दोस्तों एक चीज़ और भी मैं बता रहा था, सभी ने हमें कॉल तो कर ही लिया और सभी मुझे सुन भी रहे हैं, हमारे सुरेश जी, बुरीलाल जी, भुराराम जी, सभी हमें सुन रहे। आप सभी के लिए ये प्रश्न है, प्रश्न तो नहीं है बट जब हम छोटे थे तो हमने बारिश में खूब मस्तियाँ की, खूब पानी के नाव चलाए, कागज की नावें चलाई है, पानी में कूदे हैं, बहुत कुछ किया, बचपन की यादें तो ठीक है, लेकिन बड़े होने के बाद जवानी में या फिर उस मुकाम पर जब आपने शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन उस वक्त भी पहली बारिश के समय पर आप लोगों ने क्या किया है। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब हम बड़े हो गए थे और जॉब वगैरह करते थे तब उस वक्त की बात है, जब बारिश होती थी तो सबसे पहले माउंट में तो आपको पता ही है झरने शुरू हो जाते हैं, पानी, अच्छी बारिश होती थी उस समय में। थोड़े समय पहले की बात करता हूँ, आज से 5-10 साल पहले की बात करता हूँ, तो आबू में भी बारिश काफ़ी अच्छी होती थी, झरने बहते थे, नदी होती थी, तो हम सब दोस्त बाइक लेकर के चले चलते थे झरनों पर नहाने के लिए, गर्मा गर्म पकौड़े। मुझे याद है कि हमारा एक फ्रेंड था, उसके घर पर जाते थे, फ्रेंड के घर पर हम कुछ गर्मा गर्म पकौड़े बना लिए, नूडल्स बना लिए, मैगी, बारिश में भीग कर आए, ठंडी लग रही थी, हमारे ये बहुत बड़े बड़े किस्से थे। तो आपके भी कुछ ऐसे हो तो आप कल हमसे ज़रूर शेयर करिए, आज तो हम शेयर नहीं करेंगे लेकिन कल फिर हम बनाएंगे बरसात की इस मौसम को, और आप सभी अपने अपने बरसात की उस समय की मस्ती जो आप लोगों ने की है जवानी में, वो आप हमसे ज़रूर से शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, क्योंकि जो अगला नगमा है ये भी बहुत ही प्यारा है, इसके बाद हम सारी फरमाइशें सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा, बहुत ही पुराना नगमा है आशा भोसले जी की आवाज़ में। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। अभी प्यारा सा गाना सुना, चल चल पानी हमारी जिंदगानी। जी हाँ, इस फिल्म के इस गाने को बेहद खूबसूरती और चुलबुली अदाकारा चांद उस्मानी पर फिल्माया गया था। पर्दे पर उनके सीधे साधे और मासूम एक्सप्रेशन और पानी के साथ उनकी वो अटकलियाँ देखकर आज भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि रेडियो में हम ये गाने तो सुनते हैं, लेकिन कई बार अगर हम इसका चित्रपट यानी कि जो फिल्म में जिस तरह से इसको फिल्माया गया है उसको भी कई बार देखें तो बड़ा मज़ा आता है। और वही फिल्म को हीरो भरत भूषण साहब ने, जो अक्सर सीरियस किरदारों पर दिखते थे, इस गाने के मूड को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। संगीतकार सलील चौधरी साहब को उनके इनोवेटिव म्यूज़िक के लिए जाना जाता था। उन्होंने इस गाने में ढोलक और पारंपरिक वाद्यों के साथ ऐसा तालमेल बिठाया कि गाना सुनते ही लगता है जैसे कोई पहाड़ी झरना बह रहा हो। पानी की छपक को संगीत की बीट्स में ढालना सिर्फ सलील दा के बस की बात थी। एक और बात थी कि ये वो दौर था जब आशा भोसले जी अपनी बहुमुखी गायिका यानी कि वर्सैलिटी को साबित कर रही थी। शैलेंद्र साहब के इस लिखे बोल लचके कमरिया और जैसे कमलिया, कमरिया नहीं जैसे कमलिया को आशा जी ने जिस चुलबुलेपन और नटखट अंदाज में गाया, उसने इस गाने को हमेशा के लिए आइकॉनिक बना दिया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। गानों के बारे में काफ़ी सारी बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन बातें तो ये भी है कि हम सावन के महीने को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, आज तो जैसे अभी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जैसे मौसम बारिश का बहुत हो रहा है, लेकिन आबूरोड में तो खैर बारिश नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी बारिश है, मैं अपनी बात करता हूँ, जब पहली आबूरोड में बारिश हुई थी तो मैं छत पर गया भीगने के लिए। अपनी बात कर रहा हूँ, मैं छत पर गया भीगने के लिए। लेकिन क्यों गया भीगने के लिए? क्योंकि छत पर कई बार होता है कि काफ़ी समय से मिट्टी होती है, कचरा जमा हो जाता है, तो पानी के बारिश के पानी के आने के बाद वो कचरा सारा नालियों में अटक जाता है, जिससे पानी बह कर के बाहर नहीं निकल पाता है। तो मैं गया था वो नालियों को साफ करने के लिए, भीगते हुए घर की सारी नालियों को खोल करके, कचरा निकाल करके, पत्ते पुत्ते होते उनको निकाल करके, ताकि पानी छत पर ना ठहरे, बह कर निकल जावे। इसीलिए मैंने सुबह मतलब बारिश के पहले, कहते हैं ना कि पहली बारिश में नहाना बहुत अच्छा था, तो मैंने वो किया था। आपने भी ऐसा कुछ किया है? बारिश आज पहली बारिश हुई, उसमें आपने कुछ ऐसा कोई कार्य किया है, कुछ काम किया, तो आप हमसे शेयर करें। कल भी कर सकते हैं 9414151415 पे कॉल करके, यानी कि 9414151415 पर कॉल करके हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की और। अगला नगमा जो है हमारे भूरा राम जी की फरमाइश। जी हाँ, भूरा राम जी, आपकी ये फरमाइश सावन को आने दो। सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिर करते ढेर सारी बातें। तब तक सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

अश्लील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: वेलकम बैक दोस्तों। बाहर शाम हो चुकी है, अंधेरा हो रहा है, सावन की ठंडी हवाएं भी चल रही है और हल्की हल्की बूंदाबांदी खिड़की पर दस्तक शायद दे रही है। एक रूमानी मौसम में जब दिल किसी खास को याद करता है तो शब्द अपने आप शायरी बन जाते हैं और स्वास से संगीत। और जब बात सावन, प्यार और शुद्ध संगीत का हो तो जहन में एक नाम गूंजता है, साल 1975 में आई राजश्री प्रोडक्शन की लाजवाब फिल्म सावन को आने दो। इस फिल्म का एक एक गाना हीरा है, लेकिन जो बात इस गाने में है, इस नगमे में है, वो सीधा आत्मा को छू लेती है। जी हाँ, जो अभी हमने गाना सुना आई, इस अमर गीत के बारे में कुछ जानते हैं। गायक थे KJS यशुदस और कल्याणी मित्रा, संगीतकार राजकमल जी, गीतकार इंद्रवर जी। दोस्तों, इस गाने को जब आप पर्दे पर देखते हो ना तो आपको नज़र आएगा कि सबके चहेते अरुण गोयल साहब, आप सभी शायद जानते हैं अरुण गोयल साहब, जिन्होंने रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाया है। सालों पहले उन्होंने इस फिल्म में एक सीधे साधे गांव के उभरते हुए गायक का किरदार निभाया था। उनके हाथ जरीना वहाबा जी की सादगी और गाँव की गोरी वाला रूप इस गाने के विजुअल्स के बाद पवित्र और सुंदर बना देता है। जी हाँ, कई बार मैंने कहा ना कि जैसे कई बार गाने जब हम चित्र में देखते हैं, फिल्म में पर्दे पर देखते हैं या हमारे टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं, तो गाने के इफ़ेक्ट्स, क्योंकि कई बार किरदार भी इस तरह से निभाए गए होते तो गाने बिल्कुल एक अलग ही रूप में दिखते हैं और बड़ा मज़ा आता है उन गाने के बोल को सुनने में और देखने में भी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले नगमे की ओर, क्योंकि बातें बहुत सी हैं इस गाने के बारे में भी। अगर मैं बातें कहूँ तो बहुत सारी है और अगर मैं करता रहूँगा बातें तो अगले गाने हम नहीं सुन पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, इन गानों के बारे में और भी बातें होती रहेंगी, क्योंकि फिर भी कभी ना कभी तो हम ये गाने सुनते रहेंगे। सुनते हैं अगला नगमा, जो कि हमारी एक और फरमाइश है हमारे भूरी राम जी की। आज भूरी राम जी शायद सावन में काम ज़्यादा करने के बाद थोड़ा सा दुखी है, तो इन्होंने ये गाना प्ले किया, ये दुनिया ये महफिल। लेकिन भूरी राम जी, कल हम एक बहुत ही प्यारा आपकी तरफ से गाना सुनना चाहेंगे। चलिए कोशिश करते हैं आपका ये जो गाना है हम प्ले कर रहे हैं। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। लेकिन गाने पे जाने से पहले हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, सुनते हैं उनसे भी। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मदन भाई, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया मदन लाल जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, ठंडी हवा में चल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बारिश वगैरह हो रही है?
1: बारिश तो दोपहर को हुई थी।
0: अच्छा,
1: मगर अभी ठंडी हवा है। आज ठंडी हवा तो ये ठंडी हवा कह रही है
0: जी।
1: तो आपको नमस्कार है और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार है। हम कौन सी जगह से बोल रहे हैं, ऑफलाइन में है या ऑनलाइन?
0: नहीं नहीं, अभी आपको सभी सुन रहे हैं, आप ऑनलाइन है इस वक्त। बस हम कुछ ही समय में गाना बजाने वाले थे। हाँ, कुछ ही शहर में मैं गाने
1: सुनने वाले को, सभी को बहुत बहुत नमस्कार है मंगलवार का और इस दिन का। और भी बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ मगर
0: बिल्कुल आप बोलिए। नहीं, आज आप बिल्कुल से बोल सकते हैं।
1: जी जी, आज मैं जरा जल्दी में भी हूँ और
0: अच्छा,
1: 8:30 बज रहे हैं घड़ियाल की
0: जी,
1: 2 मिनट आगे भी हो गया है
0: जी।
1: और आज मंगलवार है तो मेरे मंगलवार का गाना भी हो सकता है। और आज हमने फोन किया था मगर लगा नहीं हमारा, नहीं किरण ने।
0: अच्छा,
1: और लगा था मगर शायद आज आए नहीं या फिर कोई सेवा व्यवहार में होंगे।
0: नहीं किरण,
1: उनको हमारे द्वारा
0: नहीं किरण में। हाँ, हो सकता है आज थोड़ा सा फोन उस वक्त जाम था, हो सकता है उस वक्त फोन काम नहीं कर रहा
1: जी। सुबह स्टार्टिंग में आए थे और उन्होंने सुनाया था हमारे रमेश जी ने, फिर मैं चला गया, उनका आना और हमारा जाना होता सुबह नौकरी से।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, तो आज गाएंगे।
0: कोई बात नहीं, आज आपकी फरमाइश सुना दीजिए। हाँ, आज अपनी फरमाइश सुना दीजिए आप।
1: जी जी जी, आज की फरमाइश, ला ला ला ला ला ला ला ला, हनुमान जी चाली सुनाता हुआ, बोलो बजरंग बोली की जय, जय हो हनुमान की जय। ला ला ला ला ला ला ला, मेरे हाथ में बंदूक में चला जा रहा था, मेरे आगे आ गया एक शेर और वो आगे न दिखे, वो मुझे घूम, खुदा की कसम मुझे मार कर ये शर्म आ गया, मगर तुम तो जिंदा होना, ये जीना भी क्या जीना है लल्लू। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ये गाना शायद आज या कल अरे कभी भी मिले जब
0: कोई बात नहीं
1: सुनाया है
0: कोई बात नहीं बिल्कुल से आपके लिए दोहराएंगे आज ही दोहरा सकते हैं या फिर कल भी दोहराएंगे लेकिन एक बार फिर से गाने की बोल आप हमें सुना दीजिए
1: जी मिस्टर नटूलाल है
0: हाँ गाना नथुलाल का मिशन नथुलाल का
1: मिस्टर नथुलाल विजय का नाम है जिसमें अमिताभ जी ने गाया है गाना
0: अच्छा
1: okay. आपने सुना होगा मगर अभी क्या है कि हाँ. ये सब गाने एक जैसे हो गए तो
0: यस यस
1: बहुत दिन के बाद भी गाया है नमस्कार है आपको और सभी हमारे दोस्तों को और पूरे तलेके को और हमारे सभी शो को नमस्कार जैसे सुने तो अच्छे लगे और जिनका भी जन्मदिन है सभी को भी हम
0: चलिए थैंक यू सो मच
1: ओम शांति
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए मदन लाल जी और ये थे हमारे मदन लाल जी और जी हाँ जो हम बात कर रहे थे गानों के बारे में तो अभी तो बढ़ते हैं अगला नगमा सुनने के लिए जो हमारे पेशकश थी बुरीलाल जी की तरफ से सुनते ही ये नगमा फिर करते हैं ढेर सारी बातें बने रहिए रेडियो के साथ सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM

सागर, रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी अभी हमने एक गाना सुना, यह महफिल ये दुनिया मेरे काम की नहीं, फिल्म हीर रांझा से 1970 में आई, मोहम्मद रफ़ी साहब की दर्द भरी आवाज़। कैफी अजमी साहब ने इसे लिखा था। इसके फिल्म के जो डायरेक्टर थे मदन मोहन जी थे, सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर जो थे मदन मोहन साहब थे। और बढ़ते हैं अब अगले नगमे की ओर। जो हमारा अगला नगमा है, सुरेश जी की तरफ से हमें ये फरमाइश आई थी, बरसात में हमसे मिले तुम। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा और फिर करते हैं इस गाने के बारे में ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ दोस्तों, वाकई में समय बदल गया है, साल बदल गए। आज साल 2026 में जी रहे, लेकिन जब भी सावन आता है, राज कपूर जी का वो वायलिन और लता जी का वो तान आज भी उतने ही फ्रेश लगते हैं। सावन की शाम और भी हसीन बनता है जब हम ये गाने ऐसे राज कपूर साहब के वायलिन वाले हम जब सुनते हैं, है ना दोस्तों? सही में ना, ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये आरके फिल्म्स की उस सुनहरे दौर की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर भारतीय सिनेमा को चेहरा बदल दिया। इसकी मैं अगर बात कर रहा हूँ तो शोमैन राज कपूर साहब की क्लट क्लासिक फिल्म बरसात की। और जब इस फिल्म का जिक्र होता है तो कानों में एक ही धुन गूंजती है, लता मंगेशकर जी की वो मखमली आवाज़ जिसमें बगावत भी थी और मोहब्बत भी। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम, इस गाने के बारे में जो भी हम अभी बात कर रहे हैं, इसकी कुछ ऐसी खास यादें भी है जो आप जानते हैं कि आरके फिल्म्स को जो मशहूर लोगो है जिसमें राज कपूर साहब के एक हाथ में वायोलिन थामे और दूसरे हाथ से नरगिस जी को संभाले नजर आते हैं। अगर आपने फिल्म को, आज मैं कई बार कहा हूँ कि जब हम इनको पर्दे में देखते हैं तो कुछ अलग ही होता है। तो जैसे इस गाने के भी जब हम फिल्म की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो इसमें जो आरके बैनर का जो लोगो आता है, कोई भी फिल्म के आगे जब लोगो लगता है उस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, उस फिल्म की कंपनी के बारे में, तो इसमें जो नरगिस जी को संभाले नजर आते हैं उसकी प्रेरणा इसी फिल्म बरसात के एक सीन से ली गई थी। इस फिल्म की कामयाबी ने राज कपूर साहब को सिनेमा का शोमैन बना दिया था। शंकर जयकिशन जी और शैलेंद्र जी, यह फिल्म की एक और वजह से बहुत खास है। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन और महान गीतकार शैलेंद्र की तिगड़ी ने इस फिल्म में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। शैलेंद्र साहब ने जब इस गाने के बोल लिखे, प्रीत ने जादू ये कैसा किया, तुमने हमें, हमने तुमने चुन लिया, तो उन्होंने प्यार की एक नई परिभाषा लिख दी थी। साल 1949 में लगातार मंगेशकर जी के कई गाने आए, लेकिन बरसात के गानों ने उन्हें रातों रात देश की सबसे पसंदीदा आवाज़ बना दिया है। इस गाने में जो मासूमियत और दर्द है वो आज भी सुनने वालों की आंखों में नमी ले आते हैं। पर्दे पर जब अभिनेत्री निम्मी इस गाने को गाती है तो वह बेबसी सीधे दिल के पार उतर जाती है। सोचिए दोस्तों, 1949 का ये गाना। सूरज जी, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना पुराना गाना आपने हमारे लिए फरमाइश के रूप में लाया। और मैंने भी ये गाना फर्स्ट टाइम सुना, मुझे भी बड़ा पसंद आया ये गाना सुनने के बाद, और सोच रहा हूँ मैं भी कि

नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो।

वेलकम बैक दोस्तों। बहुत ही प्यारा गाना सुना अमिताभ बच्चन की आवाज़ में। जी हाँ दोस्तों, ये गाने में जो बोल यानी सॉरी इस गाने में जिसने गाया है अमिताभ बच्चन जी ने, मिस्टर नटवरलाल का ये गाना 1979 में आया। संगीतकार इसके आनंद बख्शी साहब, गीतकार राजेश रोशन जी। जी हाँ दोस्तों, चलिए आप सभी से समय हो गया है विदाई लेने का। फिर हम मिलेंगे आपसे कल ठीक इसी समय 8 बजे। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। गुड नाइट, शब खैर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की मुहिम में रेडियो मधुबन ये छोटी सी कोशिश आपके सामने लेकर आया है, जहां पर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। ऐसा ना हो कि हम बीमार हों और फिर जाके हम स्वास्थ्य लाभ करें। क्या हम ऐसा ना करें कि हम पहले से ही स्वस्थ बने रहें, स्वास्थ्य लाभ लेने की आवश्यकता ही न पड़े। स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हम कैसे निभाते हैं, क्या चीज करना पड़ता है, इन सभी विषयों पर हम हर दिन कुछ न कुछ जानकारी सुन रहे हैं। और जब हम इन जानकारियों को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम वास्तविकता में अपने स्वास्थ्य के रक्षक बनते हैं। प्रायः स्वास्थ्य के रक्षकों के रूप में चिकित्सा कर्मियों और डॉक्टर्स को देखा जाता है, और वो हमारे स्वास्थ्य को वापस लौटाने में बहुत मदद करते हैं। अब उनकी मदद को याद रखना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, न कि बार बार हम उनके पास जाएं और उनके काम को बढ़ाएं। ऐसे में क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? तो आसान उत्तर यही है कि अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हम उनकी सबसे बड़ी मदद करते हैं। आइए अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य जगत से ही जुड़े हुए विशेषज्ञों से बात करते हैं और उनसे राय लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। वे पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, पिछले दिनों हम ये बात कर रहे थे कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर व्यक्ति को स्वयं सजग रहने की आवश्यकता है। अगर वो स्वयं स्वस्थ रहता है तो वो स्वास्थ्य के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस ढांचे को बेहतर करने में एक बड़ा सहयोग देता है, वो राष्ट्र के स्वास्थ्य को ठीक रखने में मददगार साबित होता है। और आपने स्वयं ये कहा था कि अगर हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा ताजी सब्जियां खाएं, ताजे फल खाएं, तो हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने में एक बहुत ही पॉजिटिव कदम, एक सकारात्मक कदम ले सकते हैं। आपने बातचीत में ये भी बताई थी कि विटामिन्स के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही आवश्यक विटामिन्स में गिना जाता है, और इसकी कमी से क्या समस्याएं होती हैं उसके बारे में हमने समझा। आपने ये भी बताया था कि मनोरोगों में भी, जब मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं, उसमें भी विटामिन B12 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर व्यक्ति विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अपने शरीर में कमी ना होने दे, उसके लिए उसे क्या करना है, कहाँ से ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ये समझा जाए।
1: कल की चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है ये बात मैंने कही, तो एक बार फिर से इसकी कमी के बारे में बोलना चाहूंगा। और इसकी कमी अगर आदमी देखे तो ऊपर सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक को इफेक्ट करता है। आपके सर के बाल कमजोर हो जाएंगे, आपकी त्वचा रूखी हो जाएगी, आपकी जो त्वचा है उसमें पपड़ी जमने लगेगी, आपकी जो जीभ है वो मोटी हो जाएगी, सूज जाएगी, आपके गले में खराश, सोर थ्रोट हो जाए, आपकी आंखें हो सकता है गुलाबी रंग की हो जाए, आपकी होंठ है जो फट जाए हो सकता है, और आप ओवरऑल एक थके हुए, कंफ्यूज्ड, कमजोर व्यक्ति के रूप में समाज को दिखेंगे। हम लोग ने दोनों परिचर्चाओं में ये कहा कि हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। तो थका हुआ, अगर आप जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं कि अगर वो बहुत उनको थकान लग रही है, उनको नींद पूरी नहीं हो रही है, उनका मूड स्विंग कर रहा है, तो सबसे पहले अपना विटामिन बी प्लीज चेक करा लीजिए और आप उसकी पूर्ति कर लीजिए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे।
0: ठीक करने की जब बात आती है डॉक्टर साहब, तो प्राय प्रश्न उठता है कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट विटामिन है तो हम सबको पता भी होना चाहिए कि आखिर ये कहाँ से मिलता है, इसका स्रोत क्या है।
1: ये हमको सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, दूध, दही, चीज, जो भी भोजन जो प्रोसेस नहीं किया गया है, होल व्हीट, मतलब होल व्हीट का ये मतलब है कि आपने गेहूं लिया और उसको पीस दिया, उसको छान करके उसके अंदर से चोकर नहीं निकाला है, अनपॉलिश राइस या जिसको हम ब्राउन राइस बोलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। चावल के सबसे ऊपर हस्क होता है, फिर उसके ऊपर बार्न होता है और फिर राइस होता है। तो जब बान अगर चावल पे लगा रहे तो वो भूरे रंग का दिखता है, तो उसको ब्राउन राइस बोला जाता है। राइस की सबसे ज्यादा खूबी उसी बार में होती है और उसी को निकाल के भैया आजकल राइस बान ऑयल आ गया है। जो ऊपर का जो हस्क है वो चारे के रूप में प्रयोग होता है या उसको लोग जलाने के रूप में प्रयोग करते हैं, जो बान है उससे ऑयल निकालते हैं कंपनीज और राइस आपको मिल जाता है। हम आरोग्य मंदिर में अनपॉलिश्ड राइस, मतलब चावल जिसपे बान लगा है, वो पेशेंट्स को या जो हमारे यहाँ रहने आते हैं उनको देते हैं, और उसका स्वाद और पॉलिश राइस का स्वाद लगभग एक है, लगभग एक है। थोड़ा सा ये रफ कभी कभी फील होता है मगर ये एकदम एक है। तो होल व्हीट और होल राइस में भी विटामिन बी बहुत अच्छा मिलता है। सारे फैट्स वॉल्युबल विटामिन में भी हमने बात की, सबसे वंडर मेडिसिन, वंडर वेजिटेबल जो है वो स्पिनच, पालक, बनाना, केला, उसके बाद संतरा, अनार, कीवी, वाटरमेलन में भी है, ये हमारे अखरोट, वॉलनट में भी विटामिन बी मिलता है हमको, और राजमा में भी विटामिन बी है। कुछ तरह के यीस्ट प्रोडक्ट्स में भी, जिसमें खमीर उठाना कहते हैं, उसमें भी हमें विटामिन बी12 बहुत अच्छा मिलता है। कुछ लोग इन भोजनों को प्रयोग में नहीं लाते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमें दूध से एलर्जी है, कुछ लोग कोई एक पर्टिकुलर जो अनाज है उसको नहीं खाते हैं, उन लोगों को सीधे सीधे ये कहा जाता है कि आप इसकी कोई भी बाजार में मिलने वाली जो गोली उसका प्रयोग कर लें, क्योंकि बहुत से लोगों को मिल्क एलर्जी देखी जा रही है, वीट से एलर्जी देखी जा रही है, जिसको हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस या ग्लूटेन इंटॉलरेंस बोल रहे हैं, इन दो चीजों को हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसकी गोली का प्रयोग कर लें।
0: यानी ये बात समझ में आ रही है कि जो दो मोटी चीजें हैं या दो ऐसे अनाज हैं जिसका भारत भर में या विश्व भर में कहीं ना कहीं हर दिन सेवन हो रहा है, उन्हीं अनाजों से ये चीज मिल सकता है। जैसे भारत के दक्षिणी प्रांतों में और पूर्व के प्रांतों में चावल का भरपूर मात्रा में सेवन होता है, भारत के मध्य और उत्तरी प्रांतों में, पश्चिमी प्रांतों में गेहूं का भरपूर मात्रा में उपयोग होता है, वहीं पर इसके स्रोत हैं, मगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल न करने की वजह से इसकी कमी देखते हैं, ये बात समझ में आती है। और जैसे आपने कहा दूध के प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बनी हुई चीजें हैं, दूध, दही, चीज इत्यादि, इन चीजों में भी इसकी बहुत आयत है, मगर लोग इन चीजों को नहीं समझने के कारण इन विटामिन्स की कमी का उनको सामना करना पड़ता है।
1: ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विटामिन बी12 कि ये जो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं उसमें भी इसका प्रयोग है, जितने हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसमें भी प्रयोग है, हमारे RBC रेड ब्लड सेल बोन मैरो में बन रहे हैं, हमारे नसों की झिल्ली, तो आप सोचिए कितना जरूरी है। और इसकी कमी भी सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि जो आपने बोला कि भोजन का स्रोत हमें मालूम है पर हम उस भोजन को ठीक से नहीं कर रहे। हम गेहूं में से चोकर निकाल के, अब आप ये देखिए ना कि गाय अच्छा दूध देगी उसको चोकर खिला दो,
0: बिल्कुल,
1: और हम आटा खा ले, हम एकदम चिकना सॉफ्ट आटा खा ले, अब तो बहुत सारे ग्लू चिपकाने के पदार्थ आ गए, नहीं तो नॉर्मली पहले लेई बनती थी, लेई मैदे से बनती है, ये सबको एक, एक आप हम लोग अपने कैंपस में आरोग्य मंदिर प्रकाशन में किताबें बनाते हैं और हमारा एक 1960 से चलता आ रहा एक प्रकार एक मैगजीन है आरोग्य, उसके सर्कुलेशन में हम जब उसे पैक करते थे तो ले ही बना के लगाते थे, और मैं हमेशा जब छोटा था तो देखता था एक ही बर्तन है एल्युमिनियम का, उसके अंदर ये गम ये चिपकाने वाला मिल रहा है। और हम लोग को स्कूल ले जाने के लिए तो एक हमारे माता पिता एक छोटी सी ट्यूब देते थे, तो मैं हमेशा बोलता था ये क्या चीज है जो हम स्कूल नहीं ले जा रहे हैं वो। तो पहली बार मुझे मालूम चला कि मैदे से इसको बनाया जा रहा है और ये चिपकाने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग आता है। तो आप ये देखिए, जो हमारी आंतों में चिपक जाता है जिससे हम बाहर चिपकाने का प्रयोग कर रहे हैं, वही मैदा हमारी आंतों में भी चिपक जाता है जिससे सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तब भी हम उसका प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं वनस्पत, और हम जो सबसे अच्छी चीज आटे की है चोकर, वो हम जानवर को खिला रहे हैं।
0: ये बात बड़ी सोचने वाली लगती है कि एक तो अगर व्यक्ति स्वयं गेहूं ले जा रहा है आटा बनवाने के लिए, पिसवाने के लिए चक्की में ले जा रहा है और लेकर वापस आ रहा है, और घर में उसे चोकर को हटा दिया जाता है, उसको छान दिया जाता है। और जैसे आप आजकल तो अगर हम देखते हैं तो हम सीधे बाजार से बने हुए आटे को ले आते हैं और उसमें चोकर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं मिलती। लोग तो कहते हैं कि भाई ये रेडी टू मेक है, इसमें आपको फिल्टर भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीज फाइन आटा ये देखने को मिल रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे भोजन को जहां से हम ले रहे हैं वहीं पर ये गड़बड़ियां हम कर रहे हैं, और अगर हम इसको सुधारें तो फिर ये चीज ठीक हो सकती है। और ये सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं मगर परिवार के स्वास्थ्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ही आवश्यक सी चीज है। जब आप चावल की बात करते हैं डॉक्टर साहब, मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि राइस बान से तेल बनने लगा है और आज पॉलिश्ड राइस मिलने लगा है, तो क्या व्यक्ति को अभी अनपॉलिश्ड राइस खाना चाहिए, या अगर वो अनपॉलिश्ड राइस नहीं खा रहे हैं, अगर पॉलिश्ड राइस खा रहे हैं तो क्या उन्हें राइस बान ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए?
1: मैं अनपॉलिश्ड राइस खाने का सुझाव जरूर दूंगा, इसको हफ्ते में एक दो दिन जरूर खाना चाहिए, और अब तो ये हर बड़े शहर में मिलने लगा है। राइस बान ऑयल का प्रयोग के लिए उतना मैं प्रेरित नहीं करता हूं लोगों को, पर अनपॉलिश राइस के लिए जरूर प्रेरित करूंगा। और ये जैसे आप चावल बनाते हैं वैसे ही ये बनता है, और ये कोई एक टाइप ऑफ राइस नहीं है, किसी भी चावल से अगर उसका बान नहीं निकाला गया है तो वो अनपॉलिश्ड राइस है। आप अगर इस समय हेल्थ सेंटर्स में, आयुर्वेदिक सेंटर्स में या हेल्थ स्पास में जाएंगे, वहां ये एक डेलिकेसी के रूप में आपको खिलाया जाता है कि ये अनपॉलिश्ड राइस दिया जा रहा है। हम लोग अपने यहाँ खुद चावल उगा रहे हैं, अपने जो भी स्वास्थ्यार्थियों के लिए, हमारे पास एक कैंपस से अलग एक जमीन है जहां पर हम गेहूं चावल सरसों तीनों उगाते हैं और ऑर्गेनिक उगाने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारे जो जितने लाभार्थी हैं उनको ज्यादा फायदा हो रहा है। ब्राउन राइस या अनपॉलिश राइस में रफेज भी ज्यादा है, जो खुज्जा है। हम लोग ने पहले जब हम लोग ने फ्रूट्स के बारे में बात की थी, या हम लोग ने डिफरेंट चीजों के फाइबर के बारे में जब भोजन में बात की थी, तो आप जो चोकर है वो आटे का फाइबर है और जो चावल के ऊपर की कोटिंग है वो चावल का फाइबर है, तो वो हमारे पाचन तंत्र को बहुत अच्छा रखने में हमारी मदद करता है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है।
0: जैसे आपने साथ में जो विटामिन बी 12 के सोर्सेस के रूप, विटामिन बी के सोर्सेस के रूप में आपने बताया कि पालक है, आपने फ्रूट्स गिनाए हमें, संतरा कहा, वाटरमेलन कहा, अलग अलग फ्रूट्स, बनाना बताया आपने, केला बताया, और आपने वो भी चीजें बताई जो फर्मेंट होती हैं, ऐसी चीजें जो हम बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान और गुजरात में खमन ढोकला इत्यादि बनाया जाता है, दक्षिण में इडली डोसा इत्यादि बनाया जाता है, ये सारी फर्मेंट होने वाली चीजें हैं, तो क्या इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है?
1: यीस्ट के प्रोडक्ट्स में इसका बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, टमाटर में, एवोकाडो में, वाटरमेलन, कीवी, अनार, ऑरेंज, इन सब में इसका अच्छा स्रोत है। और ये सारी चीजें अब हमें बहुत आसानी से मिलने लगी हैं। फोर्टिफाइड, जैसे आपने बोला बाजार से आटा खरीद के आ रहे हैं, तो अब सरकार ने भी इसमें निर्देश दिया है कि हम इसमें इसको थोड़ा सा मिलाकर अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको दें, तो उससे भी हमको ये अच्छा मिल रहा है इस समय हमारी जनता को।
0: डॉक्टर साहब, आपने ये बात बताई कि विटामिन बी की आवश्यकता क्या है, क्या इनके स्रोत हैं। अब जब आप सब्जियों और फलों के बारे में बता रहे थे, साथ में आपने ये भी कहा था कि दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध है, दही है, भारत में तो पनीर, चीज इत्यादि के जो प्रचलन है, उनसे भी इन चीजों की कमी पूरी होती है। तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है, क्या हर दिन के भोजन में हम इन चीजों को शामिल करें, और क्या भोजन मात्र से ही इसकी कमी पूरी हो सकती है?
1: ये दूध, दही, पनीर, चीज, इसमें इसका बहुत अच्छा स्रोत मिल जाता है। सबसे अच्छा स्रोत इसका हमें दही और पनीर में मिलता है। दूध में अधिकतम पानी है, तो जब दूध का पानी थोड़ा सा कम हो जाता है तो दही बन जाती है, और पूरा जब दूध से पानी हम निकाल देते हैं, उसका प्रोटीन पार्ट बदल लेते हैं, तब पनीर बनता है। तो ये एक चीज ध्यान देने वाली है कि सबसे इसका अच्छा स्रोत हमें पनीर से, चीज से और दही से मिलेगा। एक चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि विटामिन बी वाटर सॉल्युबल है, तो अगर इसको किसी भोजन में जो है, अगर हम उसे बार बार गर्म करेंगे और बहुत गर्म करेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। इसीलिए विटामिन बी की अगर हम बात करें या हम किसी भी पोषक तत्व की बात करें भोजन में, तो कहा जाता है खाने को बार बार गर्म मत करिए, क्योंकि वो जितनी बार गर्म होगा उतनी बार वो अपने अंदर की कुछ ना कुछ क्वालिटी को लूज करेगा। इसीलिए रॉ वेजिटेबल और रॉ फ्रूट खाने की भी बात होती है, सलाद के खाने की और फल के खाने की बात होती है, कि हमने उसको टेम्परेचर उसका बढ़ाया नहीं है और उसको उसके पोषक तत्व को पूरा बना के रखा है। तो आप इसे दही, पनीर, दूध उससे ले सकते हैं। ध्यान बस इतना देना चाहिए कि इसको दूध को बार बार गर्म ना करके उसका प्रयोग करें।
0: जैसे आपने कहा कि भोजन से ये चीजें हम कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, तो प्रश्न उठता है कि क्या भोजन मात्र में अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो इतना काफी है? क्योंकि आजकल ये सुनने को मिलता है कि जो लोग दही भी खा रहे हैं, जो दूध भी पी रहे हैं, उनके अंदर भी इन चीजों की कमी महसूस की जा रही है।
1: अगर आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है, और सबसे कॉमन सिम्टम थकान, कमजोरी ये है, या आपको कहीं भी हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, या आपको कहीं काम करने मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन है, तो ये आपके भोजन से ये पूरा नहीं हो पा रहा, तब उस स्थिति में आप इसको ऊपर से ले सकते हैं। इसकी बहुत सारी गोलियां आती हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, इसके इंजेक्शंस भी आते हैं, मगर मैं सबसे पहले गोली लेने को बोलता हूं। अगर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो कोई भी इंजेक्शन अपने शरीर के अंदर नहीं लगवाना चाहिए। तो आप अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप गोली ले सकते हैं, इमरजेंसी की कंडीशन है तो आप इसका इंजेक्शन ले सकते हैं। और ये किसी स्वास्थ्य कर्मी को डिसाइड करने दीजिएगा कि आपको कितनी कमी है और आपको कितना ही चाहिए।
0: यानी आप स्वयं से ये निर्णय नहीं ले सकते कि मुझे इंजेक्शन ले लेना चाहिए या गोली खा लेनी चाहिए, मगर अगर आप में विटामिन बी की कमी महसूस होती है, अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो ये चीज पता चल जाता है। अगर आपको कोई ऐसे चिन्ह नजर आते हैं जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कमजोरी हो रही है, तो आप स्वाभाविक रीति से जाके स्वास्थ्य सलाह ले सकते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों से, डॉक्टर से मिल सकते हैं, और वो जैसे आपको गाइड करें उसी हिसाब से आप इस चीज को करें। मगर साथ साथ भोजन में जो चीजें हैं उस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपके शरीर में बहुत ही कम मात्रा है विटामिन बी की, तो फिर गोलियां खाना आवश्यक है, और जैसे डॉक्टर्स आपको गाइड करते हैं वैसे ही इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, वक्त ये कहता है कि यहाँ रुकना चाहिए, मगर जाते जाते मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि अनाज में, दूध में, चावल, जो अनपॉलिश्ड राइस है, इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इसकी शुरुआत किचन में ना होकर जहां से हम चीजें खरीद रहे हैं वहां से हमें ध्यान देने की जरूरत है।
1: एकदम सही कहा, लुक व्हाट आर यू बाइंग। और मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ और मैं लंबे समय तक विदेश भी रहा, तो उसमें मेरे साथ कुछ जो लोग थे उन्होंने एक ही सलाह दी थी कि आप जो भी खरीदें उसमें कंटेंट को एक बार जरूर देख लें, आधा मिनट भी नहीं लगता है एक बार पलट के उसको देखने में, और आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि इसमें क्या है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर हम किसी भी चीज का कंटेंट पढ़ते हैं, जो पहले नंबर पे चीज लिखी है वो सबसे ज्यादा होती है उसके अंदर। ये चीज का प्लीज हम ध्यान रखें कि जो भी चीज उसके अंदर डाली गई है वो उस हिसाब से लिखी जाती है कि क्या है। ये सरकार का नियम है। हाँ, कुछ कंपनी वाले इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, बट नॉर्मली जो चीज सबसे पहले लिखी गई है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी उसी की।
0: बहुत ही खूबसूरत आज की ये चर्चा रही है और बहुत ही नई जानकारियां आज हम सबको हासिल हुई है दोस्तों। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आज हमें अपने स्वास्थ्य की शुरुआत करनी है, तो स्वास्थ्य की शुरुआत सिर्फ किचन से नहीं, जहां भोजन बन रहा है उस रसोई घर से नहीं, मगर कहां से अनाज आ रहा है, घर में हम क्या खा रहे हैं और वो चीज कहां से खरीदी जा रही है और हम क्या खरीद रहे हैं, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और वो चीजें जब घर में आएंगी तो उसे कैसे पकाया जाना चाहिए, कैसे उसका सेवन किया जाना चाहिए, इन सभी चीजों को, जो विटामिन जो कम मात्रा में ही आवश्यक है मगर वो सब कुछ हमारे भोजन के प्रतिदिन के भोजन में उनकी भूमिका है, तो उन्हें हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। आज की चर्चा में यहीं पे विराम लेंगे। आज जो नई नई चीजें विटामिन बी के बारे में और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने सुनी है, उन सब की अहमियत को समझते हुए उन सब को हम अपने भोजन में शामिल करेंगे। आप रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाते समय गेहूं के चोखर को आप छान कर बाहर न फेंके, उसको भी भोजन में शामिल करें। चोकर के साथ रोटियां बनाएं। अगर आप चावल खरीद रहे हैं तो पॉलिश्ड राइस न खरीदें, सीधे सफेद चावल न लेकर जो ब्राउन राइस होता है, जो पूरे रंग का चावल मिलता है, छिलका सहित है, उस चावल को खरीदने पर आप ज्यादा आसक्त हों। भोजन में पालक, वाटरमेलन और साथ में अलग फ्रूट्स जो विटामिन बी के सोर्सेज हैं उसके रूप में उन्होंने बताया, दूध, दही, चीज इत्यादि के बारे में बताया, उन सभी पर ध्यान रखकर अपने आप को स्वस्थ रखने और घर को स्वस्थ रखने में हम ध्यान रखेंगे, ऐसी शुभ आशाएं। आज हमारे प्रश्न पर डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, इसके लिए आप सभी की ओर से उनका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद। नमस्कार सर।
0: आज की चर्चा में इतना ही दोस्तों, अगली बातचीत में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मिलते हैं तब जब उसकी रहमत हो, उससे मिलने की तरकीब कहूँ गर तुम सहमत हो। तुम फूल ही हो इसमें नहीं कोई शक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, नहीं अब हक मुझको।

में अब है वही, ये कैसे समझाऊं मैं। मेरी नजरों में अब है वही, ये कैसे समझाऊं मैं। बस गया इनमें अब बसने वाला, कोई और कैसे समाऊं मैं। बस गया इनमें अब बसने वाला, कोई और कैसे समाऊं मैं, कोई और कैसे समाऊं मैं।

0: नमस्कार, मैं हूँ माया खालसी और आप सुन रही हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: हेलो बच्चों, चलो चलो बैठो रेडियो के पास। 9:30 हो गए हैं और पता है ना, आपका फेवरेट शो का टाइम हो गया है।
2: हाँ, और अपना फेवरेट शो तो पता ही है आपको, क्या है उसका नाम? सपनों की सैर।
1: तो बच्चों चलो, हम बातें कर रहे हैं आपके प्रश्नों की, आपके प्रॉब्लम्स की, और उसका साथ साथ सॉल्यूशन भी तो मिल रहा है। और कई बच्चों के मैसेज भी आए हैं कि जो नुस्खे हमने दिए उनको उन्होंने फॉलो किया है।
2: हाँ, और उनको सफलता भी मिली है। और परी, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया है हमारे छोटी सी प्यारी सी सलोनी का।
1: और प्रश्न क्या है मनी दीदी?
2: सलोनी ने पूछा है कि मम्मी पापा मेरी बात नहीं समझते, मेरी बात नहीं मानते, मैं क्या करूं?
1: इतनी सी बात है, ये तो बहुत सहज है सलोनी। हमें शांत मन से अपनी बात को बताना चाहिए पहले, तो ये ट्राई करना।
2: हाँ, आप जरूर जिद करने लगते होगे, इसीलिए मम्मी पापा आपकी बात नहीं सुनते होंगे। उनको प्यार से राजी करके मीठे मीठे बातों से बोलोगे तो क्यों नहीं आपकी बात समझेंगे और मानेंगे।
1: हाँ बच्चों, इसीलिए आप जरूर कुछ जिद करते होंगे, या फिर उसी में कुछ कल्याण छिपा होगा, तब तो मम्मी पापा आपकी बात नहीं मानते।
2: हाँ बच्चों, और आपको टाइम देखकर भी बात करना चाहिए। हो सकता है मम्मी पापा कुछ बिजी हो, कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिस का काम कर रहे हो, पापा मम्मी कुछ खाना वाना बनाने में बिजी हो, कुछ और बातों में इन्वॉल्व हो, आप उस समय बात करेंगे तो वो कैसे आपकी बात समझेंगे ना। तो सही समय पर उनसे बातचीत करो।
1: और दूसरी बात कि अक्सर खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर हो जाती है।
2: हाँ, तो अच्छे से मम्मी पापा से फ्रेंड के जैसे बात करो।
1: तो सलोनी, अच्छी लगी ना हमारी बात? कोशिश करके देखना और फिर बताना।
2: हाँ जरूर, हमें फीडबैक तो दीजिएगा ही बच्चों। तो चलो भाई, अब ऐसे ही जैसे सलोनी ने अपना प्रश्न पूछा है, आपके भी कुछ न कुछ प्रश्न तो होंगे। ऐसी कोई बातें जो आपको लगती हो कि ऐसे नहीं होनी चाहिए, भले ही चाहे वो कितनी छोटी सी छोटी बात हो, फिर भी आप हमको शेयर कर सकते हैं। तो नंबर तो आपको याद है ना,
1: 9414151415 पर। और अभी बारिश शुरू होने वाली है कहानियों की, तो लेते हैं पहले छोटा सा ब्रेक।
2: चलो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर,
2: सपनों की सैर को।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: बच्चों चलो, परी आ गई कहानी सुनाने के लिए। बैठो रेडियो के पास और आज डब्बू और नाई की कहानी सुनेंगे। डब्बू कौन है, चलो कहानी में जानते हैं। डब्बू नाम का एक छोटा सा लड़का था। वो हमेशा होशियारी दिखाता था। एक दिन पता है उसे नाई से मजाक करने की सूझी। वो सुबह नाई की दुकान में पहुंचा, शीशे के सामने कुर्सी पर बैठ गया और नाई ने पूछा, क्या बात है डब्बू? डब्बू ने शान से कहा, जरा मेरी दाढ़ी बना दो। नाई को डब्बू की शैतानी समझ में आ गई। उसने कहा, हाँ जरूर बनाऊंगा सरकार। इसके बाद नाई ने डब्बू के कंधों पर तौलिया लपेट दिया। उसने ब्रश से उसके चेहरे पर झागदार साबुन लगाया और फिर वो अपने अन्य काम में लग गया। डब्बू ने कुछ देर तक तो इंतजार किया। चेहरे पर साबुन पोते ज्यादा देर तक वो बैठा रहा, उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसने नाई पर नाराज होते हुए कहा, आखिर तुमने मुझे इस तरह क्यों बिठा दिया है? बच्चों ये सुनकर तो नाई हंस पड़ा। उसने शांति से जवाब दिया, इसलिए कि अभी मैं तुम्हारी दाढ़ी उगने का इंतजार कर रहा हूँ। तो देखा बच्चों, छोटा सा लड़का था डब्बू, उसको कहाँ दाढ़ी होती है। तो इसीलिए नाई ने भी उसके मजाक को उसी अनुसार जवाब दिया। इसलिए तो इस कहानी से हमें समझ में आता है ना कि दूसरे का मजाक उड़ाने वाला खुद एक दिन मजाक का पात्र हो जाता है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, ऐसे कोई मजाक नहीं करना जिससे किसी को नुकसान हो। चलो बच्चों अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों की सैर।

0: कौटिल्य पंडित, आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है लेकर तेनाली रामा की किताब। तो चलो, अब हम इसमें जो कहानी पढ़ रहे हैं वो है मित्र की पहचान, जिसमें महाराज के बाल सखा प्रसन्नजीत के द्वारा सभासदों को आदेशात्मक स्वर में कहा गया था कि कुछ कार्य तुम लोग स्वयं कर लिया करो। आयोजन की व्यवस्था करना या उसका निरीक्षण करना राजाओं का कार्य नहीं होता, और ये व्यवहार किसी भी सभासद को पसंद नहीं आया और वे मन ही मन प्रसन्नजीत को कोसते हुए कक्ष से बाहर हो गए। अब बच्चों आगे क्या होता है, चलो चलो मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको। नौ वर्ष का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो चुका था। एक के बाद एक मंच पर कलाकार आते, अपनी कला का प्रदर्शन करते और लौट जाते। पहले बाल कलाकारों को कला प्रदर्शन का अवसर दिया गया, फिर पुरुष कलाकारों को और अंत में महिला कलाकारों को। महिला कलाकारों में एक से बढ़कर एक नृत्यांगनाएं मंच पर आती रहीं, नृत्य प्रस्तुत कर जाती रहीं। तेनाली राम ने देखा कि दर्शकों की अगली पंक्ति में महाराज के साथ बैठा प्रसन्नचित को देखकर तेनाली राम क्षुब्ध हो उठा और उसने मन में सोचा कि महाराज ऐसे व्यक्ति को अपना बाल सखा कहते नहीं थकते। मगर तेनाली राम अपने स्थान पर बने रहने के लिए बाध्य था। इस अशिष्ट व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार तो उसे कतई नहीं था, मगर प्रसन्नजीत के प्रति उसके मन में वितृष्णा का भाव अवश्य गहरा हो गया। मध्य रात्रि तक समारोह चलता रहा। समारोह के समापन के बाद महाराज अपने मित्रों के साथ भवन में चले गए। सभासदों को घोर विस्मय हुआ कि महाराज ने अन्य अतिथियों से यह भी नहीं पूछा कि उन्हें समारोह में आनंद आया या नहीं। शुभ रात्रि कहने की औपचारिकता भी उन्होंने नहीं निभाई। तेनाली राम को महाराज के व्यवहार में आया यह परिवर्तन पसंद नहीं आया। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में उसकी हैसियत मात्र एक विदूषक की ही थी। वह संशय में था कि महाराज को उनके आचरण में उत्पन्न हो रहे दोष के प्रति कैसे सचेत करे। तो बच्चों, अब तेनाली राम क्या युक्ति निकालेगा, तो वो तो पता चलेगा हमें अगली कड़ी में। तो चलो फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस प्यारे से गाने के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों की सैर को।
2: Rock!

0: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से। कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर तो हम पहुंच ही गए हैं। आज हमने बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें भी की, परी की कहानियां भी सुनी और किताब भी पढ़ ली, है ना? तो चलो भाई, अब परी ने पिछली कड़ी में कुछ जनरल नॉलेज का सवाल पूछा था, तो क्या सवाल था परी?
2: बच्चों याद है ना, हमने पूछा था लाल रंग से जाना जाता, धरती से दूर आसमान में रहता, सूरज की चौथी संतान, बताओ उसका नाम?
1: उसका नाम है मंगल ग्रह, है ना? जब भी आप आसमान में देखो तो लाल रंग का दिखाई देगा और धरती के पास ही है और सूरज की चौथी संतान यानी कि चौथे नंबर में आता है वो नवग्रहों में।
2: बिल्कुल बच्चों, तो चलो फिर से जनरल नॉलेज की पहेली नोट कर लो। सूरज सबसे पहले यहाँ दिखे, सुबह की किरण सबसे पहले खिले, समुद्र किनारे का ये देश प्यारा, बताओ उसका नाम विशेष?
1: अच्छा, तो ये भी जनरल नॉलेज का पूछा है परी आपने, तो ये तो हाँ बच्चों, मैं एक हिंट दे सकती हूँ। इस देश के नाम पे गाना भी है, मेरा जूता है डैश डैश डैश। तो चलो जल्दी से हमें सही जवाब 94-14-15-14-15 पर मैसेज या वॉइस नोट भेज दो।
2: बिल्कुल बच्चों, इस डैश को भर दोगे तो आपका जवाब हाजिर है। और तो चलो, अब हमको क्या करना है? याद है ना, भगवान जी को सॉरी और थैंक यू लिखना है।
1: हाँ, और उनकी गोदी में सो जाना है। तो चलो करते हैं गुड नाइट,
2: स्लीप टाइट,
1: गुड बाय।
3: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

आप सुनने जा रहे हो प्रभा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन कार्यक्रम आशियाना आपकी अपनी उषा के साथ। आज के कार्यक्रम आशियाना में कुछ इस प्रकार चलने वाले हैं। दिन की शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे से विचार के साथ, फिर आपको घरेलू नुस्खे भी देंगे, खुशनुमा जीवन में ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो नई नई व्यंजन तो आपको सिखाएंगे ही और आपको देंगे सामान्य जानकारी। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, बने रहोगे आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। चलिए एक शक्तिशाली विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आज का शक्तिशाली विचार इस प्रकार है, खुशी अनमोल औषधि है। खुशी अनमोल औषधि है। चलिए आज के विचार का विस्तार करते हैं। खुशी हर उम्र के हर वर्ग के व्यक्ति को चाहिए। आज मनुष्य खुशी को बाहरी वस्तुओं, व्यक्तियों, वैभवों, क्लबों, होटलों, पर्यटन स्थलों में ढूंढ रहा है। वास्तव में खुशी अंतर मन में छुपी हुई है, वो बाजार में मिलती नहीं। अगर संतुष्ट रहे तो खुशी गले में सजे हुए हार बरोबर है। खुशी के खत्म होने के 100 कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसके लिए सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं। खुशी को कायम रखने के लिए सदा सर्व को खुशी दे, फिर हम भी खुश रह सकते हैं। खुशी देने से खुशी मिलती है, दुख देने से दुख मिलता है। जो देंगे वही मिलेगा, यह एक नियम है। खुशी अनमोल औषधि है, यह हमारे जीवन को अनमोल बनाती है। तो ये हुआ आज का पावरफुल विचार, जिसको जरूर हम धारण करेंगे। और चलिए अब सुन लीजिए एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: सागर, रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको घरेलू नुस्खे देते हैं। अगर पित्ती उछलती हो तो आप क्या करेंगे? चलिए, इस प्रॉब्लम में आप 10 ग्राम पुदीना, 20 ग्राम गुड़, 200 ग्राम पानी में उबाल करके छान करके पिलाइए। इससे बार बार उछलने वाली पित्ती ठीक हो जाएगी। 10 ग्राम पुदीना, 20 ग्राम गुड़, 200 ग्राम पानी में उबाल करके छान कर पिलाइए। इससे बार बार उछलने वाली पित्ती ठीक हो जाएगी। अगला नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे। चने, यानी कि चने का आटा होता है ना बेसन, बेसन से बने मोतियों का लड्डू पर काली मिर्च डालकर खाइए। इससे पित्ती ठीक हो जाएगी। बेसन के बने मोतियों के लड्डू पर काली मिर्च डाल करके खाइए, इससे भी पित्ती ठीक हो जाती है। और भी आप सुनेंगे अगला नुस्खा। पित्ती या छपाकी निकलने पर देसी घी और सेंधे नमक को मिला करके मालिश करिए, फिर कंबल ओढ़कर पसीना लीजिए, पित्ती मिट जाएगी। पित्ती या छपाकी निकलने पर देसी घी और सेंधे नमक को मिला करके मालिश करिए, फिर कंबल ओढ़कर पसीना लीजिए, पित्ती मिट जाएगी। लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे। हींग को घी में मिला करके मालिश करने से भी लाभ होता है। हींग को घी में मिला करके मालिश करिए, इससे भी लाभ होगा। इस तरह पित्ती की प्रॉब्लम में आपको राहत मिलेगी। पित्ती तो आप समझ ही गए होंगे, जिसको हम पस्तोई भी बोलते हैं, शरीर से पस्तोई निकलती है ना, तो इसको पित्ती कहते हैं। तो चलिए, ये सारे ही नुस्खे अच्छे हैं और आप इनको आजमा सकते हैं, अगर पित्ती की प्रॉब्लम हुई, पस्तोई की प्रॉब्लम हुई तो। अब सुना देते हैं आपको एक अच्छा सा गीत, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आप सोच रहे होंगे कि ये उषा दीदी बीच में गीत गाने लगी है, भजन गाने लगी है। तो इन दो लाइनों का अर्थ आप साथ ही साथ समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। जी हाँ, खुशनुमा जीवन में ये दो लाइनें मैंने इसलिए गुनगुनाई है कि कभी कभी लोभी इंसान जो होता है ना, कभी कभी उसके ऊपर भी कहते हैं कि सवा शेर जो मिल जाता है ना, कहते हैं कि सारा लोभ धुला रह जाता है। कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर शेर से सवा शेर मिल जाए तब पता चले कि हम कितने गहरे पानी में। इसी तरह जो लोभ लालच करता है उसको भी अगर मात देने वाला मिल जाए ना, तो उसकी हालत देखने वाली होती है। तो कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि कंजूस न खाता है न खर्च करता है, उसकी तीसरी गति होती है। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, लोभी और लालचियों का भी यही हाल होता है। बहुत लोभ करके पेट को काट काट करके पैसे जोड़ते हैं, एक पैसों का भी दान नहीं करना, और अपने परिवार को भी बहुत ही कंजूसी से चलाना, जबकि अच्छा खासा पैसा है फिर भी हर चीज में कंजूसी करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, इकोनॉमी से चलना चाहिए, बचत करिए, आप बहुत ही सावधानी से चलिए। लेकिन ये तो नहीं हुआ कि भाई हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 के 100 हम बचा सकते हैं या 100 में से 90 बचा सकते हैं। नहीं, देखिए कुछ लिमिट होती है हर चीज की। कहते हैं कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से थोड़े दान पुण्य के भी निकालने हैं, घर परिवार के खर्च के लिए भी निकालना है, तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी निकालना है और बचत के लिए भी निकालना है। 4 हिस्से होने ही चाहिए, तभी हम खुशनुमा जीवन जी पाएंगे। अगर हम 100 में से 90 रुपये बचाने की कोशिश करेंगे और 10 रुपये खर्च करेंगे, तो आप समझ सकते हो कि हमारी किस तरह हालत होती है। और फिर जब कोई ठग हमें ठग लेता है तो हम अपने किस्मत पर फिर रोना शुरू कर देते हैं कि हाय रे, ये मैंने क्या किया। तो इसी बात पर प्यारे श्रोता बंधु, एक मुझे कहानी याद आ रही जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी कि एक बार एक सेठ ने मार्ग में जाते हुए एक खजूर का पेड़ देखा जिसमें मीठी मीठी और मोटी मोटी खजूर लगी हुई थी। खजूर देख करके लाला जी के मुंह में पानी आ गया। वो सेठ कौन थे? लाला जी। लाला जी के मुंह में पानी आ गया और उन्होंने खाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। खाने की इच्छा हुई तो वो पेड़ पर चढ़ गए। खजूर खाने के बाद जो ही उतरने के लिए धरती की तरफ देखा, तो ही सेठ जी का शरीर कांपने लगा। आप सभी जानते होंगे कि खजूर का पेड़ कितना ऊंचा होता है। तो लाला जी ने सोचा कि यदि कहीं उतरते समय इसके नीचे गिर पड़ा तो हड्डियों का भी कहीं पता नहीं लगेगा। ऐसा विचार करते हुए वह थर थर कांप रहा था और खजूर खाने की इच्छा करने वाले अपने मन को बार बार धिक्कार रहा था। इस प्रकार सोच विचार करते हुए बहुत समय तो वहीं पर बीत गया। फिर लाला जी ने सोचा कि इस प्रकार पेड़ पर कब तक बैठा रहूंगा, इसलिए भगवान को याद किया। भगवान के सामने संकल्प रखा कि हे भगवान, अगर मैं इस पेड़ से नीचे आराम से उतर गया तो 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा, भोजन करूंगा। जब वह पेड़ पर से आधा नीचे आया, फिर उसने पेड़ से उतरना शुरू कर दिया। जब पेड़ पर से आधा नीचे आया तो फिर नीचे की तरफ देखा और सोचा, फिर कहा भगवान से कि हे भगवान, अब मैं 100 को नहीं 50 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। प्यारे श्रोता बंधु, वह सेठ जो जो पेड़ के नीचे उतरता रहा, त्यों त्यों जिमाने वाले ब्राह्मणों की संख्या भी कम होती जा रही थी। अंत में जब वह आराम से पेड़ के नीचे उतर आया ना, तो उसने सोचा कि केवल 2 बिंदी ऊपर की हटानी पड़ेगी, इसलिए घर पहुंचते ही 1 ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा। ऐसा करने से न तो प्रतिज्ञा ही भंग होगी और न अधिक खर्चा ही करना पड़ेगा। यह विचार करता हुआ सेठ घर चला गया और दूसरे दिन किसी ऐसे ब्राह्मण को खोजने लगा जो कम से कम भोजन करने वाला हो। अब उसका नियम हो गया था कि कोई ब्राह्मण उसकी दुकान के आगे से निकलता, उसी के आहार के बारे में पूछता। बेचारे सरल स्वभाव
वाले ब्राह्मण जितना भोजन करते उससे कहीं अधिक कर देते थे, इस कारण से वे भोजन नहीं कराता। एक दिन एक धूर्त ने विचार किया कि क्यों न इस लालची लाला को लूट करके अपने घर का काम चलाया जाए। ये विचार करके वह तिलक लगाए और तिलक लगा दिया स्वयं के और पंडितों जैसा स्वरूप बना करके लाला की दुकान के सामने से निकला। त्यों ही सेठ जी ने उसे विद्वान ब्राह्मण समझ करके प्रणाम करते हुए कहा, पंडित जी आपकी खुराक कितनी होगी? उसने कहा, इससे तात्पर्य। सेठ जी ने कहा, पंडित जी आप तो बुरा मान गए, तात्पर्य वात्पर्य कुछ नहीं, यूं ही पूछ लिया था, क्रोध न कीजिए महाराज। लाला जी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, यजमान हम ब्राह्मण लोग शत्रु पर भी क्रोध नहीं करते, फिर आप जैसे सज्जनों पर तो अप्रसन्न ही क्यों होने लगे? भाई आप हमारे भोजन के बारे में पूछना ही चाहते हैं तो लीजिए, मैं आपके सम्मुख अपना आहार बताता हूँ। सुनिए, अधिक से अधिक आधा पाव आटा, आधी छटांग दाल और 6 मासा घी, बस इतना भोजन 24 घंटे के लिए पर्याप्त है। सो भी जितना आपको बताया है सारा नहीं, इसमें से कुछ भाग गऊ के लिए और कुछ काक तथा कुत्ते के लिए निकाल दिया करता हूँ। यदि सारा भोजन कर लूंगा तो फिर वेद जी को बुला करके चूरन लेते हुए 48 घंटे पेट के दर्द में कराते हुए व्यतीत करना पड़ेगा और दक्षिणा तो हम किसी से लेते ही नहीं। इतना सुनते ही लाला जी का मन आनंद के मारे भर गया और उनका मन खिल उठा और मुस्कुराते हुए लाला जी ने कहा, पंडित जी कल आपका निमंत्रण है, सो आप घर आकर के इच्छा के अनुसार रसोई बना करके भोजन कर लेना। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आप समझिए कि लाला जी इस बात से खुश हो गए और धूर्त को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया। अब आगे क्या हुआ होगा लाला जी के साथ, क्या उस धूर्त ने कहे के अनुसार भोजन किया या फिर अभी नहीं बताऊंगी। एक गीत सुनाने के बाद आप सभी को पता चलेगा कि उस धूर्त ने लाला जी के साथ किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह भोजन खाया और किस तरह लाला जी को लूटा। तो चलिए सुन लीजिए एक गीत, गीत के बाद आप धैर्यता रखिएगा, जरूर आपको सारी बात बताएंगे, पूरी ही कहानी सुनाएंगे, लेकिन एक गीत के बाद। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: लोभ लालच से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, जब ये बात जानता है तो छोड़े क्यों न फिर। चिंता चित्ता है जो जिंदा जलाती है, चिंता चित्ता है जो जिंदा जलाती है। खुशी छीन कर शोक के घुट पिलाती है, खुशी छीन कर शोक के घुट पिलाती है। तो प्यारे श्रोता बंधु, किस सुनने से पहले आपको मैं बता रही थी कि किस तरह लोभी इंसान को कभी सवा शेर जो मिल जाता है ना, तो सचमुच उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जैसे मैंने आपको लाला जी के बारे में बताया कि लाला जी किस तरह खजूर के पेड़ पर चढ़े और खजूर खाने के लालच में चढ़ तो गए, लेकिन उतरना उनके लिए भारी हो गया। फिर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे और 100 ब्राह्मण जी माने की मन्नत मांगी, फिर 50, फिर 25। लास्ट में जब वो नीचे उतर गए धरा पर, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को जिमाने की मन्नत पूरी करनी चाहिए कि चलो एक ब्राह्मण को जिमा देते हैं, वो भी इस तरह का कि सबसे कम खाता हो। और एक धूर्त ने सोचा कि चलो बहुत सारे ब्राह्मण को लाला जी ने पूछ लिया है, अभी इनका नहीं हो रहा है सेट, तो चलो अब लाला जी को लूटते हैं। तो इस तरह उस धूर्त ने खाने की मात्रा बहुत कम बताई। तो चलिए और भी मैं आपको आगे बता रही हूँ कि लाला जी के साथ क्या हुआ। लाला जी ने तो निमंत्रण दे दिया, तो फिर सेठ जी क्या करते हैं, लाला जी अपने घर का पता भी दे देते हैं और लाला जी अपने घर पर आते हैं और सेठानी को कहते हैं कि कल एक पंडित जी अपने घर भोजन करने आवेंगे, सो उन्हें जिस वस्तु की इच्छा हो ना दे देना, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें अपने घर आकर किसी बात का कष्ट उठाना पड़े। सेठानी बड़ी धर्मात्मा थी, उसने लाला जी के मुख से धर्म के काम के लिए ऐसी दिल खोलकर बातें आज पहली बार ही सुनी थी, अतः उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने कहा जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन लाला जी तो दुकान पर चले गए। उसके बाद लगभग 9 बजे पंडित जी सेठ जी के घर गए और सेठानी से अपने जिमाने के बारे में पूछताछ की। तब सेठानी ने अपने हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए कहा, पंडित जी महाराज, लाला जी ने मुझसे कह दिया है, अतः आप प्रेम पूर्वक इच्छा अनुसार भोजन करिए, जो आपको चाहिए वे सभी आपकी आज्ञा अनुसार आपके पास पहुंच जाएंगे, इसलिए चौके में चल करके रसोई बनाने का कष्ट कीजिए। सेठानी की ये बात सुनकर प्रसन्नता से फूले हुए पंडित जी ने कहा, बस अभी तो केवल 10 सेर आटा, 2.5 सेर मेवा, 7.5 सेर घी और 10 सेर बूरा ला दीजिए, बुरादा ला दीजिए। जब हलवा लड्डू पूरी तैयार हो जाएगा ना, तो फिर साग मसाला पापड़ और दही मंगवा देना। पंडित जी के कहने की देर थी, सेठानी ने सब सामान मंगवा दिया। प्यारे श्रोता बंधु, इतनी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी कि पहले के जमाने में पंडित लोग अपने हाथ से बना करके खाते थे, किसी के भी घर का खाना नहीं खाते थे, वो सूखा सामान लेते थे और सूखा सामान अपने हाथों से बना करके उन्हीं के घर में खाते थे। तो इस तरह पंडित जी ने इतने सामान की डिमांड की। अब पंडित जी की रसोई भी तैयार हो चुकी थी, क्योंकि सेठानी जी ने सारा ही सामान भिजवा दिया था, तो पंडित जी ने रसोई तैयार कर दी थी। और फिर जब सारी रसोई तैयार हो गई ना, तो फिर पंडित जी ने क्या किया, अपने स्त्री और बाल बच्चों को सभी को बुला लिया और सभी ने मिलकर के प्रेम पूर्वक भोजन किया और जो कुछ सामान बाकी बचा उसे उनके हाथ घर पहुंचा दिया। जब ये धूर्तराज घर जाने लगा ना, भोजन करने के बाद जब ये धूर्तराज घर जाने लगा, तब उसने सेठानी जी को बुला करके कहा, सेठानी जी, भगवान आपको सदैव आनंद दे और आपको दिन दुना रात चौगुना लाभ हो, अब दक्षिणा दिलाने का और कष्ट कीजिए, सेठानी ने पूछा, पंडित जी दक्षिणा में क्या दिला दिया जाए? तो उसने कहा, लाला जी इस समय होते तो एक सोने की मोहर जरूर दे देते, अब आपकी जो इच्छा हो सो दे दीजिए। उसकी ये बात सुन करके सेठानी ने झट से दो मोहर दे करके विदा किया। रात को जब सेठ जी घर आए तो सेठानी ने ब्रह्म भोजन का इतिहास सुनाया तो वह हाय कह करके पलंग पर गिर पड़ा। कौन? सेठ जी। इसके बाद उसने भाग्य को धिक्कारते हुए और सेठानी की मूर्खता पर दुख प्रकट करते हुए कहा, अरे पगली, तूने क्या किया जो ब्राह्मण पर इतना खर्च करके मुझे दिन दहाड़े लुटवा दिया? सेठानी ने कहा, मेरा इसमें क्या अपराध है? आप ही की तो आज्ञा थी कि उन्हें जिस वस्तु की इच्छा हो सो दे देना। सेठानी की ये बात सुन सेठ ने क्रोध करते हुए कहा, अरे तुझमें घर की भी फिक्र नहीं थी? मैंने ये थोड़े ही कहा था उसे 50 आदमियों का भोजन का सामान देकर उसे दो मुहर दक्षिणा में दे देना। हाय, वह तो जिस समय दुकान पर आया था आधा पाव आटा, एक छटांग दाल और 6 मासा घी मेरे भोजन के लिए अधिक से अधिक होगा और दक्षिणा लेने के लिए सर्वता इनकार करता था। इसलिए तो मैंने उसे निमंत्रण दे करके जिमाने के लिए कहा। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, सेठानी को अब पता लगा कि लाला जी कल क्यों दिल खोल करके बातें कर रहे थे, परंतु जो कुछ होने वाला था वह तो हो गया। अब आप समझ सकते हो कि ज्यादा कंजूसी कितनी भारी पड़ती है, ज्यादा लोभ लालच कितना भारी पड़ता है। लाला जी ने भी कहां 100 ब्राह्मणों को खिलाने की बात की, फिर 50 पर आए और फिर एक पर अटक गए, और एक ब्राह्मण भी ऐसा कि जैसे मरियल मिले और खाने में न के बरोबर खाए। तो कहते हैं कि लोभ का थोब निकलता ही है, लोभ को कभी थोब नहीं मिलता। तो लोभी इंसान कभी न कभी जब उसके ऊपर सवा शेर का पाला पड़ता है ना, तो इस तरह की हालत होती है जिस तरह लाला जी के साथ हुई। तो खुशनुमा जीवन में मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि प्यारे श्रोता बंधु, 1 रुपये कमाते हो तो 25 पैसे अपने ऊपर खर्च करिए, 25 पैसे की बचत करिए, 25 के दान दक्षिणा दीजिए और 25 का अपने घर परिवार पर खर्च करिए। बाकी आप सोचोगे कि नहीं, 1 रुपये में से 90 पैसे मुझे जमा करना है, 10 पैसा खर्च करना है, तो फिर किसी न किसी माध्यम से वो धन हमारा जाता ही है। इसलिए पेट को मत काटिए, पेट को भूखा रख करके आप अपने आप पर कंजूसी करके आप पैसा इकट्ठा करेंगे तो किसके लिए, किसके लिए करेंगे? कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सपूत है तो वो खुद बना लेगा प्रॉपर्टी, और अगर पुत्र कपूत है तो आपका जमा किया हुआ भी खो देगा। इसलिए आप अपने वर्तमान को सुधारिए, भविष्य की चिंता मत करिए, थोड़ा सा बचाना जरूरी है वो आप समझदारी से चलिए, लेकिन अपने पेट को आटी दे करके, मतलब कहते हैं कि लिमिट से ज्यादा कंजूसी करके अगर आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो फिर तनाव तो बना रहेगा ना, दुख ही दुख होगा, खुशियों का तो नामो निशानी नहीं रहेगा, क्योंकि परिवार दुखी तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। और जब हम भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखते हुए आराम से जीवन जिए और जो हम कमा रहे हैं अच्छी तरह उसका खर्चा करें, परिवार को खुश रखें, तो सचमुच परिवार खुश तो स्वयं भी खुश, और इस तरह खुशियां बनी रहेगी। तो चलिए अब सुन लीजिए फिर से एक प्यारा सा गीत, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में आप सभी का वेलकम है। आइए आज बनाएंगे आशियाना के किचन में तल साकड़ी। तो चलिए, तल साकड़ी के लिए सामग्री इस प्रकार है, वैसे तो बहुत कम है फिर भी लिख लेना अच्छी बात है। तो 500 ग्राम तिल ले लीजिएगा, ठीक है, 500 ग्राम लेना है तिल। फिर आप 350 ग्राम ले लीजिए गुड़, ठीक है, और घी ले लीजिए 1 चम्मच। बस इतनी सी सामग्री है जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। 500 ग्राम तिल लेना है और 350 ग्राम ले लीजिएगा गुड़ और घी ले लीजिए 1 चम्मच। बस तो अब चलिए कैसे बनाते हैं वो भी आपको सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, तिल को सेक लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा लाल हो जाए ना तब तक आप तिल को सेकिए, हिलाते रहिएगा। एक अगर हिलाएंगे नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं तिल की क्या कंडीशन होगी, इसलिए हिलाते हुए सेकिए। हल्के लाल कलर के हो जाए बस फिर आप तिल को एक बर्तन में निकाल दीजिए। फिर डालिएगा गुड़, गुड़ का पाया बनाइए, ठीक है, गुड़ भी हल्का लाल कलर का हो जाए, आपको लगे कि गुड़ अच्छी तरह पिघल गया है और हल्का सा लाल हो गया है, तो फिर उसमें आप डाल दीजिए तिल। तिल डाल करके गैस बंद कर दीजिए और अच्छी तरह दोनों को मिक्स कर दीजिए, तिल और गुड़ को। फिर जो घी लिया है वो घी आप लगाइए एक थाली में। थाली में घी लगा करके जो हमने तिल और गुड़ का पाया तैयार किया है इसको आप इस मिश्रण को डाल दीजिए एक थाली में, जिसमें अपने हमने घी लगाया है उस थाली में आप डाल दीजिए और कटोरी की मदद से अच्छी तरह चारों तरफ फैला दीजिए, ठीक है। तो इस तरह फैला दिया है, फिर थोड़े से ठंडे हो जाए तो उसको आप चाकू की मदद से काट लीजिए, चिक्की की तरह काटना है। तो इस तरह तिल साकड़ी हमारी तैयार है। आप चाहे तो बेलन से बेल भी सकते हैं, पर बेलन से बेलने के लिए हमको दोनों को थोड़ा और डार्क करना पड़ेगा, तिल को थोड़ा सा ज्यादा डार्क करना पड़ेगा और गुड़ को भी ज्यादा डार्क करना पड़ेगा, तभी आप बेलोगे ना तो वो कड़क हो पाएंगे। और अगर थोड़ा सा लाइट सेकोगे तो इस तरह आप थाली के अंदर जमा दीजिए, फिर चाकू से काट दीजिए और ठंडा होने के बाद आप सारे पीस को निकाल करके एक डिब्बे में भर दीजिए। तो इस तरह तिल साकड़ी बनाई जाती है। चलिए तिल

आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में गीत सुनाने से पहले आपको सिखा रहे थे तिल साकड़ी। आइए अब बनाते हैं तिल के पापड़। ठीक है, तिल के पापड़ भी बहुत ही इजी है। आप तिल के पापड़ में बस शक्कर चाहिए, तिल चाहिए और बस कुछ भी नहीं चाहिए। शक्कर और तिल, ये दो चीजें चाहिए। अब इसमें आप क्या करेंगे कि कितना लेना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि शक्कर आप जैसे कि 2 छोटे चम्मच शक्कर लेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर 2 छोटे चम्मच ही तिल लेना है, तो बराबर मात्रा चाहिए। 500 ग्राम तिल तो 500 ग्राम ही शक्कर ले लीजिए, ठीक है। तो सामग्री खाली 2 है, तो साथ ही साथ में आपको पापड़ कैसे बेलना है वो भी बता रही हूँ। आप क्या करेंगे, गैस चालू करके कढ़ाई को रखिए और 2 छोटे चम्मच शक्कर डाल करके चम्मच से हिलाइए। शक्कर अच्छी पिघल जाए, अच्छी तरह पिघल जाए, हल्की सी लाल कलर की हो जाए, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर आपके पापड़ डार्क बन जाएंगे। इसलिए हल्के से लाल कलर की हो जाए फिर आप तिल डाल दीजिए। इसमें कच्चे तिल डालना है, सेकना नहीं है, ठीक है। तो कच्चे तिल डाल दीजिए और अच्छी तरह उसको हिला दीजिए। जब शक्कर और तिल एकदम मिक्स हो जाए तो बस आप गरम गरम को आपके प्लेटफॉर्म पर ही डालिए, ठीक है। प्लेटफॉर्म को एकदम स्वच्छ और साफ आप पोंछ लीजिए और पोंछ करके वहाँ पे घी लगा दीजिए। घी लगा करके आप इस तरह जो हमने पाया तैयार किया है ना तिल और शक्कर का, वो आप नीचे डाल दीजिए और उसको दोनों हाथों से गोल गोल घुमाइए। लुआ तैयार होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा गर्म है तो हाथ जलेगा, तो रह के घुमाइए, एक साथ में नहीं घुमाना है। फिर आप जब वो गोल गोल लुए की तरह तैयार हो जाए बस फिर आप बेलन से बेलिए। पहले थोड़ा धीरे धीरे बेलिए क्योंकि गर्म ज्यादा है ना, तो एकदम जोर लगाओगे तो बेलन के भी चिपकेगा और पापड़ टूट जाएगा। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आप पहले तो बेलन चलाइए, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि अब हमारा ये जो लूहा है थोड़ा सा बढ़ गया है और ठंडा हो गया है थोड़ा सा, तो फिर आप जोर लगा करके फटाफट फटाफट बेलते जाइए। आप चारों तरफ घूम जाइए अगर लूहा नहीं घूमता है तो, और बस जब उसकी कैपेसिटी होगी तब तक वो बढ़ेगा। फिर एकदम ठंडा हो जाएगा तो फिर आप उसको नहीं बेल पाओगे, फिर तो वो टूट जाएगा। इसलिए गरम गरम को इस तरह बेल लीजिए, फिर आप पापड़ को रख दीजिए थाली में, फिर दूसरा पापड़ भी इसी तरह तैयार कर लीजिए। इसमें आप इकट्ठे पापड़ तैयार नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कि साथ में ही आपने पाया कर दिया और साथ में बनाने जाओगे तो एक पापड़ 2 पापड़ तो बना दोगे, बाद में वो ठंडे हो जाएंगे तो फिर आप बना नहीं पाओगे। इसलिए एक एक पापड़ का ही आप इस तरह पाया तैयार करिए और एक एक पापड़ को बनाइए। बहुत ही पतले और सॉफ्ट बनते हैं ये पापड़ और आप आराम से, मतलब बाजार से भी नहीं खरीदना पड़ेगा, नहीं तो बाजार से खरीदते हैं तो चिपचिपे भी होते हैं और ज़्यादा मीठे होते हैं, तो किसी को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं होता है, और घर पे तो हम अपने इच्छा के अनुसार बना सकते हैं। तो चलिए, तिल साकड़ी भी तैयार है और पापड़ भी हमारे तैयार है। तो लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप पापड़ रखिए, तिल साकड़ी रखिए और तुलसी पत्र भी रखिए, जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए और आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। देखिए, अगर इस तरह की चीजें आप बना करके रखते हैं तो 15-20 दिन महीने भर कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जब चाहे तब आप नाश्ता कर सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी भर सकते हैं, कभी भी जब इच्छा हो जाए तब भी हम बना करके खा सकते हैं। तो चलिए, अब भले आप भोग लग गया है तो आराम से अब आनंद लीजिए तिल साकड़ी और तिल के पापड़ का, और साथ ही साथ सुनिएगा एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। बीमारियों में कारगर मिट्टी चिकित्सा, कई बीमारियों में कारगर मिट्टी चिकित्सा। मिट्टी के द्वारा हम किस तरह चिकित्सा कर सकते हैं, कितनी ही बीमारियों में कारगर सिद्ध हो चुकी है मिट्टी, तो आइए इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। मिट्टी में सर्वाधिक अवशोषण क्षमता होने के कारण मिट्टी प्रबल कीटाणुनाशक है। मिट्टी में विशेष प्रकार का सूक्ष्म जीवाणु एक्टिनोमाइसिटेस पाया जाता है, जिसका आचरण प्रतिरक्षी जीवों की तरह होता है और इस बैक्टीरिया की गति सर्वाधिक होती है। मिट्टी में इस जीवाणु की अधिकता इसकी गुणवत्ता को बढ़ाती है। जब मिट्टी में पानी डाला जाता है ना, तो इस जीवाणु की गति 20 गुना बढ़ जाती है। मिट्टी चिकित्सा पद्धति में साफ व 12 घंटे भीगी हुई मिट्टी का प्रयोग भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है, जैसे कि सूजन। शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की सूजन आ गई है तो उस जगह मोटी मिट्टी की पट्टी 25 मिनट लगा करके सूजन को तेजी से कम किया जा सकता है। यदि सूजन शरीर के अंदरूनी हिस्सों जैसे अल्सर, लीवर, लीवर ऑफ सिरोसिस, प्लीहा वृद्धि, यकृत वृद्धि है, तो सुबह व शाम 2 बार मिट्टी पट्टी का प्रयोग बेहद लाभकारी है। गांठ या फिर रसोली, इसमें शरीर के किसी भी हिस्से में अगर अंदर की गांठ हो, खास करके स्तन, बच्चेदानी, मलद्वार, पेट वगैरह वगैरह में, तो पहले आप गर्म सेक देकर के 1 इंच मोटी चिकनी मिट्टी की पट्टी 30 से 45 मिनट तक सुबह शाम रखिए। गांठ स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगेगी। कैंसर गांठ में भी यह प्रभावी है। कब्ज, पेट रोग, कब्ज, एसिडिटी, अपच, कोलाइटिस, गैस्ट्रिक रोग हो, उस स्थिति में पहले पेट का गर्म सेक देकर के तुरंत 1 इंच मोटी मिट्टी की पट्टी रखने से अंदर जमा मल उखड़ने लगता है और आंतों को बहुत आराम मिलता है। आंखों के रोग, ब्लाइंडनेस, आंखों का विजन कमजोर, रेटिना कमजोर, धुंधलापन वगैरह वगैरह, इन सभी रोगों में आंख पर सीधी मिट्टी रखने से आंखों को आराम मिलता है। माइग्रेन या सिर दर्द होने पर भी आंखों को आराम मिलता है। मिट्टी चिकित्सा का प्रयोग करते समय ध्यान रखना है कि मिट्टी साफ गहरे गड्ढे से ली गई हो। मिट्टी को प्रयोग में लाने से पहले 10-12 दिन धूप में अच्छी तरह सुखा लीजिए। विशेषज्ञ की निगरानी में ही इसका उपयोग करना है, तो इस तरह मिट्टी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है अगर हम सावधानी से यूज करते हैं तो। चलिए, ये तो हुई मिट्टी के लिए जानकारी, और मिट्टी तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि किस तरह की मिट्टी लेनी है। तो अब आपको सुनाते हैं एक गीत, क्योंकि समय हो चुका है गीत सुनाने का। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: मैं हूँ चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहे सुनाते रहे जन जन तक प्यार बरसाते रहे।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, चलिए जानने योग्य बात आपको बता रहे हैं। पसीना बताएगा सेहत का हाल। हेल्थ एक्सपर्ट ने एक डिवाइस बनाया है जिसे कलाई में पहना जा सकता है। इस डिवाइस में ऐसे सेंसर है जो हमारे शरीर के पसीने का विश्लेषण करके किसी बीमारी के बारे में बता सकते हैं। दिल की धड़कन व अन्य जानकारियां देने वाले तो कई रिस्ट बैंड थे, लेकिन पसीने के विश्लेषण से बीमारी का पता लगाने वाला यह पहला रिस्ट बैंड होगा। इससे बीमारियों का पता आरंभिक अवस्था में लगा सकेंगे। अब मैं आपको आज के अनमोल वचन सुनाना चाहूंगी। आज के अनमोल वचन इस प्रकार है, आपकी एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। अब प्यारे श्रोता बंधुओं, मैं अपना स्वरचित भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, क्षमा गणी सा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन। आनी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा, हो आनी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा, कर जा रे कर जा, नी तर मर जा रे मर जा, आनी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी कैयन आयो हाथे, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी कैयन आयो हाथे, अरे अंत समय आयो जब थाने यमदूत मारे लाते, आनी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा, कर जा रे कर जा, नी तर मर जा रे मर जा, आनी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। थारी मारी कर कर के या जिंदगी सारी खोई, थारी मारी कर कर के या जिंदगी सारी खोई, अरे इस जीवन में सब ही पराया अपना है ना कोई, अणी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा, कर जा रे कर जा, नी तर मर जा रे मर जा, अणी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। चार दिनों की जिंदगानी में कर ले आछो काम, चार दिनों की जिंदगानी में कर ले आछो काम, हाथों से कर ले काम, मुख से भज ले प्रभु का नाम, अणी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा, कर जा रे कर जा, नी तर मर जा रे मर जा, अणी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा, हो अणी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे।

0: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी से प्यार वैसे तो सभी को होता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जब हम वो प्यार करना भूल जाते हैं और हमें एहसास कराना पड़ता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और समझ लीजिए, लव यू जिंदगी ऐसा कार्यक्रम ही नहीं, ऐसा मौका भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, अपने इमोशंस को पढ़ेंगे, खुद को बेहतर जानेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं कल्पना जी का, जो कि ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, आप स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, और आप अनेक एपिसोड्स के माध्यम से हमें गाइड करते रहते हैं। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आरुषि जी, बहुत अच्छा लग रहा है फिर से एक बार श्रोताओं से रूबरू होते हुए। हम जो कुछ भी लाइफ में सीखते हैं, जब उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो जो खुशी मिलती है, संतोष मिलता है, वही वो चीजें हैं जो हमें अपने रेडियो के श्रोताओं से जोड़े रहती हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट त्रिनिधि जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी हैं। त्रिनिधि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार आरुषि जी, कल्पना जी नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है लव यू जिंदगी के और एपिसोड में वापस जुड़ के। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितना हमारे श्रोता मित्रों को हर एपिसोड में कुछ नया सुनने और समझने को मिलता है, इस एपिसोड में मुझे भी कुछ नया सुनने और समझने को मिलेगा, और इसलिए खुशी होती है हर बार इस कार्यक्रम
1: जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में बातचीत की थी इमोशनल अवेयरनेस के बारे में और रेटिंग सिस्टम के बारे में, आपने बताया था कल्पना जी, किस प्रकार से हम अपने इमोशंस को रेट करते हैं, कि हम 2 पे हैं, कि 5 पे हैं, कि 8 पे हैं। हम जो बातचीत कर रहे थे उसके आखिर तक हम एक क्वेश्चन पे आके रुके थे कि अगर मान लीजिए जेलसी है, या मुझे कोई ऐसी चीज है जो पसंद नहीं आ रही है, या मुझे ऐसा लग रहा है ये क्यों मुझसे आगे बढ़ गया, या मैं कहाँ रह गई, वो कंपैरिजन आ जा रहा है, उसको रेट करने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब मुझे पता है मैं जेलस हूँ, या फिर कभी कभी मैं अवेयर नहीं हूँ कि मैं जेलस, सामने वाला ही गलत लग रहा है, तो इसको रेटिंग करने से क्या मदद मिलती है, या डील कैसे किया जाता है, कुछ इस बारे में अगर आप कंटिन्यू करें।
2: जी बिल्कुल। जब आपके अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशंस होती है, चाहे वो खुद के लिए हो चाहे किसी और के लिए, जब उसकी इंटेंसिटी को हम पहचानते हैं, जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार आया है, तो डॉक्टर पहले आपका बुखार नापते हैं कि कितना है भाई, 98 है, 100 है, 101 है, 102 है। जिस हिसाब से आपका बुखार है उसकी इंटेंसिटी उस तरह से पहचानी जाती है। उसी तरह से कोई भी नेगेटिव इमोशन जो मेरे प्रति क्रिएट होता है, जो दूसरे के प्रति क्रिएट होता है, जब उसकी इंटेंसिटी का पता चलता है, तब हम उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे उसे कम करना है, किस लेवल से कहां तक ले आना है, ये समझ हमें डेवलप होती है। तो इसलिए इंटेंसिटी का जानना जरूरी है। दूसरी बात, नेगेटिव इमोशन चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो दूसरे के लिए हो, नुकसान ही करता है, उसका हमें फायदा होता ही नहीं। तो ऐसे इमोशंस क्रिएट करने के बजाय अगर हम उन्हें रिप्लेस करें, नेगेटिव इमोशंस को रिप्लेस करें, जैसे हम हमेशा कहते आए हैं कि एंगर, हमें गुस्सा आता है, हम एक्सप्रेस करते हैं बोल के, चिल्ला के, डांट के, किसी भी तरह से, उसकी भी एक इंटेंसिटी होती है। बट अगर एंगर को हमें रिप्लेस करना है तो किससे कर सकते हैं कि हमारा पर्पस भी फुलफिल हो, जिस बात के लिए हम गुस्सा कर रहे हैं वो बात दूसरों की समझ में भी आ जाए, लेकिन हमें गुस्सा भी नहीं करना पड़े। तो हमने कई बार इस इमोशनल एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा की है, जिसे हम असर्टिवनेस कहते हैं, कि अपनी बात खुलकर स्पष्ट रीति से कहे भी, लेकिन बिना विचलित हुए, बिना गुस्सा किए, बिना अग्रेशन के, शांत भाव से वो बात जैसी है वैसी कहेगी। सो उसको असर्टिवनेस कहते हैं। तो यह बात आती है, इंटेंसिटी इसलिए जानना है क्योंकि हमें उसे रिप्लेस करना।
1: ओके, दैट्स वंडरफुल। और ये जो आपने एग्जांपल दिया बुखार का, सच में हम वहां तो नापते हैं, लेकिन मन में वो नापतोल करना है, ये तो आइडिया ही नहीं आता। कि हमको ये आंकना भी है कि क्या लेवल है उस गुस्से का या जेलसी का, और उससे डील करने में फर्क पड़ता है आपने जैसा बताया। श्रीनिधि जी, या मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया है या कुछ ऐसा इमोशंस को ऑब्जर्व करके कोई रिप्लेसमेंट किया है?
3: सबसे पहले तो कल्पना जी ने जो बात कही, मैं समझता हूँ ये हम में से लगभग ज्यादातर लोग कर पाने में सक्षम होते हैं। सिर्फ हमें वो पैमाना नहीं मिलता, अगर वो मापदंड मिल जाता है, स्केल मिल जाता है, तो हम अपने आप को स्केल पे नापने में सक्षम हैं।
1: ओके।
3: और सिर्फ छोटे बच्चे ही होते हैं शायद कोई ये चीज समझ में ना आए, मगर ज्यादातर एडल्ट्स जो होते हैं या टीनेजर्स भी अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से ऑन स्केल प्रेजेंट कर सकते हैं। आम बातचीत में जो इतनी ज्यादा समझ नहीं भी रखता हो, वो भी व्यक्ति अक्सर अपने इमोशनल स्टेट के बारे में बता देता है, खासकर ऐसे समय पर जब हम नेगेटिव इमोशंस से जूझ रहे हैं या उन इमोशंस के कब्जे में हैं। तो अक्सर सिंपल सा क्वेश्चन ये बात कही जाती है तो लोग आके बोलते आज मेरा मूड खराब है, मेरे कुछ मत बोलो आज, ये लोग कुछ कहते हुए नजर आते हैं। कभी कभार लोग बोलते हैं आज मेरा मूड बहुत ही खराब है, मेरे से बिल्कुल बात मत करो, ये भी चीज सुनता है लोग बोलते हैं। जैसे चिड़चिड़ापन है, चिड़चिड़ापन में इरिटेशन देखने को मिलता है, और उससे थोड़े और लेवल पे लोग थोड़ा गुस्सा करते हैं, आंखों से दिखाते हैं या चेहरे पे वो गुस्सा नजर आता है। फिर उससे थोड़ा और गुस्सा होता है तो व्यक्ति गुस्सा मुंह से बोलना शुरू करते हैं, नाक नाक बोलना लगना या फिर ऊंची आवाज में बोलना, ये सारी चीजें देखते हैं। इसी के एक और लेवल पे अगर हम देखते हैं तो व्यक्ति हाथ पैर चलाने लग जाए, उससे एक और लेवल। तो मैं समझता हूँ ये रेटिंग्स हम सभी स्वाभाविक रीति से लोगों में देखते हैं, इनका पारा कितना चढ़ा हुआ है, टेम्परेचर नापा जा सकता है। लोग कहते भी हैं उदासी के लिए भी आज थोड़ा मन ठीक नहीं है, ये बहुत ही बेसिक लेवल। तो उसके बाद में नहीं थोड़ा मैं उदास फील कर रहा हूँ, तो कभी कभार तो लोग बिल्कुल ही चेहरे पे वो शक्ल पे नजर आने लगती है कि सामने वाला पूछ लेता है कि आज ठीक नहीं लग रहे हो, उदास उदास से लग रहे हो, मायूस लग रहे हो, क्या बात है। कभी कभार लोग सामने से बोल देते हैं कि आज मैं बहुत उदास हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा किसी चीज में। तो ये भी लोग कहते हैं और ये कहने का जरिया हमने खुद तय किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो स्केल नहीं है। नेचुरली कल्पना जी बेहतर बता सकती कि वो अपने प्रैक्टिस में क्या चीजों को देखते हैं, लोग जब अपने स्केल में कहाँ अपने आप को स्केल पे फिट करते हैं। बट स्वाभाविक रीति से भी हम एक स्केल को जानते हैं और अपने शब्दों में हम अलग अलग तरीके से उन्हीं फीलिंग्स को कम, थोड़ा बीच में, थोड़ा ज्यादा और एकदम एक्सट्रीम पे हम ये रीड करना चाहते हैं। हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं तभी भी, और हम सामने वाले के भी भाव से, हाव से, उनके हाव भाव से इन चीजों को माप लेते हैं या भाप लेते हैं, ऐसा कहना स्वाभाविक है। और जब रिप्लेसमेंट करने की बात कल्पना जी कह रहे थे, तो ये रिप्लेसमेंट कभी व्यक्ति खुद करता है, कभी कभार दूसरों से मदद लेता है। और मैं समझता हूँ कई मामलों में मैंने अपने दोस्तों से मदद ली है, जब मेरा मूड खराब है या फिर मैं उदास महसूस कर रहा हूँ या आज मन नहीं लग रहा है, तो मैंने अक्सर ये चीजें कही है मेरे आसपास के लोगों से, मेरा मन नहीं लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है या थोड़ा बेचैनी सी हो रही है। अब ये चीजें जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो सामने वाले आपके मूड को बेहतर करने के लिए प्रयास करते हैं, वो कुछ आपको पॉजिटिव सुनाए, बेचैनी हो रही है तो वो आपको कुछ रीअश्योरेंस देंगे, अगर आप चिंतित हैं तो फिर हम आपको चिंता का कारण पूछेंगे और उसे निवारण करने का प्रयास करेंगे। और कभी कभार हम स्वयं भी अपने आप को ये चीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भाई रेलवे स्टेशन पहुंचना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, हो सकता है आप ट्रेन मिस कर जाएं, तो आपके मन में बेचैनी है और उस समय पर आप एंग्शियस हो जाते हैं। मगर ऐसे समय पर जब आप देख रहे हैं कि मैं अंदर से बेचैन हो रहा हूँ, तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ, और मैंने अनेकों बार ये चीज की है, मैंने अपने आप को याद दिलाया, देखो ट्रेन तो मैं पकड़ ही लूंगा, चाहे दौड़ के पकड़ना पड़े पकड़ लें। और मन फिर से कुछ चीज कहता है नहीं पकड़ा तो, तो मैं अपने मन को समझाता हूँ कोई बात नहीं, अगर नहीं पकड़ना होगा तो पकड़ेंगे,
1: जैसे क्वेश्चन आंसर, एक डिस्कशन चल रहा है मन के साथ,
3: मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उस क्वेश्चन के लिए, कुछ और आंसर दे रहा हूँ, फिर एक प्रश्न आ रहा है उसकी
1: श्योर कर रहे हैं उससे,
3: उस एंग्जायटी को रीअश्योरेंस के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं श्योर कर रहा हूँ हाँ मैं पकड़ ही लूंगा, कोई बात, हो सकता है आज ट्रेन लेट हुई हो सकता है मैं टाइम पे ही पहुंचाऊ, अनेक ऐसी चीजें हैं जो आप पॉजिटिव रीअफर्मेशन के रूप में अपने आप को ये रीअश्योरेंस दे सकते हैं, तो एंग्जायटी के लिए रिप्लेसमेंट मैं दे रहा हूँ,
1: ऐसे और भी चीजें,
3: तो ऐसे अनेक चीजें हैं जिसके लिए आप चीजें कर सकते हैं। अक्सर एक और चीज जो मैंने अक्सर ये चीज अपने आप के लिए कहा है, कभी आपको प्यार की महसूसता कम होती है, आपको लगता है कि कोई प्यार कम करता है आपसे, या आज आपको ऐसा महसूस कर रहा है कि कोई मेरे प्यार से बात करे, आज सुबह से मतलब लोगों ने मेरे को परेशान किया हुआ है, प्यार से बात ही नहीं करते हैं लोग, तब उस समय पर मैंने अपने आप को याद दिलाया मैं दूसरों से प्यार की अपेक्षा क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैंने अपने आप को कहा है, मैंने अपने आप को ये भी समझाया है कि मैं प्यार लेने वालों में से नहीं हूँ, प्यार देने वालों में मैं दाता हूँ, मेरे पास प्यार का भंडार है, मैं प्रेम से भरपूर हूँ, ये मैंने अपने आप को याद दिलाया है। बहुत बार मैंने अपने आप को याद दिलाया है कि मैं प्यार के सागर की संतान हूँ, परमात्मा भगवान प्यार का सागर है जिसके लिए हम गाना गाते हैं कि प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर मेरे पास है, मैं दूसरों से क्यों अपनी प्यास बुझाऊं। तो अनेक ऐसी चीजें अपने आप को कहने से भी वो चीज आपका जो हाव भाव है, जो आपका फीवर चढ़ा हुआ है, नीचे उतर जाता है, बैलेंस आउट हो जाता है।
1: That's wonderful. कितना फर्क पड़ता है खुद से बात करने से, और जिसको सेल्फ लव पे भी हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, बातचीत की है। कल्पना जी, मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे लास्ट एपिसोड में भी आपने कहा था कि हम इमोशन को आइडेंटिफाई कभी कभी गलत करते हैं, मतलब वो प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन है या कोई और चीज है, तो वो राइट आइडेंटिफाई कैसे करें? बहुत बार प्यार को लेके ही कंफ्यूजन होता है, नहीं है, जब लोग अपने पार्टनर चूज करते हैं तब भी बहुत कंफ्यूजन होता है, कॉलेज में भी कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है, तो वो राइट इमोशन को आइडेंटिफाई कैसे करें, खास तौर से अगर प्यार की बात हो।
2: बिल्कुल, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 10-12 साल की उम्र से लेकर 20-25 साल की उम्र तक प्यार वाला

0: ये इमोशन हमारी लाइफ में एंटर होने लगते हैं, वो फीलिंग हमें अपोजिट सेक्स के लिए आने लगती है। सो ये चीज को अच्छी तरह से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं और ज्यादातर आजकल बच्चे फिल्मों में देखकर प्यार को समझने लगते हैं। प्यार फिल्मों में देखकर या किताबों में पढ़कर समझने की बात हालांकि है नहीं, ये बचपन से माँ बाप से हमें प्यार मिलता है, हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, भाई बहनों के बीच में प्यार होता है, हर रिश्ते में प्यार की बुनियाद तो होती ही है। परंतु एक दूसरे, अगर गर्ल है तो बॉय के प्रति, बॉय है तो गर्ल के प्रति आकर्षित होने के कई कारण होते हैं। जैसे कि कोई पढ़ाई में अच्छा है तो मुझे अच्छा लगने लगता है, जिसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटीज है, जैसे कोई गाने वाला है, कोई म्यूजिशियन है, उसको अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने आते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करता है तो मुझे अच्छा लगने लगता है और मैं समझती हूँ वो प्यार है। मतलब जनरली जब बड़े होते हुए बच्चे समझते हैं कि वो प्यार, तो वो अच्छा लगना कोई और प्यार होना, इसमें अंतर है। हमें फिल्मों के एक्टर्स भी अच्छे लगते हैं जो रोल प्ले करते हैं, हम कहते हैं हम उनके फैंस हैं, है?
1: बिल्कुल
0: क्रिकेटर्स भी हमें जो अच्छे लगते हैं हम कहते हैं हम उनके पीछे पागल है। हाँ, अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो ये जब इतने सारे खिलाड़ी हैं उनके प्रति भी हमें बहुत ज्यादा आकर्षण होती है, तो हम कहते हैं हम उनके फैन हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हमें उनसे प्यार है, पर कई बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है इस भावना को, कहा जाता है हम प्यार करते हैं। तो बड़े होते बच्चों में आकर्षण, अट्रैक्शन और प्यार, ये चीज ना समझ में आने के कारण वो जैसे लोग आजकल फेसबुक पर मिलते हैं या किसी सोशल मीडिया पर मिलते हैं, हेलो हाय हो जाती है, कभी कभी फेक प्रोफाइल से भी बात करते हैं और बातें करते करके उनकी बातें अच्छी लगने लगती हैं। वो जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को वो वैलिडेट कर रहे हैं, उससे वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमें उनसे प्यार हो गया ऐसा हम समझते। कई बार उस व्यक्ति को देखा भी नहीं हुआ। तो मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगी कि कैसे बढ़ती उम्र के बच्चों को प्यार, आकर्षण और भुलावे में अंतर समझ में नहीं आता है। तो एक 15-16 साल की कन्या थी, कुमारी थी, और गुजरात के एक गांव में रहती थी। उसे अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कनेक्ट होते होते एक व्यक्ति से पहचान हुई, जिसका XYZ नाम था, जिसने बताया कि मेरी ये उम्र है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ऐसे मत, बातचीत में उनका सिलसिला आगे बढ़ता है। तो जब भी कभी वो उससे बात करती, वो बिल्कुल फ्री होके उसकी बातें सुनता, उसकी इमोशंस को समझता। कभी भी उसका कोई मूड खराब है या लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी से, शेयर करो तो वो ध्यान से सुनता और उसको और भी ज्यादा अच्छी तरह गाइड कर। तो उसने उसको धीरे धीरे अपना सपोर्ट सिस्टम समझना शुरू किया और घर वाले, परिवार, भाई बहन, माता पिता से ज्यादा वो व्यक्ति उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, जो ऑनलाइन दूर कहाँ बैठा है पता नहीं, ऑनलाइन वो सिंपथी या एम्पथी उसको दिखा रहा है। वो उससे कहा उसने कि मुझे प्यार हो गया। अब माँ बाप को चिंता हो गई कि ये किससे प्यार कर रही है। सो चलो ठीक है, माँ बाप ने कहा मिलाओ उससे, कहाँ है मिलते। तो उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं आती हूँ तुम्हें मिलने के लिए। तो उस धीरे धीरे बात करना कम कर दिया और फिर उसको एक दिन बुलाया भी। और यही नहीं, वो सामने वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को इतना मजबूर कर दिया कि रिचार्ज करना उसका, उसके खर्चे उठाना, इसके लिए भी ये लड़की तैयार होने लगी और वो करने लगी। एक जगह उसने बुलाया मिलने के लिए, वो गई वहां मिलने के लिए, लेकिन वो वहां नहीं आया, बहाना बना दिया और ऐसे ही उसको मैनिपुलेट करता गया। आखिर में वो लड़की की मानसिक अवस्था इतनी खराब हो गई, इतना डिप्रेशन में चली गई, उसने पढ़ाई छोड़ दी और आखिर उसको रिहैब में डालना पड़ा। सो हम अपने इमोशंस के साथ बहते हुए कहाँ तक पहुंच रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को कोई किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये समझ में नहीं आता है। इसीलिए लव, प्यार, हमारे प्रोग्राम का भी नाम है लव यू जिंदगी। जिंदगी से भी प्यार होता है, उस प्यार की भावना को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: फीलिंग को आपने जैसे कहा आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बहुत जो रिपरकशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। श्रीनिधि जी, यहाँ मैं आपकी भी ओपिनियन जानना चाहूँगी। एट सच यंग एज, मतलब इतनी कम उम्र में जब हम सब कुछ सीख ही रहे होते हैं, जिंदगी को जान ही रहे होते हैं, दुनिया हमने पूरी देखी भी नहीं है, उस समय कैसे आइडेंटिफाई करें और क्या फ्रेंड्स की हेल्प लें या फिर खुद से ही जो समझ में आ रहा है समझ लें, रीच आउट करें, क्या लगता है आपको?
2: इसमें दो चीजें हैं आरुषि जी। सबसे पहले तो ये है कि जब हम ऐसे किसी सिचुएशन में होते हैं जब हम अपने इमोशंस को नहीं रीड कर पाते या समझ नहीं पाते, या हम समझते तो हैं मगर उन सिचुएशंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये होता है, स्वाभाविक है कि हम अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप छोटे बच्चे हैं तभी आप स्ट्रगल करेंगे, आप युवा होते हुए स्ट्रगल कर सकते हैं, टीनेजर होते हुए स्ट्रगल कर सकते हैं, आप उम्र के बेहतर पड़ाव पे पहुंचकर नौकरी वीकरी करने के बाद भी आप स्ट्रगल कर सकते हैं, यहाँ तक भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अधेड़ उम्र में मिड लाइफ क्राइसिस के रूप में आप इन इमोशंस से स्ट्रगल कर सकते हैं, और कभी कभार बुढ़ापे में भी, इनफैक्ट जब आप लाइफ के किसी ट्रांजिशन से गुजर रहे होते हैं तब भी आप इन चीजों से स्ट्रगल कर सकते हैं। तो पहले तो ये मान लेना चाहिए कि हाँ, इमोशंस को कई बार प्रोसेस करना आसान नहीं होता या हम सक्षम नहीं होते उस घड़ी। इसमें आपकी गलती नहीं है, इस समय पर किसी दूसरे इंसान की गलती नहीं है, बस वो है, ये सच्चाई है, ऐसा होता है। बिल्कुल वैसा ही है कि किसी को किसी चीज का इन्फेक्शन हो जाना शरीर में, वो स्वाभाविक है, मतलब वो हो सकता है। आप लाख अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें मगर फिर भी अगर कोई वायरस कहीं से अटैक करता है या कोई महामारी जैसी चीज है या कोई ऐसी चीज है वो आपको अटैक कर सकती है, और ये चीजें हमारे इमोशंस के साथ भी होता है। जैसे हम फिजिकल हेल्थ में इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाते हैं कभी कभार, ऐसे ही हमारे मेंटल हेल्थ में भी ये चीजें हो सकती हैं, भावनात्मक रीति से इसी चीज को सहन कर सकते हैं। तो ये मान लेने से क्या होता है कि हम ये भी समझने लग जाएंगे कि अगला हिस्सा इसका ये है कि जब आप सक्षम नहीं है उस चीज को प्रोसेस करने में तब मदद लेंगे। और सबसे पहले मदद की जब बात की जाती है, हम अपने स्वजनों से मदद लेते हैं, और हमारे युवा साथियों के लिए मैं समझता हूँ ये युवाओं की उम्र के साथ की बात है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे हमउम्र लोग हमें बेहतर समझ सकते हैं, और इसी वजह से हम अपने दोस्तों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और टीनेज में आप देखेंगे कि जैसे आप टीनेजर्स में थोड़े आगे बढ़ते हैं, जब आप 16 17 18 साल के होने लगते हैं, आप ज्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिताना पसंद करते हैं। लोगों का कॉलेज स्कूल जल्दी खत्म हो भी जाता है तो जल्दी घर नहीं आते, वो ज्यादा टाइम दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो मेरे जैसे ही हैं, उनके भी इमोशंस मेरे जैसे हैं, इसलिए वो मुझे बेहतर समझ पाएंगे। और ये चीज होता है बचपन में, शायद ये चीज ऐसी नहीं होती युवा काल में, खासकर बढ़ते उम्र में ही जिसमें ये चीज जरूर देखने को मिलती है। तो इसलिए दोस्तों से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, मगर ये भी समझने की जरूरत है कि संभव नहीं है कि आपके दोस्त जो आपके हम उम्र हैं, खासकर जब युवा काल के दहलीज पर हैं, लेटर टीनेजर्स में हैं, तो उनके अंदर उसी प्रकार की मैच्योरिटी हो, ये संभव नहीं। और हर कोई आपकी मदद करना चाहेगा, भले उसके पास वो स्किल सेट्स हो या वो भावनात्मक रूप से वो इतना सक्षम है या नहीं है। मदद करने का भाव आपके सच्चे मित्र हमेशा आपके लिए रखेंगे, आपके लिए अच्छा सोचेंगे, इसलिए वो कोशिश करेंगे कि वो आपकी मदद कर सकें। उधर क्या ये गाइडेंस हमेशा सही होता है या नहीं, इस पर जरूर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वो अपनी प्रज्ञा, अपना विजडम, अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे, और उनका भी अनुभव कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि वो भी आपके उम्र है। तो युवाओं साथियों के लिए ये समझने की जरूरत है कि ऐसे समय पर भले ही आप अपने दोस्तों से बातचीत करने में कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल करें, उसमें कोई दो राय नहीं, शेयर करना ही चाहिए, मगर सही मार्गदर्शन के लिए, जो मार्गदर्शन आपके दोस्त आपको दे रहे हैं, उसे किसी बड़े से वेरीफाई करके तब लागू किया जाना चाहिए। वरना क्या होता है कि अनुभव के अभाव के कारण कभी कभार हम मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य गलत नहीं होता दोस्तों का, वो भी आपका भला करना चाहते हैं, मगर भले उद्देश्य के साथ भी अगर हम कोई गलतियां करते हैं तो उसका खामियाजा बुरा ही निकलता है। इसलिए सोच समझ के साथ इन चीजों को करने की आवश्यकता है, और इसलिए ऐसे लोगों से जो इमोशनली मैच्योर हैं, अनुभवी हैं, उन लोगों के पास मदद लेना चाहिए। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि पेरेंट्स के साथ बातचीत करने में इसकी चाहत होती हो या वो क्या मानेंगे, क्या कहेंगे, ये सोच लेते हैं, इनहिबिशन क्रिएट कर लेते हैं। अक्सर बच्चे बुजुर्गों के साथ अपने ज्यादा

0: करेंगे, उन्हें एक खराब उदाहरण के रूप में कहीं प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी एक प्राइवेसी और सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, एक विश्वास वहां पर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। मैं समझता हूँ कल्पना जी बेहतर बता पाएंगे इस विषय में।
1: कल्पना जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
2: जी मैं सहमत हूँ श्रीदेवी जी से, उन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि हमें जो अगर वैलिडेशन लेना है, किसी से गाइडेंस लेना है, तो हमारे बड़ों से चर्चा कर लेनी चाहिए। बट थोड़ा सा इससे आगे बढ़कर मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम अपने आप से कनेक्टेड होते हैं
1: जी,
2: तब अपने लाइफ के डिसीजंस लेना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे अगर हम हमारे क्रिकेट की दुनिया में अभी आजकल जो छाई हुई नई सनसनी है, हमारे वैभव सूर्यवंशी है, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं, तब ये महसूस होता है कि इस छोटे से बच्चे को अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का ये जो हिम्मत है कितनी छोटी उम्र में आ गई। उन्होंने छोटी उम्र में उनके पिताजी की मदद से इस स्किल को समझा और उस स्किल को हासिल करने में बचपन से लेकर अब तक, मतलब अभी भी बच्चा ही है, उसके पीछे वो चले गए। और इस वजह से उन्होंने, हम इमेजिन कर सकते हैं कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टीज में जाना, इतनी सारी बातें मिस की होगी उन्होंने, परंतु उन्हें पता था कि उनके लाइफ का डिसीजन उनके फादर ने और उन्होंने मिलके लिया है और वो बहुत सही लिया है, इसलिए उस डिसीजन के साथ वो चलते रहे। तो वैसे ही जब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कभी भी होता है, जैसे श्रीमती जी ने कहा कि वो किसी भी उम्र में हो सकता है, बचपन में भी हो सकता है, बड़े होने पर भी हो सकता है, तो अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा 10 मिनट्स के लिए साइलेंस में बैठकर खुद के साथ जुड़ने का अभ्यास करते हैं, तो मेरी क्या कैपेसिटीज है, मेरी क्या वैल्यूज है, मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या जानना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ये चीजें हमें धीरे धीरे समझने लगती हैं और अपने ख्वाब के पीछे हम अपनी एनर्जी लगाना शुरू करते हैं। और हमारे सामने उदाहरण तो है ही, छोटी सी उम्र में अपने ख्वाब के पीछे उन्होंने सही एनर्जी लगाई तो उसका रिजल्ट उनको कितना बेहतर मिल रहा है, इससे अच्छी तरह हम नहीं समझ सकते
1: जी। कल्पना जी, हम अंतिम चरण में पहुंच गए आज के एपिसोड के, हम एकदम लास्ट में पहुंच गए हैं, तो मैं मेडिटेशन का तो आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि हमें कराएं, साथ साथ क्या कोई ऐसे प्रश्न हैं जो हम खुद से डिटैच होके पूछ सकते हैं, जो हमें प्यार के इमोशन को सही आइडेंटिफाई करने में मदद करे, जो साइलेंटली बैठ के ऑब्जर्व कर सके खुद के बारे में, अगर कुछ?
2: बिल्कुल, सुबह उठने के बाद जब हम अपने दिन की तैयारी, मेंटल और फिजिकल तैयारी करते हैं, मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि वो थोड़ा टाइम सुबह उठने के बाद का अगर आप खुद के साथ आप बिताते हैं और ये 5 या 7 मिनट सोचने में बिताते हैं कि आज मुझे फिजिकली और मेंटली अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे प्रस्तुत करना है, तो हमारा माइंड इतना सुंदर जवाब हमें देता है, वो सोचकर हमें आश्चर्य लगेगा। तो पॉजिटिव प्लान जब हम बनाते हैं तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, आज मैं इमोशनली किस तरह से बैलेंस्ड वे में फिजिकली और मेंटली अपने आप को प्रेजेंट करूंगा या करूंगी, ये सवाल हम पूछ सकते हैं। आज मैं अपनी भावनाओं को सही शब्दों के साथ सही व्यक्ति के सामने व्यक्त करने का प्रयास करूंगा, इस तरह से छोटे छोटे सवालों से। क्या मैंने आज ध्यान से सुना है जो लोग कह रहे, लोगों की बातें सुनते समय अगर हम ध्यान से सुने और उनको समझने की कोशिश करें, उनके भावनाओं को समझने की कोशिश करें, तो वो भी एक अभ्यास होता है कि दूसरे क्या कहना चाहते, शायद उनके शब्दों से व्यक्त नहीं हो रहा तो भावनाओं से समझ आ रहा है। सो ये चीजें मैं पहले समझूंगा और फिर बात में जवाब दूंगा। क्या आज किसी को मेरी बातों से खुशी मिली है, आज मैंने किसी को नाराज करने जैसा कोई काम तो नहीं किया या करूंगा। सो ये छोटे से प्रश्न है जिनके साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगी कि हमारे युवा शांति से बैठकर ये अभ्यास करें, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, जिसमें कुछ पॉजिटिव और पावरफुल अफर्मेशंस हो जो हमें इमोशनली मैच्योर बनाने में काम आएंगे। तो आज अभी भी मैं इस कार्यक्रम के अंत में श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि 1 मिनट के लिए वो शांति से बैठ जाएं। सबसे पहले तो गहरी और लंबी सांस लें और अपने को एहसास कराएं कि मैं इस 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल फुर्सत में हूँ खुद को समझने के लिए।

0: अपने श्वासों पर ध्यान दें, उन्हें अच्छी तरह से महसूस करें। अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखते हुए अपने हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास करें, कितनी नॉर्मल है, कितनी स्टेबल है, कितनी शांत है। कानों से सुनने वाली एकदम छोटी सी आवाज जो बहुत मधुर है, उसे सुनने का प्रयास करें। और अंत में अपने मन में 3 बार दोहराएं, मैं एक शांत प्रेममय समझदार आत्मा हूँ, मैं एक शांत प्रेममय समझदार आत्मा हूँ, मेरे प्रत्येक शब्द में सम्मान मधुरता और सकारात्मक ऊर्जा है। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी। आज बहुत एक इंटरेस्टिंग चर्चा हुई और हमें समझ में आया कैसे अपने इमोशन को रेट करना है, कैसे उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हम खुद से पूछ सकते हैं और कैसे हम दोस्तों की और कब बड़ों की मदद ले सकते हैं क्लैरिटी लाने के लिए जीवन में और इमोशंस को बेहतर समझ के बेहतर एक्शन लेने के लिए, ताकि हमारी लाइफ को वो बेहतर बनाए और हमें नुकसान ना करे। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का इस जर्नी पे हमें लेके जाने के लिए। मुलाकात होगी लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए लेते हैं इजाजत और जिंदगी से खुलकर कहते हैं कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते हैं तो हमें खुशी है, क्योंकि इस तरह कार्यक्रम को लेकर बच्चों के पास पहुंचते हैं, बच्चों को एक मंच एक स्टेज मिलता है, बच्चे भी धीरे धीरे सीख जाते हैं और हर स्कूल में जाते हैं तो बच्चों का भागीदारी देखने को मिलता है, बढ़ चढ़ कर लेते एक का बाद एक देते हैं प्रस्तुतिकरण। उनके पास जो हुनर है, जो टैलेंट है, जन जन तक पहुँचाने के लिए रेडियो मधुबन आज पहुँचा है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुनियापुरा, जिसके आबू रोड का पास ही नजदीक है, रेलवे स्टेशन का पास है। और आबू रोड को कौन जानते हैं, सभी तो जानते हैं। तो आज बच्चों का आवाज़ को बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो होने के नाते कम्युनिटी का आवाज़ जन जन तक पहुँचाने के लिए हमें पहुँचते हैं। तो आज प्रार्थना से ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य प्रार्थना से शुरू होता है, क्योंकि माँ शारदा को याद करते हैं। प्रार्थना में हमें सरस्वती माँ को वंदना करते हैं, उनका आशीर्वाद, उनका भाव और भावना हमारा भाव और भावना उनके तक पहुँचे और माँ सरस्वती का गीत प्रस्तुत करेंगे, जिसे प्रार्थना सत्र में हमारा 7-3 छात्र है। तो अपना अपना परिचय देंगे प्लीज, अपना नाम और कौन सा क्लास और कहाँ से।
1: मेरा नाम सुमित्रा सिंदल, मैं कक्षा 8वीं की विद्यार्थी हूँ।
0: वेरी गुड।
1: और मैं सोनियापुरा आबू रोड शिक्षक की कॉलोनी में रहती हूँ।
0: वेरी गुड। नेक्स्ट।
2: मेरा नाम वंदना कुमारी है, मैं लुनियापुरा में रहती हूँ, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छा। पहला बार आए, थोड़ा झिझक किसको होता है, किसको डर लगता है, किनको डरने का बात नहीं, क्योंकि रेडियो आपका रेडियो है, आपके द्वारा ही प्रस्तुत करना होता है। तो चलिए एक प्रार्थना करेंगे वंदना एंड ग्रुप, ओके शुरू करेंगे। वेरी हमारे श्रोता मित्र ध्यान से सुने, वो भी अपना वॉल्यूम को तेज रखते हुए ध्यान मुद्रा में माँ सरस्वती की याद में बैठेंगे, वो भी अपना अपना जगह में। और सभी बच्चे भी रेडी है, सभी बच्चे प्रार्थना मुद्रा में रहेंगे। जोर से बोले नहीं, जोर से बोलो हाँ जी। क्या बात है, पूरा छत तो उड़ जाएगा और हमारा सीनियर साहब का पास भी पहुंच सकता है ये आवाज। चलिए शुरू करते हैं माँ सरस्वती को वंदना और वंदन का ग्रुप।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति। और खासकर जो प्रार्थना सत्र में बच्चे स्कूल में आते हैं तो माँ सरस्वती की याद में शुरू करते पढ़ाई, और जिसका चलते हमें बहुत कुछ शक्तियाँ और ज्ञान मिलता है। ज्ञान शक्ति और ध्यान से हम भरपूर हो जाते हैं, और बच्चे आगे होकर अपना स्कूल का, खुद का और गांव का और देश का नाम रोशन करते हैं। वंदना बढ़ोकर क्या बनेगी?
1: IAS।
0: अरे वाह, उसके लिए प्रिपरेशन तो अभी से करना पड़ेगा। हाँ। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टर बनेंगे तो उस तरह सभी प्रश्न का उत्तर भी देना पड़ेगा। आज रेडियो में आपको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में आपको इंटरव्यू मिल रहा है, तो आप बढ़ोकर क्या बनेंगे, उसके लिए क्या प्रिपरेशन, क्या मेहनत कर रहे हैं बताओ, क्योंकि हमारा श्रोता भी सुन रहे हैं आपको।
1: सर, मैं अभी के पढ़ने की तैयारी कर रही हूँ।
0: अरे वाह, अभी से 8वीं क्लास से उनका लक्ष्य है, तो अभी स्कूल का नाम रोशन जरूर करेंगे, और हमारे मैम भी सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत प्रोत्साहन दे रहे। तो मैम, ये बढ़ोकर तो बनेगी IAS ऑफिसर, और उसके लिए मेहनत भी करते, आप उनको क्या, जब तक है तो आप कहीं भी पढ़ाई करें तो उनको क्या संदेश देंगे, क्या उनको वार्ता देंगे?
2: हम इनको नियमित रूप से पढ़ाई करने के लिए कि कितने घंटे पढ़ाई करने चाहिए, तो उस हिसाब से उनको पढ़ाई करने के लिए बोलेंगे, और बार बार उनको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की बार बार उनको मोटिवेट करेंगे, उनको जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
0: तो वंदना मैम का आवाज़ से आप खुश है?
1: हाँ।
0: मैम जैसे बताया है, आपका फोकस रहना चाहिए, अगर टारगेट लक्ष्य जो रखे हैं उसके लिए आपको लक्षण दिखाना चाहिए, तो इसलिए आपका मम्मी पापा आपको कितना सहयोग देते हैं?
1: सर बहुत ज़्यादा, सर वो बोलते हैं कि पढ़ते रहना चाहिए,
0: पढ़ते रहना, जब तक अपना मंजिल तक नहीं पहुँचे तब तक पढ़ाई 20 नाखून लगा कर जब पढ़ेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। ये हमारा वंदना का आवाज़ है, और हमें भी ऐसा है जरूर वंदना आगे जाकर कुछ अभी से मेहनत करेंगे तब जरूर, और 5 साल 12 साल तक मेहनत करेंगे, 12वीं तक पढ़ाई करेंगे तब तक मेहनत करेंगे। अभी से GK शुरू कर दिए और होना ही चाहिए। और आपका अच्छा दोस्त का नाम बताओ देखिए वंदना।
1: सुमित्रा।
0: अरे वाह, सुमित्रा नाम सुनते तो कौन सा रामायण महाभारत को याद होता है? सुमित्रा पाठ जो करते हैं, सुमित्रा कौन सा रामायण में है ना महाभारत में, सुमित्रा का जो नाम है?
1: सर रामायण, सर वो एक देवी है, उनका नाम
0: सुमित्रा है। अच्छा, देवी भी सुमित्रा और रामायण में भी सुमित्रा का है ना, तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि तुम अभी से GK पूछ रहे का आगे जाकर ऐसा पूछ रहे कितना पूछ लेगा GK का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और हमारा साथ सुमित्रा भी है। सुमित्रा, आप अपना नाम को कौन दिया? सुमित्रा फादर ने रखा नाम। धन्यवाद देंगे, अच्छा नाम है, खुश है नाम से, जैसे नाम उस तरह काम भी करना चाहिए, बहुत अच्छा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा और एक छोटे से बच्चे भी आएंगे, बड़े बच्चे से भी धीरे धीरे छोटे बच्चों की तरफ हम जा रहे हैं, और आप सुन पा रहे हैं खासकर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लुनियापुरा का आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए बच्चे शुरू करें। परमिशन मिल गया, बच्चे बोले हमें परमिशन दे दी। ओके, चलिए शुरू करते हैं और अगला कड़ी में, अगला भाग में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ चार छात्र है। हेलो, नाम बताए।
2: मेरा नाम प्रीतम है।
1: ओके,
2: मैं लुनियापुरा में रहता हूँ, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ।
1: वेरी गुड।
3: मेरा नाम इतेश है, मैं चुड़ियाफली में रहता हूँ और 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
1: वेरी गुड।
4: मेरा नाम ध्रुवन चौधरी है और मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ और लुनियापुरा स्कूल।
1: So, आठवीं क्लास।
5: मेरा नाम धीरज राणा है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुनियापुर में पढ़ता हूँ। मेरी क्लास कक्षा 8वीं है।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी इसमें खेल कौन खेलता है? सभी खेल खेलते हैं। कौन सा खेल अच्छा लगता है?
6: क्रिकेट।
1: क्रिकेट, अरे वाह, क्रिकेट तो बहुत अच्छा गेम है ना। क्रिकेट में कितना आदमी खेलते हैं?
6: 11।
1: एक दूसरा वाला 11, 11, 22। ओके, वेरी गुड, पास हो गया सभी बच्चे, सभी को शाबाश। चलिए एक प्रस्तुति सुनाएंगे और भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम काल तक जा रहा है और भारत पूरा आगे बढ़ रहा है और बच्चों का आवाज़ से देश का प्रति जो जज्बा देखने को मिलेगा, क्योंकि देशभक्ति गीत सुनाएंगे सभी बच्चे। सुनाएंगे बच्चे, रेडी? ओके, शुरू कर दीजिए।

0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत सुंदर प्रस्तुति, और हमें खुशी लग रहा है ऐसे बच्चे देश का प्रति अभी से शुरू कर दिए हैं, और जिस देश का नाम इतना सुंदर है और उस भारत भूमि में हम रह रहे हैं, और भारत माँ कहते हैं, भारत को क्या कहते हैं, भारत माता की, भारत माता की। बच्चे तो तुरंत जाए, वेरी गुड, छोटे बच्चे भी पीछे से बोले जाए, ऐसे होना चाहिए शुरू से बच्चों को। हाँ बहुत अच्छा, उसे रोक नहीं पा रहे वो आवाज को, छोटी सी बच्ची है फिर भी, फिर से बोलो वंदे वंदे भारत माता की। वाह कितना सुंदर, सब जय जय गान करना चाहिए, और इस गीत के माध्यम से हमारा रक्त खून में पूरा देश का प्रति भक्ति भावना आता है। तो इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में हमारा साकी दृष्टा रूप में हमारा मैम भी सुंदर है, मैम आपका परिचय दीजिए, बच्चों का जो एक गीत में इतना सुंदर से और बाला देश का प्रतिमा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, अपना परिचय दीजिए मैम।
1: मेरा नाम अनिता है, मैं आज की जो त्याग किया था और जिस वजह से वो इतने प्रसिद्ध हो गए, वैसे ही आप सब भी अपनी माता सीता की तरह ही अपना चरित्र बनाकर रखें और उनकी तरह ही रहें, और आप भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, देते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रुको रुक रुक, भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ा तो एक हमें अच्छा लग रहा है और बच्चों का साथ हम भी बच्चे बन रहे, बीच बीच में मैम और सर का भी इंटरेक्शन हो रहा है और उनका दिल का भावना रख रहे हैं और बच्चों का प्रति कैसे नसवार होकर अपना जी जान देकर बच्चों को आप समान बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। पाली जिला से भी आकर यहाँ पर बच्चों को अपना हुनर को उजागर करने के लिए तत्पर रहते। तो चलिए और एक छोटी सी परी, नन्ही परी आई है तो वो भी अपना तोतली तोतली आवाज़ में कुछ सुनाएगी, क्योंकि इस कार्यक्रम को सजाने के लिए ग्रुप का साथ एक सिंगल एकल भी होना चाहिए। हेलो, क्या नाम है?
4: राधिका।
3: हाँ राधिका, कितना सुंदर प्यारी नाम है ना राधिका। और कौन सा क्लास राधिका?
4: फिफ्थ
3: क्लास। तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है राधिका?
4: नीतू।
3: सभी दोस्त अच्छा नहीं, सभी बच्चे नीतू ही अच्छा लगता है तुमको? उसके पास क्या विशेषता है, क्या गुण है जो आपको अच्छा लगता है? सहयोग देता है, सहाय करता है, क्या करती है?
4: वो मेरा हर समय साथ देती है और मैं पढ़ाई में मेरा साथ देती है।
3: कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है राधिका?
4: हिंदी।
3: और घर में कौन कौन है?
4: मेरे पापा, भाई।
3: कोई भी चीज़ आपको घर में आता है नया चीज़, जैसे आम का सीजन हो, चाहे केला का सीजन हो, कोई ड्रेस हो नया साल में हो, पहले किसको देते, भाई को ना तुमको?
4: भाई को।
3: इतना प्यार करता है ना भाई का प्रति? भाई छोटे ना बड़े?
4: छोटे।
3: छोटे फिर भी उनको बहुत प्यार है ना, तुम्हारा भी प्यार है उससे? प्यार करता है तुम? सब कुछ उनको मिलता है, तुमको बाद में, ऐसे तुमको भी मिलना चाहिए। दोनों को पापा को बोलना मुझे पहले दो, हम लड़की है, हमें आगे जाना है। लड़का तो आगे जाता है लेकिन लड़की और लड़का दोनों बराबर है, ऐसे सोचना, मम्मी को पापा को बोलना। भाई का नाम क्या है?
4: हिमांशु।
3: चलिए कौन सा प्रस्तुति करेंगे अभी, कुछ गीत गाएगी, कविता गाएगी, सुना।
4: मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी।
3: अच्छा ये गीत कविता किसको किस आता, हाथ उठाओ। देखिए बच्चे किसको किस कविता आता है, हाथ उठाओ। मछली वाला किसको किस आता, हाथ उठाओ, लंबा हाथ। अरे बच्चे भूले नहीं, छोटे क्लास नर्सरी स्कूल में और आंगनबाड़ी में होती है, फिर भी बच्चे बड़े आठवीं क्लास का बच्चों को भी याद है। चलो बहुत अच्छा, सभी मिलकर गाएंगे, फिर से इनका साथ देंगे, ठीक है? बोलो अभी नेक्स्ट प्रस्तुति।
4: ऊपर पंखा चलता है, नीचे बबलू सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा ने, मामा गया दिल्ली, दिल्ली से लाया दो बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा।
3: देखो ये बच्चे ये गीत सबका अभी भी याद है सभी को, अभी ये बोल रही थी राधिका, सभी बच्चे धीरे धीरे अपना मुंह को हिला रहे थे, लेकिन अभी उनको चांस मिलेगा राधिका का साथ, पुनः मिलकर गाएंगे सभी बच्चे।
5: यस सर।
3: यस सर। चलिए शुरू करिए।

0: तो सबके लिए मैं ताली बजा देता हूँ। मैंने अभी देख रहा था क्लास में सभी बच्चे 40-50 बच्चे सभी का मुख से पूरा गीत चल रहा था, ये गीत अभी भी याद है, कहीं भी बड़े हो जाएंगे तब ये गीत याद रहेगा, है ना, रहेगा ना सभी को ये गीत याद रहेगा।
1: यस सर।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका तुम्हारा स्कूल में कितना टीचर्स है? कितना?
1: चार।
0: याद है मैम का नाम बताओ देखिए?
1: संतोष मैम, अनीता मैम, पीटीआईजी सर।
0: ओके।
1: और दूसरे सर का नाम है?
0: कोई बात, कोई बताएगा दूसरा सर का जो एचएम कौन प्रभारी को नाम क्या बताएंगे? हाँ बताओ जोर से।
2: मोहित सर।
0: मोहित सर, मोहित सर के लिए ताली बजाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोहित सर भी सुन रहे, अभी यहाँ पर नहीं है फिर भी मोहित सर जब रेडियो सुनेंगे तो उनको बोलगा इंटरशिप वाला। तो सभी को मिलकर धन्यवाद देते हैं, मोहित सर को भी और सभी सर को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और राधिका बताओ, आबू रोड कभी गए?
1: हाँ।
0: आबू रोड में क्या क्या है?
1: आबू रोड में बहुत सारे मंदिर है।
0: ओके।
1: बहुत सारे दुकाने है, बहुत सारी चीजें भी है, स्कूल वगैरह भी है, कॉलेज भी है।
0: अरे वाह।
1: हॉस्टल वगैरह है।
0: हॉस्टल भी है। अरे वाह।
1: मेले भी है।
0: मेले भी होते हैं। और प्ले ग्राउंड है कि नहीं खेल खेलने के लिए? दरबार स्कूल देखा है? हाँ, उसका पीछे बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है। जब भी आप लोग जाते होंगे, कभी गए सही बच्चे गए प्ले ग्राउंड दरबार स्कूल? नजदीक है। और शांति कुंज पार्क? अरे वाह, बताया नहीं राधिका शांति कुंज। हाँ सबको धन्यवाद। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चलेंगे। रेडी है? अंतिम प्रस्तुति ग्रुप आएंगे। राधिका के लिए जोर से ताली बजाओ। राधिका है ना? राधिका गुड, वेल डन।

0: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: चलिए एक का बाद एक प्रस्तुतियां मिल रहा है, बच्चे भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे हैं और एक को देखकर दूसरे भी सीख जाते हैं, बड़े भी सीख जाते हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और 3 छात्राएं उपस्थित है, वो अपना परिचय देंगे। आप सब सुन पा रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुनियापुरा का आवाज, वो भी सबका आवाज मिलकर का गुलदस्ता बन गया। और हमारा मैम भी इस कार्यक्रम को सजा रहे, सभी स्टाफ को धन्यवाद देते हुए। रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर जो गांव और अंचल में जाते हैं, सभी को एक मंच देते हैं और जिसका चलते उनका आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो हमारा 7 छात्रा है, अपना अपना नाम बारी बारी बताएंगे प्लीज। ओके,
4: मेरा नाम हिमांशी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं गुरु कृपा के आगे रहती हूँ।
3: वेरी गुड, नेक्स्ट।
5: मेरा नाम दीक्षा कुमारी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ, मेरा स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुनियापुर आबू रोड है और मैं गुरु कृपा कॉलोनी में रहती हूँ।
6: मेरा नाम दिव्यांशी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ, मैं कमल मोहल्ले में रहती हूँ।
3: वेरी गुड। देखो बच्चों का अंदर में कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, और अपना बात को, क्योंकि ये सारे बच्चे किन्नु लुनियापुरा आबू रोड का ये एक पार्ट है, इसलिए बच्चों का अंदर कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, तो पूरा सारे बच्चों को भी अपना टक्कर देंगे और जब भी कंपटीशन होगा तो लोग बच्चे आगे जाएंगे। तो चलिए सभी को स्वागत करते हैं प्रोग्राम के लिए। कौन सा गीत प्रस्तुत करेंगे वो उनके पास है, मैं बताऊँ तो मुझे मालूम नहीं, फिर भी बच्चे करेंगे। कविता सुनाओ।

0: धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृ भूमि मेरी। जन्मे जहाते रघुपति, जन्मी जहाति सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। श्री गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुहृद बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह मातृ भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी।
1: सभी का आवाज में थोड़ा सा आया, तो अभी एकल में वो सुनाएगी।
2: ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लह रही है, जगमग छटा निराली पगपग छर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते हैं जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, मस्त झाड़ियों में। अमराई घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्ल पवन तनमर सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थी सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सूर्य बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दया सिखाई। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी।
1: सुंदर उसने अपनी प्रस्तुति को दी और भारत को पूरा रिप्रेजेंट करता है। भारत में सब कुछ जो चीज कहीं नहीं वो भारत में है। भारत इसलिए मातृभूमि कहते हैं, जन्मभूमि, कर्म भूमि, तपस्या भूमि, सिद्ध भूमि, देवताओं का भूमि, तपोभूमि कहते हैं। और खासकर हमारा आबू राज में 33 करोड़ देवी देवता का वास कहते हैं। और बच्चे इस गीत का माध्यम से, कविता का माध्यम से सुंदर प्रस्तुति दिए हैं, हमें खुशी है। और क्या नाम बताए?
3: हिमांशी।
1: हिमांशी, क्या कहना चाहेंगे अपना जो दोस्त लोग को, क्या कहेंगे? पढ़ाई में कितना मेहनत करना चाहिए, क्या बोलूँ मैं? कितना घंटा तुम मेहनत करते हो? पढ़ाई स्कूल में 6 घंटा पढ़ाई करने के बाद घर में?
3: घर में मैं शाम को पढ़ती हूँ, और छुट्टियों में सुबह 2 घंटे पढ़ती हूँ और शाम को।
1: आओ थोड़ा मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। चलिए हमारे साथ, हमारा कार्यक्रम को हमारे साथ कैसे छोड़ेंगे सर? आपको भी स्वागत करते हैं। आप अपने बच्चे के लिए, बच्चों के लिए क्या खजाना लेकर आए?
4: नमस्ते, मेरा नाम विक्टर रमानी, मैं माधव यूनिवर्सिटी में अध्ययन करता हूँ और यहाँ पर इंटर्न के रूप में राजकीय उच्चतर विद्यालय यूनापुरा में। मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि अपने आने वाले समय में जिस प्रकार से शिक्षा को अपने जीवन में और विद्यालय को अपने घर जैसा माने, और विद्यालय में जिस तरह शिक्षण होता है उसी तरह घर पर जाके भी उसी चीज़ का अध्ययन करें, जिससे आने वाले समय में आपको अध्ययन करने में दिक्कत नहीं आएगी। जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है वही आप घर पर जाके पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदा है। रिवीजन के बाद आपको काफ़ी दिक्कत नहीं आती है,
1: कोई भी चीज़ बार बार हम अभ्यास एक्सपर्ट बन जाते हैं। और वो पढ़ाई जो करते हैं उसका घर में जाकर होमवर्क तो मिलता ही है, तो उसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो पढ़ेंगे ना बात है ना सर? बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर रेडियो मधुबन का ब्रह्मा कुमार के बारे में क्या जानते हैं आप?
4: ब्रह्मा कुमारी का नाम था रेडियो आज पहली बार सुना, लेकिन मेरे को आज
1: क्योंकि रेडियो पर जैसे साइकिल कौन जानता है? आजकल मोटर कितना एरोप्लेन तक लोग पहुँच रहे हैं, साइकिल में कौन जानता है? लेकिन साइकिल का मोटर, साइकिल का जगह ना आज भी रेडियो जो देते जहाँ दुरुस्त जगह में लाइब्रेरी में वो खबर वगैरह सुनते रेडियो। अभी तो 50 साल का अंदर 30 साल का अंदर में सब इंटरनेट पर, इसका बाद पहले तो रेडियो ही सबका घर में, हम भी देखे होंगे, मैं भी देखे होंगे घर में रेडियो से हम सुनते, इतना जारी क्या था सब चीज़ है ना। तो रेडियो अभी उसका जगह में, वो अपना जगह में भेज रहा है। साइकिल कितना बड़ा हम मस्ट गाड़ी ले हमारा साइकिल में काम, साइकिल का जब यही है तो रेडियो में उसका है कि मन का बात हो जाए कोई भी चीज़ जो खबर मिलता है एफएम के माध्यम से। आप कार में ड्राइविंग कर रहे तभी बोले, आजकल मोबाइल में भी आता है एफएम आता है, आजकल भी इंटरनेट सब सुविधा है। आप भी बहुत पूरा ऑल इंडिया और वर्ल्ड का भी सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और ब्रह्मा कुमारी और रेडियो मधुबन का बारे में आपको लाभ होता है। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये खास सभी का आवाज, बच्चों का साथ बड़ों का भी आवाज लेकर उनकी हमको खुशी लगा। तो क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, क्या मैसेज की मैसेज देने का माध्यम से आप जैसे जैसे अभी नौकरी के लिए तलाश रहे और आगे पोस्टिंग आएगा तो उसके लिए आप क्या मेहनत करते हैं, आपका अनुभव दूसरा स्टूडेंट के लिए, हम जिन्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, हम चाहते क्या एक मैसेज बात
4: मेहनत करती रहनी चाहिए और शिक्षण को कभी जीवन से दूर नहीं करना चाहिए।
1: ताली बजाओ बच्चे। बैठे हैं, आप सबसे इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, आप किसी बात को लेकर सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, धन्यवाद सभी को नाम का साथ।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता।

0: कार्यक्रम वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम ऐसी नारी शक्ति पर आधारित है जिनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव या कुछ अलग उनके जीवन की कोई कहानी होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि नारी शक्ति के साथ जो घर में रह रही है या बाहर जो भी करती है तो उनके साथ इस तरह की परिस्थितियां भी आ सकती है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप नारी शक्ति की शक्ति को भी पहचान सकते हैं, उसके स्ट्रगल को भी आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी ही नारी शक्ति से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है मधु राठौड़। आप गुजरात जूनागढ़ जिला बांटवा गांव के रहने वाले हैं। आपकी उम्र 52 वर्ष है। आपने 12th तक पढ़ाई की हुई है। सिलाई कढ़ाई बुनाई का आपको बहुत ही शौक है, कुकिंग का और विशेष करके सफाई का बहुत ही शौक है और अध्यात्म में गहरी रुचि रखती है। तो ऐसी नारी शक्ति से आपसे मिलवाने जा रहे हैं। मधु जी नमस्कार।
1: धन्यवाद जी,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में।
1: धन्यवाद
0: मधु जी। चलिए, आपकी उम्र 52 है, मतलब पिचपन के आसपास पहुंच चुकी है। और कहते हैं ना, पिचपन में जब बचपन की बातें करते तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या कहेंगे?
1: बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी
0: जी,
1: तब से मुझे कुछ ऐसे लगा। बचपन से तो वैसे माँ बाप, हम 5, 3 बहनें हैं, 2 भाई है, छोटा सा परिवार है और माता पिता है। दादी थी, फिर दादी तो अचानक से हार्ट अटैक आया और चली गई। उसके बाद सत्संग चला था घर में, जैसे कि तो सत्यनारायण की कथा हर 11 को होती थी। तो मम्मी सब कहती थी कि जाओ आप ना सबको, जो सगे संबंधी है उसको कहना कि हमारे यहाँ सत्संग है तो आ जाना। फिर सबको वो फूल लाना, प्रसाद लाना, वो सब मम्मी मुझे देती थी कि आप वो करो। फिर तो सब लाते थे, फिर ना बरसात आई, ये सब इकट्ठा करते हैं पैसा और उसका कुछ बड़ा करना था। तो मैं तो छोटी थी, तो एकदम बरसात आई तो सारा पैसा ऐसे पास रहता है, 25 पैसे का 30 पैसे का
0: जी
1: हाँ, तो वो सब इकट्ठा किया हुआ था और घर की जो कांधी कहते मतलब माड़िया कहते उसमें लगा था। तो बरसात आने की वजह से जोरदार वो बिक गया। फिर सब को सुखाया बहनों ने, मेरी 2 बहनें हैं और भाभी है, सब सुखाया। फिर तो मम्मी ने और सत्संग की जो मंडली थी ना, बड़ी पहली बार मेरी मम्मी ने ही वो सत्संग चालू किया। तो कहते हैं कि अब ना कुछ उसका नया करे, हमारे यहाँ जो राजपूत के मंडली होती है ना बहनों की, तो उसमें सत्संग में से जो इतने पैसे इकट्ठे हुए थे तो उसका कुछ अच्छा सा करे जो सबको काम भी आए उसमें।
0: चलिए मधु जी, सत्संग की बातें हम जरूर जानेंगे, पहले हम बचपन की बात जानना चाहेंगे। आप जैसे बता रहे थे कि 5 भाई बहनों, ठीक है, अच्छा आप 3 बहनें और 2 भाई हो, आपका नंबर कौन सा आता है?
1: मेरा लास्ट का नंबर 5वां।
0: तो आप तो सबके चहेते रहे होंगे।
1: बहुत बहुत बहुत चहेते रहे।
0: आपके पिताजी क्या काम करते थे उस समय?
1: वो किसान थे, किसान। पहले तो मैं जब से आई ना तब से तो हमने बहुत खेती देखी। इससे पहले कहते थे कि हमारे 7 थे ना घर में, जैसे 5 बच्चे और 2 माँ बाप और दादी, उसमें बहुत एकदम करकसर से जीवन था।
0: जी जी, मुश्किल से हाँ, चल पाते थे गृहस्थी की।
1: हाँ, नहीं, पापा का यही एक सपना था कि मैं बड़ी खेती लूँ। इसके लिए उसने करकसर से हम सबको ऐसे सिखाया कि करकसर से रहोगे, लोभ से नहीं, करकसर से।
0: जी जी।
1: तो उसने 100 बीघा, मतलब अभी उसका पैसा होता है वो 15 करोड़ होता है, तभी कभी कुछ नहीं था। फिर भी पापा ने, हम काका कहते थे, हम साथ में रहते थे,
0: जॉइंट परिवार था।
1: हाँ, जॉइंट परिवार था, मतलब मेरे जो बड़े पापा के बड़े भाई वो साथ में रहते थे, उसका 6 बेटा
0: जी
1: हाँ, और साथ में रहते थे। तो साथ में रहने की वजह से जो बड़े बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं
0: जी, काका बोलते हैं और बड़े पापा के बेटे,
1: हाँ पापा के बड़े भाई, उसको हम अदा बोलते हैं गुजराती में
0: जी।
1: तो वो अदा का सब बच्चे इकट्ठे रहते, तो वो मेरे पापा को काका कहते थे, तो हम भी काका ही कहते हैं, लास्ट तक काका किया। तो काका का यही सपना था और मुझे बहुत पढ़ाया उसने, सब हमारे भाई बहन है ना, उसमें से मुझे ज्यादा पढ़ाया।
0: अच्छा, बाकी आपसे सब कम पढ़े लिखे है?
1: सब कम पढ़े लिखे,
0: भाई भी?
1: भाई भी।
0: तो सब क्या करते, खेती का काम?
1: हाँ, सब खेती का ही काम करते।
0: तो आपके सामने 100 बीघा जमीन का जो आपके पिताजी का
1: वो बनाया उसने अपने।
0: संकल्प था तो लिया?
1: हाँ, वो पूरा किया। पहले ऐसा नहीं था, फिर पूरा किया। फिर उसको तो इतना उमंग आया। उसके बाद सब, पहले भाई की शादी हुई, बड़े भाई की। उसके बाद तीन तीन की साथ में हुई और मेरी अकेली हुई।
0: अच्छा, आपकी शादी की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन बात कर रहे थे आपके बचपन की, कि इस तरह आपके पिताजी खेती का काम करते थे, किसान थे। आपके माताजी भी कुछ करते थे?
1: हाँ, घर का काम करती थी और खेत में पिताजी को बहुत साथ देती थी। सारा पूरा काम करके, अपना बाता बना करके, और मुझे कहती थी कि आप ये घर संभालो, और पढ़ाई करने के बाद हम आएंगे तो आपको ये खिचड़ी बना के रखनी है, ये सफाई करनी है, और चूल्हा चूल्हा ये सब कुछ अच्छे से रखना है, ताकि आए तो सिर्फ हमें सब्जी और रोटी दोनों ही बनानी है, और पूरा घर का ख्याल रखना है, बाहर सब आपको करना है। और फिर आप ये सब पढ़ाई करने के बाद फिर पेड़ाई कर लेना और सफाई कर लेना। तो मम्मी बाता बनाकर, मतलब रसोई बनाकर जाती थी।
0: जी
1: हाँ, और साथ में पिताजी को बहुत बहुत साथ देती थी।
0: तो आपके भाई बहन भी जाते थे खेत में?
1: सब जाते थे, सब के सब।
0: आप अकेले घर पर रहते?
1: हाँ, मैं अकेली घर पर रहती। मैं डरती नहीं थी। मेरे से जो तीसरे नंबर की बहन है ना, जैसे हम तीन बहन हैं, तो तीसरे नंबर बेट के वो अकेली नहीं रहती थी। वो डरती थी, वो कहती थी मैं अकेली नहीं रहूंगी। मम्मी बहुत कहती थी कि आप रहो इसके साथ। फिर मैं कह देती हूँ कोई बात नहीं मम्मी, आप जाओ, उसको भी ले जाओ, मैं अकेली रहूंगी। और मैं बहुत बड़ा था तो मैं उसमें अकेली रहती थी और सब काम कर लिया करती। और मम्मी मुझे ऐसी शाबाशी देती, देखो तो आपसे छोटी है तो भी वो अकेली रहती है, और सारा डरती भी नहीं है। कोई आते हैं तो ऊपर से देख लेती हूँ कि कौन आया है। अगर कोई हमारा संबंधी आते हैं तो मैं खिड़की खोलती हूँ, अगर कोई और है तो खिड़की भी नहीं खोलती। ऐसे मैं बहुत तैयार थी, तो मम्मी और पापा दोनों की चाहती थी।
0: जी
1: पापा पापा तो हमें साथ में ही सुलाते थे, वो तो मेरी सगड़ी है जैसे बोलते। मैं इतनी गर्म रहती हूँ ना, तो वो खेत में से आते और पापा को मैं पानी देती हूँ, कुछ खाने को देती हूँ, तो पापा की बहुत चाहती थी। छोटी थी इसलिए बहुत बचपन प्यार से ही गुजरा, और सबका, भाई बहनों का अभी तक प्यार मिल रहा है।
0: जी जी
1: हाँ,
0: जी
1: बहुत प्यार मिल रहा है।
0: जी
1: और अभी वो पे दुलार देते तो कहते हैं कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो, ऐसे कहते हैं अभी भी।
0: जी जी वो कहते हैं ना कि नमे सौने गमे, गुजराती कहावत है। तो
1: हाँ,
0: आपके अंदर नम्रता थी, तो आप सभी के दिलों पर राज करते थे।
1: अभी भी कर रही हूँ। और
0: बचपन से जो स्वभाव संस्कार जो हमारे अंदर पड़ जाते हैं, वो लाइफ टाइम चलता है।
1: हाँ, वो आगे ज्यादा हो जाता है बढ़कर। तो बचपन ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं चला कि देखो सबने इतना साथ दिया। और मेरा उत्साह और उमंग बहुत बढ़ाते थे भाई बहन।
0: जी
1: जो मेरे से चारों भाई बहन है ना, बहुत उत्सव उमंग बढ़ाते थे। जैसे कि खेतों में बुनाई होती है, कटाई होती है, वो हम एक दो मजदूर रख करके हम स्वयं करते थे।
0: अच्छा
1: मजदूर चार आते थे, वो चार बहनें आती थी, दो बहनें अपनी और दो भाई उसके, वो चार ही आते थे, और हम सब मिल करके ये सारा खेत संभालते थे।
0: सौ
1: तो
0: सौ बीघा जमीन में?
1: हाँ, सब
0: अच्छा,
1: मजदूर नहीं, ना कोई किराए का रखा, रात में कोई नहीं, सब अकेले ऐसे ही करते थे। तो हमने बचपन से यही सीखा कि मेहनत करो, और मेहनत से आगे बढ़े। और पापा का तो बहुत था कि ये ले वो ले, बहुत था को ना, मेहनत में बहुत विश्वास था।
0: जी चलिए मधु जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन समय हो चला है यहाँ पर एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। मधु जी के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं जो हम फिर से सुनेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टर नी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टर नी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: ना। अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, हर रिश्ते में अपनापन जगाए, नन्हे कदमों से सपने बुनती, घर को स्वर्ग सा बना जाए, घर को स्वर्ग सा बना जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ऐसी ही बेटी जुड़ी हुई है, ऐसी ही मातृशक्ति जुड़ी हुई है, मधु राठौड़, जिनके अनुभव हमने सुने हैं। इसी कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे। मधु जी पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: जी थैंक यू जी।
4: तो मधु जी आपके बचपन की बातें चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा स्कूल की बातें बताएंगे कि आपके टीचर्स के साथ, सखियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
5: हाँ मेरी सखिया भी बहुत बढ़िया थी, एक सखी तो बहुत अच्छी थी, मैंने उसे अपना माना था, उसका वो अलग था। फिर मैंने पहले आठवीं पढ़ी तो मम्मी होली का त्यौहार था, जैसे अभी होली आ रही है, तो होली का त्यौहार था तो मम्मी ने कहा कि अबे ना सारा रसोई या भाता बोलते हैं ना, वो भाता कर रही हूँ, तो अपना आज जाओ शिव के मंदिर पर। और वहाँ से गुजरात में ये होता है कि बड़ा शिवरात्रि का महत्व होता है, शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं और भांग का प्रसाद मिलता है, और बड़ी उत्साह उमंग से शिवरात्रि पूरा दिन रहते हैं। और शिवरात्रि के दिन खाना कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा फ्रूट लेना है, दूध लेना है, और वो प्रसाद लेना जरूरी है। तो प्रसाद नहीं, माताजी लाई थी, तो उसने कहा आप जाओ तो मुझे मंदिर भेजा। तभी एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी मिली और मैं आठवीं कक्षा में वो प्रदर्शनी देखी। तो वो प्रदर्शनी पहले तो कुछ समझ में नहीं आई, बाद में इतनी मन को भा गई कि बार बार वही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे। इसमें इतनी लगती थी कि मैं ही वही देवी हूँ, और मुझे इतना अच्छा अनुभव होने लगा कि मैं बस इसी मार्ग पर चलूँ। घर पर आई, प्रदर्शनी देखी, तो उस प्रदर्शनी में सुना कि मैं कौन हूँ, वही बहुत अच्छा लगा। फिर पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, और माता जी तो चली गई खेत में, और मैं घर पे, तब स्कूल पे रजा होती है तो घर पे हूँ, घर पे थी। उसके बाद आध्यात्मिक में मेरा जुड़ाव बहुत रहा, मैं बहुत अच्छा लगता था कि मैं आध्यात्मिक में कैसे आगे चलूँ। फिर हर ग्यारस के दिन और पूनम के दिन मेरी माताजी कथा करती है, सत्संग सब बहनें आती है, सत्संग की 50 बहनें होती है, तो माताजी सत्संग में होने के कारण मैं इतनी आध्यात्मिक रही पहले से। भक्ति भाव, उसमें प्रसाद होता है, महाप्रसाद की बहुत महिमा होती है सत्संग में, सत्यनारायण की कथा, वो सत्संग फिर पाठ पूरा हो जाता है, 5 अध्याय होता है, पूरा होने के बाद प्रसाद सबको बांटते।
4: अच्छा तो आप अध्यात्म में चलने लगे, तो फिर घर में किसी ने विरोध तो नहीं किया?
5: जी छोटी थी तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, पर ऐसे कहा कि अच्छा है, मम्मी अध्यात्म से जुड़ी थी तो अध्यात्म में बहुत रुचि थी मेरी पहले से ही।
4: तो भक्ति के संस्कार आपको बचपन से?
5: बचपन से
4: जी। और आठवीं से आपको थोड़ा अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया?
5: स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया।
4: अच्छा, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ कि आपकी सखियों के साथ कैसा था?
5: सखियों के साथ तो इतना मैं सखी नहीं करती थी, मुझे ऐसे अध्यात्म में अच्छा लगता है बस।
4: अच्छा, ये बताइए आप स्कूल में कोई पार्टिसिपेट करते थे जैसे गाने में?
5: हाँ, जो कोई

0: की जाते पर कर लेते थे, फिर बाद में एक भी किया फिर तो अच्छा लगा तो करते रहते थे डांस
1: जी,
0: भी।
1: कभी टूर्नामेंट में भी गए? गेम्स में कोई गेम्स खेलते थे? अच्छा,
0: गेम्स तो नहीं खेली,
1: पढ़ाई में कैसे थे आप?
0: पढ़ाई में बहुत बढ़िया था और एक फोकस था कि आगे बढ़ना है, मतलब इतना तो लाना ही है, तो पढ़ाई में भी रुचि बहुत रही। 10वीं में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे 12वीं तक, पर 12वीं तक में तो मेरी शादी हो गई थी, मैं 12वीं तो वहाँ ससुराल में किया।
1: अच्छा, 12वीं पढ़ रहे थे और शादी करवा दी?
0: 12वीं में तो मेरा जो रिजल्ट आया ना वो ससुराल में आया, पढ़ाई तो वहाँ, शादी तुरंत कर दी।
1: तो आपका ससुराल कहाँ है?
0: ससुराल भी वही बांटवा में ही है,
1: बांटवा में? कितना बड़ा शहर है? बांटवा शहर है या गांव है?
0: वैसे शहर भी कहो तो शहर भी है और गांव भी है,
1: तो वहीं पर आपका पियर भी और ससुराल भी वहीं
0: ससुर
1: पर?
0: एक गांव में। सब कई बाहर गई नहीं, रेल तो मैंने कहीं देखा नहीं, आध्यात्मिक में रहे और गांव में ही शादी हो गई।
1: तो आप बता रहे थे कि छोटे थे तब तो कोई विरोध नहीं करते थे, तो शादी के समय किसी ने विरोध किया क्या?
0: नहीं फिर तो युगल को मैं आध्यात्मिक में ले गई तो उसको भी अच्छा लगा, फिर विरोध होगा आध्यात्मिक में
1: फिर क्या
0: वो।
1: हुआ? विरोध हुआ?
0: हाँ ससुराल में कहते हैं कि नहीं हम कोई पकड़ बकड़ नहीं है, हम आध्यात्मिक में नहीं चल सकते, अब तो हमें बेटा चाहिए बेटी चाहिए, ऐसे आप शादी की है तो ये करना है वो करना है,
1: कौन बोलता है?
0: सास ससुर बोलता है, पर हमारे में लाज प्रथा थी, घूंघट
1: जी
0: निकालने की प्रथा थी।
1: जी
0: तो मेरे पापा ने ही शादी के वक्त कर किया था कि आप घर जाके घूंघट उठाओ, वो अलग बात है, हमारे यहाँ तो शादी होगी तो घूंघट में ही होगी,
1: जी
0: पापा जी ने यही बोला था। और माँ माता जी और बड़ी दो बहनें हैं वो भी अच्छे से शिक्षा देती रही कि हमें अपने मर्यादा में ही रहना है, कभी इधर उधर पाँव न जाए फिसल न जाए, वो बड़ा ध्यान रखना है किसी के साथ, बहुत सारी हमें मदद की बातें मिली उसी से,
1: जी
0: बड़ी दो बहनें थी उसी से सब मिला।
1: तो फिर ससुराल में सब कैसे रहते थे? शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
0: सासी तो घूंघट निकालते थे और बहुत स्ट्रगल हुआ,
1: मतलब आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करते थे?
0: तभी तो करते थे, पर जब आध्यात्मिक में जुड़ी, आध्यात्मिक में मेरा मन रुचि लगी तभी विरोध हुआ।
1: तो आपने कहा कि आपके हस्बैंड तो आपके साथ जाते थे।
0: पहले उसने थोड़े टाइम किया, थोड़े टाइम वो मेरे साथ चले, मैंने कहा प्यार से उसे बोला ना कि चलो हम जाते हैं इसमें आध्यात्मिक में, क्या बहुत अच्छा है लगता है, वो सत्संग में जाने लगे, अब मेरे साथ आए, उसमें साप्ताहिक होता है कोर्स, उस वो किया उसने, और उसके बाद विरोध किया। और घर में तो जाते हैं तो सबको पता चलता है ना ससुराल में, तो मैं कह करके जाती थी कि मैं सत्संग में जा रही हूँ, तो फिर आने के बाद सबको अच्छा नहीं लगता है, मैं अपना काम टाइम पर करती थी, सबको बहुत प्यार से रखती थी, फिर भी उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि हम पकड़ लोग नहीं है सत्संग में, हमारा आध्यात्मिक में नहीं जाना है, सत्संग में नहीं जाना है, तो फिर मन नहीं लगता था सत्संग के बिना। तो
1: फिर आपने विरोध किया?
0: मैंने विरोध नहीं किया, मैंने चलती रही सत्संग में जाती रही,
1: जी
0: फिर छुप छुप के जाने लगी ऐसे थोड़े सामने, फिर तो उसको पता चल गया कि ये वहां से जाती है तो सामने से आकर दो चमाट लगा देती,
1: अच्छा, तो इस तरह आपके साथ विरोध होने लगा।
0: बहुत
1: अच्छा,
0: विरोध।
1: ससुराल में कितना बड़ा परिवार था? मतलब संयुक्त परिवार था या आप अकेले रहते थे सास ससुर के साथ?
0: संयुक्त तो परिवार था, 10 जने रहते थे, चार भाई है, दो बहनें हैं, दो ननद है और सास ससुर है, जेठ जेठानी, उसके तीन बच्चे
1: जी जी
0: बच्चे थे।
1: तो इतना बड़ा परिवार था, आप कह रहे 10 जने थे, इतना बड़ा परिवार रहते थे साथ में?
0: हाँ, सबका काम भी हमें ही करता है, ऐसे कोई काम का भाग नहीं हुआ था, सब इकट्ठे काम करते थे। और मैं तब पानी की तंगी थी तो खेत में जाकर के कपड़े धोने होते हैं,
1: जी,
0: हाँ, और
1: कुएं
0: वहाँ
1: पर?
0: नहाने का सब सब मना होता है, नहाते नहीं थे, कहते कि नहीं हम थोड़ा ब्राह्मण लोग है, हम ब्राह्मण लोग नहीं है, वो क्या बोलते हैं, ब्राह्मण लोग नहाते हैं, हम नहीं नहाते, तो 2-3 दिन में नहाने देते थे, और जैसे कि चलता था
1: अच्छा, नाने रोज नहीं देते थे और आपको
0: नहीं,
1: स्वच्छता पसंद है, तो फिर क्या करते?
0: फिर मैं तो ना

0: मैं सुनाती हूँ तो उसको विरोध होता है कि ये कैसी है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कहते बोलते थे ना कि नहीं नाना नहीं है, हम थोड़ा ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते ही वो नाते थे इस।
1: जी चलिए मधु जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए, इनके अनुभव हमने काफी कुछ सुने हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो मधु जी, जैसे आपकी शादी हो गई, आपको अध्यात्म में गहरी रुचि थी, सत्संग में आप जाते थे, ससुराल में फिर आप जाने लगे तो विरोध होने लगा, फिर आप रोज नाते तो नाने का भी विरोध होने लगा, तो पानी कहाँ से भर के लाते थे? घर पर नल था?
2: हाँ जी, नल तो था, पर ऐसे भी सबका मन भी देखना है ना। उसका मन नहीं है और हम ना रहे, फिर भी नाना ही है, जरूरी है। फिर नहाते थे, नाना तो जरूरी लगा, तब भी लगा और अब भी लग रहा है।
1: नाते और रोज डांट खाते?
2: रोज डांट भी खाते, और उसको हम अच्छे नहीं लगते थे। क्यों? नहाने के लिए मना करते और हम नहाते, तो संबंध ऐसे प्यार से नहीं रहता है।
1: आपके हस्बैंड के साथ?
2: हाँ, वो तो बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं।
1: तो कौन मना करते है?
2: सासू, जेठानी, वो कहते कि नहीं नाना है, ये क्यों नाना है इसे।
1: तो फिर साथ में ही रहे या अलग हो गए?
2: नहीं, फिर तो साथ में रही, जब तक पहली बेटी आई, दूसरा बेटा आया, तब तक साथ थे।
1: अच्छा, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे उस समय?
2: वो होमगार्ड में थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं।
1: अच्छा, तो आपके गांव में थे?
2: हाँ, गांव में सेवा होती है ना सरकारी, होमगार्ड की, जैसे पुलिस के नीचे।
1: जी जी,
2: कॉन्स्टेबल के नीचे होती है।
1: अच्छा, तो जैसे आपका मायका भी वहीं था और
2: ससुराल भी गांव में।
1: जी, जैसे आप बता रहे थे कि कपड़े धोने आप खेत में जाते थे, तो पानी की कमी थी, तो आपके मायके में भी कपड़े धोने आप खेत पर जाते थे?
2: जी नहीं, वहाँ तो घर पे ही था सब कुछ, घर पे ही कपड़े धोते थे। पर ससुराल में ना दुष्काल हुआ, तो वहाँ थोड़ी तंगी हुई पानी की, तो कहते कि आप खेत में जाओ। तो मैंने तो जैसे शादी की आई और तुरंत कपड़े या जो चद्दर वो रजाई होती है ना, एक साथ 18 रजाई धोई, एक दिन भी मैंने बैठी नहीं हूँ।
1: इतना काम करते थे?
2: एक दिन भी बैठी नहीं हूँ। जैसे आज इधर पांव रखा, शाम को शादी करके आए, सुबह सब बोलने लगे इतना काम है, इतना काम है, वो है, इतना धोना है। तो मैंने सीधा कहा चलो मैं आती हूँ, मैं और मेरी जेठानी साथ में गए। फिर एक दिन आई, दूसरे दिन तो सास बोलने लगी कि इतना काम मैं अकेली क्या करूँगी, तो वो तो घर पर रही रसोई के लिए और मैं अकेली गई
1: कपड़े धोने।
2: हाँ,
1: तो शादी होते ही आपके काम में लगा देते हैं। नई नई बहू आई तो थोड़ा लाड़कुड़ भी तो करते हैं ना?
2: करते हैं ना, अभी हम भी कर रहे हैं, हमारी भी बहू है, हम भी बहुत करते हैं।
1: जी,
2: क्योंकि ऐसे आध्यात्म में जाते हैं ना, तो जैसे हम पर बीती है ना, उस पर ना ही बीते, उसको तो इतना लाड प्यार करते, उसको तो आप करके, आप अभी भी, मैं, मेरी बहू है, उसको आप कहकर ही बुलाती हूँ।
1: जी,
2: उसको ऐसे तुकार के नहीं बुलाते, प्यार से ही उसे बुलाते, अगर बुलाना है तो प्यार से ही बुलाते।
1: जी जी अच्छा, तो जैसे आपका काम में लगा दिया तो आपके मायके वालों ने कुछ नहीं कहा?
2: नहीं नहीं माँ पापा का तो यही था कि मेहनत करो, मेहनत आपको जगह दे, मेहनत से ही आगे बढ़ना है ना।
1: तो इतना आप काम करते थे तो सास ससुर प्यार करते थे आपको?
2: नहीं, हो अपना अपना तरीका होता है ना, अपना अपना नजरिया होता है।
1: अच्छा, किसी का प्रेम नहीं मिला?
2: नहीं, आध्यात्मिक में बहुत रुचि इसलिए तो जगी ना।
1: अच्छा, तो इसलिए आपको थोड़ा सत्संग से प्रेम बढ़ा?
2: हाँ, प्रेम और बढ़ा।
1: फिर कितने समय में आप पियर जाते थे?
2: पियर तो गांव में ही था, क्योंकि वहाँ खाना, मुझे वहाँ तेल बहुत लगता था सब्जी में, और मायके में तेल नहीं था, तो साग भाजी में मायके ही खाती थी। अब माता जी मेरी और मेरी भाभी थी, सब कहते थे अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता, यहाँ खा लो, और खा करके वहाँ जाती हूँ ससुराल में।
1: तो रोज जाते थे खाना खाने?
2: हाँ, वहाँ रिवाज है, गांव में जो शादी होती है ना, वो 4 बजे या 5 बजे मायके में रोज जाती है।
1: अच्छा,
2: अभी भी
1: टाइम मिल जाता है?
2: नहीं, टाइम निकालते, वो रिवाज हो गया है।
1: तो 5 बजे जा करके खाना खा के वापिस आ जाते।
2: हाँ।
1: फिर ससुराल में खाना नहीं खाते थे?
2: नहीं, सब्जी में बहुत तेल होता है, कोई स्वाद नहीं। तो क्या,
1: तो आप नहीं बोलते कि सब्जी में थोड़ा तेल कम डालो, या आप खुद नहीं बनाते?
2: नहीं, सबको यही पसंद है, मेरी पसंद नहीं है तो इसमें क्या बड़ी बात है, हम मैं खा लेते।
1: नहीं तो जैसे नहीं कहते कि आपके चाहिए उत्ती अलग से बना दो?
2: अलग कोई नहीं बनता किसी का।
1: अच्छा, तो इस तरह आपके जीवन यात्रा रही। तो वो कहते हैं ना, गांव में पियर और गांव में ससुराल है, तो थोड़ी मुश्किल तो रहती है बैलेंस बनाने में। तो मुश्किल रहती थी आपके जीवन में भी?
2: हाँ, पर अध्यात्म में बहुत रुचि थी ना, तो मुश्किल नहीं लगा
1: जी। अच्छा, और आप बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट मिलता था?
2: तभी मिलता था, फिर वो आध्यात्मिक में जुड़े तो थोड़ा कम हुआ। फिर ससुराल में सास ने और बोला कि अब तो 3 साल हो गए, तो 3 साल में तो बच्चा होना चाहिए। मैके में भी यही कुछ रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर तो बेटी हुई। बेटी हुई तो जेठानी थी, वो खेत में चली जाती थी, पूरा काम मेरे पर आ जाता था। जैसे गायों को दोना, भैंस रखते थे इसको दोना, सब काम करना और बच्चे को रखना
1: जी।
2: थोड़ा थोड़ा ज्यादा सासू का साथ था, सासू थोड़ी बेटी को रखती थी, साथ में थे ना जॉइंट फैमिली में
1: जी,
2: तो रखती थी।
1: दूसरे और कोई सदस्य नहीं थे परिवार में?
2: हाँ थे ना, वो है, एक चूल्हे पर ही रसोई बनती थी, पर यहाँ से कटोरी में लेकर वो अपने घर में खाती थी, वो मेरी सास की सास थी ना वो।
1: अच्छा, तो मधु जी, जैसे आप कह रहे थे कि आपको सत्संग का शौक था, इस वजह से परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करते थे और काम की जिम्मेवारी काफी रहती थी आपके ऊपर, और फिर आप कह रहे थे कि बच्चे होने के बाद आप अलग हो गए, तो सभी अलग हो गए, जेठानी, आप या फिर सास ससुर के साथ रहते थे आप?
2: सभी अलग हो गए, देवरानी भी अलग हो गई, मैं भी। फिर तो देवर की शादी हुई, उसके बाद 1 साल में सब अलग हो गए
1: जी। फिर तो आपको सत्संग में जाने से कोई नहीं रोकता था?
2: नहीं, कोई नहीं रोकता था, मैं चुपके से ही जाती थी सत्संग में। वो जो मेरे पति है ना, उसको जाना अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं अपना ढूंढती थी अंदर से कि भाई क्या मेरी कमी है, मेरा कोई काम छूट ना जाए, उसको बराबर से टाइम देती हूँ, उसका खाना पीना सब काम करना।
1: अच्छा, आप सारा काम करते थे और भजन कीर्तन भी करते थे
2: साथ में? बहुत भजन कीर्तन साथ में ही रहता था।
1: अच्छा, और आप क्या करते थे? कभी
2: सिलाई करते थे? हाँ, बच्चों को पढ़ाई में।
1: आपको सिलाई का भी शौक रहा, तो सिलने में आप क्या क्या सिलते थे?
2: ब्लाउज सिलते थे, ड्रेस सिलते थे, सिलाई का काफी शौक था। मैं ब्लाउज भी बना लेती थी और अपना पूरा जो भी है वो सब मैं सिलाई कर लेती हूँ।
1: जी जी, तो आप जैसे सास, जेठानी, देरानी सबके साथ रहते थे, वहां पर भी सिलाई करते थे या अलग होने के बाद शुरू?
2: अलग होने के बाद, साथ में तो टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि 10 जने का काम था,
1: इसलिए आप अलग होने के बाद सिलाई का काम शुरू किया। तो आप अपना ही सिलते थे या मोल का भी सिलते थे?
2: मैं अपना ही सिलती थी, फिर दो थे, भैंस थी और खेत थी। अलग होने के बाद तो खेत को संभालना होता है, सुबह 8 बजे भाता बना करके 8 बजे निकल जाना, 1 घंटे का चलने का खेत दूर थी।
1: अच्छा,
2: तो वहाँ पहुँच के, आध्यात्मिक में रुचि थी ना, तो वहाँ भी मैं पढ़ लेती थी, कुछ भजन भजन कर लेती थी।
1: वहाँ भजन किसके साथ करते थे?
2: ऐसे मन से, तो जब मजदूर आते ना, उससे पहले मैं पहुंच जाती थी।
1: अच्छा,
2: हाँ।
1: तो आपके हस्बैंड भी जाते थे?
2: वो दोपहर को रोटी लेकर आते थे, उसको क्या भाता बोलते हैं। हाँ, तो वो भात लेकर के आते, मैं अपने भाता लेकर के जाती थी सुबह, और बच्चों को मेरी माँ रखती थी।
1: अच्छा,
2: अलग होने के बाद।
1: जी जी,
2: हाँ। और शाम को आती थी चल करके, साइकिल भी नहीं, कुछ नहीं था, चल के आना, चल के जाना, तो 1 घंटा तो हो जाता है आने जाने में, 2 घंटा।
1: खेत में क्या करते थे आप, कुछ बोते थे?
2: बोते तो
1: बुआई आप ही करते हैं या मजदूर करते हैं, आप देख रेख करते हैं?
2: बुआई तो उसी से होती है, ट्रैक्टर से होती है
1: जी।
2: पहले तो बेल था ना, बेल से होती बुआई तो। फिर उसमें सफाई होती है ना, वो हम करते थे।
1: अच्छा,
2: उसके बाद बड़े होकर के कटाई होती है ना, जैसे मूंगफली को पाड़ते हैं, भेगी करते हैं जैसे
1: जी, खटी करते हैं और हाँ, फिर उसकी मिट्टी हटाते हैं।
2: हाँ,
1: मतलब खेत के, खेत के काम में आप व्यस्त
2: सारे काम है? सारे काम करते थे
1: जी जी,
2: जो मजदूर वाला होता है ना वो सारा काम करते थे
1: जी जी। और पढ़ाई में आपको शौक था और उसी घाम में आपकी शादी हुई, तो आपके टीचर लोग नहीं कहते कि क्या तू इन कामों में लग गई, पढ़ाई कर लेती तो अच्छा रहता?
2: टीचर बहुत अच्छी थी, पढ़ने जाते थे तो भी वो ऐसे वार्ता बोलते हैं, ऐसे ही पढ़ाई की भार नहीं दिया, पढ़तर में तो बहुत अच्छा
1: जी जी। आप इस तरह खेत में जाते, खेत में आते, आपका टाइम पूरा हो जाता, फिर सिलाई कब करते हैं?
2: सिलाई तो मैं जिस दिन नहीं जाना होता है ना तब करती हूँ, और कभी कभी तो खाने पीने के बाद टाइम निकाल करके जो बनाना है ना वो मन से बना लेती हूँ, करना है कि यही करना है, यही चाहिए घर में और अपने पहनने में, तो रात को भी मैं सिल लेती थी।
1: अच्छा, जब जरूरत पड़ी कि हाँ मेरे को इस तरह के कपड़े चाहिए तो आप खुद का सिल लेते थे?
2: खुद का सिल ले।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है मधु जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुन करके पुणे लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मधु जी के अनुभव और भी बाकी है, तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: सिंह चौहान, हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, उसकी बातों में सच्चाई रहती है। जो नारी का मान रखे उसकी हर राह उजली रहती है, उसकी हर राह उजली रहती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। मधु जी के काफी अनुभव सुने हैं और भी हम कहना चाहेंगे। मधु जी, आप पूरे जीवन अभी तक 52 साल की उम्र है तब तक आप पाटवा गांव में ही रहे, उससे बाहर आपका जाना नहीं हुआ?
2: कभी नहीं।
1: तो जैसे आपकी दो बहनें बड़ी है, कभी उनके यहाँ जाना हुआ होगा?
2: एक तो गांव में ही है, एक बाजू में मजेठी है, वहाँ है।
1: अच्छा, पास पास में ही है।
2: हाँ, कभी कभी जैसे कि प्रसंग होते हैं, उसकी बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तभी जाना हुआ
1: जी। और आप कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं?
2: नहीं, पहली बार एक आध्यात्मिक ही बैठे।
1: हाँ, पहले जब आप रहे अपने ससुराल में तब तक ट्रेन में नहीं बैठे?
2: ट्रेन देखा ही नहीं था, दूर बाटवे में तो ट्रेन नहीं है, जूनागढ़ से।
1: जूनागढ़ से मिलते हैं। अच्छा, और जैसे अब आपकी उम्र 52 साल की है, आपके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू भी आ गई है, बेटी की भी शादी हो गई होगी?
2: हाँ, बेटी की भी शादी हो गई है, वो उसका भी दो बेटी है, बेटा है छोटा।
1: अच्छा, तो आप नहीं पढ़ पाए तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया?
2: बहुत खूब पढ़ाया, यहाँ तक कि उसको तो नौकरी भी दिलाई यहाँ तक।
1: बेटी को?
2: बेटे को भी, अभी बेटा भी है, वो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर वहाँ पाजोद में है।
1: अच्छा, दोनों बच्चे जॉब करते हैं आपके?
2: हाँ, बेटी नहीं करती, बेटी को तो अच्छा ससुराल मिला है तो उसको नहीं करने देते, पर अब वो विदेश जाने वाली है।
1: जी जी, शादी हो गई और बेटा जॉब करता है?
2: हाँ।
1: अभी आपको कोई दिक्कत नहीं?
2: जी नहीं।
1: अभी कोई सत्संग से रोकता नहीं?
2: जी नहीं।
1: आपके हस्बैंड सहयोग करते हैं अब?
2: हाँ, वो सहयोग करते हैं, थोड़ा मैं बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ तो सत्संग में, तो मुस्कुरा देते हैं, कुछ बोलते नहीं है
1: जी।
2: मैं उसको भी बोलती हूँ आप भी हमारे साथ चलो।
1: अभी भी आपके सास ससुर सभी है?
2: सास है अभी।
1: जी जी जी। अब अच्छे रहते हैं आपके साथ?
2: हाँ, बढ़िया रहते हैं, सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहते हैं।
1: जी जी।
2: हाँ,
1: एक समय था जब कोई आपके साथ अच्छे नहीं रहते थे तो आपका दिल दुखता था?
2: एक समय तो यही था कि जब मैं अलग हुई ना, तब तो मेरे से सब विरोधी थे, फिर मेरी ये सत्संग की वजह से मैं सबसे साथ मिलजुल रही हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं उसको स्वीकार लेती हूँ, जैसे भी है मैं मिल जाती हूँ उसके, हर प्रसंग में उसके आगे होती हूँ।
1: जी जी जी, बिल्कुल। तो आपने सबके साथ तालमेल बनाए रखा?
2: अभी भी बनाए रखा है।
1: जी जी। और बहू के साथ आपका कैसा व्यवहार है?
2: बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, उसका नाम भी ऐसा है जैसा उसका काम है, उसका नाम है शीतल। तो बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है।
1: जी जी जी। तो आपने बहू और बेटी को समान समझा?
2: हाँ, बेटी से बढ़कर भी बहू को मैंने अपने दिल में रखा है।
1: जी जी।
2: कहते हैं ना, बेटी तो आती है तो जाती है।
1: जी।
2: बेटी से हमारा क्या? हाँ, आती है, वो फोन भी करती है, सब हालचाल पूछती है, पर बेटी से बढ़कर है बहू।
1: जी जी।
2: बहुत और बहुत बहुत अच्छी है।
1: जी,
2: बहुत प्यारी है, और उस जैसा इसका नाम है ना वैसा उसका गुण है।
1: जी। और सिलाई काम आज भी आप करते हैं? हाँ, या छोड़ दिया?
2: नहीं नहीं करती हूँ अभी भी, अभी तो बहुत अच्छा सिलाई काम हाथ में बैठ गया है।
1: तो आप अपना ही करते हैं या अभी भी मुल्का करते हैं?
2: मुल्का बेटे ना बोलते हैं कि अभी कोई जरूरत नहीं मम्मी, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, खेती है, अभी बहुत अच्छा है।
1: तो पहले आप मोल का भी करते थे?
2: पहले मोल का नहीं, घर का पूरा करती थी, खेत करती थी और पशुपालन।
1: अच्छा।
2: पशुपालन मेरे ऊपर था।
1: अच्छा, कितने गाय भेजते?
2: 3 गाय भैंसे थी और उसके बछड़े बच्चे होते वो थे।
1: तो आप अकेले संभालते थे?
2: हाँ, हस्बैंड का तभी थोड़ा कम था साथ सहयोग।
1: जी। तो वो क्यों सहयोग नहीं करते थे फिर, आपने इतना क्यों पाला? खेती को संभालना,
2: पैसे के लिए पैसा तो चाहिए ना घर चलाने के लिए, तो खेत में से जो उत्पादन होता है वो तो इतना नहीं होता था तब।
1: लेकिन आपके हस्बैंड तो होम गार्ड थे ना, तो सैलरी तो आती होगी ना।
2: हाँ, वो उसके खाते में जमा होती है, वो घर पर नहीं देते थे ना।
1: अच्छा, घर में पैसे नहीं देते?
2: नहीं देते थे,
1: तो घर कैसे चलेगा?
2: हाँ, बस दूध घर का है, सब्जी खेत की आती है, गेहूं भी खेत के आते हैं, तो और क्या चाहिए? जैसे कि बाहर से कुछ लेना है ना, तो वो गाय भैंस का जो दूध बेचने के बाद जो पैसा आता है ना, उसमें से मेरा घर चल जाता है।
1: इसलिए आपने गाय भैंस रखी कि
2: हाँ,
1: आपके हस्बैंड पैसे नहीं देते थे?
2: हाँ, तभी भी नहीं देते, अभी भी नहीं देते,
1: अभी भी नहीं देते?
2: नहीं देते।
1: तो फिर पैसों का क्या करेंगे वो?
2: वो तो क्या करेंगे, ले जाएंगे साथ में, कोई नहीं ले जाता है ना, यहाँ ही पड़ा रहेगा।
1: अच्छा, तो आप जैसे आबू आए अभी, आप रेडियो मधुबन में हमारे साथ है, तो किराया भी लगता है, पैसा भी चाहिए बाहर जाने पर, तो कौन देता है फिर आपको?
2: बेटा देता है ना।
1: अच्छा, बेटा देता है,
2: बेटे से मांगती हूँ। मेरा स्वभाव यही है कि मैं मांगती नहीं, वो सामने से बोलता है कि अभी तो आपका खलास हो गया होगा, इतना दिया था, अब खलास हो गया होगा तो लो मम्मी। मैं तो पहले तो ना ही बोलती थी, मुझे नहीं चाहिए, फिर यहाँ ये तो
1: बाहर जाते हैं तो फिर पैसे दे देते हैं बेटा, लेकिन हस्बैंड आज भी नहीं देते?
2: नहीं,
1: और आज भी जॉब उनकी जारी है?
2: नहीं, वो रिटायर्ड हो गए।
1: रिटायर्ड हो गए, पेंशन आती होगी?
2: नहीं, पेंशन नहीं आती, उसमें नहीं आती है।
1: अच्छा,
2: होमगार्ड में नहीं आती है।
1: अच्छा, फिर भी थोड़ा बहुत पैसा उनके हाथ में होगा, लेकिन देते नहीं है?
2: हाँ, वो सारा जमीन का पैसा तो आता ही है ना
1: जी, खेती बाड़ी का।
2: खेती बाड़ी का
1: तो फिर खेती बाड़ी में से भी आपको नहीं मिलता है, जबकि आप तो काम करते हैं?
2: नहीं मिलता।
1: अच्छा,
2: ये महिलाओं की जिंदगी ऐसी टगल वाली है।
1: फिर भी आप खुशी खुशी उसको बर्दाश्त करके चल रहे?
2: स्वीकार लिया ना, जैसे भी है।
1: जी जी जी, तो चलिए, कार्यक्रम के अंत में आप हमारी बहनें सुन रही, उनको क्या कहना चाहेंगे?
2: मेहनत करना है, मेहनत से डरना नहीं है, और हर परिस्थिति का डट के सामना करना है। जब सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हमें अंदर से खुशी भी आएगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।
1: जी, चलिए, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है मधु जी, सभी नारी शक्ति को, कि मेहनत करना है और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है। जैसे आप पशुपालन करके थोड़ा बहुत पैसे बचा करके कहीं जाते हो तो लेके जाते हो, बाकी घर से नहीं मिलता है।
2: और सहन शक्ति एक बड़ी शक्ति है, वो सहन शक्ति से हमारा सबके साथ संबंध अच्छा रहता है।
1: जी जी जी,
2: सहन करेंगे ना तो सबके प्यारे रहेंगे।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है मधु जी ने, बहुत बहुत आभार। आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव सभी के साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू जी, थैंक यू उषा दीदी जी, आपका बहुत बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, और बहुत बहुत दुआएं देती हूँ आपको।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मधु जी राठौड़ हमारे साथ बने हुए थे। आप जूनागढ़ बांटवा से पधारे हैं और आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए हैं। देखिए, आपने जाना है कि नारी शक्ति कितनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका एक रुपये पर भी अधिकार नहीं होता है, फिर भी आप खुश है, परिवार को साथ में लेके चलते हैं, और सत्संग में जाना कोई गलत बात नहीं है। अच्छी बात है कि आप ईश्वर भजन करते हैं, तो परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया और आपके साथ अव्यवहार किया, फिर भी आप सहनशीलता के दम पर और मिलनसार संस्कार होने के दम पर सभी को साथ में लेके चले और हमेशा खुश रहे, और आज भी खुश है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

शांति। आज 8 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है, जैसे योग दिवस पर बाबा कहते हैं, तुम बच्चे यहां बैठे हो तो क्या कर रहे हो? रूहानी ड्रिल कर रहे हो। मनुष्य जब देखते हैं तो सोचते हैं, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। दुनिया के अंदर लोग शारीरिक ड्रिल कराते हैं, लेकिन वो राजयोग नहीं है। राजयोग ये रूहानी ड्रिल को कहा जाता है कि जब तुम स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। इस रूहानी ड्रिल से ही बहुत प्राप्ति है। अनेक जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं और साथ ही साथ भविष्य नई दुनिया के अंदर श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। साथ ही आज बाबा कहते हैं दूसरी बात कि ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख सदा निश्चिंत बनना है। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना ही, तो निर्मोही बनना है। और तीसरी विशेष बात बाबा ने कही कि इस समय तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, तो अपनी अवस्था की संभाल करनी है। ये नहीं कि अवस्था को कभी राहु का ग्रहण लग जाए, और मानो अगर कोई ग्रहचारी बैठ भी जाती है तो बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई उससे मुक्त होने के लिए, कि ज्ञान दान से समाप्त करना है। जैसे कहा जाता, बेदान तो छूटे ग्रहण, तो बाबा कहते हैं ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है। इस ज्ञान दान से ही तुम अपने उस ग्रहचारी से स्वयं को मुक्त करो, अर्थात सेवा करो। सेवा से सहज ही ग्रहचारी से मुक्त हो जाएंगे। कैसे? पुण्य जमा होने से। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है। कैसे बैठना है वो भी बाबा सिखाते। बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से क्या होगा? अगर बाबा कहें यहां बैठ करके भी मित्र संबंधी धंधे आदि को याद करेंगे तो वायुमंडल में विघ्न पड़ता है, तो उसका भी दोष लगता है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने माशुक को याद करते हो। यही रूहानी ड्रिल है, बुद्धि की ड्रिल है। इसका ही इशारा गीता में भी आया है। क्या आया है इशारा? मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशुक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो मन मना भाव कैसे बनेंगे? जानते ही नहीं तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे यहां क्या कर रहे हैं। संदल पर बैठे बच्चे जो योग कराने वाले हैं वो क्या करा रहे हैं? याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है, किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से क्या होगा? ये रूहानी ड्रिल करने से हमारे जो भी विकर्म है वो भस्म हो जाएंगे और विकर्मा जीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं।
भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वह सब है जिस्मानी और यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर, ये रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर। भगवान वाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना, बच्चों को फरमान मिला है। क्या फरमान मिला है? बच्चों को फरमान मिला है माँ एकम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो, इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। बाबा के वास्तव में घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं परंतु कहना पड़ता है। यहां बैठ कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाबा कहते वो वाइब्रेशन को दूषित कर देते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते जैसे यहां तुम याद में बैठे हो ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है परमपिता परमात्मा माशुक की। भक्ति मार्ग में भी आत्माएं आशिक होती है परमात्मा की, परंतु माशुक को जानते नहीं है, न अपनी आत्मा को जानते हैं। आत्मा की वास्तविकता क्या है? माशुक बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है, यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाबा कहते भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है, अब ये है आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सन्मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम आशिक मुझ माशुक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए। क्या निश्चय होना चाहिए? कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ ये कोई नहीं जानता। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए बाबा कहे अब तुम वास्तविक रूप में पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। यह कौन निश्चय कराते हैं? वह है गीता का भगवान। निश्चय कौन करा रहे हैं? गीता का भगवान। परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे यहां आकर सिखाएंगे? मनुष्य समझते वो तो निराकार है, वह कैसे यहां आकर सिखाएंगे? बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार श्री कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। बाप को नहीं जाना तो ड्रामा अनुसार भूल हो गई जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है, बहुत नजदीक का संबंध है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी श्री कृष्ण जयंती। कल माना दूसरे दिन नहीं, लेकिन जरूर है कि समय की गति को देखते हुए बाबा कहते फिर कल होगी श्री कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में
श्री कृष्ण जयंती है सवेरे, उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर श्री कृष्ण जयंती होती है। यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं, कायदा है। यहां सभा में कोई बाहर मुखी ना हो, इस सभा में कोई बाहर मुखी ना हो, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते, बाहर मुखी है तो क्या जानेंगे। उनको यह भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तभी आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो न सके, इसलिए बेहद के बाप को ही आकर समझाना पड़ता है। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं, बुजुर्ग को भी बाबू अथवा पिताजी कहते हैं। बुजुर्ग को देखते हैं तभी भी उनको बापू अथवा पिताजी कहते हैं। ये रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान अर्थात समझ से ही पावन होना है। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़ी बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते, भगवान उवाच अर्जुन प्रति, ब्राह्मणों का नाम निशानी नहीं है। भगवत गीता में ब्राह्मणों का नाम निशानी नहीं, गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे ना, न कि विष्णु द्वारा न शंकर द्वारा। जो बाबा स्थापना ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, न कि विष्णु द्वारा न शंकर द्वारा। तुम बच्चों को यह समझानी अब मिली है। बाप को यहां आना पड़ता है, वापस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। श्री कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5,000 वर्ष पाठ बजाया है। पूरे 5,000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है यानी गर्भ में है तो भी जन्म तो है। आत्मा ने प्रवेश किया माना उसका जन्म हो गया। इतने सूक्ष्म बात बाबा ने बताई। स्थूल जन्म तो बाद में भले होता रहे, लेकिन जिस घड़ी प्रवेशता हुई माना आत्मा का जन्म हो गया। श्री कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5,000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना शिव बाबा, ब्रह्मा तन में बैठा है ना। श्री कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5,000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5,000 वर्ष में कम हो जाए। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं श्री कृष्ण की आत्मा फिर से ये ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। फिर से ज्ञान ले रही है क्यों? फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो, ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहां ग्रहचारी बैठ जाती है, तो आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती, अहो माया फिर भी भागंती हो जाते हैं।
कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है, तब कहते हैं महान कमबख्त इस दुनिया में देखना हो तो यहां देखो, जिसके ऊपर घोर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तुम्हारी आत्मा कहती है, क्या कहती है? बाबा कहते तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी यह वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहां यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। यहां इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सब्ज परी, पुखराज परी जो ब्राह्मणिया पंडा बनाती है, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हैं, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, लाने वाला भी और जो आया है वो भी, तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाता है। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मानसरोवर में स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो सरोवर भी हो, ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं। ब्रह्मा तन में बैठ ज्ञान सागर बाप हम बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। कहाँ के लिए लायक बना रहे हैं? स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना, आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती है। बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत है, कोशिश कर उनको समझाओ। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं? ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर आधा कल्प में कितने मठ, पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। द्वापर कलयुग आधा कल्प में कितने ढेर मठ, पंथ, धर्म आदि स्थापन होते हैं। कहां आधा कल्प में एक धर्म? सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। बस सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। जो धर्म स्थापक आते हैं, अनेक मठ पंथ जो भी है, वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। कोई और में पावर ही नहीं। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती है।
और तुम सुख में जाते हो। बाबा कहते सभी आत्माएं शांति में चली जाती है और तुम सुख में आते हो, उस समय दुख कोई है नहीं। जो गॉड को याद करे, आधा कल्प दुखी नहीं है जो गॉड को याद करे। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम जानते हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो। सागर तो एक बाप है, हम बच्चे उनके मददगार है। इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं, बाकी वह है पानी की नदियां। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, यह भी किसको पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है, 4 युग है ना, ये संगम युग है कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, संगम युग को कहते कुंभ। कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। आत्माएं आत्माएं एक दूसरे को मिलती है, सेमिनार करते हैं, तो बाबा कहते उसको कुंभ नहीं कहा जाता है। कुंभ उसको कहेंगे जहां आत्मा और परमात्मा का मेला होता है। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना, जहां इनका तन वहां ज्ञान का सागर, जहां ब्रह्मा बाबा का तन वहां ज्ञान का सागर। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो, नदियां छोटी बड़ी तो होती है ना, वहां स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही, दहली जमुना का कंठा है स्वर्ग। दहली के लिए कहते हैं परिस्थान था, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसे नहीं किसी कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, ये भी गारंटी है। बेहद की बॉक्सिंग है, हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करे, माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ, ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है, तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है, यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। फलाना मर गया, इतना ही पाठ था, हम चिंता क्यों करें। ड्रामा है ना, शरीर छोड़ दिया फिर थोड़ी आ सकता है, इसी नाम रूप में तो कल्प के बाद ही आएगा, फिर से इसी नाम रूप में थोड़ी आ सकता। रोने से फायदा ही क्या, इसका नाम ही है दुख धाम। सतयुग में मोहजीत राजाएं होते हैं, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं, यहां तो मनुष्य का कितना मोह है। इसको रोना ना आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे, जोर जोर से रो करके, इसलिए रोने वाले बुलाते ताकि उनको रुला सके। तो समझे कि अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानी हो जाए, अगर नहीं रोए तो ग्लानी हो जाए। भारत में ये सब रिवाज है, भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेस राज्य करते थे, विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं, पुरानी चीज का मान होता है,
सबसे पुराना शिव तो यहां आया हुआ है। सबसे पुराना शिव बाबा के, सबसे पुराना शिव बाबा तो यहां आया था ना, उनके कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे? अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे? वह होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। जब तक वो नहीं आया था, होकर गए थे तो द्वापर से कलयुग तक उसकी पूजा करते हैं। फिर जब वो आ जाता है तो फिर पूजा करने की क्या जरूरत, फिर तो उनसे मिलन मनाए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ब्रह्मा के ज्ञान को बुद्धि में रख, निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, निर्मोही बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण न लग जाए, उसकी संभाल करनी है। कोई भी ग्रहाचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वेदांत तो छूटे ग्रहण, तो बाबा कहते ज्ञान दान देना शुरू करो, सेवा करना शुरू करो, तो वह ग्रहाचारी समाप्त हो जाएगी। आज का बाबा का मधुर वरदान है, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है, इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्प को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन है उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट, अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। आज का स्लोगन है, योग की अनुभूति